सुप्रभात। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। आज रविवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 21वीं तिथि, तदनुसार 12 जुलाई सन 2026 ईस्वी। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:49 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है आज का चिंतन, संतोष में सुख। वाचन मनोज कुमार सिन्हा।
1: व्यक्ति भले ही निर्धन हो, पेट भर भोजन मुश्किल से जुटा पाता हो, पर अगर रात को सुख की नींद सोता हो और मौत आते देखकर भी प्रसन्नता से उसे आलिंगन करने को तत्पर रहता हो, वही व्यक्ति चिंता मुक्त होता है।

0: चिंता मुक्ति का सबसे बड़ा उपाय है संतोष। संतोष ही सुख की सीढ़ी है, लेकिन आज इसी की कमी है। आम रूप से व्यक्ति कितना भी धनी क्यों ना हो जाए, सभी प्रकार के सुख सुविधा उसे मिल जाए, बावजूद इसके वह हाय हाय करता ही दिखाई देता है। जो निर्धन है उसकी भी यही स्थिति है, न जीवन में संतोष है और न शांति। इसी असंतोष के कारण वह गलत रूप से धन एकत्र करने, दूसरों की जेब काटने, उन्हें धोखा देने और अपना स्वार्थ सिद्ध करने हेतु अन्यान्य पाप करने को विवश हो जाता है। आज समाज में विलासिता के लिए एक दूसरे के बीच होड़ मची है। दूसरों से बढ़ चढ़कर सुंदर से सुंदर मकान, अनगिनत बैंक बैलेंस, बढ़िया से बढ़िया मोटर गाड़ी, गहने जेवरात और फिर कभी न समाप्त होने वाली ऐसी लालसा बढ़ती चली जाती है। इन चीजों की प्राप्ति के लिए हम उचित मार्ग न अपनाकर पाप पुण्य की चिंता किए बिना घृणित मार्ग अपनाते हैं और चोरी, डकैती, राहजनी एवं हत्या जैसे अपराध को अंजाम देने लग जाते हैं। जिन बातों से हम सुख की इच्छा रखते हैं वही बातें हमें दुख और असंतोष देती हैं। हम तनाव में आकर चिंताग्रस्त हो जाते हैं, हमारा सुखमय जीवन अशांत हो जाता है। प्रायः हम अपने सुख से सुखी ना होकर दूसरों के सुख से दुखी रहा करते हैं। हम दूसरों की उन्नति में बाधक बनने का प्रयास करते हैं, षड्यंत्र रचने से भी बाज नहीं आते, ताकि उन्हें नीचा गिराया जा सके, फंसाया जा सके। हम अपने जीवन का मूल्यवान क्षण इन्हीं कुचक्रों और दुष्कर्मों में व्यतीत कर देते हैं, और जब अपने ऐसे कर्मों का फल भोगना पड़ता है तब ईश्वर को कोसते हैं, रोते पीटते हैं और भाग्य में ऐसा ही लिखा होने की बात करते हैं। जबकि इसके विपरीत दूसरों की उन्नति से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, उनका उचित विश्लेषण कर हमें गलत सही मार्गों का अंतर जानना चाहिए। हमें आत्मचिंतन, आत्ममंथन और आत्मनिर्णय के आधार पर अपने पौरुष्य और आत्मशक्ति को जगाकर सही मार्ग अपनाते हुए धनार्जन की ओर प्रवृत्त हो जाना चाहिए, क्योंकि दूसरों की तरह हमें भी धन अर्जन का अधिकार है। इस प्रकार लगन, परिश्रम और ईमानदारी से किए गए अर्थोपार्जन ही हमें सुख और संतोष देता है, और ऐसे धन को हम सोच समझकर ही अच्छे कार्यों में खर्च करते हैं। धन की उपयोगिता भी इसी में है। आज हम जिस भी पेशा या रोजगार में हैं उसमें संतुष्ट नहीं हैं। नौकरी पेशा व्यक्ति दुकान या व्यापार चाहता है, और दुकानदार या व्यापारी नौकरी करने वालों का जीवन पसंद करता है। किसान अपने कृषि कार्य से संतुष्ट नहीं है, शहर वाले गांव और गांव वाले शहर की ओर रुख करना चाहते हैं। दूर के ढोल सुहावन वाली कहावत चरितार्थ होते नजर आती है, लेकिन नहीं, हम जो भी काम कर रहे हैं उसी में सुख और संतोष उत्पन्न कर सकते हैं, उसी में शांति और वास्तविक आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। सिर्फ अपने काम में रुचि पैदा कर लगन और ईमानदारी से पूरा करने की आवश्यकता है, दृष्टिकोण बदलने की आवश्यकता है।
1: अभी आप सुन रहे थे आज का चिंतन, संतोष में सुख, वाचन मनोज कुमार सिन्हा का था। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है कृषि चर्चा। कृषि चर्चा में आज का विषय है गेंदा की खेती, और वार्ताकार हैं श्रीनिवास सहाय।
2: किसान भाइयों नमस्कार। गेंदा फूल की खेती सालों भर की जाती है और बाजार में इसकी मांग भी सालों भर होती है। कभी मांग बढ़ जाती है, कभी कम मांग होती है, लेकिन सालों भर इसकी मांग होती है। आप लोकल बाजार में भी गेंदा के फूलों को बेच करके आमदनी प्राप्त कर सकते हैं।

0: गेंदा का फूल जो है उसमें औषधीय गुण बहुत होते हैं। ताजे फूलों का रस खूनी बवासीर के लिए फायदेमंद होता है। फोड़ा और खुजली दिनाई में गेंदा की हरी पत्तियों का रस लगाने से फायदा होता है। अपरस की बीमारी में हरी पत्ती का रस लगाने से लाभ होता है। छोटा मोटा कटने पर या छिल जाने पर गेंदा के पत्तियों को मसल कर लगाने से खून का बहना बंद हो जाता है। गेंदा की हरी पत्ती का रस कान दर्द में भी प्रयोग किया जाता है। गेंदा की हरी पत्ती के रस से मोचा या अंदरूनी चोट में मालिश करने से भी लाभ होता है। इसका अर्क निकालकर सेवन करने से भी लाभ होता है, क्योंकि इससे शरीर में खून की मात्रा जो है वो नियंत्रित होती है। जैसा कि हमने कहा, गेंदा के पौधे अभी लगाए जा सकते हैं, क्योंकि हर मौसम में इसकी खेती होती है। इसके लिए आपको गहरी बलुई दोमट मिट्टी चाहिए। मिट्टी में जल निकास की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए, क्योंकि पानी लगने के साथ जो है ना, ये इसमें बढ़त कम होती है और फूल भी कम आते हैं। गेंदा की जब आप व्यावसायिक खेती कर रहे हैं तो खेत की 3-4 जुताई करें, उसके बाद मिट्टी को भुरभुरी बनावें और वहां पर आप लगा दें। गेंदा के पौधे में एक और गुण होता है कि इसके अगल बगल कीड़ों का आक्रमण कम होता है। तो यदि आप कोई पौधा लगा रहे हैं रबी मौसम में जिस पर कि कीड़े लगते हैं, लाही वगैरह, तो उसके बीच में आप गेंदा के पौधे भी लगा सकते हैं। गेंदा के जो मुख्य प्रभेद हैं या उन्नत किस्में हैं, उसमें अफ्रीकी मेरी गोल्ड और फ्रांसीसी गेंदा प्रमुख है। अफ्रीकी मेरी गोल्ड जो है, इस प्रजाति के जो पौधे होते हैं वे अच्छे होते हैं, उनमें फूल जो है वो भी अच्छे आते हैं। इस प्रजाति के कुछ जो उन्नत किस्में हैं उसमें पूसा नारंगी, पूसा बसंती, पूसा अर्पिता और कलकतिया प्रमुख हैं। जबकि फ्रांसीसी में जो है वो ब्रोकेट, कपिड मेलो, बोलेरो और बटर स्कॉच प्रमुख है। पहले आप नर्सरी में इसके पौधे तैयार करते हैं, फिर उसके बाद खेतों में रोपाई करते हैं। आप गेंदा के पौधे को कई विधि से उगा सकते हैं, प्रसारण कर सकते हैं। एक तो बीज जो द्वारा होता है, यानी कि गेंदा का फूल जो है जब पूरा परिपक्व हो जाता है तो उसे भी अगले सीजन के लिए आप रख लें और उससे भी पौधे तैयार हो जाते हैं। कटिंग के द्वारा भी पौधे तैयार होते हैं, जिसे आजकल बाजारों में कट फ्लावर कहा जाता है। वे पौधों के विभिन्न भागों को काट करके जमीन में लगा दिया जाता है और उससे भी अच्छे पौधे तैयार हो जाते हैं। रोपाई करने का समय मैंने पहले भी बताया कि सितंबर से लेकर के नवंबर के अंतिम सप्ताह तक है इस मौसम में, और उसके बाद जो है उसमें फूल जो है 2 महीने के अंदर आ जाते हैं। कुछ पौधे फरवरी माह में भी लोग लगाते हैं, जुलाई माह में भी लगाते हैं। आपकी आवश्यकता और बाजार की मांग के अनुसार आप पौधे लगा सकते हैं। खरपतवार नियंत्रण की भी आवश्यकता होती है। जब जब मिट्टी में पौधे के नजदीक दूसरे खरपतवार उगे तो उन्हें आप खुरपी की सहायता से निकाई गुड़ाई करके हटा दें। जहां तक पानी देने का सवाल है, तो समय समय पर जब भी मिट्टी में नमी की कमी हो आप पानी देते रहें, लेकिन ध्यान इस बात का रखें कि ज्यादा पानी नहीं दें। ज्यादा पानी देने से जो है पौधे सूखने लगते हैं। कीट व्याधियों का भी कुछ नियंत्रण करना आवश्यक होता है, तो उसके लिए भी आप कुछ दवाओं का प्रयोग कर सकते हैं कृषि विशेषज्ञों की सलाह से। इस तरह से गेंदा फूल की खेती करें और लाभ लें।
1: कृषि चर्चा आप सुन रहे थे आकाशवाणी के पटना केंद्र से। विषय था गेंदा की खेती और वार्ताकार थे श्रीनिवास सहाय। अब हिंदी में समाचार प्रसारित होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। न्यूजीलैंड से स्वदेश लौटते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के समक्ष अवसरों की अपार संभावनाएं हैं और वे अपनी साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली स्थित पूसा परिसर में पर्यावरण

0: संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस अवसर पर वे देश भर से आए लगभग 17,000 वृक्ष मित्रों से संवाद करेंगे। श्री सिंह वृक्ष मित्रों के साथ पूसा परिसर में वृक्षारोपण अभियान में भी हिस्सा लेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार एक विशाल अभियान में आज 35 करोड़ पौधे लगाएंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सुबह गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ 2026 का शुभारंभ करेंगे। वे एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और आरकेबीके के पास ताल रिंग रोड के किनारे पौधे लगाएंगे। मध्य प्रदेश में आज मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 38वीं मासिक किस्त जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से 1,25,00,000 से अधिक महिलाओं के बैंक खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित करेंगे। इसके अतिरिक्त 83 करोड़ रुपए से अधिक की 16 नई लोक कल्याणकारी परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसकी अध्यक्ष होंगी। खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2026 के अंतर्गत नियमों का उल्लंघन करने के आरोपों से संबंधित कई उपभोक्ता शिकायतों के बाद स्विगी इंस्टामार्ट को 9 नोटिस जारी किए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में FSSAI ने कहा है कि स्विगी को विस्तृत स्पष्टीकरण और अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है और ऐसा न करने पर उचित कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी। उपभोक्ता शिकायतों में स्विगी इंस्टामार्ट पर उत्पादों के निर्धारित अवधि समाप्त होने, खराब, सड़े, दूषित और अन्य प्रकार के असुरक्षित खाद्य उत्पादों की आपूर्ति का आरोप लगाया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों को अपने पक्ष में करने के जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के आरोप की आलोचना की है। दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि श्री अब्दुल्ला का यह बयान अत्यंत गैर जिम्मेदाराना है और इसकी निंदा की जानी चाहिए। भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक स्पीड बोट कल वियतनाम के फुकवोक द्वीप के पास पलट जाने से 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि मृतकों में 13 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। दूतावास ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में मृतकों की सूची साझा करते हुए कहा कि ये नाम वियतनामी अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। दूतावास के अनुसार मृतकों से 10 तमिलनाडु से और 3 आंध्र प्रदेश से जबकि 2 केरल से थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नागरिकों के साथ हुई दुखद नाव दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के होर्मुज जलडमरू मध्य में साइप्रस के झंडे वाले जहाज पर हमले के बाद अमरीका ने ईरान पर नए हमले शुरू कर दिए हैं। अमरीकी सेना ने कहा है कि ये हमले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर किए गए। इस बीच ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को अगली सूचना तक बंद कर दिया है। और खेलों में इंग्लैंड ने कल रात साउथैम्प्टन में 5वें और अंतिम T20 क्रिकेट मैच में भारत को 56 रन से हराकर श्रृंखला 4-0 से जीत ली है। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने आज तड़के फ्लोरिडा के मियामी स्टेडियम में नॉर्वे को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। स्पेन और फ्रांस पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना चुके हैं। उधर लंदन में कल रात विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में 21 वर्षीय लिंडा नोस्कोवा ने चेक गणराज्य की करोलिना मुकोवा को हराकर महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया। महिला डबल्स के फाइनल में आज गुओ हान्यो और लुइसा स्टेफेनी की जोड़ी का मुकाबला क्रिस्टीना माल्डिनोविच और ग्रेबेलिया डाब्रोवस्की की जोड़ी से होगा। यह मैच शाम 5:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम में सबसे पहले सुनिए संवेद स्वर में ये देश वंदना।

देश वंदना के बाद कार्यक्रम वंदना में सुनिए भजन। सबसे पहले भजन सुनिए उदित नारायण के स्वर में।

धन्य है माता सीता, फूल सी सुकुमारी जनक नंदिनी, जिसने अपने पति धर्म का पालन करने के लिए क्या क्या नहीं सहा।

सीता जैसी पवित्र पतिव्रता आदर्श नारी को फिर से वनवास दे दिया गया और वह भी गर्भावस्था में। अंततः विरह वेदना सहती जानकी ने ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में दो सुंदर तेजस्वी बालक लव और कुश को जन्म दिया और फिर एक दिन

इस शब्द के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है रामचरितमानस पाठ।

पतित पावनी गंगा का सुहावना तट, अशोक वृक्ष के नीचे कुश और कोमल पत्तों की साथरी पर श्री राम तथा सीता रात्रि विश्राम कर रहे हैं। प्रभु को धरती पर शयन करते देख निषाद राज गुह का मन विषाद से भर जाता है। लक्ष्मण ने निषाद राज की मनोदशा भांप उन्हें ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का उपदेश दिया। कहा, कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, सब अपने कर्मों का फल भोगते हैं। भले बुरे का योग, मिलन और वियोग, शत्रुता, मैत्री तथा उदासीनता भ्रमजाल हैं। जन्म और मरण, संपत्ति विपत्ति, कर्म और काल इस जगत के जंजाल हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस पाठ। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है स्वास्थ्य चर्चा। स्वास्थ्य चर्चा में आज का विषय है आँखों में रेटिना की उपयोगिता। कार्यक्रम में आप सुनेंगे नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विद्याभूषण से अजिता चौबे की बातचीत।
1: श्रोताओं, स्वास्थ्य चर्चा के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर विद्या भूषण कुमार, जो कि नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं, और डॉक्टर साहब से हम बात करेंगे रेटिना के बारे में। हमारी बातचीत का विषय होगा आंखों में रेटिना की उपयोगिता। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में, हमारे श्रोताओं के बीच। सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि रेटिना आंखों के किस भाग को कहते हैं?
2: नमस्कार मैम, और सुनने वाले सभी श्रोताओं को भी नमस्कार। रेटिना आँख के पिछले हिस्से को बोलते हैं जहाँ की कोई प्रतिबिंब बनता है। यूजुअली आँख में जो हम लोग देखते हैं काला पार्ट आगे की ओर दिखता है, उसके पीछे आयरिस होता है, उसके चलते वो ब्लैक दिखता है, और उसके सबसे आगे का पार्ट को कॉर्निया बोलते हैं, और जो सबसे पीछे की पार्ट होता है उसको रेटिना बोलते हैं, जहाँ की कोई भी प्रतिबिंब बनता है और वहां से ऑप्टिक नर्व के थ्रू अपने ब्रेन में सिग्नल जाता है। अतः देखने के लिए जो भी पूरे आँख में हमेशा सब चीज का जरूरत है, कॉर्निया, लेंस, रेटिना, सबका जरूरत होता है। रेटिना का सबसे ज्यादा इसलिए उपयोगिता रहता है क्योंकि अगर रेटिना एक बार डैमेज हो जाता है तो फिर उसको संभालना या तो सर्जरी करके नॉर्मल लाना बहुत संभव नहीं हो पाता है। पुतली में अगर गड़बड़ी है कॉर्निया में या लेंस में तो उसको चेंज कर सकते हैं जहां तक अभी तक संभव है, लेकिन रेटिना में अगर गड़बड़ी हो जाता है तो नॉर्मल की तरह नहीं ला सकते। उसको सर्जरी करके सही तो कर सकते हैं, देखने लायक तो हो सकता है, लेकिन पूरा अच्छा नहीं होता है।
1: जी, आंख के पिछले वाले भाग को
2: जी
1: रेटिना कहते हैं, जहां
2: जी
1: पर आमतौर पर इमेज बनती
2: बनता है
1: है।
2: बनती
1: तो
2: है
1: डॉक्टर साहब, रेटिना, जिन लोगों को चश्मा लगता है, क्या उनके रेटिना में कुछ प्रॉब्लम होती है या क्या होता है?
2: हाँ, दोनों में प्रॉब्लम होता है मैम। जो पावर, टोटल पावर आता है जो कॉर्निया के चलते होता है, तो कॉर्निया का पावर अगर कम रहता है या लेंस में अगर पावर कम हो तो उसके चलते होता है, लेकिन फाइनल प्रतिबिंब रेटिना पे जाकर के बनता है। तो अगर रेटिना में भी अगर रेटिना भी अगर पतला नॉर्मल, अगर जो नॉर्मल पर्सन होते हैं उसको मेडिकल वर्ड में ईमेट्रोपिक बोलते हैं, और जो जिनका पावर होता है माइनस में उनको मायोपिया बोलते हैं, और प्लस में होता है तो हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। तो जनरली 90% पेशेंट मायोपिया होते हैं, मतलब माइनस पावर वाले होते हैं, जो बच्चे में होता है चाहे सब में होता है, तो उनमें इमेज रेटिना पे नहीं बन करके रेटिना से थोड़ा सा आगे बनता है। तो दिखता तो है प्रतिबिंब, लेकिन क्लियर नहीं दिखता है, ब्लर दिखता है। दूर का जो ऑब्जेक्ट, जो भी वस्तु रहेगा वो क्लियर नहीं दिखता है और थोड़ा धुंधला दिखता है। तो उसमें रेटिना का बहुत बड़ा वैल्यू होता है कि अगर रेटिना अगर नॉर्मल हेल्दी रहता है तो अगर वो प्रतिबिंब अच्छा बनता है, नहीं रहता है तो उसमें परेशानी होती है मैम।
1: जी, और इसके अलावा आंखों, मतलब इमेज बनता है आंखों के लिए, एक्चुअली रेटिना की क्या उपयोगिता होती है?
2: कि रेटिना का एक्चुअली उपयोगिता मेनली तो इमेज के लिए है कि इमेज को ब्रेन में ट्रांसमिशन करते हैं। इमेज, पहला इमेज वहां पे बनता है कोई भी ऑब्जेक्ट का, और उसके बाद ब्रेन में जाता है ऑप्टिक नर्व के थ्रू। उसके बाद अगर देखा जाए, जैसे रेटिना जो बनता है, जैसे हमारे शास्त्र में बोला जाता है कि कान का, जैसे महाभारत में भी बोला गया है कि अभिमन्यु का कान पहले बन जाता है, माँ के गर्भ में जब बच्चा प्री मैच्योर भी रहता है तो कान बन जाता है और कान से सुनाई देता है लेकिन आँख से नहीं सुनाई देता। तो आँख का डेवलपमेंट 2 महीने बाद होता है ऑलमोस्ट, जब नॉर्मल बेबी भी जन्म लेता है तब 2 महीने के बाद होता है। तो बहुत डेलिकेट होता है, और कान तो सुनाई दे, नॉर्मल डेवलपमेंट पहले हो जाता है तो अच्छा सुनाई देता है, लेकिन अगर आंख में दिक्कत हो, अगर जन्म लिया बच्चा प्री मैच्योर होते हो तो उसमें तो दिक्कत होता ही होता है, लेकिन नॉर्मल बेबी भी को भी अगर जन्म लेता है तो उसमें भी पर्दा का बनने में, रेटिना जो इसको हिंदी में पर्दा भी बोलते हैं हम लोग, बनने में टाइम लगता है। तो इसीलिए उस पर ज्यादा ये ध्यान देना चाहिए।
1: जी
2: जी
1: डॉक्टर साहब, आमतौर पे रेटिना में किस तरह की समस्या होती है?
2: हाँ मैम, 2 तरह की समस्या होती है, एक बच्चों में या बड़ों में, सब अलग अलग हम करके बताना चाहते हैं। तो पहले बड़े में, बुजुर्ग में क्या दिक्कत होता है उसके बारे में बताना चाहते हैं। तो जनरली 2 बीमारी जो मुख्य बीमारी है, एक है डायबिटिक और दूसरा है हाइपरटेंशन, तो शुगर की बीमारी या तो ब्लड प्रेशर की बीमारी, उसके चलते वयस्क में रेटिना डैमेज होने का चांस बहुत ज्यादा होता है। डायबिटीज के चलते होता है उसको डायबिटिक रेटिनोपैथी बोलते हैं, और हाइपरटेंशन जो बीपी के चलते होता है उसको हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी बोलते हैं। तो दोनों में मुख्यतः मेनली जो होता है कि पर्दे में सूजन आ जाता है। डायबिटीज में अगर ब्लड शुगर अनकंट्रोल है, शुगर कंट्रोल में नहीं रहता है, या तो नॉर्मल से बहुत हाई रेंज में जाता है, फ्लक्चुएशन करता है, तो उसमें पर्दे में सूजन आ जाता है। जो सूजन अगर इनिशियल स्टेज में अगर ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तो परमानेंट

0: उसके रोशनी को डैमेज कर देता है। तो अगर कॉर्निया या पुतली अच्छा रहने के बाद भी अगर अगर उसका ट्रीटमेंट अच्छा से नहीं हुआ तो उसके चलते पूरा पूरी आँख डैमेज है, रोशनी खत्म हो जाता है। तीसरा जो ओल्ड एज में होता है जिसमें एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन बोलते हैं। अभी लाइफ स्पैन आदमी का मैंने बोला जाए कि धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, पहले था कि देख पहले जितने ओल्ड होते जाएंगे तो एज के साथ साथ जैसे स्किन में झुर्री आती है उसी पर्दों में भी रेटिना में भी थोड़ा थोड़ा उसमें पिगमेंट जमा होना शुरू हो जाता है, जिसको ड्रूसेन मेडिकल वर्ड में बोलते हैं। सिंपल वर्ड में यही बोलते हैं कि एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन, मतलब कि उसमें ARMD चेंजेज कुछ कुछ पर्दा में आपका आ गया है। तो उसके लिए तो बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि हम ट्रीटमेंट करके सही कर देंगे, लेकिन उसको सावधानी बरत के उसको हम सही कर सकते हैं। जैसे किसी पेशेंट को अगर धब्बा जैसा दिख रहा है आगे आंख के आगे धब्बा जैसा काला काला दिख रहा है, उनको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, वो देखेंगे अगर सही में एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन के चलते ARMD के चलते है तो उसमें ट्रीटमेंट देते हैं, इसमें मल्टीविटामिन या एंटीऑक्सीडेंट देते हैं तो
1: जी
0: उससे सुधार होता है उसका।
1: श्रोताओं, हम बात कर रहे थे डॉक्टर विद्या भूषण कुमार से। बातचीत का विषय था आंखों में रेटिना की उपयोगिता। डॉक्टर साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने इस विषय पर हमें इतनी अच्छी जानकारी दी।
2: स्वास्थ्य चर्चा आप सुन रहे थे आकाशवाणी के पटना केंद्र से। विषय था आंखों में रेटिना की उपयोगिता। कार्यक्रम में आप सुन रहे थे नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विद्याभूषण से अजिता चौबे की बातचीत। अब आपको अवगत करा दें हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों से।

0: अब से कुछ देर बाद 6:55 पर संस्कृत में समाचार और 7 बजे हिंदी में समाचार प्रसारित होंगे, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कार्यक्रम हालचाल आप सुनेंगे सुबह के 7:05 पर। पॉप म्यूजिक का प्रसारण होगा सुबह के 7:15 पर। शास्त्रीय संगीत आप सुनेंगे सुबह के 7:25 पर। शास्त्रीय संगीत में आप सुनेंगे आशीष कुमार चटर्जी का सितार वादन राग वसंत मुखारी। उर्दू कार्यक्रम अंजुमन आप सुनेंगे दिन के 9:10 पर। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रसमंजरी का प्रसारण होगा दिन के 10 बजे। प्रायोजित कार्यक्रम बाल किलकारी आप सुन पाएंगे दिन के 10:15 पर। बच्चों के लिए कार्यक्रम बाल मंडली का प्रसारण होगा दिन के 10:30 पर। फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश का आनंद आप ले सकेंगे दिन के 11 बजे। बिहार का लोक संगीत ये कार्यक्रम आप सुनेंगे दोपहर 12 बजे। कार्यक्रम रूपक का प्रसारण होगा दोपहर 12:30 पर। समवेत गान शिक्षा ये कार्यक्रम आप सुनेंगे दोपहर 1:05 पर। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकेंगे दोपहर 1:30 पर और दोपहर 2:30 पर। युवा श्रोताओं के लिए कार्यक्रम युववाणी का समय होगा शाम के 4:30 पर। मैथिली कार्यक्रम भारती आप सुनेंगे शाम के 5:30 पर। ग्रामीण कार्यक्रम चौपाल और खेती गृहस्थी का प्रसारण होगा शाम के 6:30 पर। सुगम संगीत आप सुनेंगे शाम के 7:52 पर और रात के 8:30 पर। रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा का प्रसारण होगा रात के 10 बजे। प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा। अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। अब संस्कृत और हिंदी में समाचार प्रसारित होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: पाठ सुन रहे थे, अब आप संस्कृत में समाचार सुनेंगे।
2: संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका ऋचा झा।

0: देशयोर्मिलनः प्रथमा न्यूजीलैंड यात्रा आसीत् या उभयदेशयोः द्विपक्षीय सम्बन्धान् नूतनां गतिम् अददात् यात्रा समये प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड देशस्य प्रधानमन्त्रिणा क्रिस्टोफर लक्सन इत्यनेन सह द्विपक्षीय वार्ताम् अकरोत् उभौ नेतारौ रक्षा पर्यटन क्रीडा पद प्रबंधन दुग्ध व्यवसाय पशुपालनादिष् क्षेत्रेष् पंच ज्ञापन पत्राणाम् आदान प्रदानं कृतवन्तौ अस्याः यात्रायाः प्रमुखाकर्षणेषु अन्यतमः कार्यक्रमः ऑकलैंड नगरस्य स्पार्क अरीना इत्यत्र आयोजितः प्रवासी भारतीय समुदायस्य समागमः आसीत् यस्मिन् दशसहस्राधिकाः प्रवासी भारतीयाः समुपस्थिताः आसन् समागमं सम्बोधयन् प्रधानमन्त्री मोदी अवदत् यत् भारत न्यूजीलैंड देशयोः भविष्यं परस्परं सम्बद्धमस्ति
1: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं दोस्ती भी है वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है हवाएं हमारे साथ है समंदर की विशाल लहरें हमारे साथ है इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूं हम सफल होंगे
0: प्रधानमंत्री मोदी सस्नेह स्वागताय न्यूजीलैंड देशस्य प्रधानमन्त्रिणं क्रिस्टोफर लक्सन इत्येतं प्रति कृतज्ञतां प्रकटितवान् रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः उक्तवान् यत् भारतं पारम्परिक रक्षा सामर्थ्यस्य उन्नत प्रौद्योगिकीनां च सुदृढीकरणेन दृढं आत्मनिर्भरं भविष्यस्य आह्वानेभ्यश्च अनुकूलं रक्षाबलं निर्माति असौ एतत् विशाखापत्तनम नगरे भारतीय नौसेनायाः पूर्वी नौसेनादले प्रोजेक्ट 17A इत्येतस्य अन्तर्गते स्वदेशे निर्मितस्य षष्ठयुद्धपोतस्य INS महेन्द्रगिरिः इत्येतस्य समावेशन समारोहं सम्बोधयन् अवदत् रक्षामन्त्री अवदत् यत् INS महेन्द्रगिरिः इत्येतस्य नौसेनायां सम्मेलनम् भारतस्य सामुद्रिक सामर्थ्यस्य स्वदेशी रक्षा क्षमतायाश्च सुदृढीकरण दिशि अन्यत् महत्वपूर्णं सोपानमस्ति पश्चिम बंगाल प्रशासनेन राज्याय UCC इति समान नागरिक संहितायाः प्रारूप विधेयकस्य परीक्षार्थं नव सदस्यात्मिका समितिः निर्मिता अस्मिन् विषये अधिसूचना पूर्वमेव प्रकाशिता अस्ति सेवानिवृत्त न्यायमूर्तिः रंजना प्रकाश देसाई समितेः अध्यक्षत्वेन नियुक्ता मेघालयस्य पूर्व राज्यपालः तथागत रॉयः अपि समितेः सदस्येषु अन्यतमः अस्ति भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरणेन खाद्य सुरक्षा मानकाधिनियमस्य 2006 इत्यस्य उल्लंघन सम्बद्धानां बहूनां उपभोक्तृ परिवादानां अनन्तरं स्विगी इंस्टामार्ट इत्यस्मै नव अधिसूचनाः प्रेषिताः फीफा विश्व चषक प्रतिस्पर्धायाम् अद्य प्रातः फ्लोरिडा इत्यत्र मियामी क्रीडा प्रांगणे इंग्लैंड देशेन नॉर्वे देशं 2-1 इत्यंकान्तरालेन पराजित्य उपान्त्य चक्रे प्रविष्टम् वियतनाम देशस्य प्रधानमंत्री ले मिन हुन इत्येषः फूक्वक द्वीपस्य समीपे जाता स्पीडबोट इत्येतस्याः दुर्घटनायाः अन्वेषणाय आदेशं प्रदत्तवान् अस्याम् दुर्घटनायां 15 भारतीय पर्यटकाः निधनमुपगताः इति वार्ताः

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। न्यूजीलैंड से स्वदेश लौटते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के समक्ष अवसरों की अपार संभावनाएं हैं और वे अपनी साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली स्थित पूसा

0: परिसर में पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस अवसर पर वे देश भर से आए लगभग 17,000 वृक्ष मित्रों से संवाद करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार एक व्यापक अभियान के अंतर्गत आज 35 करोड़ पौधे लगाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधरोपण महायज्ञ का शुभारंभ करेंगे। वे एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और आरकेबीके के पास ताल रिंग रोड के किनारे पौधे लगाएंगे। उधर गृह मंत्री अमित शाह आज अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की जन केंद्रित विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। गृह मंत्री कार्यक्रम के दौरान अपने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र गांधीनगर में महत्वाकांक्षी सामूहिक पौधरोपण अभियान की शुरुआत भी करेंगे। मध्य प्रदेश में आज मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 38वीं मासिक किश्त जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से 1,25,00,000 से अधिक महिलाओं के बैंक खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री लगभग 239 करोड़ रुपए की 40 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। इसके अलावा 83 करोड़ रुपए से अधिक की 16 नई लोक कल्याणकारी परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया जाएगा। एक राष्ट्र एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष सांसद पीपी चौधरी ने कहा है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने से शासन व्यवस्था मजबूत होगी, खर्च कम होगा और देश की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत नियमों का उल्लंघन करने के आरोपों से संबंधित कई उपभोक्ता शिकायतों के बाद स्विगी इंस्टामार्ट को 9 नोटिस जारी किए हैं। उपभोक्ता शिकायतों में स्विगी इंस्टामार्ट पर उत्पादों की निर्धारित अवधि समाप्त होने, खराब, सड़े, दूषित और अन्य प्रकार के असुरक्षित खाद्य उत्पादों की आपूर्ति का आरोप लगाया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों को अपने पक्ष में करने के जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के आरोप की आलोचना की है। दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि श्री अब्दुल्ला का ये बयान अत्यंत गैर जिम्मेदाराना है। वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हुन ने फुकोक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। इस हादसे में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। ये हादसा उस समय हुआ जब 36 लोगों को लेकर जा रही स्पीड बोट फुकोक द्वीप के पास रट नगोआई टापू के निकट अचानक ऊंची लहरों की चपेट में आकर पलट गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के होर्मुज जलडमरू मध्य में साइप्रस के झंडे वाले जहाज पर हमले के बाद अमेरिका ने ईरान पर नए हमले शुरू कर दिए हैं। इस बीच ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को अगली सूचना तक बंद कर दिया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमेरिका के कंसास में क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड के बीच मैच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक अर्जेंटीना मुकाबले में 1-0 से आगे है। एक अन्य क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड ने आज तड़के फ्लोरिडा में नॉर्वे को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। उधर लंदन में कल रात विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में 21 वर्षीय लिंडा नोस्कोवा ने चेक गणराज्य की करोलिना मुकोवा को हराकर महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम हालचाल। श्रोताओं, कार्यक्रम हालचाल में आप सबों का स्वागत है। आज 12 जुलाई है। आज जिन श्रोताओं का जन्मदिवस है उन सभी श्रोताओं को आकाशवाणी पटना की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। श्रोता मित्र कार्यक्रम में अब आपको अवगत कराते हैं आज भारत के किन महत्वपूर्ण व्यक्तियों का जन्मदिवस है। अचंत शरत कमल, जो कि भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं, इनका जन्म 12 जुलाई 1982 ईस्वी को हुआ था। सुंदर पिचाई, भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक, जो गूगल खोज अनु

विभाग के सीईओ हैं। उनका जन्म 12 जुलाई 1972 को हुआ था। भारतीय सिनेमा की खूबसूरत तथा प्रसिद्ध अभिनेत्रियों में से एक सुलक्षणा पंडित, उनका जन्म 12 जुलाई 1954 को हुआ था। वाई बी चंद्रचूर भारत के भूतपूर्व 16वें मुख्य न्यायाधीश थे। इनका जन्म 12 जुलाई 1920 को हुआ था। विमल राय हिंदी फिल्मों के महान फिल्म निर्देशक थे। उनका जन्म 12 जुलाई 1909 को हुआ। श्रोता मित्र, कार्यक्रम में आप जान रहे थे आज के महत्वपूर्ण व्यक्तियों के जन्मदिवस के बारे में। कार्यक्रम में हम आगे और भी चर्चा करेंगे, तब तक सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

कार्यक्रम हालचाल में एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है। कार्यक्रम में अब चर्चा करेंगे आज के इतिहास पर और जानेंगे क्या छुपा है आज के इतिहास में। 12 जुलाई 1994 ईस्वी को फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन के अध्यक्ष यासर अराफात 27 वर्षों का निर्वासन जीवन जीने के बाद गाजा पट्टी में आए थे। 16वें विश्व कप फुटबॉल के फाइनल में फ्रांस ने ब्राजील को 3-0 से हराया था। यह घटना 12 जुलाई 1998 ईस्वी को हुई थी। 12 जुलाई 2001 ईस्वी को भारत और बांग्लादेश अगरतला और ढाका के बीच मैत्री बस सेवा प्रारंभ हुई। 12 जुलाई 2003 ईस्वी को उत्तर और दक्षिण कोरिया परमाणु हथियार मुद्दे पर बातचीत के लिए सहमत हुए। मशहूर क्रिकेटर अंपायर डेविड शेफर्ट ने संन्यास लिया 12 जुलाई 2005 ईस्वी को। 12 जुलाई 2006 ईस्वी को इसराइल ने अपने दो सैनिकों के बंधक बनाए जाने के बाद लेबनान पर हमला किया था। श्रोता मित्र, कार्यक्रम में आप जान रहे थे आज के दिन का इतिहास। अब सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।

इस प्यारे से गीत के साथ ही हमारे आज के हालचाल का अंक अब यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं हालचाल के अगले अंक में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हालचाल, ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है पॉप म्यूजिक। सबसे पहले पॉप म्यूजिक सुनिए अलिसा चिनॉय की आवाज में।

फाल्गुनी पाठक की आवाज़ में गाए हुए इस पॉप म्यूज़िक के साथ ही हमारा पॉप म्यूज़िक का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुनिए आशीष कुमार चटर्जी का सितार वादन, राग वसंत मुखारी।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे थे आशीष कुमार चटर्जी का सितार वादन, राग वसंत मुखारी। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें नया जोश है। देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी

0: समाचारों के लिए कृपया प्रतीक्षा करें।
1: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की तीन देशों की यात्रा संपन्न। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ विस्तृत वार्ता के बाद स्वदेश रवाना। देश भर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा। वियतनाम सरकार ने स्पीड बोट दुर्घटना की जांच के आदेश दिए, दुर्घटना में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत। अमेरिका ने इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के होर्मुज जल डमरू मध्य में साइप्रस के झंडे वाले जहाज पर हमले के बाद ईरान पर नए हमले शुरू किए, ईरान ने जल मार्ग को अगली सूचना तक किया बंद। मौसम विभाग ने अगले चार दिन तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में बहुत तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। इंग्लैंड ने नॉर्वे को 2-1 से हराकर फीफा विश्व कप के सेमीफाइनल में प्रवेश किया और लिंडा नोसकोवा ने कैरोलिना मुकोवा को हराकर अपना पहला विंबलडन टेनिस खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। इस दौरान श्री मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ व्यापक बातचीत की। भारत और न्यूजीलैंड ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया है। इस दौरान रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन और डेयरी तथा पशुपालन सहित कई प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। ऑकलैंड में सामुदायिक कार्यक्रम में भारतीय मूल के 10,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। श्री मोदी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत और न्यूजीलैंड का भविष्य आपस में जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री लक्सन ने भारत को विश्वसनीय मित्र बताते हुए न्यूजीलैंड की प्रगति में भारतीय समुदाय के योगदान की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की भी उन्होंने प्रशंसा की। श्री मोदी ने श्री लक्सन के शानदार आतिथ्य के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से भारत न्यूजीलैंड संबंधों में एक नया अध्याय शुरू हुआ है। श्री मोदी ने 40 वर्ष बाद भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड यात्रा के बारे में कहा कि अगली यात्रा में इतना समय नहीं लगेगा।
1: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है। भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है, इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है, पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूं हम सफल होंगे।
3: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की तीन देशों की यात्रा के महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं। प्रधानमंत्री मोदी की तीन देशों की यात्रा के दौरान भारत ने इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ व्यापार, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा, नवाचार, शिक्षा और लोगों के बीच आपसी संबंधों जैसे कई क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार किया है। देश भर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा। इसके अंतर्गत कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली स्थित पूसा परिसर में पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस अवसर पर वे देश भर से आए लगभग 17,000 वृक्ष मित्रों से संवाद करेंगे। श्री सिंह वृक्ष मित्रों के साथ पूसा परिसर में वृक्षारोपण अभियान में भी हिस्सा लेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की जन केंद्रित विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि गृह मंत्री कार्यक्रम के दौरान अपने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र गांधीनगर में महत्वाकांक्षी सामूहिक पौधारोपण अभियान की शुरुआत भी करेंगे।
4: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने संसदीय क्षेत्र को देश में सबसे हरा भरा बनाने के लिए महत्वाकांक्षी गांधीनगर हरियाली

0: लोकसभा अभियान की शुरुआत कर रहे हैं, जिसके तहत इस साल गांधीनगर संसदीय क्षेत्र में 1.25 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जाएंगे। इस अभियान के तहत वन विभाग अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में वन कवच मॉडल के माध्यम से लगभग 60 लाख स्वदेशी पौधे लगाएगा, जो त्वरित पर्यावरण सुधार के लिए जापानी मियावाकी पद्धति का गुजराती स्वदेशी संस्करण है। अपने दौरे के आखिरी दिन श्री शाह कल गांधीनगर में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी परिसर में 11वीं इंटरपोल डिजिटल फॉरेंसिक एक्सपर्ट ग्रुप बैठक और पहली अंतर्राष्ट्रीय अन्वेषक अपराध प्रतियोगिता का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद वे देहगांव में नवनिर्मित एपीएमसी सब्जी मंडी का भी लोकार्पण करेंगे। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: उत्तर प्रदेश सरकार व्यापक पौधारोपण अभियान के अंतर्गत आज 35 करोड़ पौधे लगाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ 2026 का शुभारंभ करेंगे। वे एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और आरकेबीके के पास ताल रिंग रोड के किनारे पौधे लगाएंगे। एक रिपोर्ट।
2: 27 विभागों के समन्वय से चलाए जाने वाले इस विशाल वृक्षारोपण अभियान में वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग सर्वाधिक 15 करोड़ 50 लाख पौधारोपण करेगा। ग्राम्य विकास विभाग 10 करोड़, कृषि विभाग 3 करोड़ 25 लाख, उद्यान विभाग 1 करोड़ 50 लाख और पंचायती राज विभाग 1 करोड़ 22 लाख पौधे लगाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे भी 5.5 लाख पौधे लगेंगे। महाअभियान 2026 में इस वर्ष समरस वन, समृद्धि वन, कृषि वन, ऊर्जा वन, कपि वन समेत अनेक नवीन वन तैयार किए जाएंगे। महर्षि चरक औषधि वन की शुरुआत 5 जून यानी विश्व पर्यावरण दिवस पर की गई है। इस अभियान का प्रमुख हिस्सा मिशन छाया, अविरल धारा पौधारोपण, सहजन भंडारा और आम भंडारा भी होगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित प्रस्तावित विधेयकों की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति ने गोवा में अपनी 2 दिवसीय परामर्श प्रक्रिया पूरी कर ली है। इस दौरान समिति ने राज्य सरकार, राजनीतिक दलों, विधायकों, संवैधानिक विशेषज्ञों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, नागरिक समाज के प्रतिनिधियों और मीडिया से विचार विमर्श किया। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
2: पहले दिन समिति ने गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, संवैधानिक विशेषज्ञों, राज्य निर्वाचन आयोग तथा गोवा विश्वविद्यालय के अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया। दूसरे और अंतिम दिन कल समिति ने गोवा विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर गणेश गांवकर, विपक्ष के नेता यूरिया लेमाव तथा विभिन्न राजनीतिक दलों के विधायकों से चर्चा की। इससे पहले समिति के अध्यक्ष और सांसद पीपी चौधरी ने कहा कि एक साथ चुनाव कराने से सुशासन को बढ़ावा मिलेगा, चुनावी खर्च कम होगा और बार बार होने वाले चुनावों से होने वाले प्रशासनिक व्यवधान में कमी आएगी। समिति अब अपने राष्ट्रव्यापी परामर्श अभियान के अगले चरण में लखनऊ का दौरा करेगी। महेश चोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
1: वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हुन ने फुकवोक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। इस हादसे में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। ये हादसा उस समय हुआ जब 36 लोगों को लेकर जा रही स्पीड बोट फुकवोक द्वीप के पास रटनगोवाई टापू के निकट अचानक ऊंची लहरों की चपेट में आकर पलट गई। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने मृतकों की सूची जारी की है। इनमें 10 लोग तमिलनाडु, 3 आंध्र प्रदेश और 2 केरल के रहने वाले थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के होर्मुज जल डमरू मध्य में साइप्रस के झंडे वाले जहाज पर हमले के बाद अमरीका ने ईरान पर नए हमले शुरू कर दिए हैं। एक रिपोर्ट।
3: अमरीका की सेना ने कहा है कि

0: हमले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर किए गए हैं। इस बीच ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को अगली सूचना तक बंद कर दिया है। ईरान की नौसेना ने कहा कि इस इलाके में अमेरिका का दखल खत्म होने तक किसी भी जहाज को इस रास्ते से निकलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। नौसेना ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य की इस घटना को लेकर अमेरिका की किसी भी कार्रवाई का कड़ा जवाब दिया जाएगा। अमेरिका ईरान से सार्वजनिक रूप से होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर हमला नहीं करने का आश्वासन चाहता है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि तनाव के बावजूद ईरान के साथ बातचीत जारी रहेगी। ईरान ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य उसके नियंत्रण में ही रहेगा और इस मार्ग से गुजरने वाले जहाजों को शुल्क देना होगा। ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही के लिए दो अलग अलग रास्तों का प्रस्ताव दिया है, लेकिन ईरान ने इस तरह के प्रस्ताव को पहले ही खारिज कर दिया था। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिष्ठित पार्श्व गायिका एस जानकी अम्मा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि एस जानकी अम्मा का निधन संगीत और संस्कृति जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ मुकेश कुमार बल।
2: फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने आज तड़के फ्लोरिडा में नॉर्वे को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। इंग्लैंड के जूड बेलिंगहम ने अतिरिक्त समय में 2 गोल करके इंग्लैंड को जीत दिलाई। इंग्लैंड तीसरी बार विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है। स्पेन और फ्रांस पहले ही सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुके हैं। उधर लंदन में कल रात विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में 21 वर्षीय लिंडा नोस्कोवा ने चेक गणराज्य की करोलिना मुकोवा को 6-2, 5-7, 6-3 से हराकर महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। इस बीच पुरुष सिंगल्स के फाइनल में आज विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी यैनिक सिनर का मुकाबला जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार आज रात 8:30 से खेला जाएगा। महिला डबल्स के फाइनल में आज 10वीं वरीयता प्राप्त गुओ हान्यू और क्रिस्टीना म्लाडेनोविच की जोड़ी का मुकाबला दूसरी वरीयता प्राप्त गैब्रियला डब्रोवस्की और लुइसा स्टेफनी की जोड़ी से होगा। ये मैच शाम 5:30 से शुरू होगा। और इंग्लैंड ने कल रात साउथहैम्पटन में 5वें और अंतिम टी20 क्रिकेट मैच में भारत को 56 रन से हराकर श्रृंखला 4-0 से अपने नाम कर ली है।
1: और अभी अभी प्राप्त समाचार के अनुसार अमेरिका के कंसास में जारी क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड 1-1 गोल से बराबरी पर हैं। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की है। इनमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश और ओडिशा शामिल हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
3: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाई है। नवभारत टाइम्स ने प्रधानमंत्री मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा को प्राथमिकता देते हुए लिखा है, आतंकवाद पर बनाएंगे ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप, प्रधानमंत्री मोदी और न्यूजीलैंड के पीएम के बीच सहमति। पंजाब केसरी ने आईएनएस महेंद्रगिरि के जलावतरण पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान को प्रमुखता दी है, भविष्य के युद्ध सिर्फ एआई से नहीं सैनिकों के दम पर जीते जाएंगे। जनसत्ता ने श्रीराम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा का बयान दिया है, चढ़ावा चोरी कलंक, व्यवस्था में जल्द सुधार। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर बरसात में बेहाल होते शहरों पर विश्लेषण दिया है, हर बरसात में देश के शहरों में लोग जलभराव और उससे जुड़ी समस्याओं से जूझते हैं, इसके बाद भी नगर निकायों का काम करने का तौर तरीका नहीं बदला है। अखबार ने लिखा है कि अब यह जरूरी हो गया है कि संसद में एक विशेष सत्र बुलाकर बिगड़ते शहरीकरण को संवारने के लिए कोई सार्थक बहस की जाए। दैनिक भास्कर ने राष्ट्रीय राजधानी के मौसम का मिजाज दिया है, कमजोर पड़ा मॉनसून, अब एक हफ्ते झेलनी पड़ेगी गर्मी।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 3 देशों की यात्रा संपन्न। देश भर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा। वियतनाम सरकार ने स्पीड बोट दुर्घटना की जांच के आदेश दिए, दुर्घटना में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत। अमेरिका ने इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के होर्मुज जलडमरू मध्य में साइप्रस के झंडे वाले जहाज पर हमले के बाद ईरान पर नए हमले शुरू किए। ईरान ने जल मार्ग को अगली सूचना तक किया बंद। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में बहुत तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और इंग्लैंड ने नॉर्वे को 2-1 से हराकर फीफा विश्व कप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: ग्यारहवीं मीटिंग और जराइम की तहकीकात करने वालों के पहले बैन अलाक्वामी मुकाबले का इफ्तिताह करेंगे। बाद में वो देहगाम का दौरा करेंगे, जहां नए तामीर शुदा APMC सब्जी मंडी का इफ्तिताह करेंगे और अमृत महोत्सव की तकरीबात में भी शिरकत करेंगे। अहमदाबाद से अपर्णा खुंड की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हबीब रहमान।
1: एक बड़ी शजरकारी मुहिम के तहत उत्तर प्रदेश हुकूमत आज 35 करोड़ पौधे लगाएगी। वजीर आला योगी आदित्यनाथ आज सुबह गोरखपुर से रियासत भर में पौधारोपण महाअभियान 2026 का आगाज करेंगे। वो गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और ताल रिंग रोड की करीब एक पेड़ माँ के नाम मुहिम के तहत पौधे लगाएंगे। इस मौके पर वजीर आला एक अवामी इज्तिमा से खिताब करेंगे और लोगों से पौधारोपण महाअभियान में जिम्मेदारी के साथ हिस्सा लेने पर जोर देंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
0: 27 महकमों के इश्तराक से अंजाम दी जाने वाली बड़ी शजरकारी मुहिम में महकमे जंगलात को 15,50,00,000 पौधे लगाने का सबसे बड़ा हदफ दिया गया है। महकमे देही तरक्यात 10 करोड़, महकमे ज़रात 3,25,00,000, बागवानी का महकमा 1,50,00,000 और पंचायती राज का महकमा 1,22,00,000 पौधे लगाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे भी 5,50,000 पौधे लगाए जाएंगे। इस साल महाअभियान 2026 के तहत कई नए जंगलात कायम किए जाएंगे, जिनमें समरस वन, समृद्धि वन, कृषि वन, ऊर्जा वन और कापी वन शामिल हैं। लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहन अम्मार।
1: फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया फसाई ने फूड बिजनेस ऑपरेटर स्विगी इंस्टामार्ट को फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 की मुबैना खिलाफ वर्जियों पर सारिफिन की मुतादिद शिकायत के बाद 9 नोटिस जारी किए हैं। फसाई ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि फूड बिजनेस ऑपरेटर को तफसीली वजाहत और तामील से मुतालिक रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी गई है। इदारे ने खबरदार किया है कि ऐसा ना करने की सूरत में मुनासिब कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सारिफिन की शिकायत पर यह इल्जाम आयद किया गया है कि स्विगी इंस्टामार्ट के जरिए मुद्दत इस्तेमाल खत्म हो चुकी खराब सड़ी गली आलूदा और दीगर गैर महफूज गजाई अशिया फराहम की जा रही थी। नाइट एंगल ऑफ दी साउथ के नाम से मशहूर नामवर गुलूकारा इस जानकी गुज़िश्ता रोज कर्नाटक के शहर मैसूरु में बढ़ती हुई उम्र से मुतालिक सेहत मसाइल के बायस 88 बरस की उम्र में इंतकाल कर गई। भारतीय महकमे मौसमियात IMD ने अगले 4 दिन के दौरान मुल्क के शिमाली और मशरकी इलाकों में शदीद बारिश की पेशगोई की है। इन इलाकों में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, मशरकी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, मगरबी बंगाल, गंगा के मैदानी इलाके, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और उड़ीसा शामिल हैं। फीफा आलमी कप में इंग्लैंड ने आज सुबह फ्लोरिडा के मियामी स्टेडियम में खेले गए क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे को 2-1 से शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। टेनिस में 21 साल लिंडा नोस्कोवा ने कल रात लंदन के सेंटर पोर्ट में खेले गए विंबलडन खवातीन के सिंगल्स के फाइनल में अपनी हमवतन कैरोलिना मुकोवा को 6-2, 5-6, 7-6, 3 से शिकस्त देकर अपने करियर का पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। और ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं हबीबुर रहमान।
0: कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले बेशतर उर्दू अखबारों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दौरे न्यूजीलैंड से मुतालिक खबरों को शह सुर्खी के साथ शाये किया है। रोजनामा इनकलाब की सुर्खी है, भारत न्यूजीलैंड के दरमियान दफा तजारत टेक्नोलॉजी समेत 18 अहम माहदे, तजारत को 38,000 करोड़ रुपये से जायद तक पहुँचाने का हदफ।
1: आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 3 मुल्कों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का दौरा मुकम्मल कर लिया है। वो न्यूजीलैंड के वजीर आजम क्रिस्टोफर लक्सन के साथ तफसीली बातचीत के बाद भारत रवाना हो गए। वियतनाम हुकूमत ने तेज रफ्तार कश्ती हादसे की तहकीकात का हुक्म दिया है, जिसमें 15 भारतीय सयाहों की मौत हो गई। अमरीका ने ईरान के सिपाही पाजारन इनकलाब IRGC की जानिब से आबनाए हुरमुज से गुजरने वाले एक माल बरदार जहाज पर हमले के बाद ईरान के खिलाफ हमलों का नया सिलसिला शुरू किया। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।
2: मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे एक छोटे से अंतराल के बाद।

0: कृपया ध्यान दें, डेंगू अपने शहर में पांव पसार रहा है, पर हम सावधानी और स्वच्छता से इसको हरा सकते हैं।
1: डेंगू की रोकथाम के लिए कुछ जरूरी बातों का पालन अवश्य करें। जैसे डेंगू का मच्छर साफ पानी में भी पनपता है, इसीलिए कहीं भी पानी जमा ना होने दें। डेंगू का मच्छर दिन में काटता है, इसीलिए अपने आसपास साफ रखें और अपने शरीर को ढक कर रखें। समय समय पर फॉगिंग करें और मच्छरदानी का प्रयोग करें। बच्चों को बाहर भेजने से पहले मच्छर भगाने की क्रीम लगाएं। खिड़की दरवाजों में मच्छर जाली लगवाएं।
0: जब होगा पूरा प्रयास हमारा, तभी मिलेगा डेंगू से छुटकारा। जीवंत बिहार, सपना हो साकार। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 104 पर संपर्क करें। स्वास्थ्य विभाग और सूचना व जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: आकाशवाणी एट 90, 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक, नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली स्थित पूसा परिसर में पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में 17,000 वृक्ष मित्रों से संवाद करेंगे। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना के लिए 8,33,00,000 रुपए की राशि जारी की गई। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने राज्य के मेडिकल कॉलेजों में MBBS सीटें बढ़ाने की दी मंजूरी। PMCH में सीटों की संख्या 200 से बढ़कर 250 हुई। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तरी हिस्सों में कई स्थानों पर भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली स्थित पूसा परिसर में पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस अवसर पर श्री सिंह देश भर से आए लगभग 17,000 वृक्ष मित्रों से संवाद करेंगे। कृषि मंत्री जन भागीदारी के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण को राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन में परिवर्तित करने का भी आह्वान करेंगे। कार्यक्रम में देश के लगभग सभी राज्यों से ऐसे वृक्ष मित्र शामिल होंगे जिन्होंने वृक्षारोपण, जल संरक्षण और पारिस्थितिकी पुनर्स्थापन के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना के क्रियान्वयन के लिए 8,33,00,000 रुपए की राशि जारी की गई है। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि इस राशि में केंद्र सरकार 5 करोड़ और राज्य सरकार 3,33,00,000 रुपए का अंशदान देगी। मंत्री ने बताया कि इस राशि से निर्धन परिवारों के लिए जीविकोपार्जन और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के कार्य किए जाएंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज मुजफ्फरपुर में नगर विकास और आवास विभाग की मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के लिए लगभग 1,047 करोड़ की लागत वाली 982 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इन योजनाओं से सड़क, जल निकासी, पार्क समेत

0: अन्य शहरी आधारभूत सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन का कल अंतिम दिन है। उपचुनाव को लेकर प्रचार प्रसार का शोर बढ़ गया है। प्रत्याशी लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा और जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर के कल नामांकन दाखिल करने की संभावना है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने बताया कि पार्टी प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा 13 जुलाई को नामांकन दाखिल करेंगे।
1: जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के प्रत्याशी हैं नीरज कुमार सिन्हा जी, तो बांकीपुर के एक सामान्य कार्यकर्ता के नाते वो काम कर रहे हैं। 13 तारीख को अपना नामांकन करेंगे। पूर्व में जो प्रत्याशी थे उन्होंने पारिवारिक कारणों से असमर्थता व्यक्त किए चुनाव लड़ने से। उन्होंने कहा मैं पार्टी का कार्यकर्ता रहूंगा, चुनाव में भी पूरी पूरी मेरी सहभागिता रहेगी। तो केंद्रीय नेतृत्व में चुनाव समिति ने नीरज कुमार सिन्हा जी जो उसी विधानसभा के कार्यकर्ता।
0: उपचुनाव के लिए अब तक 11 प्रत्याशियों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। इनमें राजद की रेखा गुप्ता प्रमुख हैं। 16 जुलाई तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकते हैं। 30 जुलाई को मतदान होगा जबकि 3 अगस्त को मतगणना कराई जाएगी। राज्य सरकार विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण VBG रामजी से प्रदेश में सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का निर्माण कराएगी। ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव पंकज कुमार ने बताया कि ऐसी ग्राम पंचायतें जिनमें सामुदायिक शौचालय निर्माण का काम अधूरा है, वहां महादलित टोलों और साप्ताहिक हाटों में भी सामुदायिक स्वच्छता परिसर के निर्माण पर विशेष बल दिया जाएगा। उन्होंने अधूरे निर्माण स्थलों को भी चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं। प्रधान सचिव ने बताया कि कचरा संग्रहण और निस्तारण में किसी भी तरह की लापरवाही या कोताही पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि महादलित टोलों और साप्ताहिक हाटों में भी सामुदायिक स्वच्छता परिसर के निर्माण पर विशेष रूप से ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने शेखपुरा जिले में सभी पंचायत में जल्द से जल्द पंचायत सरकार भवन के निर्माण को पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। मंत्री ने विभाग की ओर से चलाए जा रहे विभिन्न विकास और कल्याण योजनाओं की समीक्षा के दौरान यह निर्देश दिए। श्री प्रकाश ने अरियरी प्रखंड अंतर्गत चांदी पहाड़ इलाके में आयोजित कार्यक्रम में लोगों से विकास योजनाओं की निगरानी करने को कहा है। शिक्षा विभाग ने मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत वर्ष 2026 में इंटरमीडिएट की परीक्षा में सफल अविवाहित छात्राओं को प्रोत्साहन राशि देने के लिए 700 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। विभाग ने जारी आदेश में लिखा है कि छात्राओं को 25-25 हजार रुपए दिए जाएंगे। इस वर्ष 5,65,675 छात्राओं ने इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की है। गया जी के बिपार्ड परिसर में विधानसभा सदस्यों के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। प्रबोधन कार्यक्रम का आज अंतिम दिन है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि यह कार्यक्रम उपयोगी है, इससे विधायकों को काफी लाभ होगा।
2: सभी माननीय मंत्री लोगों के ओरिएंटेशन का कार्यक्रम, तो इससे बहुत कुछ फायदा होगा। चीजों को समझने में, जनता की सेवा करते हुए काम करने में बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। इस तरह का कार्यक्रम होना चाहिए।
0: राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने राज्य के मेडिकल कॉलेजों में MBBS सीटों को बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। आयोग के मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड के अध्यक्ष M.K. रमेश ने बताया कि पटना मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल में सीटों की संख्या 200 से बढ़ाकर 250 कर दी गई है, जबकि JLNMCH में 120 की जगह 150 सीटों पर नामांकन होगा। वहीं कटिहार मेडिकल कॉलेज में सीटों की संख्या 150 से बढ़ाकर 200 कर दी गई है। इसके साथ ही राज्य में नए मेडिकल कॉलेजों में भी सीटों की संख्या निर्धारित की गई है। उन्होंने कहा कि निजी मेडिकल कॉलेजों में सीटों को बढ़ाने की मंजूरी दी गई है। इधर IGIMS में दंत शोध संस्थान की स्थापना की जाएगी। IGIMS के प्राचार्य डॉक्टर रंजीत कुमार ने बताया कि संस्थान की स्थापना के बाद अनुसंधान कार्य में तेजी आएगी और PG की पढ़ाई भी शुरू होगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने औरंगाबाद से पटना के नौबतपुर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 139 को 4 लेन बनाने की मंजूरी मिलने के बाद DPR बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। NHAI के कार्यपालक अभियंता तुलसी प्रसाद ने बताया कि जिन हिस्सों में 4 लेन बाईपास का निर्माण होगा, वहां की पुरानी सड़कों को 4 लेन में तब्दील नहीं किया जाएगा। ऐसी पुरानी सड़कों को राज्य सरकार के पथ निर्माण विभाग को सौंपा।

0: आकाशवाणी एट 90। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश में मानसून की सक्रियता बनी हुई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान मुजफ्फरपुर, गोपालगंज और सीवान जिले में अत्यधिक भारी बारिश, जबकि पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सारण, शिवहर, सीतामढ़ी, कटिहार और पूर्णिया जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है।
1: 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पश्चिम एवं उत्तर मध्य भाग के अधिकांश स्थानों में, उत्तर पूर्व भाग के अनेक स्थानों में, जबकि शेष भाग के कुछ स्थानों में वर्षा होने की संभावना है, तथा 24 घंटों के दौरान राज्य के गोपालगंज, मुजफ्फरपुर एवं सिवान जिलों में एक दो स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना है। राज्य के अधिकांश जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात होने की संभावना है। राज्य के पूर्वी चंपारण, कटिहार, पूर्णिया, सारण, शिवहर, सीतामढ़ी एवं पश्चिमी चंपारण जिलों में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है।
0: मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान पटना के विक्रम में लगभग 100 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। राजधानी पटना में भी 90 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। नेपाल के तराई क्षेत्रों में भारी बारिश और उत्तर बिहार के कई क्षेत्रों में लगातार बारिश के कारण गंडक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। नदी का पानी पश्चिम चंपारण जिले के योगापट्टी प्रखंड के सिसवा गांव में कई घरों में घुस गया है। गांव को प्रखंड से जोड़ने वाली मुख्य सड़क पर भी 4 से 5 फीट पानी बह रहा है। जिले के रामनगर प्रखंड अंतर्गत दोन क्षेत्र में अवरहिया गांव के पास सड़क ध्वस्त हो जाने से लगभग 18 गांव का सड़क संपर्क टूट गया है। इधर कोसी नदी के जलस्तर में भी बढ़ोतरी हुई है। इसे देखते हुए नदी पर स्थित बराज के कई फाटक खोल दिए गए हैं। जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के अनुसार स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। शिक्षा विभाग ने बाढ़ से प्रभावित होने वाले विद्यालयों की पहचान कर बाढ़ आने से पूर्व सभी तैयारियां पूर्ण कर लेने के आदेश दिए हैं। विभाग ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखकर चिन्हित विद्यालयों को निर्देश दिया है कि विद्यालयों के अभिलेख, शिक्षण सामग्री और उपकरण सुरक्षित स्थान पर रखे जाएं। आदेश में कहा गया है कि जिन विद्यालयों में राहत शिविर लगाने की संभावना हो, वहां पढ़ाई के लिए वैकल्पिक स्थान की पूर्व योजना बनाई जाए। मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों को बाढ़ के दौरान क्या करें और क्या ना करें की नियमित जानकारी देने के भी निर्देश दिए गए हैं। विद्यार्थियों और अभिभावकों को पठन पाठन सामग्री सुरक्षित रखने के प्रति जागरूक किया जाए। बच्चों को बाढ़ से बचाव, डूबने से सुरक्षा और नाव से सुरक्षा संबंधित जानकारी देने को भी कहा गया है। दरभंगा मंडल कारा के सहायक अधीक्षक नंदू चौधरी को निलंबित कर दिया गया। सहायक अधीक्षक पर पत्नी की हत्या और दहेज प्रताड़ना का आरोप है। वहीं पटना की बेउर जेल के 3 कक्षपालों को कार्य में लापरवाही बरतने को लेकर निलंबित कर दिया गया है। मद्य निषेध विभाग में दारोगा के 78 पदों पर नियुक्ति के लिए आज परीक्षा आयोजित की जा रही है। परीक्षा के लिए राज्य में 515 केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा में लगभग 2 लाख अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। इधर पूर्व मध्य रेल

बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए आज 10 परीक्षा स्पेशल रेलगाड़ियों का परिचालन कर रहा है। पूर्व मध्य रेल के अनुसार ये रेलगाड़ियां बक्सर पटना, किउल गया, नवादा गया समेत अन्य मार्गों पर चलाई जा रही हैं। सीवान जिले के मैरवा थाना क्षेत्र के पंडितपुरा गांव में लगभग 5.5 लाख रुपए के जाली नोटों के साथ एक महिला और एक युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है। ग्रामीण विकास मंत्रालय की जांच में सारण जिले के सदर और सोनपुर प्रखंड के मनरेगा की योजनाओं में अनियमितता मिलने के बाद 4 अधिकारियों और कर्मचारियों पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। रोहतास जिले के अकूढ़ी गोला थाना क्षेत्र की पुलिस ने एक मकान से 50 लाख रुपए की शराब बरामद की है। अररिया जिले के रानीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत बढ़हरा चौक के पास बीते दिनों एक पिकअप चालक और एक मवेशी व्यापारी से लूट मामले में पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। मुंगेर जिले के तारापुर संग्रामपुर मुख्य मार्ग पर रामपुर पंचायत स्थित 3 माइल चौक के पास एक हाईवा की चपेट में आने से बाइक सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी अखबारों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के हवाले से लिखा है, लोग नौकरी करने बिहार आए, ऐसा विकास करें। दैनिक जागरण की बड़ी खबर है, दुनिया में तीसरी सर्वश्रेष्ठ है भारतीय वायुसेना, चीन छूटा पीछे। दैनिक भास्कर ने अयोध्या मामले पर लिखा है, श्रद्धालु घटे, होटल ऑक्यूपेंसी 25% ही बची, राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के बाद बदले हालात। प्रभात खबर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के हाजीपुर में पेपरलेस निबंधन प्रणाली की शुरुआत पर लिखता है, अब 75 वर्ष से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को घर बैठे रजिस्ट्री की सुविधा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली स्थित पूसा परिसर में पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में 17,000 वृक्ष मित्रों से संवाद करेंगे। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना के लिए 8,33,00,000 रुपए की राशि जारी की गई। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने राज्य के मेडिकल कॉलेजों में MBBS सीटें बढ़ाने की दी मंजूरी। PMCH में सीटों की संख्या 200 से बढ़कर 250 हुई। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तरी हिस्सों में कई स्थानों पर भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: Akashwani at 90. नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: मौसम आएंगे जाएंगे, हम तुमको भूल ना पाएंगे। आप सुन रहे थे वली आसी का ये कलाम अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की आवाज़ में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बेहद ख़ास और बहुत ही यूनिक मौजू पर। जी हाँ दोस्तों, आज 12 जुलाई है और आज के दिन को अक्वामे मुत्तहदा की जनरल असेंबली ने बाज़ाब्ता तौर पर 12 जुलाई को बैनुल अक्वामी योमी उम्मीद यानी इंटरनेशनल डे ऑफ होप करार दिया है। इस दिन का बुनियादी मकसद दुनिया भर में अमन, यकजहती और मिसबत सोच को फ़रोग देना है। इसके अलावा मुख्तलिफ तंजीमों और मकासद के तहत योमी उम्मीद के तौर पर दीगर कई दिन भी मनाए जाते हैं। तो दोस्तों, है ना, आज का दिन बहुत ही अहम और ख़ास, इतना ख़ास कि हम एक ऐसा दिन मना रहे हैं जो सभी दिनों से अहम है। जी हाँ दोस्तों, जब हम अंधेरी और काली रातों की तरफ देखते हैं तो एक उम्मीद चुपके से हमारे कानों में आकर कहती है कि डर मत, इसके बाद खूबसूरत सवेरा भी होगा। जब हालात तंगदस्त हो, रास्ते वीरान हो, हिम्मत हार गई हो, तो उम्मीद ही हमें सहारा देती है कि घबराना नहीं, बुरे हालात के बाद बेहतर हालात भी आएंगे और बस खुदा को याद कर और थोड़ा हिम्मत रख। गर्ज की गम हो या रंज, हर मौके पर एक उम्मीद ही हमारा सहारा बनते हुए हमारे पास आ खड़ी होती है और हमें बेबसी से बाहर निकालने का लगातार हौसला देती रहती है। तभी तो मशहूर व मारूफ शायर अल्ताफ़ हुसैन हाली ने उम्मीद पर बहुत अच्छी बातें कही हैं कि इस बात को इंतहाई महारत के साथ उजागर करें कि किस तरह उम्मीद परस्ती मुश्किलात पर काबू पा सकती है, हमें आगे बढ़ने का हौसला देती है और अज़मत के हुसूल के लिए हमें बाअख्तियार बनाती है। तभी तो फैज़ अहमद फैज़ ने भी कहा है कि दिल नाउम्मीद तो नहीं नाकाम ही तो है, दिल नाउम्मीद तो नहीं नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। योर आईज आर द लेंस थ्रू विच यू एक्सपीरियंस लाइफ, प्रोटेक्ट देम विथ प्रिसिजन एंड केयर। यानी आपकी आंखें वो अजसिया हैं जिनके जरिए आप जिंदगी का तजर्बा करते हैं। पूरी एहतियात और तवज्जो के साथ इनकी हिफाजत करें। आंख से बड़ी कोई शय ही नहीं है जिसकी वजह से हम पूरी दुनिया को देखते हैं, समझते हैं और एक्सपीरियंस करते हैं। तो आइए सुनते हैं हमारे खास प्रोग्राम सेहतनामा के तहत आंख से जुड़ी मुख्तलिफ बीमारियां और हिफाजती तदाबीर, डॉक्टर उबैदुर रहमान से शगुफ्ता परवीन की गुफ्तगू।
1: सामीन, हमारे जिस्म के हर एक हिस्से की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी बनती है। आज सेहतनामा में गुफ्तगू करने के लिए हमने मदऊ किया है आंखों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद उबैदुर रहमान साहब को, जिनसे हम जानेंगे कि आंखों की मुख्तलिफ बीमारियां और उनसे बचने की तदाबीर क्या क्या हैं। तो सबसे पहले तो डॉक्टर साहब, हम आपका खैर मकदम करते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ तशरीफ लाए।
2: शुक्रिया।
1: तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप हमारे सामीन को बताइए कि आंखों में बहुत तरह की ऐसी बीमारियां होती हैं, लेकिन उसमें अभी खास जो एक बीमारी है जिसको हम ग्लूकोमा के नाम से जानते हैं, उसका मतलब क्या होता है और इसे क्या किसी दूसरे नाम से भी जाना जाता है?
2: ग्लूकोमा आंख के अंदर जो प्रेशर होता है वो बढ़ने की वजह से आंख के पीछे नस, जिसको ऑप्टिक नर्व कहते हैं, वो डैमेज होने लगता है। इसी को ग्लूकोमा कहते हैं, इसको काला मोतिया भी बोला जाता है।
1: अच्छा, इसको काला मोतिया भी कहते हैं।
2: जी
1: जनरली भी हम लोग एक मोतियाबीन के बारे में जानते हैं, तो क्या ग्लूकोमा और मोतियाबीन दोनों अलग अलग चीजें हैं?
2: हाँ, दोनों अलग हैं। वो मोतियाबिंद, उसको सफ़ेद मोतिया बोलते हैं, जिसको कैटरेक्ट बोला जाता है, उसमें लेंस जो है वो वाइट हो जाता है, उसको मोतियाबिंद बोला जाता है। और ये जो काला मोतिया है वो आँख के पर्दे में पीछे में जो नस है वो सूखने लगता है आँख का प्रेशर बढ़ने की वजह से, उसको काला मोतिया है, ग्लूकोमा बोलते हैं।
1: तो आंख का प्रेशर से आंख की बिनाई पे जो असर पड़ता है, जो ग्लूकोमा जैसा जो एक मर्ज पैदा हो जाता है, तो किसी को ग्लूकोमा से अगर बचना हो तो क्या ख्याल रखना चाहिए?

0: नॉर्मल प्रेशर जो है 10 से 20 mmHg में होता है, और अगर 20 से ज्यादा अगर किसी का प्रेशर हो रहा है ग्लूकोमा का चांस हो सकता है उसको। एज रिलेटेड डिजीज है
1: अच्छा, ये किसी एक फिक्स एज में
0: एज
1: होती
0: हाँ
1: है।
0: एज रिलेटेड डिजीज है, 60 ईयर्स के बाद ज्यादा होने का चांस रहता है। ऐसे तो 40 साल के बाद से ही आँख का प्रेशर रेगुलर चेकअप में आँख का प्रेशर भी लेना चाहिए, ताकि अर्ली डायग्नोसिस अगर ग्लूकोमा किसी को हो तो वो हो जाए।
1: ये जो ग्लूकोमा के बारे में जैसे आपने बताया कि ये स्पेशली 60+ लोगों को होता है, तो अभी चूंकि बहुत सारी बीमारी बिना एज के ही चली आ रही हैं, तो क्या ग्लूकोमा के भी ऐसे केसेस आपको मिले हैं कि जो 60 से पहले वाले कम एज वाले लोगों को
0: हाँ,
1: भी ऐसा हुआ
0: उसको
1: है?
0: कंजेनाइटल ग्लूकोमा बोलते हैं, पैदाइश से ही रहता है,
1: अच्छा
0: तो वो ग्लूकोमा भी होता है, जिसमें उसकी उसका पहचान ये है कि जब बच्चा होगा उसका आँख जो है ब्लू होने लगता है, आँख बड़ा होने लगता है, जो उसके माँ बाप हैं उनको ये लगता है कि मेरे बच्चे का आँख बड़ा हो रहा है, तो ये उसकी अलामत है कि इसको ग्लूकोमा हो सकता है। तो उसमें फिर उसका रूटीन चेकअप करा करके कन्फर्म करना पड़ता है कि इसको ग्लूकोमा तो नहीं है।
1: कई बार जो बच्चे पैदा होते हैं उनकी आंखें पैदाइशी ही ब्लू होती हैं, और लोग सोचते हैं कि ये कुदरती है, तो मुझे लगता है उस वक्त भी हमें डॉक्टर से
0: नहीं,
1: कंसल्ट
0: वो
1: करने की
0: ब्लू नहीं,
1: जरूरत है।
0: इसमें आँख बड़ा भी होगा और थोड़ा सफ़ेद भी होगा।
1: अच्छा
0: हाँ, पुतली जो होता है ना वो
1: जी जी
0: एकदम काला नहीं हो कि सफ़ेद होगा, बड़ा होगा, उसके बाद ब्लू भी होगा, पानी भी आएगा आँख से।
1: आंखों से
0: हाँ
1: पानी,
0: हाँ पानी भी आएगा, ये सब अलामत होगा तब हमको ग्लूकोमा सोचना चाहिए।
1: तो इसके लिए हमें डॉक्टर से रेगुलर चेकअप की जरूरत है।
0: बाय बर्थ वाले में तो चेकअप की ज़रूरत नहीं है, ये तो अलामत लेके ही बच्चा आता है या फिर अलामत डेवलप कर जाता है उसके अंदर,
1: जी,
0: तब उसको डॉक्टर के पास जाके कन्फर्म कराना है।
1: बाई बर्थ अगर किसी बच्चे के हैं तो फिर
0: बाय
1: उसका क्या
0: बर्थ है
1: इलाज
0: तो
1: है?
0: पहले उसको बेहोशी के हालत में उसको एग्जामिन करते हैं, कंफर्म करते हैं, उसका पर्दा देखते हैं, आँख का प्रेशर नापते हैं और आँख का साइज नापते हैं। उसके बाद जब डायग्नोसिस हो जाता है, कंफर्म हो जाता है कि इस बच्चे को ग्लूकोमा है, तब दवा दिया जाता है, लेकिन जनरली सर्जरी की ज़रूरत ही पड़ती है, बच्चे में सर्जरी ही किया जाता है उसका ग्लूकोमा को कंट्रोल करने के लिए।
1: तो जो ऑपरेशन जब हो जाएगा उस बच्चे का, तो फिर क्या वो आगे की जिंदगी में जो
0: हाँ, कंट्रोल हो जाता है।
1: कंट्रोल हो जाता है, फिर उसकी आई साइट जो होती है, जो बिनाई होती है, उसमें तो कोई कमी बेशी का कुछ मसला नहीं आता?
0: तो डिपेंड करता है कितना डैमेज हुआ है।
1: अच्छा,
0: हाँ, अगर
1: ये भी
0: कितना
1: डिपेंड
0: उस पर
1: करता है।
0: डिपेंड करता है, अगर डैमेज कम हुआ है तो उसका आँख बच जाता है, लेकिन इलाज तो वही है, उसको ऑपरेशन करना ही पड़ता है बच्चे में।
1: बच्चे में
0: एडल्ट
1: भी?
0: में है कि दवा देना है।
1: अच्छा
0: हाँ, दवा से जनरली कंट्रोल हो जाता है, सर्जरी की ज़रूरत बाद में पड़ती है, लेकिन बाय बर्थ जो ग्लूकोमा होता है उसमें सर्जरी ही प्लान करते हैं हम लोग।
1: मतलब जिस बच्चे को हो गया है उसको ऑपरेशन ही करवाने का
0: हाँ,
1: ज्यादातर
0: जनरली
1: चांसेस
0: ज़रूरत
1: है,
0: पड़ता है।
1: ज्यादा
0: हाँ
1: जरूरत पड़ती है। और अगर जो बड़े हैं, जो जैसे आपने बताया कि 60 से प्लस वालों को होता
0: हाँ
1: है, तो उनको अगर पता चला कि भाई उनको ग्लूकोमा है, तो उनको दवाइयों से रोका जा
0: हाँ
1: सकता
0: दवा
1: है,
0: से, दवा से रोकते हैं
1: तो
0: उसको।
1: रोकने का चांसेस इतना है कि वो आगे मजीद ना बढ़े, या फिर आखिरी ऑप्शन एडल्ट वाले में ऑपरेशन ही है उसको?
0: नहीं, जनरली ये कंट्रोल हो जाता है, डिपेंड करता है किस वक्त इसका डायग्नोसिस हुआ है। अगर अर्ली स्टेज में डायग्नोसिस हो जाता है तो इसको पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, आँख की रोशनी बच जाती है इंसान की। और अगर लास्ट स्टेज में पता चला पेशेंट भी अनकंसस है या कभी चेकअप नहीं किया डॉक्टर के पास जाके, और एडवांस स्टेज में अगर डायग्नोसिस होता है, तो उस वक्त बचाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है।
1: तो अर्ली स्टेज और लास्ट स्टेज की जो बात है, तो उसमें कैसे कोई इंसान पहचान पाए कि मेरी आंखों में ऐसी क्या दिक्कत हो रही है, क्या उसकी अलामतें होती हैं जो अडल्ट वाले हैं उनके अंदर, कि वो तुरंत महसूस कर सके कि कहीं ये ग्लूकोमा की निशानी तो नहीं है, कुछ ऐसी
0: ग्लूकोमा
1: इसकी
0: तो ऐसे
1: अलामतें हैं?
0: एसिम्टोमेटिक होता है, इसमें कोई अलामत जनरली नहीं होता है, खास तौर पर ओपन एंगल टाइप का जो ग्लूकोमा होता है, यूजुअली ज़्यादातर यही ग्लूकोमा होता है, ओपन एंगल ही होता है, इसमें अलामत नहीं समझ में आता है अर्ली स्टेज में। जनरली रूटीन चेकअप में डॉक्टर के पास गया तो सडन डायग्नोसिस होता है कि आपको ग्लूकोमा है, और अलामत एडवांस स्टेज में डेवलप करता है, जो साइड का विजन है वो जाने लगता है, जैसे पेशेंट चल रहा है, चलते चलते कहीं ठोकर लग रहा है, साइड में कहीं उसको अनबैलेंस हो रहा है, तो वो साइड का इसका मतलब उसका रोशनी जा रहा है, तो ये अलामत है इसका है। एक गिल क्लोज टाइप का ग्लूकोमा होता है, उसमें आँख का बनावट ही ऐसा होता है कि उसको ग्लूकोमा होने का चांस रहता है, तो उसमें अलामत ये होता है कि उसको कभी कभी जो है अचानक धुंधलापन होगा और रोशनी के चारों तरफ एक सर्किल दिखेगा और हल्का सा सर में दर्द होगा, ये अगर होता रहा तो ये सब अलामत है।
1: हमें फिर डॉक्टर के पास जाना चाहिए।
0: हाँ
1: थोड़ा हमारे सामीन को ये बताइए कि जो हम जनरली जाते हैं अपने आई विजन के लिए, अपने आई साइट के चेकअप के लिए, कि हमारे चश्मे का पावर बढ़ गया घट गया, तो क्या उस वक्त जो जनरल जो डॉक्टर जो चेकअप करते हैं, आई स्पेशलिस्ट, वो हमारी आंखों का प्रेशर भी चेक करते हैं?
0: 40 साल एज हो चुका है तो ब्लड प्रेशर भी देखना है, शुगर भी देखना है, उसी तरह से आँख का प्रेशर भी देखना चाहिए, ताकि हम अर्ली डायग्नोसिस ग्लूकोमा का कर सकें और पेशेंट को एडवांस स्टेज में जाने से रोक सकें।
1: अगर मान लीजिए हम चेकअप के लिए कोई इंसान जैसे गया डॉक्टर के पास में, जनरली कि बहुत दिन से उसने आंखों का चेकअप नहीं कराया, या फिर आंखों में कुछ चला गया, कुछ भी ऐसी बात हुई, तो क्या हम डॉक्टर को ये कह सकते हैं कि आप हमारी आंखों का प्रेशर भी चेक करके हमें बताइए कि क्या प्रेशर है आंखों
0: हाँ,
1: का?
0: बोल सकते हैं।
1: इससे कहीं ना कहीं हम भी बच पाएंगे।
0: हाँ
1: इसके साथ ही हमारे सामने को एक चीज और बताइए डॉक्टर साहब, कि ग्लूकोमा होने पर अगर किसी को हो गया है, तो हमें क्या करना चाहिए जिससे कि वो ठीक रह सके, और ऐसी क्या चीजें हैं जो हमें नहीं करें जिससे कि हम आगे और परेशानी में ना पड़े?
0: डायग्नोसिस अगर हो जाता है तो कंटिन्यू जो है डॉक्टर से कंसल्ट में रहना है, उसको डिपेंड करता है कैसा

0: ग्लोकोमा है तो या तो 6 महीना या 3 महीने पे कंटिन्यू जाते रहना है, आँख का प्रेशर चेक कराते रहना है कि प्रेशर कंट्रोल में है कि नहीं, कितना डैमेज हुआ है, उसको रिकॉर्ड करने के लिए भी चेकअप होता है, वो उसको भी कराते रहना है ताकि उसका ग्लोकोमा बढ़े नहीं उस
1: ग्लूकोमा
0: पेशेंट
1: उसका
0: का।
1: ना बढ़े इसलिए
0: हाँ,
1: रूटीन चेकअप
0: दवा
1: जरूरी है।
0: कंटिन्यू डालना है
1: उसमें
0: वो।
1: कुछ खाने की भी दवा आती है या फिर सिर्फ डालने का ड्रॉप्स आता है?
0: ऐसे तो आई ड्रॉप ही दिया जाता है, लेकिन जब प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जनरली 40-50 के रेंज में अगर चला जाता है, तब उसको ड्रॉप के अलावा टैबलेट भी हम लोग खिलाते हैं, शॉर्ट टाइम के लिए जो है टैबलेट खिलाते हैं, ताकि अचानक से जो है जो बढ़ा हुआ है प्रेशर जल्दी ही कंट्रोल हो इसके लिए।
1: अच्छा, जो हम खाते हैं पीते हैं तो इसमें कोई ऐसी गजाइत भरी चीज़ भी है जो ग्लूकोमा को होने से रोकती है?
0: ग्लूकोमा का खाने से ऐसा कोई डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है, ये तो एज रिलेटेड डिजीज़ है या फिर फैमिली में किसी को हुआ तो उसको होगा, ऐसे खाने का इनडायरेक्ट रिलेशन है, क्योंकि ये जो ऑप्टिक नर्व होता है पर्दे में, जो पीछे में नस है, उसको डैमेज करता है।
1: जी
0: एक तो प्रेशर भी डैमेज करता है, दूसरा उसका ब्लड सर्कुलेशन होता है ना, वो अगर इफेक्टेड है उससे भी ग्लूकोमा पे इफेक्ट पड़ता है। तो खाने पीने का ताल्लुक इनडायरेक्टली ब्लड प्रेशर से या ब्लड फ्लो से हो सकता है। ऐसे ही गज़ा जैसे हाई कोलेस्ट्रॉल रिच फूड आदमी ले रहा है जिससे वेसल डैमेज हो रहा है, सर्कुलेशन इम्पेयर्ड हो रहा है, तो उसमें ग्लूकोमा वर्स हो सकता है। और कोई ऐसा खाना, आँख के जो पर्दे में जो खून का जो रफ्तार है बढ़े, वैसा खाना अगर खा रहा है तो उसे ग्लूकोमा के लिए फ़ायदेमंद है, जैसे कि ग्रीन वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, और मैग्नीशियम रिच फूड है जैसे बनाना हो गया और सी फूड्स है, ये सब खाए आदमी तो ब्लड सर्कुलेशन जो है ऑप्टिक नर्व का वो इम्प्रूव करता है, और ये ग्लूकोमा के लिए फ़ायदेमंद है।
1: तो जैसे ओमेगा 3 की बात भी करते
0: हाँ,
1: हैं
0: ओमेगा
1: लोग,
0: थ्री
1: जो बोलते
0: फैटी
1: हैं
0: एसिड भी
1: नट्स
0: फायदेमंद
1: वगैरह,
0: है।
1: तो ये भी आंखों के लिए
0: फायदेमंद है। हाँ,
1: फायदेमंद है। अच्छा, इसके साथ एक चीज़ और कि जैसे मैं अभी हमने जाना कि भाई मोतियाबिंद और ग्लूकोमा दोनों अलग अलग है, तो क्या मोतियाबिंद होने के लिए भी कोई ऐसी कोई चीज़ें हैं कि आपके खान पान से उसका भी कनेक्शन होता है कि जिसकी वजह से मोतियाबिंद हो जाता है?
0: वो तो एज रिलेटेड तो है ही, एंटीऑक्सीडेंट थोड़ा प्रोटेक्टिव होता है, उसके अलावा ऐसा कोई रिलेशन मोतियाबिंद में भी नहीं हो, तो एज से मुताल्लिक बीमारियां ये
1: इससे
0: सब।
1: मतलब
0: हाँ,
1: लिखी है लोगों को जो ग्लूकोमा के लिए बेदार करने के लिए पीछे जो अभी इतनी खूबसूरत सी सारी चीज़ें थीम के ज़रिए से पेश की जा रही हैं, तो आखिर इनको बेदार करने की ज़रूरत क्यों पड़ी?
0: इसलिए कि ये ऐसी बीमारी है जिसमें आदमी को पता नहीं चलता है कि रोशनी जा रही है, उसको खुद एहसास नहीं होता है, इसलिए बेदार करने की ज़रूरत है कि वो बगैर सिम्टम डेवलप किए हुए, बगैर अलामत के डेवलप किए हुए वो डॉक्टर से कंसल्ट करे और ग्लूकोमा के बारे में चेकअप कराता रहे आदमी। खासतौर पर अगर फैमिली में कोई ग्लूकोमा का पेशेंट है तो उसको तो बिल्कुल कंसस रहना है। वैसे पेशेंट को 40 साल के बाद हर 2 साल पे और 50 साल के बाद हर साल आँख का चेकअप ग्लूकोमा के लाइन से ज़रूर कराना चाहिए।
1: मतलब जो हम एक रूटीन चेकअप करते हैं या करवाते हैं 6 महीना साल भर पे,
0: हाँ
1: उसके अलावा अगर 40 साल 50 साल एज है तो हमें करवाते रहना चाहिए। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे लिए आँखों का सेहतमंद रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसके बगैर तो बिल्कुल दुनिया अधूरी तो है, बिल्कुल अंधेरी हो जाएगी हमारी दुनिया। एक चीज़ समझ में नहीं आती है कि आँखों को लेकर के आज के टाइम में जो अभी हम जिस दौर में जी रहे हैं जहाँ मोबाइल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं हम लोग, तो क्या आँखों की बिनाई के ऊपर जो है हमारी मोबाइल के रेस का भी कुछ असर पड़ता है?
0: रेज का तो है, वो ड्राइनेस काउज करता है, स्क्रीन इफेक्ट है, और कंटिन्यू आदमी जो है नज़दीक पे फोकस करता है ना, ये आँख जो है ना दूर के लिए बनी है, आँख को दूर देखना है, अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया है कि आँख को दूर देखना है।
1: अच्छा,
0: अब कंटिन्यू आदमी जब मोबाइल देखेगा तो वो नज़दीक पे फोकस कर रहा है, जो ज़्यादा नज़दीक का यूज़ हो रहा है, तो उस कंडीशन में दूर की रोशनी गड़बड़ होने लगती है, या फिर चश्मे की ज़रूरत पड़ जाती है, या चश्मे का पावर भागने लगता है, तो ये रोल है उसका। अगर नज़दीक, चूंकि मोबाइल में नज़दीक देखता है आदमी,
1: जी
0: तो उसकी वजह से चश्मे के लगाने की ज़रूरत पड़ती है, या और पावर भागने का चांस बढ़ जाता है अगर कंटिन्यू मोबाइल का यूज़ करें तो।
1: अच्छा, एक चीज़ और है जिसे सुनते हैं कि पर्दा फट गया आंखों का, तो ये अभी कुछ ज्यादा हो रहा है, इसके पीछे क्या वजह है और इसका ट्रीटमेंट क्या है?
0: पर्दा फटना जनरली हाई मायोपिया होता है, जो -6 से ज़्यादा पावर का जो लोग यूज़ करते हैं चश्मा,
1: जी
0: उसमें जो है आँख के पर्दे में चेंजेस डेवलप करता है ना, जैसे पर्दे में छेद होना, पर्दा पतला होना, अगर डायग्नोस नहीं हो पाता है तो यही आगे जाके पर्दा फट जाता है। इसलिए जो -6 पावर से ज़्यादा जो चश्मा यूज़ कर रहे हैं ऐसे लोगों को पर्दा पूरा, बीच का भी, किनारे का भी पर्दा, जिसको इनडायरेक्ट ऑप्थल्मोस्कोपी उसको भी कहते हैं, उसके ज़रिए से पूरा चेकअप कराते रहना चाहिए। अगर कहीं पे उसको छेद मिल रहा है पर्दे में, ये पर्दा पतला हो रहा है, तो पर्दा फटे नहीं, उसको हम लोग लेज़र करके सील कर देते हैं ताकि पर्दा फटे नहीं। उसका
1: जो
0: इलाज ये है कि फिर सर्जरी होता है, अगर पर्दा किसी का फट गया तो रेटिना का सर्जरी कराना पड़ता है उसके।
1: रेटिना की सर्जरी करानी होती है, अगर मान लीजिए उस सर्जरी के बाद उसकी आंखों की रोशनी के कितने चांसेस होते हैं, मतलब कितनी बेहतर हो सकती है रोशनी उसकी
0: अब
1: आंखों
0: तो
1: की?
0: सर्जरी वो डेवलप कर गया है, रोशनी मतलब लौट आता है आजकल जो ऑपरेशन होता है, पहले था कि पर्दा फट गया तो फिर चांस नहीं है, वो ऐसा मामला था, लेकिन अब तो रेटिना सर्जन बहुत हो गए हैं और सर्जरी

0: अच्छा हो रहा है तो ऑपरेशन करने पे रोशनी बच जाता है, रोशनी आ भी जाता है
1: उसके
0: बहुत
1: बाद
0: हद
1: चश्मा
0: तक।
1: लगाने की जरूरत पड़ती है।
0: हाँ वो तो लगा नहीं है वो।
1: आपने बताया -6 पावर है, तो अगर पहले से वो -6 था मान लीजिए, तो ऑपरेशन के बाद क्या वही -6 रहता है या फिर उसके पावर और बढ़ जाते हैं?
0: उसका पावर पे फर्क नहीं पड़ता है कुछ,
1: अच्छा,
0: वो तो
1: उसके पावर पे उस पर कोई असर
0: नहीं
1: नहीं
0: नहीं
1: पड़ता है। कम एज के छोटे जो बच्चे, उनके लिए आप क्या मशवरा देंगे जिनकी आंखों का पावर अचानक अचानक से बिल्कुल बढ़ रहा है और उनकी आंखों में कई तरह की बीमारियां अचानक से आ रही हैं?
0: उनको तो मोबाइल का यूज़ कम करना है, बेहतर है कि आदमी किताब का मुताला करे, चाहे मोबाइल का यूज़ नहीं हो तो बेहतर है।
1: बच्चों के लिए मोबाइल का इस्तेमाल अगर कम हो तो ही बेहतर है। अच्छा, कई बार हम क्या करते हैं कि आंख में कुछ चुभ रहा है तो खुद से पानी डाल लेते हैं, उसमें छींटे मारते हैं आंखों के ऊपर, तो ये छींटा मारना आंखों का कैसा है?
0: वो आँख ड्राई होता है इसलिए वो कर सकते हैं, पानी से धो सकते हैं। ऐसे जिन लोगों का ज़्यादा यूज़ है स्क्रीन पर, उनको हम लोग बताते हैं कि 20-20-20 रूल को फॉलो करें,
1: अच्छा, ये
0: यानी
1: कैसा रूल है?
0: हाँ, यानी कि हर 20 मिनट पे 20 सेकंड के लिए 20 फीट दूर देखना चाहिए।
1: अच्छा,
0: उससे क्या होगा कि कंटिन्यू नज़दीक में फोकस भी नहीं करेगा आदमी, दूर भी फोकस करेगा बीच बीच में, और वॉलंटरी ब्लिंकिंग यानी जान जान के पलक झपकाना है ना, वो उसको एडवाइस करते हैं हम लोग ताकि आँख ड्राई नहीं हो।
1: मतलब आंखों को अगर ड्राइनेस से बचाना है तो
0: हाँ
1: अपनी आंखों को बहुत
0: चूँकि
1: ज़्यादा,
0: स्क्रीन देखता है आदमी ना, तो
1: जी
0: आदमी
1: जी
0: पलक जितना झपकाना चाहिए उतना नहीं झपका पाता है, जैसे 1 मिनट में 15-16 बार आदमी पलक झपकाता ही है, लेकिन जहाँ आदमी स्क्रीन देखने लगता है या फिर कोई नज़दीक पे फोकस करता है ये फ्रिक्वेंसी घट जाता है। इसलिए ऐसे आदमी को बोलते हैं कि वो अपना वॉलंटरी ब्लिंकिंग करें, वो जान जान के पलक झपकाएं बीच बीच।
1: इससे आगे आंखों में ड्राइनेस नहीं
0: हाँ
1: होगी,
0: ड्राइनेस नहीं
1: ड्राइनेस
0: हो
1: से बच
0: नहीं।
1: सकेंगे
0: हाँ
1: हम लोग। ड्राइनेस से भी आंखों की रोशनी के जाने का खतरा है क्या?
0: सीवियर होता है तब ऐसे नहीं।
1: मतलब अगर बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो
0: सीवियर
1: गई तो?
0: ड्राइनेस है जो इसकी वजह से नहीं होता है, सीवियर ड्राइनेस अलग बीमारी होती है, ऑकुलर सरफेस डिजीज अगर वो है उसमें रोशनी पे इफेक्ट पड़ता है।
1: ये ड्राइनेस होने के असरात को कैसे पहचानेंगे हमारे सामने, थोड़ा बताइए उन्हें।
0: उसमें आदमी को थोड़ा सा आँख में गड़ने जैसा फीलिंग होगा, बर्निंग सेंसेशन होगा, फॉरन बॉडी सेंसेशन होगा, तो इसका मतलब है कि उसके आँख के आंसू में कमी आ रही है, तो यार ड्राइनेस हो रहा है।
1: ये जो ग्लूकोमा के साथ साथ मोतियाबिंद के बारे में बात हुई, आपने बताया कि ये काला मोतिया होता है, ग्लूकोमा जो है इसको एक काला मोतिया के नाम से भी जानते हैं, तो काला मोतिया के बीच में और ये जो मोतियाबिंद जो होता है, इन दोनों के बीच में जो फ़र्क है वो आपने बताया, थोड़ा हमारे सामने को ये भी बताइए कि ये जो मोतियाबिंद जो जनरल जो सफ़ेद मोतिया जो होता है जिसको कैटरक कहते हैं, तो इसके होने की अलामत और किस उम्र के लोगों को इसमें होने का खतरा ज़्यादा है?
0: कैटरेक्ट भी एज रिलेटेड डिजीज़ है, ये भी 50-60 साल के बाद ही डेवलप करता है, तो जब कैटरेक्ट डेवलप करता है तो उसकी अलामत ये है कि आदमी को धुंधला दिखेगा और डबल डबल, जैसे कि आसमान में देखने पर 2 या 3 चांद दिखने लगेगा आदमी को, और आँख में चमक ज़्यादा महसूस होगा। अगर ये सब मतलब इमेच्योर कैटरेक्ट अगर है तो उसमें यह सब अलामत हो सकता है, मैच्योर हो गया तो पूरी तरह से ब्लाइंड आदमी हो जाता है।
1: मुत्यबीन में
0: हाँ मतलब कुछ दिखेगा ही नहीं, मतलब मैच्योर कैटरेक्ट है तब ऐसा होता है।
1: अगर उसका ध्यान नहीं दिया गया, वक्त पर उसको ऑपरेट करके नहीं निकाला गया, तो क्या इसके फटने के भी चांसेस होते हैं?
0: हाइपर मेच्योर अगर कैटरेक्ट है तो उसको लेंस इंड्यूस्ड जो है ग्लोकोमा हो जाता है, जिसको मोतियाबिंद फटना भी कहते हैं।
1: डॉक्टर साहब, जाते जाते हमारे सामीन को ये बताइए कि आजकल की भाग दौड़ ज़िंदगी में, जहाँ हमें मोबाइल का इस्तेमाल करना है, हमें लैपटॉप के ऊपर काम करना ही है, हम अपनी आँखों को कैसे सेहतमंद रखें
0: ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, वो सब आदमी खाए ज़्यादा।
1: और मोबाइल से दूर रहें
0: हाँ
1: जितना हो सके, मोबाइल से दूर रहें, लैपटॉप पे काम करना है तो फिर अपनी आंखों को, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि वक्त वक्त पर उसको झपका रहना है और डॉक्टर से कंसल्ट करते रहना है, मिलते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ ही सामीन, अपनी मेज़बान शो गुप्ता को दीजिए इजाज़त, और मेरे साथ साथ आज सेहतनामा की नशिस्त में हमारे साथ जो डॉक्टर मोहम्मद उबैदुर रहमान थे, जो आँख के स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे, इनको भी दीजिए इजाज़त। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे सामीन के लिए वक्त निकाला।
0: शुक्रिया।
2: द आईज इज द ज्वेल ऑफ द बॉडी, द आई इज द ज्वेल ऑफ द बॉडी, यानी हमारी आंखें हमारे बॉडी यानी जिस्म का जेवर है। आप सुन रहे थे सेहतनामा, आंख से जुड़ी मुख्तलिफ बीमारियां और हिफाजती तदाबीर, डॉक्टर उबैदुर रहमान से शगुफ्ता परवीन की गुफ्तगू। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं मौसीकी के तहत चंद गजलें। सबसे पहले सुनते हैं अनुराधा पौडवाल की आवाज में ये कलाम।

तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे। आप सुन रहे थे मुन्नी बेगम की आवाज़ में ये खूबसूरत कलाम। आइए सुनते हैं अगला कलाम वसीम बरेलवी का, लता मंगेशकर और जगजीत सिंह की आवाज़ में।

मिली हवाओं में उड़ने की वो सज़ा यारो। आप सुन रहे थे मौसीकी के तहत वसीम बरेलवी का ये कलाम लता मंगेशकर और जगजीत सिंह की आवाज़ में। सामईन हज़रात, वक्त हो गया है हमारे उर्दू प्रोग्राम अंजुमन को आज यहीं अख्तिताम पसीर करने का। हम फिर हाजिर होंगे आपके अपने पसंदीदा उर्दू प्रोग्राम अंजुमन के साथ। तब तक के लिए मौसम बरशगाल में आप रखें अपना ख्याल और हमें रखिए दुआओं में याद। खुदा हाफिज़।

अभी आप सुन रहे थे उर्दू कार्यक्रम अंजुमन। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रसमंजरी। कार्यक्रम रसमंजरी में सबसे पहला गाना सुनिए आशा भोसले और अभिजीत की आवाज़ में। फिल्म है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। संगीत जतिन ललित का है और गीतकार हैं आनंद बख्शी।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: आकाशवाणी पटना से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसमंजरी। कार्यक्रम में अगला गाना सुनिए, बाबुल सुप्रियो और अलका याग्निक की आवाज में। फिल्म है अंदाज, संगीत नदीम श्रवण का है और गीतकार है समीर।

कार्यक्रम रसमंजरी में अगला गाना सुनिए कुमार सानू और पूर्णिमा की आवाज में। फिल्म है गोपी किशन, संगीत आनंद मिलिंद का है और गीतकार है समीर।

इसी गीत के साथ फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रसमंजरी अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम बाल किलकारी।

0: तो दोस्तों, आपने सुनना शुरू कर दिया है बाल किलकारी रेडियो कार्यक्रम। बाल किलकारी के इस नए एपिसोड में आप सभी श्रोताओं का खूब स्वागत है।
1: कहते हैं जो जितना घूमता है वह उतना ही सीखता है, इसीलिए आज हम जानेंगे सफर के मजेदार किस्से और खोजेंगे नई नई जगहों की रोचक बातें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी यात्रा।
0: बिल्कुल, पर क्या तुम्हें पता है कि आज आते आते मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे पैरों में पहिए लग चुके हैं।
1: अच्छा, कहीं तुम साइकिल तो नहीं बन गए?
0: अरे नहीं नहीं, लेकिन मन कर रहा है कि बस निकल पड़ो, कभी पहाड़ों की ओर, कभी जंगलों की ओर, तो कभी किसी नदी के किनारे, तो कभी किसी पुराने किले की सैर पर।
1: लगता है कि आज तुम्हारे अंदर कोई घुमक्कड़ जाग गया है।
0: लग तो यही रहा है, लेकिन आज का हमारा विषय भी तो यही है, घुमक्कड़ी।
1: यानी नई नई जगहों की सैर, नए लोगों से मुलाकात, नई बातें सीखना और हर सफर को एक नई कहानी बना देना।
0: लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि लोग घूमते ही क्यों है? आखिर यात्रा करने से मिलता क्या है?
1: अरे इसका जवाब तो बहुत आसान है, किताबें हमें दुनिया के बारे में पढ़ाती है, लेकिन यात्राएं हमें दुनिया से मिलवाती हैं।
0: सही कहा, एक यात्रा हमें कई किताबों जितना ज्ञान दे जाती है।
1: और सबसे मजेदार बात ये कि यात्रा में कभी कभी ऐसी घटनाएं हो जाती है जिन्हें याद करके हम बरसों तक हंसते हैं।
0: जैसे कि मेरे साथ हुआ था।
1: अरे वाह, जरा बताओ।
0: मैं एक बार पहाड़ घूमने गया था, बड़े शौक से कैमरा लेकर निकला। जैसे ही बंदरों की फोटो लेने लगा, एक बंदर झपट्टा मारकर मेरा चिप्स का पैकेट लेकर पेड़ पर चढ़ गया।
1: फिर तो बंदर ने सोचा होगा फोटो बाद में खींचना, पहले टोल टैक्स जमा करो।
0: और मैं नीचे खड़ा सोच रहा था कि फोटो किसकी खींचूं, बंदर की या अपने खाली हाथों की।
1: और तो और, ऐसी ही घटनाएं हमारे सफर को यादगार बना देती है। इसीलिए यात्रा का मतलब सिर्फ घूमना नहीं होता, यात्रा हमें सिखाती है कि हर जगह के लोग अलग हो सकते हैं, लेकिन सबके दिल में अपनापन होता है।
0: बिल्कुल, कहीं लोग नमस्ते कहते हैं, कहीं आदाब, कहीं सत श्री अकाल, कहीं वन्नकम और कहीं जू

0: पहाड़, लेकिन हर अभिवादन में सम्मान और प्रेम छिपा होता है।
1: और यही तो भारत की सबसे बड़ी खूबसूरती है, अनेकता में एकता।
0: पराकृति, क्या तुम जानती हो कि दुनिया के कई बड़े वैज्ञानिक, लेखक और कलाकार भी खूब यात्राएं किया करते थे?
1: हाँ, क्योंकि वे जानते थे कि नई जगह नए विचार देती है। जब हम अपने आसपास से बाहर निकलते हैं, तभी हमारी सोच का दायरा भी बड़ा होता है।
0: यानी अगर हम सिर्फ अपने कमरे की खिड़की से दुनिया देखेंगे तो दुनिया उतनी ही दिखेगी, लेकिन अगर हम

0: का दायरा भी बड़ा होता है।
1: यानी अगर हम सिर्फ अपने कमरे की खिड़की से दुनिया देखेंगे तो दुनिया उतनी ही दिखेगी, लेकिन अगर हम बाहर निकलेंगे तो हर रास्ता एक नई किताब बन जाएगा।
0: बिल्कुल सही, लेकिन अब जरा बातों बातों में खेल खेलते हैं। मैं किसी जगह का नाम नहीं लूंगी, बस उसकी पहचान बताऊंगी। तुम्हें पहचानना है कि वह कौन सी जगह है।
1: ठीक है, बोलो पहला सवाल।
0: इश्क की निशानी हूँ, दुनिया के अजूबों में शुमार, हर साल आते देखने लाखों सैलानी बारंबार। सोच लिया?
1: हाँ, जवाब है ताजमहल।
0: वाह, तो चलो अब दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। दूसरा सवाल है, ऊँटों का जहाँ मेला लगता, दूर दूर तक रेत की टीले, लोक गीतों की मीठी धुन पर झूम उठे सब गांव कबीले।
1: शायद राजस्थान का रेगिस्तान।
0: सही पकड़ा। फिर तीसरा और अंतिम सवाल है, चाय की पत्तियों से महके धरती का हर कोना, बादलों की चादर ओढ़े पर्वत लगे सलोना।
1: क्या आपने पहचान लिया? बिल्कुल सही, हमारे देश में ऐसी कई खूबसूरत जगह है, जैसे दार्जिलिंग, मुन्नार और ऊटी।
0: देखा दोस्तों, हमारा भारत कितना रंग बिरंगा है। कहीं बर्फ है, कहीं रेगिस्तान, कहीं समुद्र, कहीं घने जंगल और कहीं ऊंचे ऊंचे पहाड़।
1: और सबसे मजेदार बात यह है कि हर जगह की अपनी भाषा, अपना पहनावा, अपना खाना और अपनी संस्कृति होती है।
0: और यही वजह है कि कई लोग सिर्फ घूमने के लिए नहीं बल्कि सीखने के लिए भी यात्रा करते हैं। ऐसे लोगों को घुमक्कड़ कहा जाता है।
1: बिल्कुल, घुमक्कड़ लोग हर सफर को एक पाठशाला मानते हैं। वे रास्तों से दोस्ती करते हैं, नए लोगों से मिलते हैं और हर जगह से कुछ नया सीख कर लौटते हैं। पर आकृति, क्या तुम जानती हो कि इतिहास में ऐसे भी लोग हुए हैं जिन्होंने केवल घूमने के लिए नहीं बल्कि ज्ञान की खोज के लिए पूरी दुनिया की यात्राएं की।
0: सच? कौन थे वे महान घुमक्कड़?
1: उनमें सबसे प्रसिद्ध नाम है ह्वेन सांग, इब्न बतूता और मार्को पोलो का।
0: पहले ह्वेन सांग के बारे में बताओ।
1: ह्वेन सांग 7वीं शताब्दी के चीन के एक बौद्ध भिक्षु और महान यात्री थे। उन्हें बौद्ध धर्म के वास्तविक ग्रंथों का अध्ययन करना था, इसलिए उन्होंने भारत आने का निश्चय किया।
0: उस समय तो न रेल थी और न हवाई जहाज, फिर वे कैसे आए?
1: यही तो उनकी बहादुरी थी। वे पैदल चले, ऊँटों के काफिलों के साथ रेगिस्तान पार किए, बर्फ से ढके हिमालय को लांघा और रास्ते में डाकुओं के खतरों का भी सामना किया।
0: क्या वे सीधा भारत पहुंच गए?
1: नहीं, यह यात्रा बहुत लंबी और कठिन थी। भारत पहुंचने के बाद उन्होंने लगभग 17 वर्षों तक अनेक राज्यों की यात्रा की। वे बिहार स्थित प्रसिद्ध नालंदा महाविहार में कई वर्षों तक रहे, संस्कृत सीखी और बौद्ध धर्म का गहन अध्ययन किया।
0: फिर वापस जाते समय क्या लेकर गए?
1: वे लगभग 600 से अधिक बौद्ध ग्रंथ और अनेक दुर्लभ पांडुलिपियां चीन ले गए। उन्होंने भारत की शिक्षा, संस्कृति, समाज और राजाओं का इतना विस्तृत वर्णन किया कि आज भी इतिहासकार उनके यात्रा वृतांत से जानकारी प्राप्त करते हैं।
0: अब इब्न बतूता की कहानी सुनाओ।
1: इब्न बतूता, जिनका जन्म मोरक्को में हुआ था, वे केवल 21 वर्ष की आयु में यात्रा पर निकले और लगभग 30 वर्षों तक लगातार दुनिया घूमते रहे।
0: उन्होंने किस किस देशों की यात्रा की?
1: उन्होंने अफ्रीका, अरब, मिस्र, तुर्की, ईरान, भारत, श्रीलंका, मालदीव, चीन और अनेक देशों की यात्रा की। माना जाता है कि उन्होंने लगभग 1,20,000 किलोमीटर से भी अधिक दूरी तय की थी।
0: क्या वे भारत भी आए थे?
1: हाँ, भारत आने पर दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक उनकी विद्वत्ता से इतने प्रभावित हुए कि उन्हें काजी अर्थात न्यायाधीश नियुक्त कर दिया।
0: उन्होंने भारत के बारे में क्या लिखा?
1: उन्होंने यहाँ के बाजारों, लोगों, त्योहारों, प्रशासन और समाज का बहुत सुंदर वर्णन किया है। उनके यात्रा वृतांत रिहला से आज भी इतिहासकार मध्यकालीन भारत और विश्व के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं।
0: अब मार्को पोलो के बारे में भी तो बताओ।
1: मार्को पोलो इटली के वेनिस नगर के रहने वाले थे। लगभग 17 वर्ष की आयु में वे अपने पिता और चाचा के साथ एशिया की लंबी यात्रा पर निकल पड़े।
0: क्या वे चीन भी पहुँचे थे?
1: हाँ, वे रेशम मार्ग से होते हुए चीन पहुँचे। वह मंगोल सम्राट कुबलाई खा उनकी बुद्धिमता से बहुत प्रभावित हुए और उन्हें अपने दरबार में महत्वपूर्ण कार्य सौंप दिया।
0: उन्होंने वहाँ क्या देखा?
1: उन्होंने चीन के विशाल नगर, कागजी मुद्रा, डाक व्यवस्था, व्यापार और समृद्ध संस्कृति को बहुत निकट से देखा। उस समय यूरोप के लोगों के लिए यह सब किसी आश्चर्य से कम नहीं था।
0: क्या उन्होंने भी अपनी यात्रा लिखी?
1: बिल्कुल लिखी। उन्होंने द ट्रेवलर्स ऑफ मार्को पोलो नामक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक ने यूरोप के लोगों को एशिया से परिचित कराया और आगे चलकर कई महान समुद्री यात्राओं की प्रेरणा बनी।
0: अब समझ में आया कि सच्चे घुमक्कड़ केवल घूमने नहीं जाते बल्कि ज्ञान, अनुभव

0: और नई सभ्यताओं को समझने के लिए यात्रा करते हैं।
1: बिल्कुल, ह्वेन सांग इब्न बतूता और मार्को पोलो ने अपने साहस, जिज्ञासा और ज्ञान पिपासा से सिद्ध कर दिया कि यात्रा केवल मंजिल तक पहुंचना नहीं बल्कि पूरी दुनिया को समझने का सबसे सुंदर माध्यम है।
0: पर क्या तुम जानते हो कि हमारे कई बड़े साहित्यकार भी घुमक्कड़ी के शौकीन थे?
1: हाँ, खासकर राहुल सांकृत्यायन, उन्हें तो महान घुमक्कड़ भी कहा जाता है। उन्होंने भारत ही नहीं, तिब्बत, श्रीलंका और कई देशों की यात्राएं की। अपने सफर के अनुभवों को उन्होंने किताबों में लिखा, जिससे आज भी लोग नई नई बातें सीखते हैं।
0: सही कहा, उनका मानना था कि यात्रा इंसान की सोच को खुला बनाती है और उसे दुनिया को समझने का नया नजरिया देती है।
1: सिर्फ राहुल सांकृत्यायन ही नहीं, कई कवि और लेखक भी अपनी रचनाओं के लिए अलग अलग जगहों पर जाते रहे। जैसे महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने अपनी यात्राओं के अनुभवों को किताबों में उतारा। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक घुमक्कड़ शास्त्र आज भी यात्रा प्रेमियों को प्रेरित करती है।
0: और अज्ञेय भी खूब घूमते थे, देश के अलग अलग इलाकों की संस्कृति, प्रकृति और लोगों के जीवन ने उनकी रचनाओं को नई गहराई दी।
1: सही कहा, नागार्जुन तो हमेशा यात्राओं पर रहते थे, गांव-गांव घूमकर उन्होंने आम लोगों का जीवन देखा और उसी अनुभव को अपनी कविताओं और उपन्यासों में जीवंत किया।
0: वहीं सच्चिदानंद, हीरानंद वात्स्यायन, अज्ञेय और निर्मल वर्मा ने विदेश यात्राओं से मिले अनुभवों को भी अपनी कहानियों और यात्रा वृतांत में स्थान दिया। इससे पाठकों को दुनिया को नए नजरिए से देखने का अवसर मिला।
1: वाह, यानी साहित्यकारों ने सिर्फ किताबों में ही नहीं बल्कि राष्ट्रों पर भी ज्ञान खोजा।
0: बिल्कुल, और यही कारण है कि उनकी रचनाओं में अलग अलग प्रदेशों की खुशबू, लोगों की बोली, लोकगीत और प्रकृति की सुंदरता साफ दिखाई देती है।
1: सही कहा, पर क्या तुम जानती हो कि दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हुए हैं जिन्होंने वर्षों तक पैदल यात्रा करके पूरे देश और दुनिया को जाना?
0: और सबसे मजेदार बात यह है कि पहले के समय में न हवाई जहाज थे, न तेज रफ्तार ट्रेनें, लोग पैदल बैलगाड़ी, नाव और घोड़ों के सहारे लंबी लंबी यात्राएं करते थे। सोचो कितनी मेहनत लगती होगी।
1: लेकिन उस मेहनत का फल भी बड़ा अनमोल होता था। हर सफर उन्हें नया अनुभव, नई भाषा और नए दोस्त दे जाता था।
0: बिल्कुल, और यही तो असली घुमक्कड़ी है, जहाँ रास्ता आसान नहीं होता लेकिन मंजिल यादगार बन जाती है।
1: अच्छा आकृति, क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर पक्षियों से पूछा जाए कि सबसे बड़ा घुमक्कड़ कौन है तो वे क्या कहेंगे?
0: शायद वे अपने परिवार का ही नाम लेंगे।
1: बिल्कुल सही, हर साल लाखों प्रवासी पक्षी हजारों किलोमीटर का सफर तय करके एक देश से दूसरे देश पहुँचते हैं। वे बिना किसी नक्शे और मोबाइल के अपनी मंजिल ढूंढ लेते थे।
0: वाह, प्रकृति भी कितनी अद्भुत है। पक्षियों से हमें भी सीख मिलती है कि मंजिल पाने के लिए साहस और सही दिशा जरूरी है।
1: और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला समुद्र के अंदर है?
0: अरे, पहाड़ भी समुद्र के अंदर होते हैं।
1: हाँ, समुद्र की गहराइयों में फैली पर्वत श्रृंखला धरती की सबसे लंबी पर्वतमाला मानी जाती है। यानी हमारी धरती के भीतर भी खोज का एक विशाल संसार छुपा हुआ है।
0: इसीलिए तो वैज्ञानिक कहते हैं कि हमने अंतरिक्ष से ज्यादा अपने समुद्रों को अभी तक नहीं जाना है।
1: बिल्कुल, इसलिए तो अगर घूमने की बात हो तो हमारी धरती किसी जादुई किताब से कम नहीं है। हर पन्ने पर एक नई कहानी और हर जगह का अपना अलग रंग है।
0: सही कहा, कहीं बर्फ से ढकी चोटियां हैं, कहीं सुनहरे रेगिस्तान, कहीं घने जंगल तो कहीं नीले नीले समुद्र। हर जगह प्रकृति ने अपनी अलग तस्वीर बनाई है।
1: सोचो, एक ऐसी जगह जहाँ सुबह सुबह बादल पहाड़ों को ऐसे गले लगाते हैं जैसे सफेद रुई की चादर ओढ़ा दी हो,
0: और कहीं ऐसे झरने हैं जो ऊंची चट्टानों से गिरते हुए ऐसा संगीत सुनाते हैं कि लगता है कि प्रकृति खुद गुनगुना रही है।
1: तो कहीं रंग बिरंगे फूलों की घाटियां है जहाँ हवा भी फूलों की खुशबू लेकर चलती है।
0: तो कहीं घने जंगल है जहाँ पेड़ों की सरसराहट और पक्षियों की चहचहाहट मिलकर एक अनोखा संगीत बना देती है।
1: और समुद्र का तो कहना ही क्या, लहरें बार बार किनारे पर आकर जैसे कहती है, चलो नई कहानी शुरू करते हैं।
0: मुझे तो रात का आसमान भी बहुत पसंद है। किसी पहाड़ी जगह पर जब लाखों तारे चमकते हैं तो लगता है जैसे पूरा आकाश हीरों से भर गया हो।
1: और क्या तुमने कभी इंद्रधनुष को झरने के पास बनते देखा है? पानी की छोटी छोटी बूंदें और सूरज की किरणें मिलकर ऐसा जादू करती है कि

0: नजर ही नहीं हटती।
1: बिल्कुल, लेकिन सबसे सुंदर बात सिर्फ जगह नहीं होती बल्कि वहाँ के लोग भी होते हैं। उनकी मुस्कान, उनकी बोली, उनका खान पान और उनकी परंपराएं हर यात्रा को यादगार बनाती है।
0: तभी तो कहा जाता है, घूमो जगहों को नहीं वहाँ के लोगों के दिलों को भी पहचानो।
1: और कई बार हमारे अपने शहर या गांव के आसपास भी ऐसी खूबसूरत जगहें होती है जिनके बारे में हमें पता ही नहीं होता।
0: इसलिए अगली बार छुट्टी मिले तो सिर्फ मोबाइल की स्क्रीन मत देखिए, अपने आसपास की दुनिया भी देखिए। हो सकता है सबसे सुंदर नजारा आपका इंतजार कर रहा हो।
1: बिल्कुल, पर जाते जाते खूबसूरत शेर कह जाती हूँ जिसे लिखा है जमील मलिक ने। यूँ तो घर ही में सिमट आई है दुनिया सारी, हो मयसर तो कभी घूम के दुनिया देखो।
0: वाह, फिर मीर के शेर के साथ अर्ज किया है कि सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहा, कि सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहा, जिंदगी अगर कुछ रही तो ये जवानी फिर कहा। तो अब श्रोताओं से विदा कहने का समय आ गया है।
1: तो प्यारे श्रोताओं, आप भी हमारे इस बाल किलकारी के कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कविता, कहानी या गीत इस कार्यक्रम में शामिल हो तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9142432658।
0: जी हाँ दोस्तों, हमारा नंबर है 9142432658।
1: बाल किलकारी होगा और मजेदार।
0: मिलते हैं अगले रविवार,
1: जिसमें होगी नई सोच, नया विचार।
0: इस कार्यक्रम को दे ढेरों प्यार।

0: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम बाल किलकारी। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है बाल कार्यक्रम बाल मंडली।
1: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम,
2: जी
1: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
2: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
1: पर ये होगा कैसे?
2: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
1: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो
2: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
1: बस
2: बस
1: समझ गया।
2: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
3: आरबीआई कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: बाल मंडली कार्यक्रम में नन्हे प्यारे बच्चों को रेडियो दीदी गुंजन कुमार का प्यार भरा नमस्कार। सभी बच्चों का बाल मंडली कार्यक्रम में स्वागत है। बच्चों आज हमारे साथ है स्टूडियो में बहुत ही प्यारी अक्सा, छोटा सा प्यारा सा बच्चा आयांश। कैसे हो आयांश?
1: मैं अच्छा हूँ।
0: अच्छा, यहाँ आकर आपको कैसा लग रहा है?
1: अच्छा।
0: अच्छा लग रहा है?
1: हाँ।
0: तो आप अपने दोस्तों को बताइए अपने बारे में।
1: मैं अयान चेतुवर्धन हूँ और मैं 5 ईयर का हूँ। मैं मस्ती करता हूँ, खेलता हूँ, बस मन में यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि रिटोंगिंग चल रहा था।
0: क्या चल रहा था?
1: रिटोंगिंग चलने लग आ रहा था।
0: कैसे हो अक्सा?
1: मैं ठीक हूँ।
0: पहले अपने बारे में अपने दोस्तों को बताइए।
1: मेरा नाम अक्षा है।
0: किस क्लास में पढ़ती है?
1: UKG।
0: और कितने साल की है आप?
1: 5।
0: अक्सा, बारिश का मौसम तो बहुत मजेदार होता है ना?
1: हाँ।
0: हम सबको बारिश में खेलना और ठंडी हवा में मस्ती करना अच्छा लगता है। आपको कैसा लगता है बारिश का मौसम?
1: अच्छा लगता है।
0: और अभी जैसा कि बारिश का मौसम आ रहा है,
1: हाँ।
0: तो आपको अच्छा लगता है बारिश?

0: का मौसम?
1: हाँ, बट थोड़ा तो ठंडी लग जाता है।
0: अच्छा, थोड़ा ठंडी रहती है, लेकिन जब आप स्कूल जाते हैं बारिश के मौसम में,
1: बारिश में मौसम भी जब ताता और रेन कोट नहीं होता है तो हम लोग नहीं जा पाते। जब जब रेन कोट और अम्ब्रेला होता है तो हम लोग जा सकते हैं।
0: हाँ, जब भी हम स्कूल जाएं तो अपने साथ छाता और रेनकोट लेकर जाना चाहिए, है
1: और जब
0: ना?
1: भी हम लोग बाहर जाएंगे तो ताता कुड़ के दाना चाहिए।
0: हाँ, क्योंकि हम भीग जाएंगे तो क्या हो जाएगा?
1: भीग जाएंगे तो बुखार या सर्दी होने लगेगा, फिर घर डालना पड़ेगा।
0: हाँ, तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए?
1: ताता और रेनकोट लेके हम लोग को बारिश पे जाना चाहिए।
0: बिल्कुल सही, आपको तो सब पता है कि हमें कैसे बारिश में रहना
1: हाँ
0: चाहिए, है ना?
1: हाँ
0: और बारिश में आप कागज की नाव चलाए हैं?
1: काकत की नाव।
0: हाँ,
1: मैं तो जब छोटा था तब मैं देख मम्मी चलाती थी और मैं देखते जाता
0: तो
1: था।
0: आप क्या अभी बहुत बड़े हो गए हैं क्या? अच्छा,
1: हाँ, मैं 5 इयर्स का ऊपर तक।
0: तो आप 5 इयर्स के हो गए। अच्छा, आप जब 2 साल के थे तब मम्मी दिखाती थी आपको।
1: हाँ
0: अच्छा, तो अब तो आपको कागज की नाव चलाना आ गया होगा,
1: हाँ
0: चलाते हो ना, और
1: हाँ
0: पानी में छप छप भी करते हो,
1: हाँ
0: लेकिन थोड़ा थोड़ा करना चाहिए ना,
1: हाँ
0: ज्यादा नहीं।
1: दादा नहीं, क्योंकि दादा करोगे तो तब कुछ बिन जाएगा। ताता डेड कोट। मैं आपको एक कविता सुना रहा हूँ।
0: सुनाइए।
1: बारिश आए तम तम तम, लेकर दादा निकले हम। पैर पिछला गिर गए हम, पर दादा नीते हम।
0: है ना?
1: हाँ
0: तो पानी में ज्यादा छप छप करने से क्या होता है?
1: जराम से गिर जाते हैं, बदक पे भी लग जाता है।
0: हाँ, लेकिन लेकिन होंगे पानी में ठीक से चलना चाहिए, है ना,
1: हाँ
0: बारिश के मौसम में।
1: हाँ जूता भी चेंज करके डालना चाहिए।
0: हाँ, और कपड़ा जब भीग जाते हैं तो तुरंत खोल लेके सूखा कपड़ा पहनना चाहिए।
1: हाँ तुरंत दूधा अंदर डाल गड़े पे, फिर
0: हाँ
1: उसके बाद चेंज करके दूधला कपड़ा पहन के आओ।
0: हाँ साफ सुथरा सूखा कपड़ा, और बाल को अच्छे से पोंछ लेना चाहिए।
1: हाँ जितने बारिश फिर से अपना मिट्टी या गंदा नहीं लग पाए।
0: हाँ बच्चों, बारिश का मौसम आ गया है, और बारिश का मौसम साल का बहुत ही सुहावना और आनंददायक मौसम होता है। इस मौसम में आसमान में बादल छा जाते हैं और वर्षा होती है। बारिश से धरती हरी भरी हो जाती है, पेड़ पौधों को नया जीवन मिलता है। बारिश का पानी नदियों, तालाबों और कुओं को भरता है। यह पानी खेती के लिए भी बहुत जरूरी होता है। किसान बारिश की मदद से फसलें उगाते हैं, इसलिए बारिश को किसानों का मित्र भी कहा जाता है। बच्चों, बारिश में कागज की नाव चलाना अच्छा लगता है। अक्सर आप कागज की नाव चलाई है?
1: नहीं,
0: नहीं चलाई है? अरे, बच्चे लोग तो खूब चलाते हैं। लेकिन बच्चों, बारिश का मौसम में हमें कुछ सावधानियां भी रखनी चाहिए। बच्चों, बारिश में रास्ते फिसलन भरे हो जाते हैं, पानी भरा होता है, ऐसे में हमें दौड़ना नहीं चाहिए, ध्यान से चलना चाहिए ताकि हम गिर ना जाए या कहीं चोट नहीं लग जाए, है ना अक्सा?
1: दीदी
0: अगर आप बारिश में भीग भी जाते हैं तो घर आकर तुरंत गीले कपड़े उतार दीजिए और सूखे और साफ कपड़े पहन लीजिए। बच्चों, इस मौसम में हमें स्वच्छता यानी साफ सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बारिश में बीमारियां भी जल्दी फैलती है। हमें गंदे पानी में नहीं खेलना चाहिए। घर आने के बाद अपने हाथ पैर साबुन से जरूर धोना चाहिए, है ना अक्सा?
1: दी
0: बच्चों, बारिश में भीगने से सर्दी खांसी हो सकती है, तो जब बारिश होती है तो छाता या रेनकोट पहनकर बाहर जाना चाहिए। आप जाती हैं रेनकोट या छाता लेकर?
1: हाँ
0: आप अगर स्कूल जा रही हैं और बारिश हो रही है तो क्या लेकर जाती हैं?
1: अम्ब्रेला एंड रेड कोट।
0: हाँ, और ये हमें क्या चीज से बचाती है?
1: बारिश से
0: हाँ, और हमें भीगने से बचाती है ना? इसलिए छतरी और रेनकोट का उपयोग किया जाता है। छतरी हमें बारिश की बूंदों से बचाती है, इसे हाथ में पकड़कर चलने से हमारे सिर और कपड़े नहीं भीगते हैं,
1: दी।
0: हमारा पूरा शरीर बारिश में सुरक्षित रहता है। रेनकोट पहनकर बच्चे आराम से स्कूल जा सकते हैं। बारिश के मौसम से बाहर जाते समय छतरी या रेनकोट साथ में रखना चाहिए, इससे हम बीमार होने से बच सकते हैं और आराम से अपना हम काम कर सकते हैं। बच्चों, बारिश का मौसम मजेदार है, लेकिन हम थोड़ी सी सावधानी रखें तो ये मौसम और भी अच्छा बन जाता है ना अक्सा?
1: जी दीदी।

0: अक्सा, आप अपने दोस्तों को क्या सुना रही हैं?
1: मेरी बिल्ली,
0: कविता सुना रही हैं? सुनाइए।
1: मेरी बिल्ली काली पीली वो हो गई पानी से गीली, गीली होकर लगी कांपने, अच्छी अच्छी लगी चीखने, मैं फिर बोली कुछ तो सीख बिना रुमाल के।

0: ना चीक।
1: बिना रुमाल के कभी ना छींक। हाँ, जब सर्दी खांसी लग जाती है तो हमें रुमाल अपने साथ रखना चाहिए, है ना। और बिल्ली बारिश में भीग जाती है तो उसको सर्दी खांसी लग जाती है। अयाश, यहाँ अपने कुछ दोस्तों को सुनाओगे कविता?
0: हाँ,
1: सुनाओ,
0: मैं आपको एक कविता सुना रहा हूँ।
1: सुनाइए।
0: ठीक समय पे उतो नहाओ, ठीक समय पे खाना खाओ, ठीक समय पे पढ़ने जाओ, ठीक समय पे सोने जाओ, तो फिर बड़ाता दिल आ जाएगा।
1: अच्छा, ठीक समय पे सोने उठने से दिल बड़ा हो जाता है। आप समय
0: हाँ
1: पे उठते हैं,
0: हाँ
1: कितने बजे उठते हैं?
0: 7:30।
1: 7:30 बजे।
0: हाँ,
1: अच्छा, और कितने बजे सोते हैं?
0: मैं तो 9:30 पे सोता हूँ।
1: 9:30 बजे आप सो जाते हैं।
0: हाँ,
1: अच्छा, और पढ़ाई कितने बजे आप करते हैं?
0: पढ़ाई तो मैं शाम को मैं 6 बजे।
1: अच्छा, अक्सा आपकी क्या क्या हॉबी है बताइए अपने दोस्तों को, आपको क्या करना अच्छा लगता है?
0: ड्राइंग, क्राफ्ट,
1: आपने अभी गर्मी की छुट्टी अभी कुछ दिन पहले बीता ना, आपने क्या क्या सीखा?
0: क्ले,
1: क्ले से आप क्या क्या बनाई?
0: बिल्ली,
1: हाँ,
0: रेनबो, यूनिकॉर्न।
1: यूनिकॉर्न। अच्छा, आपको अच्छा लगा बनाने में?
0: जी।
1: बच्चों, हर बच्चे में कोई ना कोई हॉबी, शौक या हुनर जरूर होती है। किसी को चित्र बनाना पसंद होता है, किसी को गाना गाना, डांस करना, स्विमिंग करना, क्रिकेट खेलना, या कहानी पढ़ना, या नई चीजें बनाना अच्छा लगता है। अभी आपने गर्मी की छुट्टी में क्या सीखी है अभी आपने बताया ना अक्सा, इसलिए बच्चों अपने हॉबी और हुनर को बढ़ाने के लिए नियमित अभ्यास करना जरूरी है। जितना अधिक अभ्यास करेंगे उतना ही बेहतर बनेंगे। नई चीजें सीखने की कोशिश करनी चाहिए, अगर गलती भी हो रहा है तो प्रयास करते रहना चाहिए। यदि आपको चित्रकारी पसंद है तो रोज थोड़ा थोड़ा चित्र बनाइए। यदि गाना पसंद है तो रोज अभ्यास कीजिए। बच्चों, किताबें पढ़ना, अच्छे कार्यक्रम देखना और प्रतियोगिताओं में भाग लेना भी हुनर को निखारने का एक अच्छा तरीका है। सबसे जरूरी बात बच्चों, अपने शौक खुशी के साथ करना चाहिए, दूसरों से तुलना नहीं करनी चाहिए। जिसमें आपकी रुचि है वो काम कीजिए। अपने माता पिता, शिक्षकों और दोस्तों से सीखने की कोशिश कीजिए। याद रखिए बच्चों, हर बड़ा कलाकार, खिलाड़ी और वैज्ञानिक कभी एक छोटा बच्चा भी था जिसने अपने शौक और हुनर को मेहनत से निखारा था। आप भी अपने मेहनत, धैर्य और प्रयास से अपने हॉबी हुनर को निखार सकते हैं। अक्सा, अभी आप अपने दोस्तों को क्या सुना रही हैं?
0: सुबह हुई तो मुर्गा बोला कुकड़ू कू भाई, कुकड़ू कू, कुकड़ू कू भाई, कुकड़ू कू, सुबह हुई है सोते क्यों। पेड़ों से चिड़िया उड़ बोली, ची ची ची भाई, ची ची ची, ची ची ची भाई, ची ची ची, शुरू करो अपना काम सभी।
1: अरे वाह, ये तो बहुत ही प्यारी कविता आपने सुनाई अक्सा। मुर्गा बोला कुकरू कू, है ना। जब सुबह उठते हैं तो मुर्गा पहले से बोलता है कुकरू कू, उठ जाओ सुबह हो गई, है ना।
0: हाँ,
1: और चिड़िया कैसे बोलती है?
0: ची ची ची,
1: तो और कोई कविता सुनाओ।
0: तंदा।

0: मनाएंगे, दूध मिलाई खाएंगे, नाई मत्ती आया बता बता के तालिया।
1: अरे वाह, ये तो बहुत प्यारा बहुत सुंदर कविता आपने सुनाया आयांश। तो आयांश रूठ भी जाता है।
0: हाँ, वो
1: अच्छा
0: मम्मी ने बोला था।
1: अच्छा ये आपको ये कविता मम्मी ने सिखाया है।
0: हाँ
1: अच्छा जी। अक्सा आप नेल्सन मंडेला जी के बारे में जानती हैं?
0: नहीं।
1: नहीं जानती, कोई बात नहीं, मैं आपको बताती हूँ। बच्चों, नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के एक महान नेता थे। उनका जन्म 18 जुलाई 1918 को हुआ था। बच्चों, नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 18 जुलाई को मनाया जाता है और यह दिन उनकी याद में मनाया जाता है। उस समय वहाँ के लोगों के साथ उनके रंग भेद के आधार पर भेदभाव किया जाता था। अश्वेत लोगों को कई अधिकार नहीं दिए जाते थे। नेल्सन मंडेला ने इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई और सभी लोगों को समान अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष किया। बच्चों, अपने देश और लोगों के लिए काम कर

0: के कारण उन्हें 27 साल तक जेल में रहना पड़ा। जेल में रहने के बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वे हमेशा शांति और समानता की बात करते रहे। जब वे जेल से बाहर आए, तब उन्होंने लोगों को आपस में बुलाकर रहने का संदेश दिया। बाद में वे दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। बच्चों, नेल्सन मंडेला का मानना था कि सभी इंसान बराबर हैं। हमें किसी के साथ रंग, भाषा, धर्म या गरीबी के कारण भेदभाव नहीं करना चाहिए। वे शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण मानते थे। उनका कहना था कि शिक्षा से जीवन और समाज दोनों को बेहतर बनाया जा सकता है। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस हमें यह याद दिलाता है कि एक व्यक्ति भी समाज और दुनिया में बड़ा बदलाव ला सकता है। इस दिवस का उद्देश्य लोगों को मानवता, समानता, शांति और सेवा की भावना के प्रति जागरूक करना है। इस दिन लोगों को कम से कम 67 मिनट समाज की भलाई देने के लिए कहा जाता है। यह उनके समाज सेवा के 67 वर्षों की याद में किया जाता है। बच्चों, हमें भी इस दिन से सीख लेनी चाहिए। हम सभी इंसान हैं और सभी को समान और प्यार पाने का अधिकार है। हमें अपने दोस्तों और आसपास के लोगों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ना ही किसी को अपने से कम समझना चाहिए। स्कूल, खेल के मैदान में और घर में सभी बच्चों के साथ मिलकर रहना चाहिए। यदि हम किसी के साथ भेदभाव करते हैं तो उसे दुख हो सकता है। इसलिए हमें हमेशा दया, प्रेम, सम्मान और भाईचारे की भावना रखनी चाहिए। बच्चों को सीख, जैसे कि सभी से प्यार और सम्मान से बात कीजिए, किसी का मजाक ना उड़ाइए, सभी को बराबर समझिए, जरूरत पड़ने पर दूसरों की मदद कीजिए और अच्छे दोस्त बनिए और सबको साथ लेकर चलिए, है ना अक्सा?
1: जी दीदी,
0: बच्चों, नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस हमें प्रेम, शांति और समानता और सेवा का संदेश देता है। नेल्सन मंडेला का जीवन हमें सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। यदि हम अच्छे काम करें और सभी के साथ सम्मान से पेश आएं, तो हम एक बेहतर समाज बना सकते हैं। बच्चों, सभी इंसानों का सम्मान करें, भेदभाव ना करें और हमेशा दूसरों की मदद के लिए आगे बढ़ें। और हाँ बच्चों, हमें आशावादी भी बनना चाहिए। अगर कभी परीक्षा में कम अंक आ जाए, खेल में हार जाए या कोई काम ठीक से ना हो, तो दुखी होकर हार तो नहीं मानती है ना आप अक्सा?
1: जी
0: अगर
1: दीदी,
0: आपके कम नंबर आ जाते हैं या हार जाती हैं, तो आप उदास तो नहीं हो जाती?
1: नहीं
0: नहीं ना, हमें पॉजिटिव रहना चाहिए ना,
1: जी दीदी,
0: है ना? कोशिश करते रहना चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए। बिल्कुल, हमें हमेशा आशावादी बनकर, यानी हमेशा उम्मीद बनाए रखना और यह सोचना कि मैं कोशिश करूंगा तो जरूर सीखूंगा और आगे बढ़ूंगी। हमें फिर से मेहनत करनी चाहिए और सोचना चाहिए कि अगली बार मैं और अच्छा करूंगा। अक्सा, आशावादी बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए?
1: अच्छी बातें करना चाहिए, अपनी मेहनत पे भरोसा रखना चाहिए, गलतियों से सीख लेनी चाहिए, हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, हर दिन मुस्कुराते रहना चाहिए।
0: हाँ, अरे वाह, अक्सा ने बहुत अच्छी बातें बताई। तो याद रखिए बच्चों, सूरज हर शाम ढलता है लेकिन अगली सुबह फिर चमकता है। उसी तरह से जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन हिम्मत और सकारात्मक सोच से हम आगे बढ़ सकते हैं। मैं कर सकता हूँ, मैं सीख सकता हूँ और मैं आगे बढ़ सकता हूँ, यह एक आशावादी बच्चे की पहचान होती है ना?
1: जी,
0: और आप इमोजी आप देखी है, क्या होता है इमोजी,
1: स्माइली,
0: है ना? स्माइल होता है ना, और उसमें कई तरह के इमोजी होते हैं, आपने देखा होगा मोबाइल में,
1: सैड,
0: है ना? आप भेजती है ना जो चीज अच्छा लगता है, हंसते हुए वाला इमोजी, अगर आप गुस्सा है तो गुस्सा वाला इमोजी भेजती है ना?
1: हाँ,
0: और आप वो देखे हैं, इमोजी बना रहता है,
1: कौन थे मोदी?
0: आप देखते हैं उन्हें मोबाइल में, जिसके आंख लाल होते हैं, वो स्माइलिंग करता है, हंसने वाला इमोजी होता है। जब मोबाइल चलाते हो तो उसमें देखे हो इमोजी, उसमें सेंड करते हैं ना, हंसी वाला इमोजी, रोने वाला इमोजी, तुम देखे हो?
1: हाँ, और भूत वाला इमोजी और डरने वाला इमोजी,
0: अच्छा, उसमें डरने वाला भी इमोजी रहता है ना, और
1: हाँ
0: गुस्सा करने वाला भी इमोजी रहता है ना,
1: हाँ
0: तो कैसा लगता है?
1: वो तो फनी लगता है।
0: फनी लगता है।
1: हाँ
0: अच्छा, और हंसी भी आता है,
1: हाथी, हाँ
0: अच्छा, और तुम मजाक भी करते हो क्या?
1: कभी कभी तो मैं पापा ने भी

0: डाक करता हूँ, गुरु मामा से भी।
1: अच्छा, मामा जी से भी कहते हो?
0: हाँ
1: अच्छा, ये तो बहुत अच्छा बात है। हंसना चाहिए थोड़ा सा,
0: हाँ
1: है ना? कैसे
0: हाँ
1: हंसते हो, जोर से कैसे हंसते हो? चलो, बहुत अच्छा है, स्माइल है तुम्हारा, है ना?
0: हाँ
1: तो अयांस, आपको स्टोरी आता है?
0: हाँ
1: कहानी आप अपने दोस्तों को सुनाएंगे?
0: हाँ
1: सुनाइए।
0: मैं तो सुनाऊंगा, एक कछुआ और एक रैबिट।
1: अच्छा, आप कछुआ और रैबिट की स्टोरी सुनाएंगे?
0: हाँ,
1: सुनाइए अपने दोस्तों को।
0: एक दिन रैबिट और कछुआ रेत लगाने जा रहा था। रेत लगा रहा था तो रैबिट तो कूद के ही चला गया, बट कछुआ का तो पैर दबते धीरे चला जा रहा था। तो फिर उसके बाद दबी रैबिट ने सोचा कि मैं तो जाता हूँ तो कतवा तो नहीं आएगा, हम लोग मैं तो के तेज दबा के जीत जाऊंगा, ऐसा सोचा तो सो गया। फिर कतवा आके अपना रैबिट के पास आया, फिर आगे बढ़ गया तो कतवा जीता। वो तो रैबिट तो रेत के पास ना ना, तो वो जल्दी जीत गया तो रैबिट हार गया। तो वो रेत पे ये कहानियां इतने होता है, तोना बाद में चाहिए, रेत रेत या खाना पे डायरेक्ट नहीं तोना चाहिए
1: हाँ, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि
0: कि
1: हमें काम करते वक्त सोना नहीं चाहिए,
0: हाँ
1: है
0: काम
1: ना?
0: करते बाद तोना नहीं चाहिए।
1: हाँ, और किसी को भी कमजोर नहीं समझना
0: हाँ
1: चाहिए।
0: हाँ
1: कछुआ धीरे धीरे चल रहा है तो
0: हाँ
1: वो तो जल्दी पहुंच नहीं पाएगा,
0: हाँ
1: और मैं तो तेज दौड़ता हूँ, मैं तो
0: हाँ
1: जल्दी पहुंच जाऊंगा।
0: हाँ देता वो एक दयान है और मैं हूँ, और उस पे रेत हो गया। दयान तो मैं तेज दौड़ा, तो दयान ने तो था कि मैं कमजोर हूँ, मैं तो तेज दौड़ नहीं दौड़ता हूँ, ऐसा वैसा हो बोल रहा। तो बस वो तो था कि मैं तो तेज दौड़ूंगा वैसा, और लेकिन अयान तेज दौड़ सकता है, बट उनने गलत तोता तो मैं जीता वैसा।
1: अच्छा, तुम्हारा दोस्त भी तुम्हारे साथ दौड़ लगाया था और उसने सोचा कि अयांस जीत नहीं सकता,
0: हाँ
1: और अब वो मतलब ये सोच के, लेकिन अयांस ने तो तेज दौड़ लगाया।
0: हाँ बट मैं एक दिन ईवान से भी तेज दौड़ सका, क्योंकि ईवान तो बहुत बहुत तेज दौड़ता है, तो एक दिन मैं ईवान से भी पास कर लिया।
1: अरे वाह, और आप
0: और
1: जीत गए!
0: हाँ
1: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आपने खूब अच्छे से खाना खाते हैं होंगे फिर?
0: हाँ
1: फ्रूट्स, वेजिटेबल्स आपको पसंद है?
0: हाँ
1: क्या क्या पसंद है आपको खाने में?
0: मुझे तो टमाटो पसंद है, और मुझे तो एक आलू पसंद है, मुझे तो एक टमाटर पसंद
1: और
0: था,
1: फ्रूट्स में क्या पसंद है?
0: फ्रूट में एप्पल, ग्रेप्स और बनाना, ऑरेंज।
1: हाँ, ये सब खाने से क्या होता है हमारा शरीर?
0: हमारा शरीर ठीक लौते है और शरीर हमारे तेज दौड़ते हैं,
1: हम लोग स्ट्रांग बनते हैं।
0: स्ट्रॉन्ग भी बन सकते हैं।
1: हाँ, तो बच्चों, इमोजी छोटे छोटे चित्र और चिन्ह होते हैं बच्चों, जिनका उपयोग हम अपनी भावनाओं और विचारों को आसानी से व्यक्त करने के लिए करते हैं। आजकल मोबाइल, कंप्यूटर, सोशल मीडिया पर इमोजी का उपयोग होता है। जब हम खुश होते हैं तो इमोजी भेज देते हैं, अगर हमें हंसी आती है तो इमोजी का उपयोग करते हैं। इसी तरह से प्यार, शाबाशी या खुशी दिखाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और जैसे बर्थडे का है, थम दिखाना है, तो उसमें भी इमोजी भेजते हैं ना किसी को, अपने
0: दी
1: दोस्तों को। किसी से प्यार से दिखाना है, दिल से, तो उसमें हार्ट भेजते हैं ना, हार्ट रेड कलर का जो होता है।
0: दी
1: बच्चों, इमोजी संदेशों को अधिक रोचक और समझने में आसान बनाते हैं। कभी-कभी जो बात शब्दों में कहना कठिन होता है, उसे एक इमोजी आसानी से बता देता है। लेकिन बच्चों, इमोजी का उपयोग सोच समझ कर करना चाहिए। हमेशा अच्छे और सम्मानजनक इमोजी का उपयोग कीजिए। किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले संदेश नहीं भेजिए, और विनम्र तरीके से उपयोग कीजिए, है ना? कभी कभी गलत तरीके से नहीं भेजना चाहिए ना, किसी का गुस्सा या फिर डरावना वाला जो इमोजी होता है, देखिए वो ना, छोटे छोटे होते हैं बने हुए,
0: हाँ
1: उसे नहीं भेजना चाहिए। और आप अपने दोस्त से कुछ और कुछ कहना चाहते हैं?
0: हाँ
1: बताओ क्या कहना है।
0: मैं 5 ईयर का हूँ, बट मेरा बर्थडे 15 ईयर का होता है, बहुत दिन बाद। और
1: दोस्त है
0: एक
1: तुम्हारे?
0: हाँ
1: क्या क्या नाम है दोस्तों का?
0: मीत और दयान,
1: और
0: अनविका का नाम परी भी बोल सकते हैं,
1: अच्छा, परी भी बोल सकते हैं
0: और
1: वो।
0: तानवी, और क्या था तानवी के बाद
1: चलिए, बढ़िया,
0: दयन,
1: अच्छा है। वो
0: दयन
1: आपके फास्ट फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है।
0: हाँ, और वो था एक और था आदि मामा, वो मेरा फ्रेंड था और वो भी बड़ा

0: अच्छा अच्छा
1: एक और
0: चलिए
1: टीट।
0: ठीक ठीक बहुत अच्छा लगा आपको
1: हाँ
0: आज यहाँ आकर, कैसा लगा?
1: दी दी दी अच्छा।
0: तो बच्चों अब समय हो गया है यहाँ से जाने का, तो अपना ध्यान रखिए, खूब पढ़िए, खूब मस्ती कीजिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अब गुंजन दीदी अब आपसे विदा चाहती है। जय हिंद बच्चों।

अभी आप सुन रहे थे बाल कार्यक्रम बाल मंडली। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।

ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश।

0: हेलो फरमाइश।
1: पुरीन कार्यक्रम हेलो फरमाइश में आप सभी श्रोता का स्वागत है। मैं आपका रेडियो दोस्त संजय किशोर आपके कॉल्स लेने के लिए हाजिर हूँ। आपके कॉल्स आने लगे हैं, लेते हैं आपका ये कॉल। जी नमस्कार, स्वागत करते हैं कार्यक्रम में आपका। कौन कहाँ से?
2: नारायणपुर से बोल रहे हैं सर। हाँ, मेरा नाम है संतेश्वर कुमार शर्मा।
1: कुछ जानकारी दीजिए अपने बारे में।
2: हाँ सर, हम लोग दुकान चलाते हैं।
1: अच्छा, किस तरह की दुकान है आपकी?
2: टू कॉपी करने का, ऑनलाइन करने का।
1: अच्छा,
2: प्लस में सिंगार का है।
1: अच्छा अच्छा जी, बढ़िया बढ़िया।
2: बहुत सारा गर्मी है।
1: गर्मी तो है, तो गर्मी में कैसे बच रहे हैं आप?
2: कहूँ जाने से पहले पानी पी कर निकलते हैं सर।
1: अच्छा, और खाना वाना भी खाते हैं?
2: जी सर, जी सर, ताजा खाना खाते हैं।
1: ठीक है, चलिए
2: अपना भाई का नाम ले सकते हैं?
1: ले लीजिए।
2: जी सर, लोकेश्वर नंदेश्वर वाल्मीकि
1: जी,
2: नंदराज।
1: इनकी फरमाइश पर कौन सा गाना सुनना है आपको?
2: आया साउंड झूम कर।

0: हेलो, प्रणाम सर।
1: जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में।
0: जी सर, संजय बाबू है ना?
1: हाँ हैं।
0: हाँ, तो प्रणाम सर। हमें रामपुर बरहरा भोजपुर बिहार से बोल रहे हैं,
1: स्वागत
0: त्रिवरण प्रसाद।
1: जी, प्रसाद जी बहुत बहुत स्वागत है आपका।
0: जी, हमारे साथ एक भाई है शिवपाल प्रसाद, एक पत्नी है पिंकी देवी, एक राजकुमारी देवी।

0: समस्या है, मेरा मेरा और सब सवाल सब रेडियो बराबर रेडियो का पुराना श्रोता हूँ, मैं 40 साल से रेडियो सुन रहा हूँ सर।
1: जी बहुत
0: जी
1: बहुत बढ़िया, अच्छा लगा।
0: जी तो आप हमारा बारे में कुछ पूछिए सर, आपसे बात होकर के पहला बार कॉल लगा है सर।
1: पहली बार आपसे
0: बड़ी मन खुश है, बड़ी मन खुश है आपका शैली जो है बोलने का आपका बड़ा पसंद है। हम 11 बजे से लेके 12 बजे तक हेलो फरमाइश हमेशा सुनते हैं।
1: धन्यवाद, आपको ये कार्यक्रम अच्छा लग रहा
0: जी,
1: है। हाँ
0: जी, और खास करके आपका सर बोली इतना शैली जो मन खुश हो जाता है, चार चांद लग जाता है सर।
1: जी धन्यवाद, आपके पसंद के कारण ही हम लोग जो है खुश होते हैं कि आपको अच्छा लगता है,
0: जी
1: तो अच्छा कार्यक्रम बना।
0: हाँ, हमारे साथ में एक भाई है श्रीपाल प्रसाद, पिंकी देवी पतो है, एक राजकुमारी देवी पतो है, बैठ के चारों आदमी आपके मन किया कि फरमाइश आज जरूर लगाए संजय भैया के पास में। एक गाना है लैला मजनू के, मेरे दीवाने को कोई पत्थर ना मारे, ऐसे एक गाना है।

0: हेलो फरमाइश
1: जी नमस्कार, स्वागत करते हैं कार्यक्रम में आपका।
0: मैं जमशेदपुर झारखंड से प्रमोद सिन्हा बोल रहा हूँ।
1: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। आप बहुत दूर से बोल रहे हैं, झारखंड के हमारे श्रोता हैं। कुछ बताइए अपने बारे में।
0: मैं जमशेदपुर से बिलोंग करता हूँ।
1: अच्छा जी,
0: वैसे तो मैं बिहार का हूँ, भोजपुर का।
1: अच्छा, बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले
0: जी,
1: हैं, फिलहाल जमशेदपुर में हैं।
0: और यहाँ मैं सर्विस करता हूँ।
1: अच्छा जी
0: में
1: जी तो रेडियो के शौक के बारे में कुछ बताइए, आप हमारे श्रोता हैं।
0: आप कह रहे पर मैं कभी कभी सुनता हूँ, सुन नहीं पाता हूँ।
1: आजकल तो मोबाइल ऐप पर उपलब्ध है, आप सुन सकते हैं कहीं
0: हाँ
1: भी
0: जरूर
1: रहें।
0: सुनने की कोशिश करूँगा।
1: जी, तो गीत के संगीत के दुनिया में आप रुचि रखते हैं बता रहे थे, कुछ बताइए विशेष
0: हाँ
1: कौन
0: मेरे
1: कौन।
0: लिए गाना सुनाएंगे
1: हाँ जी
0: जो मुझे बहुत प्रिय है गाना।
1: जी कौन सा गाना आपको अच्छा लगता है, ज़्यादा सुनते हैं बताइए।
0: लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में फिल्म रोटी कपड़ा और मकान के गाना है, और इसके जो इस गाने पे लिखा है संतोष आनंद ने लिखा है, म्यूजिक लक्ष्मीकांत ने दिया है,
1: अच्छा जी, गाना कौन सा।
0: और गीत का बोल है मैं ना भूलूंगा।
1: अच्छा,
0: ये गाना मुझे बेहद पसंद है और आपसे मैं आग्रह करूंगा आप उसे सुनाएं।
1: बिल्कुल, अगर आप गुनगुनाना चाहते हो तो गुनगुना सकते हैं।

0: बिल्कुल ठीक है।
1: क्या हो रहा है इन दिनों?
0: यार अभी तो खेती बाड़ी का काम चल रहा है, धान का रोपनी चल रहा है।
1: रोपनी हो गया?
0: जी रोप चल रहा है। जी
1: अच्छा अच्छा चल रहा है काम।
0: सर।
1: बारिश हो रही है आपकी तरफ?
0: हेलो।
1: बारिश हो रही है आपकी तरफ?
0: जी नहीं, अभी 10 रोज से तो बारिश नहीं हुई है।
1: अच्छा, एक बार बारिश हुई थी पहले। अच्छा
0: जी इससे पहले बारिश हुई थी।
1: जी, चलिए फिर और बताइए विशेष।
0: जी सर, एक गाना सुनना था, सावन को आने दो फिल्म का है, तुम्हें जीतों में डालूंगा सावन को आने दो।

0: जी नमस्कार, स्वागत करते हैं कार्यक्रम में आपका।
1: जी नमस्कार सर।
0: जी कौन सा, आप कहाँ से बोल रहे हैं?
1: सर मैं रविंदर कुमार रवि, गांव कमरगामा, जिला मधेपुरा से बोल रहा हूँ सर।
0: जी रवि जी, क्या हाल चाल है बताइए।

0: बंद कर दिया, इधर आ गए। हाँ, सोलन गोपालपुर से अशोक कुमार बोल रहे हैं।
1: हाँ जी अशोक कुमार जी, बताइए अपने बारे में जानकारी दीजिए।
0: हाँ, हमारा जेवर की दुकान है संपत बाजार में।
1: अच्छा जी।
0: हाँ, सोनारी दुकान। आपका नियमित होता है, प्रणाम होता है, सभी प्रणाम सुनते रहते हैं। सबसे ज्यादा कुमुद खौरी जी का जो मंगलवार के दिन होता है।

0: गुजर बिहार और शाम तक 6 बजे चौपाल।
1: तो ये हेलो फरमाइश नहीं पसंद करते हैं?
0: हेलो फरमाइश पसंद करते हैं
1: जी।
0: हाँ, ये हेलो फरमाइश गाना सुनना चाहते हैं। संत गणेश का, जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम के गंगा बहाते चलो।

0: जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में आपका।
1: हेलो नमस्कार, हम ठीक है सर, अपना बताइए सर।
0: हम एकदम दुरुस्त हैं
1: सर, हम बोल रहे हैं ताजिर अली बोल रहे हैं, नाहर मंतला जिला मधुबनी बिहार से बात कर रहा हूँ सर। आप तहसील का सुना दीजिए ना, ये दिन महीने साल गुजरते जाएंगे, देखेंगे देख लेना।

0: हेलो प्रोफेसर सर,
1: नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में आपका।
0: नमस्कार जी। हम सुपौल बाजार ब्यूरो दरभंगा सतरण सहनी बोल रहा हूँ सर।
1: जी सहनी जी, क्या हाल चाल है, बताइए।
0: ठीक है सर। क्या सर, ऐसे बैठे हुए हैं सर। जी सर, गाना सुनवाइए सर। आज ज्वार भाटा के सुना दीजिए, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। ये समझो और

0: हेलो फरमाइश, नमस्कार सर।
1: जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में, बोलिए कौन सा आप कहाँ से।
0: लाल पोखर नकलमर दरभंगा से बोल रहा हूँ, मोहम्मद कलीम।
1: जी कलीम जी बोलिए, क्या हाल चाल है, कैसे हैं।
0: बहुत अच्छा सर, अपना अपना बताइए सर।
1: बस चल रहा है, ठीक ठाक है, मौसम का आनंद ले रहे हैं, हवाएं चल रही हैं, अच्छा है।
0: जी
1: और आपके तरफ में बारिश हुई है क्या।
0: जी नहीं, हल्का फल्का हुआ है रात में बारिश।
1: अच्छा जी,
0: बगावत सलीम का गाना सुना, मेरे महबूब कीजिए सलाम।

0: जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में आपका।
1: नमस्कार सर,
0: जी कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: हम रोशन कुमार बोल रहे हैं कानपुर से।
0: जी रोशन जी कहाँ से?
1: जिला समस्तीपुर थाना खानपुर वार्ड नंबर 11 मधुपुर से हम बोल रहे हैं सर।
0: हाँ जी जी जी कहिए, क्या हालचाल है?
1: हालचाल तो यहाँ ठीक है सर, अपना सुनाइए।
0: जी बढ़िया, बहुत अच्छे, सब ठीक ठाक है।
1: तो हम अभी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं सर, अभी हम 9th क्लास में पढ़ते हैं।
0: जी और रेडियो कब सुनते हैं?
1: रेडियो तो हम बहुत दिन से सुन रहे सर, जब हम 8वें साल में थे तभी से हम रेडियो सुन रहे।
0: अरे वाह
1: सर, सुने दो तीन बार सुने तो हमारा भी इच्छा जाहिर हुआ कि हम ऊपर से देखते हैं।
0: बहुत अच्छा, तो आपको ये कार्यक्रम ठीक लगा?
1: बहुत ही अच्छा लगता है सर, जितना तारीफ पाए उतना कम।
0: अच्छा अपनी पसंद बताइए, क्या सुनना चाहेंगे आप?
1: हम जीत सिनेमा का मूवी सुनना चाहते हैं, कौन सुना दीजिए सिनेमा का।
0: ठीक है जी,

0: आज के लिए बस इतना ही। यदि आप इस कार्यक्रम में हिस्सा लेना चाहते हो तो हमें प्रत्येक बुधवार को दिन के 1 बजे से 1:30 के बीच कॉल कीजिए। और अब हमारे फोन नंबर नोट कीजिए, 0612-22-22500। फोन नंबर एक बार फिर से बता रहे हैं, 0612-22-22500। और अब कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता विभूति शंकर के साथ मुझे यानी अपने रेडियो दोस्त संजय किशोर को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश,
2: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश।

हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। बिहार का लोक संगीत कार्यक्रम में प्रस्तुत है मैथिली लोकगीत। कलाकार हैं मीना ठाकुर और श्याम मोहन मिश्र। पहले सुनिए मीना ठाकुर से विवाह गीत।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

बिहार का लोक संगीत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे मैथिली लोकगीत। कलाकार थे मीना ठाकुर और श्याम मोहन मिश्र।

0: हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं, प्रस्तुत है रूपक, मैं वैशाली हूं।
1: आइए सुनते हैं विशेष रूपक, मैं वैशाली हूं। इसके लेखक हैं डॉक्टर शंकर प्रसाद और प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर किशोर सिन्हा।

वैशाली हूं। आज तेज आंधी में एक बार फिर मुझ पर पड़ी मिट्टी को झकझोरा है। आज फिर अतीत की यादें ताजा हो आई है। ये आंधियां कभी भी सोने नहीं देती। जब भी चैन से आंखें मूंदता हूं, आंधियां जगा देती हैं।

काल चक्र घूमता रहा, समय की धूल उड़ती रही, गिरती रही, तपती रही, अपने सीने में अनगिनत साक्ष्यों को छुपाए मैं समय की गति निहारता रहा। आज पूरे विश्व में न जाने कितनी सभ्यताएं भूली भली और मिट्टी में दफन हो गई। मैंने भी कितने युग देखे, कितनी सभ्यताएं देखी। आज एक बार फिर अतीत के पन्ने फड़फड़ा उठते हैं।

0: अरे मेरे प्रांगण में कुछ पर्यटक आए हैं और उनके साथ आई है मुझे चाहने वाली सूत्रधार, जो मेरे अतीत और वर्तमान को सामने रखकर मेरी महत्ता प्रतिपादित करती है। वो पर्यटकों को सुना रही है।
1: वैशाली में उत्खनन का कार्य अभी भी चल रहा है। ये देखिए बसाड़ है। राजा विशाल का गढ़ से 1 मील दक्षिण एक मिट्टी की दीवार के अवशेष कोसा गांव से लेकर धरहरा गांव तक पाए जाते हैं। ये प्राचीन वैशाली नगरी के प्राकार के अवशेष मालूम पड़ते हैं।
0: सूत्रधार ने तो खंडरों के बारे में बताना प्रारंभ किया, लेकिन मेरा अतीत बहुत पुराना है। इसे तो और दूर जाना चाहिए और गहराई में बात को समझाना होगा।
2: वाल्मीकि रामायण में भी तो वैशाली का वर्णन है।
0: अरे इसने कैसे मेरे मन की बात सुन ली? आप सूत्रधार को बताना ही होगा।
1: वाल्मीकि रामायण में वैशाली वैशाला या उत्तमपुरी के नाम से वर्णित है। पूर्व काल में महाराज इक्ष्वाकु के एक परम धर्मात्मा पुत्र थे जो विशाल नाम से प्रसिद्ध हुए। उनका जन्म अलम्बुषा के गर्भ से हुआ था। उन्होंने इस स्थान पर विशाला नाम की पुरी बसाई थी। इक्ष्वाकोस्तु नरव्याक्र पुनः परम धार्मिकः अलम्बुषाया मुत्पन्नो विशाला इति विश्रुतः तेन चाक्षेधे स्थाने विशालेति पुरी कृता।

0: रामायण में ही विशाला के नाम से इसका और इसके संस्थापक तथा उसके वंशजों की वंशावली मिलती है। विशाल, हेमचंद्र, सुचंद्र, ध्रुमाश्व, सृंजय, सहदेव, कुशाश्व, सोमदत्त, काकुलस्थ और सुमति। विशाला नरेशों के संबंध में महर्षि विश्वामित्र ने ये कहा है कि वे सब इक्ष्वाकु की कृपा से दीर्घायु, महात्मा, वीर्यशाली और धार्मिक हुए। वैशाली में ही देवों और दानवों ने समुद्र मंथन की मंत्रणा की थी। यही दिति की तपस्या का वर्णन है और इंद्र को मारने वाले पुत्र दिति की तपस्या का विफल होना भी वर्णित है। पुराणों में वैशाली के लिए विशाल, विशाला तथा वैशाली ये तीन नाम दिए गए हैं।
1: अतीत की ये बातें कितनी सुखद है। अब उस दृश्य को मैं देख रहा हूं जब मेरे कुंड ग्राम में वर्तमान महावीर का जन्म हुआ।
2: देखो देखो, मुख पर कितनी चमक है।
3: हाँ बहन, चमक क्यों न हो, जिनकी माता विशाल है, जिनके कुल विशाल हैं, जिनका जिन विशाल है, ऐसे पुत्र की चमक तो सूर्य से भी बढ़कर होगी। पिता भी तो नायक सिद्धार्थ हैं और पार्श्वनाथ के अनुयायी हैं।
0: अतीत के पन्नों को और आगे पलटा जाए इससे पूर्व इसके वर्तमान स्वरूप को भी जान लेना चाहिए। ये क्षेत्र गंगा की सहायक नदी गंडक के पास अवस्थित है। इसमें मोटे तौर पर आधुनिक बिहार राज्य के वैशाली, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, पूर्व चंपारण एवं पश्चिम चंपारण के जिले, इनसे सटे नेपाल के तराई भाग तथा समस्तीपुर क्षेत्र सम्मिलित है। इस इतिहास प्रसिद्ध क्षेत्र की राजधानी वैशाली की पहचान बसाड़ एवं इसके आसपास के गांवों से की जाती है। इनमें बसाड़, हरपुर, चक्रामदास और कम्बन छपरा वैशाली जिले में हैं और बनिया, महुआ, वीरपुर और बांसोकुंड मुजफ्फरपुर जिले में हैं। कुछ ही किलोमीटर पश्चिम गंडक नदी बहती है।
4: वर्तमान वैशाली और पुराने वैशाली में तो बहुत अंतर है। पुराने वैशाली का इतिहास तो बहुत पुराना है, क्या इसे विस्तार से बताएंगी?
0: क्यों नहीं, वैशाली का प्राचीनतम काल यानी प्रारंभिक काल लगभग ईसा पूर्व 725 वर्ष पुराना है। प्रथम लिच्छवी गणराज्य 725 ईसा पूर्व से 484 ईसा पूर्व माना जाता है। मगध का प्रभुत्व 484 ईसा पूर्व से 125 ईसा पूर्व तक, द्वितीय लिच्छवी गणराज्य करीब 125 ईसा पूर्व से 319 ईस्वी तक। गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत तीरभुक्ति की प्रादेशिक राजधानी 319 ईस्वी से 550 ईस्वी तक, तीरभुक्ति की द्वितीय राजधानी श्वेतपुर, विभिन्न राजवंशों की संघर्ष स्थली 550 ईस्वी से 1097 ईस्वी तक और तीरभुक्ति राज्य की तृतीय राजधानी सीमाराम पट्टन। वैशाली क्षेत्र का ह्रास 1097 ईस्वी से 1324 ईस्वी तक।
4: ये तो बड़ा ही रोमांचकारी वर्णन है, यानी वैशाली का अतीत बड़ा ही शानदार और घटनाओं से भरा हुआ है।
0: हाँ, वृज्जी संघ या लिच्छवी संघ ने शक्ति और सम्मान में अपने पूर्वी पड़ोसी विदेह को पछाड़ दिया था। अंगुत्तर निकाय नामक बौद्ध ग्रंथ एवं भगवती सूत्र नामक जैन ग्रंथ में वृज्जी संघ का प्रमुख राज्य के रूप में उल्लेख है, किंतु विदेह की चर्चा वहाँ नहीं है। किन परिस्थितियों में वृज्जी संघ की स्थापना हुई, इतिहास इस पर मौन है। विद्वानों का विचार है कि विदेह में जनक वंश के अंतिम राजा कराल जनक के समय में उसके अत्याचारों के कारण जब क्रांति हुई तब वैशाली में गणतंत्र की स्थापना हुई।
4: वैशाली के गणतंत्र की रचना और उसकी विशेषता के बारे में भी कुछ बताइए।
0: वैशाली का वृज्जी संघ अपने गणतंत्री संविधान के लिए प्रसिद्ध है। गणतंत्री राज्य को गण या संघ कहते थे। चूंकि लिच्छवी सर्वाधिक प्रसिद्ध थे इसलिए इसे लिच्छवी गण भी कहते थे।

0: केंद्रीय कार्यपालिका में राजा, उपराजा, सभापति और भांडागारिक होते थे। 9 गणराज्यों की भी एक समिति होती थी जो विशेषकर पर राज्य विभाग देखती थी। केंद्रीय विधानमंडल को संस्था कहते थे। जहां इसका अधिवेशन होता था उसे संस्थागार कहते थे। इसके सदस्यों की संख्या 7,707 बतलाई गई है। प्रत्येक सदस्य राजा कहलाता था और उसे एक उपराजा, एक सभापति एवं एक भांडागारिक दिए गए थे। प्रत्येक सदस्य का अभिषेक होता था। इस उद्देश्य से एक अभिषेक मंगल पुष्करणी थी। इसके जल से अभिषेक नहीं होने पर राजाओं का अभिषेक संपूर्ण नहीं माना जाता था। जल को लिच्छवी राजाओं के अतिरिक्त दूसरा कोई छू नहीं सकता था। पुष्करणी के भीतर और बाहर बड़ा जबरदस्त पहरा था। राजा यानी राष्ट्रपति न्याय विभाग का सर्वोच्च अधिकारी था। विद्वानों का विचार है कि गौतम बुद्ध ने अपने संघ का संविधान वृज्जी संघ, मल्ल संघ एवं शाक्य संघ को देखकर ही बनाया था।
1: मेरी गोद में घूमने वालों को सूत्रधार अच्छी और सही बातें बता रही है। मैं देख रहा हूं कि महावीर 30 वर्ष मेरे प्रांगण में बिताकर तपस्या पर निकल पड़े हैं। बारह वर्षों की तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। वे बहुत बार मेरे प्रांगण में आए और जब उनकी अवस्था 71.5 वर्ष हुई तब कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी अमावस्या को वे पावापुरी में कालगत हुए। तब पावा कुशीनगर के 9 मल्लों, वैशाली के 9 लिच्छवियों और काशी कोसल के 18 गणराज्यों ने दीपोत्सव की व्यवस्था की थी।

मगध में उस समय हर्यंक कुल का राज चल रहा था। इसके संस्थापक बिंबिसार का एक विवाह वैशाली के लिच्छवी राजा चेतक की कन्या चेलन्ना से हुआ। इससे उत्पन्न पुत्र अजात शत्रु घोर महत्वाकांक्षी एवं साम्राज्यवादी था। उसने लंबी लड़ाई लड़कर वैशाली के प्रथम लिच्छवी गणराज्य का अंत कर डाला। मुझे आम्रपाली के वो नृत्य और अजात शत्रु का आतंक आज तक याद है।

वैसे मगध साम्राज्य का जब पतन होने लगा तब द्वितीय लिच्छवी गणराज्य की स्थापना हुई। फिर इसे गुप्त साम्राज्य की प्रादेशिक राजधानी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया था। उसने वैशाली का संक्षिप्त इतिहास भी लिखा।

0: वैशाली विभिन्न राजवंशों की संघर्ष स्थली भी रही।
1: वैशाली के प्राचीन वैभव और अतीत के खंडहरों से तो हम गुजर चुके, अब इस नए वैशाली में जो उत्खनन के कार्य हुए हैं उनके बारे में भी तो बताइए, और दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं?
0: वैशाली के कुछ भागों में उत्खनन के कार्य हुए हैं। सम्राट अशोक के समय में बनाया गया अशोक स्तंभ खुदाई से निकला है। इस स्तंभ के ऊपर बैठा हुआ शेर आपको दिखाई पड़ेगा। सन 1958 में इसी भाग में खुदाई हुई तो बुद्ध की अस्थियां एक बर्तन में प्राप्त हुई। इसे बहुत संजोकर पटना के म्यूजियम में रखा गया है। अभिषेक पुष्करणी तो आप सामने देख ही रहे हैं। चार मुखी महादेव भी यही खुदाई से प्राप्त हुए हैं। बनिया स्थान में ये स्थल है। नगर की चार दीवारी के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। राजा विशाल के गढ़ के पश्चिम बसार के पश्चिमी भाग में एक पोखर है जिसे लोग बौना पोखर कहते हैं। उसके उत्तरी भिंडे पर एक पुराने मंदिर में बहुत सी गुप्त एवं पाल युगों की मूर्तियां रखी हुई मिलेंगी जो काले पत्थर की बनी हुई है। राजा विशाल के गढ़ से थोड़ी ही दूर दक्षिण पश्चिम में ईंटों के एक स्तूप का खंडहर है जिस पर 15वीं सदी के मुस्लिम सूफी संत शेख मोहम्मद फैजुल्लाह काजिन सुत्तारी की दरगाह बनी हुई है। इसे लोग मीरन दरगाह भी कहते हैं। पालकालीन कार्तिकेय की मूर्ति, खरौना पोखर, बुद्ध स्तूप, कम्मन छपरा के चतुर्मुख महादेव, कोलुआ का अशोक स्तंभ इत्यादि कई दर्शनीय स्थल वैशाली में है। एक वैशाली संग्रहालय भी है।
2: शती ईस्वी पूर्व में वैशाली प्राचीन लिच्छवी गणराज्य की राजधानी थी। राजनीतिक दृष्टिकोण से इसका महत्व गुप्त काल तक था जब चंद्रगुप्त प्रथम ने अपना विवाह।
0: डॉक्टर उर्मिला संत अधीक्षण पुरातत्वविद
2: एवं वेनसांग ने भी क्रमशः 5वीं व 7वीं शती में इस स्थान का भ्रमण किया था। भारतीय इतिहास में पुरातात्विक एवं साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पर वैशाली का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। यह संसार में प्रथम गणराज्य के रूप में जाना जाता है। भारत में यह प्राचीनतम एवं बड़े राज्यों में से एक था। जैन धर्म के संस्थापक भगवान महावीर का यह जन्म स्थल है। संभवतः वैशाली बुद्ध के क्रियाकलापों के कारण अधिकतम प्रसिद्ध है। इसी स्थान पर भगवान बुद्ध ने कपिराज के हाथों मधु का दान स्वीकार किया था। यह बुद्ध के जीवन की अष्ट महाघटनाओं में से एक है जिसे बौद्ध ग्रंथों में वैशाली चमत्कार के नाम से जाना जाता है। इसी स्थान पर पहली बार बुद्ध द्वारा स्त्रियों को बौद्ध धर्म में प्रवेश की अनुमति दी गई थी। बुद्ध के अवशेषों के 8 भागों में से एक भाग इस गणराज्य को भी प्राप्त हुआ था जिसके ऊपर मिट्टी का स्तूप बनाया गया जो आज रेलिक स्तूप के नाम से प्रसिद्ध है।
3: यहाँ भीमसेन का पल्ला और मरमसोना स्तूप भी तो है।
0: हाँ, ये दोनों स्थल भी हैं। वैशाली में अब तक 6 बार खुदाई हो चुकी है। पहले अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861-64 ईस्वी तथा 1881 ईस्वी में अन्वेषण कार्य के सिलसिले में वैशाली के इलाके में डेरा डाला और बसार से कोलुआ तक खोज कर विवरण लिखा। उसने राजा विशाल कराल को केवल देखा ही नहीं, इसे मापा भी। उसने गढ़ की ऊंचाई 1580 फुट तथा चौड़ाई 750 फुट लिखी है। 1903 और 1904 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के टी ब्लाश नामक एक अधीक्षक ने वैशाली में सर्वे कर यहाँ अच्छे ढंग से उत्खनन किया। ब्लाश के बाद 1913-14 ईस्वी में डीवी स्पूनर ने भी खुदाई करवाई और उन्हें अधिक प्राचीन वस्तुएं तथा कुछ और मिट्टी की मुहरें मिली। उत्खनन का लंबा इतिहास है और आज तक यह चल रहा है। यहाँ शांति स्तूप का भी निर्माण किया गया है।
2: तो अब अनेक उत्खनन से यह प्रमाणित हो चुका है कि वैशाली का क्षेत्र काफी विस्तृत था जिसमें वर्तमान ग्राम बसाड़, जो राजा विशालगढ़ का किला भी जाना जाता है, कोलुआ, बेनिया, चक्रमदास, लालपुर एवं वीरपुर सम्मिलित हैं जो वैशाली एवं मुजफ्फरपुर जिले में है। कई स्थानों पर समय समय पर अनेक विद्वानों एवं संस्थानों द्वारा उत्खनन कराया गया जिनमें कनिंगम, बेगलर एवं ब्लोच, स्पूनर, कृष्णदेव, अलतेकर, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की उत्खनन शाखा एवं पटना अंचल प्रमुख हैं। इन उत्खनन में अनेक महत्वपूर्ण भग्नावशेष प्रकाश में आए। राजा विशाल का गढ़ एक विशाल किला था। खरौना पोखर, जो प्राचीन अभिषेक पुष्करणी के नाम से प्रसिद्ध था, का जल अनेक राजाओं के

0: राज्याभिषेक के समय प्रयोग किया जाता था। दूसरी महत्वपूर्ण खोज रेलिक स्तूप के नाम से जानी जाती है। उत्खनन के समय यहाँ से सोप स्टोन का अस्थि मंजुष्ठा मिली है, जिसमें राख के साथ शंख, दो छोटे शीशे के मनके, स्वर्ण पत्र एवं तांबे का आहत सिक्का मौजूद है। कोलुआ ग्राम में अशोक कालिंग सिंह शीर्ष युग स्तंभ है, जो मौर्य कला का अद्भुत उदाहरण है। इस स्तंभ के उत्तर में ईंटों से निर्मित सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया स्तूप मिला है, जो संभवतः कपि द्वारा भगवान बुद्ध को शहद अर्पित करने की घटना की स्मृति में बनवाया गया था। इस स्तूप के चारों ओर वोटिव स्तूप पाए जाते हैं, जो श्रद्धालुओं द्वारा मनौती के रूप में समय समय पर बनवाए गए। स्तूप एवं स्तंभ के बगल में एक आयताकार तालाब मिला है, जो मरकट हिंद के नाम से जाना जाता था। इस तालाब में पुरुषों एवं स्त्रियों के नहाने के लिए अलग अलग घाट बने हुए थे। इस तालाब के दक्षिण में कुटागार शाला मिली है, जहां भगवान बुद्ध वैशाली आने पर रुका करते थे। इसके साथ ही स्वस्तिक आकार के 12 कमरों का भिक्षुणी विहार मिला है, जिसमें प्रसाधन कक्ष का भी प्रबंध है। ध्यान देने योग्य बात है कि यही वो स्थान है जहां पहली बार स्त्रियों को संघ में प्रवेश की अनुमति मिली थी। इसके उत्खनन के फलस्वरूप अनेकों पुरावशेष प्रकाश में आए, जैसे मानव व पशुओं की मृण्मय मूर्तियाँ, मिट्टी के बने खिलौने, मनके एवं मृण मुद्राएं। कोलुआ उत्खनन में प्राप्त एवं वैशाली के आसपास के क्षेत्रों में मिले पुरावशेष पुरातत्व संग्रहालय वैशाली में प्रदर्शित हैं।
1: यहाँ ठहरने की क्या व्यवस्था है और पटना से इसकी दूरी क्या है?
2: वैशाली जिला का मुख्यालय हाजीपुर है। वैशाली से पटना हवाई अड्डा 50 किलोमीटर दूर है और हाजीपुर रेलवे स्टेशन मात्र 35 किलोमीटर पर है। वैशाली से मुजफ्फरपुर और हाजीपुर सड़क मार्ग से भी जुड़ा है और सड़कें काफी अच्छी हैं। ठहरने के लिए वैशाली में टूरिस्ट बंगला और टूरिस्ट यूथ हॉस्टल है।
0: कोलुआ में दर्शकों की सुविधा के लिए पाथवे का निर्माण करवाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त उद्यान शाखा द्वारा पर्यावरण सुधारने के लिए उद्यान लगाया जा रहा है। कुटागार शाला, स्वस्तिक विहार एवं स्तूप का संरक्षण कार्य प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त पर्यटकों की सुविधा के लिए जन सुविधाओं का निर्माण करवाया जा रहा है।
3: सूत्रधार ले तो अतीत और वर्तमान के स्वरूप की पूरी चर्चा सुना दी। पर्यटक भी खुश है, लेकिन मैं अतीत की स्मृति में खो गया। सुना यहीं उत्पन्न हुआ था किसी समय वो राजकुमार, त्याग दिए थे जिसने जग के भोग विलास राज श्रृंगार, जिसके निर्मल जैन धर्म का देश देश में हुआ प्रचार, तीर्थंकर जिस महावीर के यश अब भी गाता संसार। है पवित्रता भरी हुई इस विमल भूमि के कण कण में, मत कह क्या हुआ यहां इस वैशाली के आंगन में। महावीर के 5 महाव्रत आज भी कानों में सुनाई पड़ते हैं। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह,

मैं वैशाली हूं। अभी आप सुन रहे थे ये विशेष रूपक। इसमें भाग लेने वाले कलाकार थे मोहन सिंह रावत, अंजलि रानी, अभय सिन्हा, मौसमी प्रकाश, अशोक कुमार सिन्हा, ध्रुव कुमार और नीलेश्वर मिश्र। प्रस्तुति सहायक थे सुधांशु कुमार। इसके लेखक थे डॉक्टर शंकर प्रसाद और प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर किशोर सिन्हा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पूरी कर आज नई दिल्ली लौट आए। 3 देशों की यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी ने 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया का दौरा किया। इस दौरान श्री मोदी ने राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता की और दोनों देशों के बीच साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ 3रे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। यात्रा के 3रे और अंतिम चरण में प्रधानमंत्री ने 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड के ऑकलैंड का दौरा किया। वहां उन्होंने प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि भारत हिंद महासागर और हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक मजबूत और विश्वसनीय शक्ति के रूप में उभरा है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा से भारत के रणनीतिक संबंध और मजबूत हुए हैं।
1: हम एक स्टेबिलाइजिंग फोर्स बन के इंडो पैसिफिक और इंडियन ओशन में आज उभर पाए हैं, इसी को प्रधानमंत्री एक साथ लेके आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने अपने परिश्रम से, अपने स्टेट्समैनशिप से अपने पॉलिसी को भारत में लागू करके बाकी देशों को दिखाया और सभी देशों ने एक्सेप्ट किया कि यस, लेट दिस बी द फ्रेमवर्क, लेट इंडिया डिसाइड द फ्रेमवर्क। हम इस फ्रेमवर्क पे एक लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन, आप सोचिए ये कितनी बड़ी जीत है।
0: श्री संबित पात्रा ने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने माफी योजना 2026 शुरू की है। इसके तहत आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त छूट के साथ भविष्य निधि ट्रस्ट संचालित करने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने का एक मुश्त अवसर प्रदान किया गया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा है कि ये योजना 6 महीने की अवधि तक लागू रहेगी। मंत्रालय के अनुसार पात्र प्रतिष्ठानों को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को ईमेल के माध्यम से औपचारिक आवेदन प्रस्तुत करना होगा। देश भर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है। गुजरात में गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की जन केंद्रित विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। श्री शाह ने अपने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र गांधीनगर में पौधारोपण अभियान का भी शुभारंभ किया। इधर उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार के व्यापक पौधारोपण अभियान के अंतर्गत आज 35 करोड़ पौधे लगाए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया। वियतनाम के प्रधानमंत्री ने ले मिन हुन ने फुकोक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। इस हादसे में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। इनमें से 10 लोग तमिलनाडु, 3 आंध्र प्रदेश और 2 केरल के रहने वाले थे। विदेश मंत्रालय ने वर्ष 2017 में जारी यमन यात्रा संबंधी अधिसूचना वापस ले ली है। यह अधिसूचना यमन में गृह युद्ध और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के कारण भारतीय नागरिकों की यात्रा पर प्रतिबंध लगाने के लिए जारी की गई थी। कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी का 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने खाड़ी देश को कूटनीति, मीडिया और निवेश के क्षेत्र में प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित किया था। शेख हमद ने क्षेत्रीय परंपरा को तोड़ते हुए 2013 में स्वेच्छा से अपने पुत्र को सत्ता सौंपने से पहले 18 वर्षों तक कतर पर शासन किया। टेनिस में आज विंबलडन के पुरुष सिंगल्स और महिला डबल्स के फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। पुरुष सिंगल्स के फाइनल में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी यानिक सिनर का मुकाबला जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 8:30 बजे शुरू होगा। महिला डबल्स के फाइनल में चीन की गुओ हानयू और फ्रांस की क्रिस्टीना म्लादेनोवक की जोड़ी का मुकाबला कनाडा की गैब्रिएला ड्राबोवस्की और ब्राजील की लुइसा स्टेफनी की जोड़ी से होगा। ये मैच शाम 5:30 बजे से खेला जाएगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। पहला सेमीफाइनल बुधवार को फ्रांस

0: और स्पेन के बीच खेला जाएगा। दूसरा सेमीफाइनल गुरुवार को इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम संवेद गान शिक्षा।

0: बच्चों, आज मैं तुम्हें एक उड़िया गाना सिखाऊंगा। सीखोगे ना?
1: हाँ।
0: ये गाना एक भजन है जिसे श्री कालिंदी चरण पाणिग्रही ने लिखा है। किसने लिखा है? श्री कालिंदी चरण पाणिग्रही ने। अब इसे लिख लो।
2: क्यों नाम धरी, डाकिबी तुमको, तुमे जे सर्वनाम, क्यों नाम धरी,
1: डाकिबी तुमको,
2: तुमे जे सर्वनाम,
1: तुमे जे सर्वनाम।
0: यह हुआ ध्रुपद। अब पहला अंतरा लिख लो।
2: आलोक तुमको,
1: आलोक तुमको,
2: नपारे देखाई,
1: नपारे देखाई,

0: তুমি যে দেখাও তাহারে,
1: তুমি যে দেখাও তাহারে,
0: আলোক তুমকু,
1: আলোক তুমকু,
0: নপারে দেখাই,
1: নপারে দেখাই,
0: তুমি যে দেখাও তাহারে,
1: তুমি যে দেখাও তাহারে,
0: তুমি যে বেড়িছ,
1: তুমি যে বেড়িছ,
0: কোটি বিশ্বর,
1: কোটি বিশ্বর,
0: সবুরি ভিতরে বাহারে,
1: সবুরি ভিতরে বাহারে,
0: তুমি যে বেড়িছ,
1: তুমি যে বেড়িছ,
0: কোটি বিশ্বর,
1: কোটি বিশ্বর,
0: সবুরি ভিতরে বাহারে,
1: সবুরি ভিতরে বাহারে।
2: ইয়ে হুয়া পহলা অন্তরা। अब दूसरा अंतरा।
0: लुह होई तुमे,
1: लुह होई तुमे,
0: झरी पड़ा परा,
1: झरी पड़ा परा,
0: केते नयनर कोणरु,
1: केते नयनर कोणरु,
0: लुह होई तुमे,
1: लुह होई तुमे,
0: झरी पड़ा परा,
1: झरी पड़ा परा,
0: केते नयनर कोणरु,
1: केते नयनर कोणरु,
0: हस होई पुणि,
1: हस होई पुणि,
0: फूल परि फुट,
1: फूल परि फुट,
0: केते जे नरम अधरु,
1: केते जे नरम अधरु,
0: हस होई पुणि,
1: हस होई पुणि,
0: फूल परि फुट,
1: फूल परि फुट,
0: केते जे नरम अधरु,
1: केते जे नरम अधरु,
0: केऊ नाम धरि,
1: কেউ নাম ধরি,
0: ডাকিবি তুমকু,
1: ডাকিবি তুমকু,
0: তুমি যে সর্বনাম,
1: তুমি যে সর্বনাম।
2: अब हम गाना सीखेंगे। ये गाना खेमटा ताल में है। इसकी 6 मात्राएं हैं। ताल कैसा है ये पहले देख लो। इसमें एक ताली और एक खाली है।
0: एक दुई, एक दुई, वो एक दुई, एक दुई, एक दुई।
2: अब हम गाना सीखेंगे।
0: केउ नाम धरि डाकिबि तुमकु, 1 2 3 4।

0: तुमने गाना सीख लिया, इसे अब तुम सब मिलकर गाओ देखें।
1: 1 2 3 4

0: तो अब यह गाना तो आपने सीख लिया, इसे याद रखना, भूलना नहीं। यह गाना तुम भी गाओ, अपने भाई बहनों से गवाओ तथा स्कूल में भी गाओ। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संवेद गान शिक्षा।

हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। फिल्म गबन में सुनिए लता मंगेशकर को, गीतकार हैं शैलेंद्र, संगीतकार शंकर जयकिशन।

लीजिए सुनिए, लता मंगेशकर और किशोर कुमार को फिल्म का नाम है अभिमान। गीतकार है मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार एस डी बर्मन।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अंशु अवस्थी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि राज्य की एनडीए सरकार लोगों के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। श्री चौधरी ने आज मुजफ्फरपुर में स्मार्ट सिटी लिमिटेड के लिए लगभग 1,047 करोड़ रुपए की लागत वाली 900 से अधिक योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि नगर विकास और आवास विभाग की इन योजनाओं से शहर में सड़क, जल निकासी और पार्क समेत अन्य शहरी आधारभूत सुविधाओं का विकास किया जाएगा। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन का कल अंतिम दिन है। उपचुनाव को लेकर प्रचार प्रसार का शोर बढ़ गया है। प्रत्याशी लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा और जनसुराज के प्रत्याशी प्रशांत किशोर ने के कल नामांकन दाखिल करने की संभावना है। उपचुनाव के लिए अब तक 11 प्रत्याशियों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किया है। उम्मीदवार 16 जुलाई तक अपना नाम वापस ले सकते हैं। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान 30 जुलाई को होगा, जबकि मतगणना 3 अगस्त को कराई जाएगी। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के मंत्री श्रवण कुमार ने दावा किया है कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में एनडीए की जीत पक्की है। श्री कुमार ने आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि चुनाव में राजद और जनसुराज की हार तय है। इधर राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि बांकीपुर की जनता पार्टी प्रत्याशी रेखा गुप्ता

इधर कोसी नदी के जलस्तर में भी बढ़ोतरी हुई है। इसे देखते हुए नदी पर स्थित बराज के कई फाटकों को खोल दिया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री सत्येंद्र नारायण सिन्हा की जयंती पर पटना में राजकीय समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पटना के श्रीकृष्णापुरी पार्क में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी सहित अन्य गणमान्य लोगों ने उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।

रेलवे भर्ती बोर्ड टेक्नीशियन ग्रेड 1 और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के कुल 6,565 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार के पास बीटेक इंजीनियरिंग डिप्लोमा अथवा इंजीनियरिंग में बीएससी की डिग्री होनी चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए अधिकतम आयु 30 वर्ष और टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए अधिकतम आयु 33 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 जुलाई 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 29 जुलाई 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.indianrailways.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है।

बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग BPSSC पुलिस अवर निरीक्षक सामान्य बंद संवर्ग के कुल 150 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें।

उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 20 वर्ष एवं अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 अगस्त 2025 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 9 अगस्त 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.bpssc.bihar.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है।

अभी आप सुन रहे थे रोजगार सूचना। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे दोपहर समाचार अंक।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत जीएफएस गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की। 10 भारतीय सुरक्षित बचाए गए, एक लापता। क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर लगातार हो रहे हमलों पर भारत ने चिंता जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे, इस दौरान कई समझौते हुए। गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने निजी भविष्य निधि ट्रस्ट संचालित करने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने के लिए 6 महीने की माफी योजना शुरू की। विंबलडन टेनिस में आज शाम पुरुष सिंगल्स के फाइनल मुकाबले में यानिक सिनर और अलेक्जेंडर ज्वेरेव होंगे आमने सामने। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड और अर्जेंटीना ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। भारत ने आज ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत जीएफएस गैलेक्सी पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक अब भी लापता है। मंत्रालय ने बताया कि ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर लगातार हो रहे हमलों पर चिंता जताई है। मंत्रालय ने तनाव तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए जारी वार्ता को जल्द पूरा करने का आह्वान किया है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप क्षेत्र के समुद्री मार्गों पर निर्बाध और सुरक्षित नौवहन तथा व्यापार जल्द से जल्द बहाल किए जाने की बात कही है। अमरीका ने आज सुबह ईरान पर फिर से हवाई हमले किए हैं। ये हमले ईरान द्वारा होर्मुज जलडमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर हमला किए जाने के बाद किए गए। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि हमलों में ईरान के लगभग 140 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमले किए। इस बीच ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड ने अगली सूचना तक होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने की घोषणा की है और चेतावनी दी है कि यदि अमरीकी हमले जारी रहे तो वो भी जवाबी कार्रवाई करेगा। विदेश मंत्रालय ने वर्ष 2017 में जारी यमन यात्रा संबंधी अधिसूचना वापस ले ली है। ये अधिसूचना यमन में गृहयुद्ध और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के कारण भारतीय नागरिकों की यात्रा पर प्रतिबंध लगाने के लिए जारी की गई थी। हालांकि मंत्रालय ने परामर्श जारी कर भारतीय नागरिकों को यमन की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की सफल यात्रा पूरी कर स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी की इस महत्वपूर्ण यात्रा की प्रमुख उपलब्धियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 3 देशों के दौरे के पहले चरण में इंडोनेशिया का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता की और दोनों देशों के बीच चल रहे सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। दोनों देशों ने रक्षा, दुर्लभ खनिज, कृषि, समुद्री सुरक्षा और अंतरिक्ष जैसे कई क्षेत्रों में समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान बिंतांग आदिपूर्ण से सम्मानित किया गया। इस दौरे के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, जहां उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ 3rd भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इस

0: यात्रा के दौरान ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम की आपूर्ति का रास्ता भी साफ हुआ। साथ ही ऑस्ट्रेलिया सुपर ने भारत के नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में 50 करोड़ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के निवेश की घोषणा की। अपने दौरे के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत की घोषणा की। इसके अलावा दोनों देशों ने वर्ष 2030 तक आपसी व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य तय किया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि भारत हिंद महासागर और हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक मजबूत और विश्वसनीय शक्ति के रूप में उभरा है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा से भारत के रणनीतिक संबंध और मजबूत हुए हैं।
2: हम एक स्टेबिलाइजिंग फोर्स बनके इंडो पैसिफिक और इंडियन ओशन में आज उभर पाए हैं, इसी को प्रधानमंत्री एक साथ लेके आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने अपने परिश्रम से, अपने स्टेट्समैनशिप से अपने पॉलिसी को भारत में लागू करके बाकी देशों को दिखाया और सभी देशों ने एक्सेप्ट किया कि यस, लेट दिस बी द फ्रेमवर्क, लेट इंडिया डिसाइड द फ्रेमवर्क। हम इस फ्रेमवर्क पे एक लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन, आप सोचिए ये कितनी बड़ी जीत है।
1: श्री संबित पात्रा ने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने बताया कि भारत और ऑस्ट्रेलिया ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र जारी

0: अपने स्टेट्समैनशिप से अपने पॉलिसी को भारत में लागू करके बाकी देशों को दिखाया और सभी देशों ने एक्सेप्ट किया कि यस लेट दिस बी द फ्रेमवर्क, लेट इंडिया डिसाइड द फ्रेमवर्क। हम इस फ्रेमवर्क पे एक लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन, आप सोचिए ये कितनी बड़ी जीत है।
1: श्री संबित पात्रा ने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने बताया कि भारत और ऑस्ट्रेलिया ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया है। इसके तहत दोनों देशों के युद्धपोत एक दूसरे के डॉक पर सर्विसिंग करा सकेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने माफी योजना 2026 शुरू की है। इसके तहत छूट प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट चलाने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने का एक मुश्त अवसर दिया गया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने बताया कि ये योजना 6 महीने तक लागू रहेगी। इसका लाभ उन प्रतिष्ठानों को मिलेगा जो आयकर अधिनियम 1961 के तहत मान्यता प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट का संचालन कर रहे हैं। ऐसे ट्रस्ट में कर्मचारी भविष्य निधि का प्रबंधन सीधे ईपीएफओ के बजाय संबंधित प्रतिष्ठान अपने निजी ट्रस्ट के माध्यम से करता है।
2: ईपीएफओ की एमनेस्टी योजना मान्यता प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट चला रहे पात्र संस्थानों को नियमित करने का एक और अवसर प्रदान करती है। इस योजना के तहत वे अपने ट्रस्ट की स्थिति को पिछली तारीख से नियमित करा सकते हैं। इसका उद्देश्य ऐसे ट्रस्टों को एक समान वैधानिक व्यवस्था के दायरे में लाना और सभी लागू कानूनी प्रावधानों के पालन को सुनिश्चित करना है। कर्मचारियों के लिए यह योजना उनके नियोक्ता के भविष्य निधि ट्रस्ट की कानूनी स्थिति को लेकर अधिक स्पष्टता और भरोसा प्रदान करेगी। योजना के तहत निर्धारित राहत का लाभ तभी मिलेगा जब सदस्यों के खातों में निर्धारित अवधि के दौरान अंशदान जमा किया गया हो और उस पर ईपीएफओ की वैधानिक ब्याज दर के बराबर या उससे अधिक ब्याज दिया गया हो। छूट प्राप्त पीएफ ट्रस्टों को नियमित किए जाने से भविष्य निधि लाभों का प्रबंधन अधिक सरल, सुव्यवस्थित और कानूनी प्रावधानों के अनुरूप होने की भी उम्मीद है। दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: योजना का लाभ लेने के लिए पात्र प्रतिष्ठानों को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में ईमेल के माध्यम से औपचारिक आवेदन भेजना होगा। देश भर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार के व्यापक पौधारोपण अभियान के अंतर्गत 35 करोड़ पौधे लगाए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सतत भविष्य सुनिश्चित करने तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण बेहद महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में श्री चौहान ने कहा कि आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी का तापमान बढ़ने को लेकर चिंतित है।
3: वर्तमान दर से अगर ग्रीन गैसों का उत्सर्जन जारी रहा, वनों की कटाई, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन जारी रहा तो 2050 तक पृथ्वी को गंभीर पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद में 405 करोड़ रुपए की लागत वाली नगर निगम की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत विशाल पौधारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया। उनके लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में 1,25,00,000 से अधिक पौधे लगाए गए। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: गृह मंत्री ने बरगद, पीपल, जामुन और अर्जुन जैसे स्वदेशी पौधे लगाने पर जोर दिया, जिससे शहर के तापमान में 5% की कमी आएगी और भावी पीढ़ियों के लिए एक रहने योग्य पर्यावरण सुनिश्चित होगा। उन्होंने पर्यावरण स्थिरता में योगदान देने के लिए हर घर और आवासीय सोसाइटी से सोलर रूफटॉप अपनाने का भी आह्वान किया। इस पर्यावरण अभियान के तहत आज 101 नए ऑक्सीजन पार्क का भी उद्घाटन किया गया और उनकी जानकारी देने वाली एक विशेष ई बुक भी जारी की गई। सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए एएमटीएस और बीआरटीएस के बेड़े में आज 333 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल की गई, जिससे अहमदाबाद बीआरटीएस देश का पहला 100% इलेक्ट्रिक और शून्य प्रदूषण वाला बेड़ा बन गया है। अपर्णा खोंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज कहा कि देश के समाज सुधारकों की महान विरासत का सम्मान करना और उसे बनाए रखना हर नागरिक का कर्तव्य है। श्री राधाकृष्णन ने नई दिल्ली के द्वारका में मन्नम इंटरनेशनल सेंटर में मन्नम स्मृति मंडपम का उद्घाटन के अवसर पर यह बात कही। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत एक पौधा भी लगाया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने आज बताया कि फू क्वोक द्वीप के निकट कल हुई नौका दुर्घटना में जान गंवाने

0: वाले 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर हो ची मिन सिटी ले जाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में दूतावास ने कहा कि वहां आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद पार्थिव शरीरों को भारत लाया जाएगा। इससे पहले दूतावास ने बताया था कि नौका दुर्घटना में घायल 15 भारतीयों को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और वे भारत लौट रहे हैं। दक्षिण की कोकिला के रूप में प्रसिद्ध रही गायिका एस जानकी अम्मा का कर्नाटक के मैसूर में एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वे 88 वर्ष की थीं।
1: छह दशक से अधिक लंबे अपने संगीत सफर में एस जानकी ने कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम और हिंदी सहित कई भाषाओं में लगभग 48,000 गीतों को अपनी आवाज दी। अपनी बहुमुखी गायकी और भावपूर्ण प्रस्तुति के कारण उन्हें नाइटिंगेल ऑफ द साउथ के नाम से जाना जाता है। एस जानकी को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका के लिए 4 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त हुए। इसके अलावा उन्हें 33 राज्य फिल्म पुरस्कार भी मिले। वर्ष 2013 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इस जानकी के निधन से भारतीय फिल्म संगीत जगत ने एक ऐसी महान स्वर साधिका को खो दिया है जिनकी आवाज आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा और विरासत बनी रहेगी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि एस जानकी अम्मा का निधन संगीत और संस्कृति जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी का 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्होंने खाड़ी देश को कूटनीति, मीडिया और निवेश के क्षेत्र में प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित किया था। उन्होंने अल जजीरा समाचार नेटवर्क की भी शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के पूर्व अमीर शेख के निधन पर दुख व्यक्त किया है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ है आनंद पाठक।
2: फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। पहला सेमीफाइनल बुधवार को फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 12:30 बजे से शुरू होगा। दूसरा सेमीफाइनल गुरुवार को इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड ने नॉर्वे को अतिरिक्त समय में 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की, जबकि अर्जेंटीना ने आज सुबह स्विट्जरलैंड को 3-1 से हराया। दोनों सेमीफाइनल मुकाबलों के विजेता 20 जुलाई को न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में खिताबी मुकाबले में आमने सामने होंगे। सेमीफाइनल की दोनों पराजित टीमें 19 जुलाई को मियामी में तीसरे स्थान के लिए प्लेऑफ खेलेंगी। टेनिस में आज विंबलडन के पुरुष सिंगल्स और महिला डबल्स के फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। पुरुष सिंगल्स के फाइनल में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी यानिक सिनर का मुकाबला जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे शुरू होगा। महिला डबल्स के फाइनल में चीन की गुओ हन्यू और फ्रांस की क्रिस्टीना मलादेनोविक की जोड़ी का मुकाबला कनाडा की ग्रेबियेला ड्रोवास्की और ब्राजील की लुइसा स्टेफनी की जोड़ी से होगा। ये मैच शाम 5:30 बजे खेला जाएगा।
0: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, बिहार, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गंगा के मैदानी इलाकों, पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर आज तेज वर्षा हो सकती है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, पंजाब और उत्तराखंड में भी आज इसी तरह की स्थिति बने रहने का अनुमान है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की। 10 भारतीय सुरक्षित बचाए गए, 1 लापता। क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर लगातार हो रहे हमलों पर भारत ने चिंता जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। इस दौरान कई समझौते हुए। गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने निजी भविष्य निधि ट्रस्ट संचालित करने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने के लिए 6 महीने की माफी योजना की शुरुआत की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव के 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए मुकेश और लता मंगेशकर को। फिल्म का नाम है गोरा और काला। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

महक जादू, ये नैन है के झूले, ये जुल्फ है के बादल, ये नैन है के झूले, ये

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव के 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में दिन के 3 बज चुके हैं। इसी के साथ हमारी आज की पहली सभा समाप्त होती है। हम फिर आपके लिए कार्यक्रम लेकर उपस्थित होंगे शाम के 4:28 पर। उस समय तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: मन चाहे गीत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं कुछ नियम मन चाहे गीत कार्यक्रम के।
1: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
2: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
1: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
2: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
3: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है?
1: कार्यक्रम मन चाहे गीत,
2: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
3: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।

मनचाही गीत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। सभी पसंद करते हैं इस कार्यक्रम को, इंतजार करते हैं अपनी बारी के बारे में भी कि हमारी बारी कब आएगी और हमारा गीत कब आएगा। तो चलिए चलते हैं इस गीत की तरफ, जो कि है थोड़ी सी बेवफाई फिल्म से। लता मंगेशकर, किशोर कुमार की आवाज़ें हैं, गुलजार के बोल हैं, खयाम का संगीत है। जानेंगे इस गीत के बाद कि पसंद किया है किसने।

थोड़ी सी बेवफाई फिल्म का यह गीत हम सुन रहे थे और हमने कहा था कि बाद में बताएंगे कि पसंद किसकी है, तो पसंद किया है कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज ने। ये कई बार हमारा मन होता है ना कि हमारा नाम रेडियो पर आ जाए, या कई बार मन होता है कि हमारा पसंदीदा गीत हमारे कानों में पड़ जाए, और शायद इन दोनों की पूर्ति करने का नाम ही है मनचाहे गीत। तो चलिए मनचाहे गीत में आपका मनचाहा गीत यानी आपकी पसंद में से किसी एक की पसंद का अगला गीत हम आपके को सुनाने वाले हैं। बड़ा प्यारा सा गीत है और इसे मांगा है चंडीगढ़ पंचकुला सेक्टर 9 से आशु अश्विनी गोविंद चुद परिवार ने और टोनी दीवान ने। ये बहुत सुंदर सा गीत है, आइए सुनते हैं इसे और आप अपनी फरमाइशें यानी अपनी पसंद हमारे पास यूं ही उसी डाकिया, उसी पोस्ट कार्ड, उसी लाल काले डब्बे के साथ भेज सकते हैं। ढेर सारी आशीर्वाद, प्रेम और स्नेह के साथ भेजिएगा जरूर अपनी पसंद।

सौतन फिल्म का गीत हम आपको सुनवा रहे थे। ये लता मंगेशकर ने गाया, सावन कुमार ने इसे लिखा और उषा खन्ना ने इसे संगीतबद्ध किया। इस गीत को मांगने वालों की बात, इनकी इस गीत को पसंद करने वालों के बारे में हम आपको बता चुके हैं, लेकिन अब हम चल रहे हैं हमारे अगले गीत की तरफ। कई बार हमारे श्रोता हमें ही हैरत में डाल देते हैं और कहते हैं कि आप अपनी पसंद का कोई गीत सुना दीजिए। तो चलिए, हमारे जिन श्रोताओं ने हमसे हमारी पसंद के गीत मांगे हैं उनका नाम हम आपके सामने बता देते हैं और उसके बाद सुनवा देते हैं अपनी पसंद का एक गीत। हमारे श्रोताओं में गांव नागड़ावास तहसील मालिया या मियाना से कुछ हमारे श्रोता हैं। गुलाम रसूल राउमा, दिलावर राउमा, रियाज राउमा, इरशाद राउमा और शम्स राउमा, इन सभी ने हमारी पसंद का गीत सुनने को कहा। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

हम सुन रहे थे मेरा साया फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में, राजा मेहंदी अली खान के बोल और मदन मोहन के संगीत के साथ ये गीत। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन और बड़ा प्यारा सा कार्यक्रम मनचाहे गीत, जो हम सभी पसंद करते हैं। और उसी मनचाहे गीत में एक और चिट्ठी हमारे पास आती है, और बड़ा अच्छा लगता है जब ये पोस्ट कार्ड हमारे हाथों में बहुत समय के बाद वापस आते हैं, तो बड़ी खुशी मिलती है। और हमारे श्रोता हैं बोरोले नगर चोपड़ा महाराष्ट्र से, उनका नाम है मच्छिंद्र पाटिल, कल्पना पाटिल। उन्होंने फरमाइश की है अगले गीत की, यानी अगला गीत मांगा है उन्होंने, तो आइए सुनते हैं वो अगला गीत उनकी।

और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। आइए सुनते हैं अगला गीत हमारे अगले श्रोता की पसंद का, जो कि उन्होंने भेजा है उदयपुर से। ये खत हमारे पास आया है, एक पीला पोस्ट कार्ड जिस पर बहुत मोहब्बत से लिखा गया है कि ये गीत उन्होंने हमसे मांगा है। नाम है अशरफ खान, जब्बार मोहम्मद, नजीब खान और मंजू निम्मी, इन सब ने मांगा है ये गीत नाग मंदिर फिल्म से। बहुत खूबसूरत सा गीत है, आइए सुनते हैं।

हम सुन रहे थे नाग मंदिर फिल्म का यह गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में असद भोपाली के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ। और कार्यक्रम मनचाही गीत यहीं पर समाप्त होता है। आगे भी आपकी इसी तरह के पोस्ट कार्ड और चिट्ठियों का इंतज़ार रहेगा हमें। आप अपनी चिट्ठियाँ भेजते जाइए और हमारे साथ जुड़ते जाइए मनचाहे गीत कार्यक्रम में। नमस्कार।

सूखा पेड़ किसी को छाया भी नहीं दे सकता, लेकिन यदि कोई स्वयं छाया बनकर सूखे पेड़ को धूप से बचाना चाहे तब उसे क्या करना चाहिए। इसी भाव भूमि पर खड़ा है ये सूखा पेड़, यानी आज का हमारा नाटक। तो आइए सुनते हैं लेखक और प्रस्तुतकर्ता लोकेंद्र शर्मा का नाटक सूखा पेड़।

0: रिकॉर्ड प्लेयर? रिकॉर्ड बजाकर कहाँ चले गए सब?
1: सब नहीं गए, मैं हूँ।
0: ओहो जीजा जी, मगर आप ये अंधेरा करके क्यों बैठे हैं?
1: यूं ही बत्ती जलाने को मन नहीं किया, वैसे भी अंधेरे में संगीत अच्छा लगता है। नहीं
0: अच्छा तो

0: होता है बाबा, मगर ये है गलत।
1: गलत क्यों? अरे ये बंद क्यों कर दिया?
0: गलत इसलिए श्रीमान जीजा जी, क्योंकि अब आप अकेले नहीं हैं, मैं घर आ चुकी हूँ। और बंद इसलिए किया क्योंकि आप शाम के समय सुबह का राग सुन रहे थे। देखिए देखिए खिड़की से बाहर।
1: भाई अब हम तुम्हारी तरह संगीत का हिसाब किताब तो जानते नहीं, बस कुछ सुनने को जी किया सो तुम्हारी अलमारी में से रिकॉर्ड निकाला और बजाने लगे। अब अकेले बैठे बैठे दीवार आखिर कब तक घूरे?
0: अकेले? मगर पल्लू कहाँ है?
1: कहकर तो गई थी कि क्लब जा रही है, मगर इस समय कहाँ है वो नहीं मालूम।
0: ओहो, ये अच्छी छुट्टियां बिताने आए हैं आप दोनों मियां बीबी नैनीताल। एक पूरब को जाता है, दूसरा पश्चिम को। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता।
1: समझ में तो मेरी भी कुछ नहीं आता मीनाक्षी, इसलिए मैंने तो समझने की कोशिश ही छोड़ दी है। पर एक बात बताओगी?
0: पूछिए।
1: कुछ चाय वाय पिलाने का प्रोग्राम हो सकता है क्या?
0: ओ श्योर श्योर, क्यों नहीं। जरा कपड़े बदल लूं, दिन भर के पहनी हुई साड़ी है ना।
1: अच्छी बात है, तुम साड़ी बदल कर आओ, तब तक मैं किचन में जाकर गैस पर पानी रखता हूँ।
0: क्यों, आप क्यों? ये काम आपका नहीं है और आप तो वैसे भी मेहमान है मेरे।
1: मेहमान तो इस दुनिया में सभी हैं मीनाक्षी देवी।
0: बस बस रहने दीजिए, अब फिलॉसफी की क्लास मत शुरू कीजिए। वैसे ही दिन भर स्कूल में पढ़ा कर आ रही हूँ।
1: पढ़ा कर आ रही हो क्या, इसीलिए मुझे भी स्टूडेंट समझ कर डांटोगी?
0: नहीं बाबा, मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि आप चुपचाप बैठिए, चाय मैं बनाऊंगी।
1: चाय भले ही तुम बनाओ मीनाक्षी, पर चुपचाप बैठने के लिए मत कहो, सारा दिन बीत गया है बिना बोले।
0: पल्लू क्या सुबह ही चली गई थी?
1: गई तो तीसरे पहर थी, मगर दो पहर तक सोई, उसके बाद घंटे भर नहाई, फिर घंटे भर सिंगार किया, फिर चली गई।
0: दिल्ली में भी ऐसे ही चलता है क्या?
1: कभी खुद ही आकर देखो ना।
0: यानी अगर खुद आकर देखना मुमकिन नहीं हो तो आप बताएंगे नहीं?
1: बताने जैसा कुछ है ही क्या।
0: सच कह रहे हैं, कुछ नहीं है।
1: देखो अब तुम चाय बनाने की बात को गोल मत करो।
0: ओह सॉरी, मैं चेंज करके ये आई
1: और मैं किचन में ये गया।
0: जाइए मगर कीजिएगा कुछ नहीं।
1: नहीं करूंगा बाबा, मगर वहाँ बैठकर तुम्हें चाय बनाते हुए देख तो सकता हूँ।
0: ओहो, मुझे देखने का प्रोग्राम है, तब तो जरा बन संवर कर आना पड़ेगा।
1: जैसे भी जाइए, अब आप जल्दी से जाइए और खटक से आइए।

0: पल्लू, क्या तुम सचमुच खाना नहीं खाओगी?
1: अरे कहा ना बाबा, मिसेस सिन्हा ने मुझे आज इतना खिला दिया है कि लगता है कल तक भूख ही नहीं लगने वाली।
0: हम लोग तो तुम्हारा इंतजार कर रहे थे।
1: अच्छा,
0: मालूम है आज जीजा जी ने अपने हाथों से आलू के पराठे बनाए हैं।
1: ओहो, तो फिर अभी तक खाए क्यों नहीं?
0: तुम्हारा इंतजार कर रहे थे ना।
1: लेकिन प्रभाकर को तो मालूम था कि आज मेरा डिनर मिसेस सिन्हा के साथ है।
0: ये मिसेस सिन्हा से बड़ी जल्दी दोस्ती कर ली तुमने। अभी 10 दिन ही तो हुए हैं तुम्हें नैनीताल आए हुए।
1: अरे 10 दिन तो बहुत है यार, दोस्ती तो 10 मिनट में हो सकती है।
0: कभी कभी तो 10 बरस में भी नहीं होती पल्लू।
1: नहीं होनी हो तो 10 जन्म तक नहीं होती। पर तू जाना, जाके पराठे खा ले, मैं तो जरा देर रजाई में बैठूंगी। हाथ पांव तो सुन हुए जा रहे हैं। बाप रे बाप, तेरी नैनीताल की रातें तो बहुत ही ठंडी हैं यार।
0: कॉफी पियोगी क्या?
1: कॉफी तो ऐसा कर, पहले तुम लोग जाके खाना खा लो।
0: बात मानिए जीजा जी।
2: कौन सी?
0: आप एक पराठे की दुकान खोल लीजिए, गर्मा गर्म आलू के पराठे। मजा आ गया।
2: अच्छे लगे तुम्हें?
0: कह तो रही हूँ, मैं आपकी दुकान की परमानेंट ग्राहक बनने को तैयार हूँ।
2: ना बाबा ना, तुम जैसी पेटू को ग्राहक बनाकर दिवाला नहीं निकालना मुझे अपनी दुकान का।
0: क्यों क्यों क्यों?
2: क्योंकि तुम खाओगी उधार और मेरा हो जाएगा बंटा ढार।
0: बंटा ढार तो लगता है आज अपना हो गया है। ओ, इतना खा लिया है कि अब उठा भी नहीं जा रहा।
2: तुम मत उठो ना, बैठी रहो, कुछ देर और बातें करते हैं।
0: यहाँ डाइनिंग टेबल पर? मालूम है क्या टाइम हो गया है? 9 बज चुके हैं रात के, और सर्दी के मारे कुल्फी जमी जा रही है। चलकर बिस्तर में सोइए, पल्लू आपका इंतजार कर रही है।
2: करने दो, मैं भी तो करता हूँ रोज रोज उसका इंतजार।
0: 10 दिन हुए हैं आपको नैनीताल आए हुए, और इन 10 दिनों में एक दिन भी आप दोनों को नॉर्मल नहीं देखा। इतने खींचे खींचे आखिर बात

0: क्या है?
1: बात क्या है यही तो मेरी समझ में नहीं आता मीनाक्षी, कि आखिर बात क्या है। कभी कभी जिंदगी में बात बस इतनी ही होती है कि कोई बात नहीं होती, नो कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बना रहे तो बात भी बनी रहती है, लेकिन
0: क्या हुआ? कुछ कह रहे थे आप, लेकिन क्या?
1: इस लेकिन के आगे कुछ नहीं है मीनाक्षी। जिंदगी में आदमी बहुत कुछ चाहता है, पर उसके रास्ते में जगह जगह लेकिन खड़े होते हैं। सारी कामनाएं एक लेकिन तक आकर रुक जाती हैं। मैंने भी शादीशुदा जिंदगी के बहुत मीठे मीठे सपने देखे थे। सपनों में प्यार के बादलों पर उड़ा था, रोमांस की हवाओं में तैरा था, लेकिन सपना तो बंद आंखों से देखा जाता है ना। आंखें खोलने पर तो कमबख्त जिंदगी नजर आ जाती है।

0: जीजा जी, अरे कहाँ हैं?
1: मैं यहाँ हूँ मीनाक्षी, छत पर।
0: ओ ऊपर, मैं आपके लिए कॉफी लाई थी।
1: यहाँ ऊपर ही ले आओ, आज की धूप बहुत मजेदार लग रही है।
0: वो तो होगा ही, आज संडे जो है, संडे तो सूरज का दिन होता ही है।
1: संडे छुट्टी का दिन भी तो होता है, जिसकी बदौलत तुम दिन भर घर में ही होती हो।
0: लेकिन मैं दिन भर घर में हूँ, क्या इसलिए आप ऊपर छत पर आ गए?
1: वो बात नहीं है, एक तो धूप में अच्छा लग रहा था, दूसरे तुम्हारे घर की इस छोटी सी छत पर आकर लगता है जैसे यहां से सारी दुनिया दिखाई देती है। देखो ना, दूर दूर तक बिछी चांदी के माथे वाली पहाड़ियां, पहाड़ियों से गलबैया डालकर लेटे रास्ते, और ऊपर इस कोने से उस कोने तक तना हुआ नीला कच्चा आसमान। सच मीनाक्षी, इतना बड़ा आसमान मैंने कभी नहीं देखा। शहर के आसमान को तो इमारतों की ऊंचाइयां खा जाती हैं, लेकिन यहां बैठकर जी करता है कि इस ढेर सारे आसमान की ताजी हवा को तलछट तक पी जाऊं।
0: लेकिन श्रीमान जीजा जी, फिलहाल आपको ये कॉफी पीनी है।
1: कॉफी? हाँ हाँ हाँ, लाओ लाओ लाओ। भाई, इस गुनगुनी धूप में गुनगुनी कॉफी जानती हो कैसी लगती है?
0: जैसे रजाई ओढ़कर पानी के टब में बैठे हो। भाई हंसो मत, अपन तो पहले ही कहते हैं कि कविताबाजी में बात करना अपने बस का नहीं। आपकी तरह कोई कवि या फिलोसफर तो है नहीं हम, बस सीधे सादे म्यूजिक टीचर हैं। सरगम चाहे सीधी गवा लो, चाहे उल्टी, वही सात सुर आते हैं अपन को तो।
1: सात सुर तो बहुत हो गए मीनाक्षी, जीवन को सुरीला बनाने के लिए तो एक सुर का आना ही काफी है।
0: सुर का आना नहीं, सुर का मिलना।
1: हाँ, शायद ठीक कहती हो। मेरी बेसुरी जिंदगी का शायद यही कारण है कि मेरा और पल्लवी का सुर कभी मिला ही नहीं।
0: वो इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं तार ढीला है। पर मैं पूछती हूं, क्यों? आखिर इसका कारण क्या है?
1: कारण? मेरे और तुम्हारे सुर के मिलने का कारण क्या है?
0: जीजा जी,
1: मन के तार सितार के तारों की तरह मुर्दा नहीं होते मीनाक्षी, उन्हें कसने के लिए किसी औजार की जरूरत नहीं पड़ती।
0: मैं नीचे जाती हूँ।
1: ठहरो मीनाक्षी, मैं कुछ कहना चाहता हूँ।
0: कोई ऐसी बात मत कहिए जीजा जी, जिसे सुनना मेरे लिए गलत हो।
1: तुम मुझे नाम लेकर क्यों नहीं बुलाती?
0: यही कहना था?
1: नहीं, कहना तो पता नहीं क्या था, लेकिन ये बताओ, अपने मेहमान को नैनीताल की सैर नहीं करवाओगे?
0: जी,
1: मेरा मतलब है, आज तुम्हारी छुट्टी है, मौसम भी अच्छा है, कहीं घूमने नहीं चल सकते क्या?
0: एक शर्त पर, कि आप मुझसे ऐसी वैसी कोई बात नहीं करेंगे।
1: इस शर्त पर नहीं करूंगा कि तुम मुझसे कोई ऐसी वैसी बात नहीं पूछोगी।
0: जाने दीजिए, शर्तों का बंधन कोई अच्छी बात थोड़ी ही है।

0: ओहो, बोर कर दिया आपने तो।
1: क्यों भाई?
0: पिछले घंटे भर से बस यही पूछे जा रहे हैं, इस पेड़ का नाम क्या है, इस फूल को क्या कहते हैं, ये किस चिड़िया की आवाज है, ये रास्ता कहाँ जाता है। इसके अलावा जैसे करने को कोई बात ही नहीं है।
1: है क्यों नहीं? चलो तुम्हारी बात करते हैं।
0: मेरी? मेरी कौन सी बात?
1: यही कि जब तुम यूं तुनकती हो तो।
0: तुनकती मतलब?
1: मतलब जब तुम यूं किसी बात पर चिढ़कर नाक सिकोड़ती हो
0: तो
1: बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे तुम पहाड़न हो।
0: पहाड़न हो? ये क्या बात हुई? मैं तो हूं ही पहाड़न। पहाड़ में पैदा हुई, पहाड़ में पली बढ़ी और पहाड़ में ही एक दिन देखना मरूंगी भी।
1: अरे भाई अब देखो, ये मरने वरने की बात मत करो।
0: अच्छा बाबा, नहीं करूंगी, तो भी रहूंगी तो पहाड़न ही। आपकी तरह पहाड़ थोड़े ही हो जाऊंगी।
1: पहाड़? मैं तुम्हें पहाड़ जैसा दिखता हूँ?
0: हाँ, ज्वालामुखी पहाड़।
1: ज्वालामुखी पहाड़।
0: और नहीं तो क्या। जैसे ज्वालामुखी पहाड़ को ऊपर से देखकर कोई सोच भी नहीं सकता कि उसके भीतर कितनी आग है। आपका भी वही हाल है। भला इस तरह आपको हंसता देखकर कौन कहेगा?
1: कहो ना, रुक क्यों गई?
0: कुछ नहीं, ऐसे ही, पागल हूं मैं भी।
1: नहीं मीनाक्षी, पागल नहीं हो तुम। तुम एक बेहद सेंसिटिव लड़की हो। ये पानी की धारा देखती हो? बिल्कुल इस पानी जैसी हो तुम, एकदम स्वच्छ निर्मल। कुछ बोलोगी नहीं?
0: शाम होने वाली है।
1: हाँ, वो नीचे अंधेरा धीरे धीरे सिर उठा रहा है।
0: और ऊपर ऊपर आसमान में भी तो देखिए कितनी रोशनी है, जैसे किसी ने सोने की पुताई कर दी हो।
1: मगर ये केवल थोड़ी ही देर, अभी देखते ही देखते सब कालिक में बदल जाएगा।
0: हमेशा बुझी बुझी निराशा फैलाने वाली नेगेटिव बातें ही करें, ये क्या जरूरी है?
1: कतई नहीं, और खास तौर पर जब तुम साथ हो तब तो बिल्कुल नहीं।
0: तो फिर?
1: तुम्हें कहा था कि ज्वालामुखी पहाड़ हूं मैं क्या करूं, कभी कभी अनजाने में ही भीतर का लावा फूट पड़ता है।
0: अच्छा पहाड़ साहब, अब इधर से आइए।
1: इधर? मगर पहाड़ जी, ये रास्ता तो लगता है कि किसी भूतिया हवेली की तरफ जाता है।
0: जी नहीं, ये शॉर्टकट है मंदिर का।
1: मंदिर?
0: हाँ, देवी का मंदिर। आइए।

0: कितना अच्छा लगता है ना। यहाँ इस समय रोज इसी तरह पूजा होती है। ये मंत्रों का स्वर, लोबान का धुआं, मंदिर का आंगन, सब कितना अच्छा लगता है, नहीं?
1: मुझे नहीं लगता।
0: अरे क्यों?
1: देवी देवताओं पर मेरा कतई विश्वास नहीं है।
0: एकदम नास्तिक है।
1: टोटल। इन पत्थर की मूर्तों की जगह मैं इंसानों में ज्यादा विश्वास करता हूँ।
0: धीरे बोलो, अगर देवी ने सुन लिया तो नाराज हो जाएंगी।
1: फिर क्या करेंगी नाराज होकर?
0: वो जो देवी बैठी है ना घर में, पल्लू देवी, उसे आपके खिलाफ भड़काकर चंडी देवी बना देंगी। क्यों हंसे क्यों?
1: भाई पल्लवी को तुमने पल्लू देवी अच्छा कहा। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो?
0: कुछ नहीं, आप हंसते हैं तो अच्छा लगता है।
1: अरे हंस लेते हैं हम भी कभी कभी, जब तुम जैसा कोई साथ हो तो।
0: वो नीचे किसी की शादी हो रही है।
1: हाँ, घोड़े पर दुल्हन बैठी हुई है।
0: घोड़े पर नहीं, घोड़ी पर। और दुल्हन नहीं, दूल्हा, जिसे आप घूंघट समझ रहे हैं वो सेहरा है जनाब।
1: अच्छा भाई, वो इतनी दूर है ना, तो मैं समझा के। और क्या है कि अंधेरा है ना, तो पेट्रो में

0: की रोशनी में कुछ ठीक से। वैसे एक सच्ची बात बताऊंगी तुम्हें, मुझे शादी ब्याह के बारे में कुछ भी पता नहीं है, इसलिए ये सेहरा और ये
1: हद हो गई। आखिर आपने भी तो शादी की थी, घोड़ी पर बैठे थे या मोटर में?
0: कुछ और बात करो मीनाक्षी।
1: सुबह से देख रही हूँ, जब भी आपकी और पल्लवी की शादी के बारे में कोई बात शुरू करती हूँ आप टाल जाते हैं। आखिर बात क्या है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता।
0: इतने दिनों से देख तो रही हो, अब भी क्या कुछ कहने पर ही समझोगी?
1: समझना नहीं, जानना चाहती हूँ।
0: जानकर क्या करोगी, और उससे होगा भी क्या?
1: होगा भी क्या, शायद ठीक सोचते हैं आप, मेरे किए क्या हो सकता है। और शायद इसीलिए आपकी शादी के बारे में सवाल करने का मुझे कोई अधिकार भी नहीं।
0: नहीं नहीं, वो बात नहीं है, आखिर तुम बहन हो पल्लवी की।
1: हाँ बहन हूँ, मगर मौसेरी, पल्लवी मेरी मौसी की लड़की है।
0: तो क्या हुआ, मैं तो तुम्हें सगा मानता हूँ।
1: सगा? सगा मानते हैं किस रिश्ते से?
0: रिश्तों के क्या नाम होना जरूरी है मीनाक्षी?
1: पता नहीं।
0: कहने को पल्लवी मेरी पत्नी है, पर पत्नी क्या ऐसी होती है? सच पूछो तो मेरी और पल्लवी की शादी दो परिवारों के बीच हुआ एक सामाजिक समझौता है। शादी के बावजूद पल्लवी ने अपनी जिंदगी में कुछ भी खोया नहीं, और मैंने शादी के बावजूद अपनी जिंदगी में कुछ भी पाया नहीं। इसे रिश्ता कौन कहेगा? तुम तो पल्लवी को शुरू से जानती हो ना मीनाक्षी।
1: नहीं तो, आपकी शादी से पहले शायद एक दो बार ही मुलाकात हुई थी। मैं तो बचपन से यहाँ नैनीताल में ही पली बढ़ी, और पल्लवी दिल्ली में रहती थी। बस कभी कभार मौसी के साथ यहाँ घूमने आती थी।
0: लेकिन पल्लवी तो कहती है कि उसकी और तुम्हारी खूब जमती थी।
1: जमती थी? पता नहीं।
0: देखो मीनाक्षी, तुमने पल्लवी के और मेरे बारे में पूछा है, तो एक बात मैं भी पूछूंगा।
1: पूछिए।
0: तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की?
1: जी,
0: अपना सवाल दोहराऊं मैं?
1: बर्फ का पहाड़ बंजर होता है प्रभाकर बाबू, बर्फ में फूल नहीं खिलते।
0: अगर बर्फ पिघलकर धरती में जज्ब हो जाए तो?
1: रोज रोज कहाँ होता है ऐसा, बस एक बार हुआ था मेरे साथ भी। कई बरस हो गए उस बात को, अब तो लगता है जैसे पिछले जन्म की बात है। तब मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ती थी, पल्लवी गर्मियों की छुट्टी में नैनीताल आई हुई थी, और उस बार

0: आती है साले तू। हाय सच्ची मीना, तेरा गाना सुनकर तो साले दिल का इना मीना डिका हो जाता है।
1: रहने दे, झूठी तारीफ करने से जबान कट जाती है।
0: ओले, ये झूठी तारीफ है? मुझे अगर थोड़ा सा भी गाना आता ना तो हाय हाय हाय आशिकों की लाइन लगा देती।
1: छी, कैसी बातें करती है।
0: अरे तू क्या जाने, हाय हाय हाय सच कहो मीनाक्षी, अगर तो ये चश्मा ना लगाती और तेरे चेहरे पर ये दो चार चेचक वाले दाग नहीं होते ना, तो अपनी सुरीली आवाज की रस्सी में 20 लड़के बांध सकती थी तू।
1: लगता है तूने कई बांध रखे।
0: अरे अपन को साला गाना आता ही कहाँ है मीनाक्षी।
1: नहीं आता तो सीख ले।
0: नॉट ए बैड आइडिया। अच्छा चल ठीक है, इधर ला अपना सितार।
1: सितार नहीं, तानपुरा।
0: अरे हाँ यार, वो एक ही बात है, सितार कहो या तानपुरा, पर वो किधर गई तेरी सरगम वाली वो कॉपी, पता नहीं कहाँ रख देती है। ये रही। अब बोल बोल ना यार, कौन सा राग गाऊं? अरे
1: नहीं,
0: बोल ना।
1: नहीं नहीं, ये कॉपी मुझे दे।
0: हाँ मेरा राग भी तो सुन लेना कॉपी में से। अरे छुपी रुस्तम, कॉपी में ये फोटो किसका है?
1: मैं कह रही हूँ दे दे ये फोटो मुझे।
0: तो ये बात है बच्चू, इस फोटो का जादू है। हाय हाय, मैं भी तो कहूँ।

0: गले में से ऐसे ऐसे मीठे सुर कैसे फूट रहे हैं।
1: मैं कहती हूँ पल्लू, फोटो मुझे दे दे।
0: अरे देती हूँ बाबा, देती हूँ ना, देख लेते तो अच्छी तरह से।
1: बस हो गया, अब दे दे।
0: हो गया, ये तो मैं समझ गई जाने मन, पर ये बता मेरी जान, कब हुआ?
1: देख पल्लू, तू
0: कब से चल रहा है तेरा ये मामला?
1: 3-4 महीने से।
0: अच्छा, तो ये भी तो बता दे, कौन है ये तेरा बांका?
1: लड़का है।
0: अरे हाँ हाँ, वो तो मैं भी देख रही हूँ, मगर इसका नाम क्या है?
1: शेखर।
0: शेखर तेरी क्लास में पढ़ता है?
1: सीनियर है।
0: ये भी गाना गाता है क्या?
1: नहीं, सुनने का शौकीन है।
0: हाय भाई, है तो बहुत शानदार, पर असलियत में भी इतना खूबसूरत है कि सिर्फ फोटो में ही दिख रहा है?
1: देखकर बताना।
0: अरे यार, यही तो मैं पूछ रही हूँ, कब मिलवाएगी?
1: शाम को।
0: अच्छा।

0: कल तुमने अपनी जिस बहन से मिलवाया था, क्या नाम है उसका?
1: पल्लवी।
0: हाँ, पल्लवी। कितना नया नाम है, नहीं?
1: नहीं, नया काहे को, हिस्टोरिकल है, चंद्रगुप्त मौर्य के जमाने का। जरा एक मिनट ठहरो ना।
0: क्यों, क्या हुआ?
1: देखो ना, यहाँ से नीचे झील कितनी सुंदर लग रही है, जैसे चांदी का फर्श हो।
0: मालूम है, अगर यहाँ से पांव फिसल गया तो इस चांदी के फर्श तक पहुँचते पहुँचते हड्डी पसली के कितने टुकड़े होंगे।
1: अगर तुम साथ रहो तो फिर हो जाए टुकड़े, किसे परवाह है।
0: जाने दो, आगे चलते हैं।
1: ओके।
0: अच्छा ये बताओ कि अब वो यहीं रहेगी?
1: कौन?
0: अरे वही तुम्हारी हिस्टोरिकल बहन पल्लवी।
1: यहाँ? यहाँ क्यों रहेगी, वो तो दिल्ली में पढ़ती है ना, यहाँ तो सिर्फ छुट्टियां बिताने आई है।
0: मतलब महीने भर रहेगी?
1: हाँ महीने भर तो जरूर रहेगी, मगर क्यों?
0: नहीं ऐसे ही, बहुत सुंदर है तुम्हारी बहन, बिल्कुल जैसे अजंता एलोरा की गुफाओं से निकल कर आई हो।
1: सगी थोड़े ही है, मेरी मौसी की लड़की है।
0: आई नो, सगी होती तो तुम्हारी सूरतें इतनी अलग अलग थोड़ी ही होती। अच्छा एक बात बताओ, तुम ये बालों के जूड़ी से क्या बना लेती हो, पल्लवी की तरफ पोनीटेल क्यों नहीं करती?
1: तुम्हें अच्छी लगती है तो अब किया करूंगी।
0: कल झील में बोटिंग के लिए चले?
1: कल बोटिंग? लेकिन पल्लवी आई हुई है ना।
0: तो क्या हुआ, उसे भी साथ ले लेंगे, एक से भले तो से भले तीन।
2: अरे मीनू की बच्ची, अभी तक किताबों में घुसी हुई, कब तक पढ़ती रहेगी? तुझे मालूम है ना कल मैं दिल्ली वापस जाने वाली हूँ।
1: वो तो ठीक है पल्लू, मगर इम्तिहान भी तो सर पर है।
2: इसीलिए आजकल किताबों का कीड़ा बनी हुई है, बाहर आना जाना सब बंद।
1: तेरे पास भी तो फुर्सत नहीं है मेरे से बात करने की।
2: अरे यार मैं तो आई ही मस्ती मारने हूँ। और फिर अपना तो ये है कि मौज कर लो जितनी कर सकते हो, ये दिन कोई साले लौट कर तो आने वाले है नहीं।
1: अपना अपना नजरिया है, मैं तो समझती हूँ आने वाले कल को खुशनुमा बनाना हो तो आज थोड़ी मेहनत करनी ही पड़ती है।
2: अरे रहने दे यार अपने ये फिलोसफी, हानी तो भूख आज लगी है और तू कहती है रोटी कल खाएंगे।
1: तुझे क्या पता, एक दिन उपवास रखो तो अगले दिन खाना खाने में ज्यादा मजा आता है।
2: अब छोड़ना यार ये बुढ़ियों वाली व्रत उपवास की बातें, आई डोंट लाइक ऑल दिस थिंग। इन्हीं बातों ने ना तुझे मरगिल्ली बना रखा है। देख देख देख, मेरे जैसे जिंदा दिल होती ना तो किताबों में आंखें गढ़ा कर चश्मे का नंबर बढ़ाने की बजाय रोज शाम को किसी बॉयफ्रेंड के साथ डिस्को में डांस करती हुई नजर आती।
1: ना बाबा ना, ये सब ना मुझे अच्छा लगता है और ना ही शेखर को।
2: शेखर को? तो क्या तू अभी तक शेखर के नाम की माला जप रही है?

वो हंसी आज भी जैसे मेरे कानों में गूंजती है प्रभाकर बाबू, जैसे वो हंसी पल्लवी की नहीं मेरी तकदीर की थी।

0: किसी श्राप की तरह मेरी जिंदगी पर छा गई। कितनी मूर्ख थी मैं, जो आईने में अपनी सूरत देखकर भी किस्मत पर शक नहीं हुआ। मुझे इतना भी ख्याल नहीं आया कि रेगिस्तान में सैर करने कोई नहीं आता, सब अजंता एलोरा जाना चाहते हैं।
1: सब नहीं मीनाक्षी, सिर्फ वही जो शेखर होते हैं, और शेखर हर कोई नहीं होता।
0: क्या पता कौन कैसा है, ये परखने की कभी हिम्मत ही नहीं हुई। बाद में एक अजीब सा डर था जिसे सीने में दबाए जिंदगी की डगर चुपचाप चलते चलते 35 बरस पार कर गई हूं, मगर पल्लवी की वो हंसी जैसे आज भी किसी प्रेत की तरह दोनों हाथों से मेरी गर्दन दबाए हुए है।
1: मेरी तरफ देखो मीनाक्षी, मेरी आंखों में देखो, क्या इन आंखों में तुम्हें कहीं झूठ की छाया दिखाई देती है?
0: कहना क्या चाहते हो?
1: दिल की पूरी सच्चाई से मैं ये कहना चाहता हूं मीनाक्षी कि तुम बहुत सुंदर हो।
0: प्रभाकर,
1: एक दिन पल्लवी ने तुमसे शेखर को छीना था, क्योंकि शेखर की नजरों में पल्लवी ज्यादा सुंदर थी, और आज उसी पल्लवी का पति तुम्हारी सुंदरता के आगे बिकने को तैयार है मीनाक्षी।
0: नहीं, सूखे पेड़ से तो किसी को छांव भी नहीं मिलती प्रभाकर बाबू।
1: मैं तुमसे कुछ मांग नहीं रहा हूं मीनाक्षी, मैं तो चाहता हूं कि अपमान के उस प्रेत से तुम्हें मुक्त कर दूं जिसने तुम्हारी गर्दन दबाई हुई है।
0: नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अपमान के जिस शहर ने मुझे जीवन भर तड़पाया है, उसे मैं पल्लवी के गले में कैसे उड़ेल दूं? पल्लवी आखिर मेरी बहन है, इस शहर को तो मैं किसी पेड़ की जड़ों में भी नहीं डाल सकती, कभी नहीं, कभी नहीं। ठूठ होकर जीने का दर्द मुझसे ज्यादा और कौन जानेगा, कौन जानेगा।

0: सूखा पेड़। अभी आपने ये नाटक सुना। लेखक और प्रस्तुतकर्ता थे लोकेंद्र शर्मा।
1: ये है विविध भारती।
2: उजाले उनकी यादों के। उजाले उनकी यादों के।

0: श्रोताओं नमस्कार, उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। फिल्मी पर्दे पर अनगिनत किरदार नजर आते हैं, जैसे हम याद रखते हैं हीरो को, वैसे ही विलेन को भी नहीं भूल पाते हैं। एक ऐसे ही कलाकार सदाशिव अमरापुरकर, जिन्होंने पर्दे पर विलेन का किरदार निभाकर हमारे दिल में पैदा किया एक खौफ, और दूसरी ओर अपनी कॉमिक अंदाज से ठहाका लगाने पर किया मजबूर। पर फिल्मी पर्दे से दूर कैसा था उनका व्यक्तित्व? पर्दे पर विलेन बनते सदाशिव अमरापुरकर असल जिंदगी में थे कैसे? उनका ये व्यक्तित्व हमारे सामने लाई हैं उनकी बेटी रीमा अमरापुरकर। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में इन दिनों जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की यादों के उजाले हमारे साथ बांट रही हैं उनकी सुपुत्री रीमा अमरापुरकर। आपसे बातचीत कर रहे हैं यूनुस खान। आइए सुनते हैं इस लंबी बातचीत की चौथी और अंतिम कड़ी।
1: पूरे एक दौर की हम बात कर रहे हैं, सदाशिव अमरापुरकर जी की पूरी यात्रा, जहां पर वो एकदम विलेन के रोल से कॉमेडी रोल्स की तरफ चले आते हैं और फिर वो मराठी सिनेमा में अपनी पसंद का अलग अलग तरह का काम कर रहे होते हैं। इतने बरस हो गए थे सिनेमा में काम करते हुए और कई बार एक एक जैसा काम भी हो रहा था। क्या ये वो दौर था 90s का, जब उनके भीतर एक तरह

0: का असंतोष आना शुरू हुआ था?
1: डेफिनेटली, क्योंकि ये किसी भी कलाकार के लिए एक ही तरह का काम करना ये एक बहुत बड़ी शिक्षा होती है. मराठी में शिक्षा कहते हैं, उसका मतलब है पनिशमेंट,
0: सजा.
1: सजा किसी भी संवेदनशील कलाकार के लिए ये एक सजा होती है. और रेस्टलेसनेस तो डेफिनेटली उनमें आ ही रहा था, पर जैसा मैंने कहा कि उन्होंने ये मान लिया था कि मुझे मेरा घर, मेरे परिवार के लिए अगर पैसे कमाने हैं तो मुझे ये करना है. ये उन्होंने एक पॉइंट पे मान लिया था और उन्होंने वो निभाया. लेकिन जैसे हमने बात की कि आउट एंड आउट कॉमेडी फिल्में करते वक्त वो वास्तु पुरुष दोगी जैसी फिल्में कर रहे थे, वैसे ही आउट एंड आउट कमर्शियल काम करते वक्त, विलनी का काम करते वक्त भी वो सामाजिक कामों में खुद को बहुत बिजी रखते थे. तो उनकी लाइफ में हमेशा ही दो ट्रैक चलते थे. हालांकि तीन ट्रैक भी कह सकते हो फैमिली का अगर ट्रैक पकड़ा जाए तो, वरना करियर वाइज अगर देखा जाए तो दो ट्रैक्स उनके चलते थे. एक तो जो कमर्शियल काम वो करते थे वो, और दूसरा जो सामाजिक काम करते थे वो. उन्होंने कभी सामाजिक काम की तरफ करियर के तौर पर नहीं देखा. उन्होंने हमेशा उसे एक जिम्मेदारी, एक कलाकार, और अगर मैं आज कुछ हूँ, अगर मैं जो कहता हूँ, मेरे कहने को अगर कुछ वजन है तो उसका उपयोग मैं किस लिए करता हूँ, इसका उन्हें हमेशा ख्याल रहता था और वो करते थे. इसलिए वो सामाजिक कृतज्ञता निधि की हमने बात की, वो उनका चल रहा था. अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति में भी वो कार्यरत थे. मुक्तांगन डी एडिक्शन सेंटर जो है पूना में, जो पहला डी एडिक्शन सेंटर महाराष्ट्र में बना, उसमें भी वो इन्वॉल्व थे. बिकॉज डॉक्टर अनिल अवचट और सुनंदा अवचट, उनके साथ उन्होंने वो किया था. डॉक्टर आनंद नाडकर्णी के साथ इंस्टीट्यूट फॉर साइकोलॉजिकल हेल्थ, सो मेंटल हेल्थ में भी वो काम कर रहे थे. फिर अहमदनगर में रेड लाइट एरिया में स्नेहालय करके एक संस्था है, आज भी है और बहुत अच्छा काम कर रही है, कि जो कमर्शियल सेक्स वर्कर्स है उनके बच्चों के लिए वो संस्था ने काम करने से शुरुआत की. और आज के दौर में लगभग 1,000-1,500 बच्चों का, जिनका शोषण अलग अलग तरीके से होता है, जो वायलेंस को फेस कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए भी वो संस्था काम करती है और बहुत अच्छे से काम कर रही है. तो अहमदनगर के एक युवक ने जब ये डिसाइड किया कि मुझे ये काम करना है, एक ब्राह्मण युवक ने, ये कहना बहुत जरूरी है, बिकॉज ये अगेन 90s का दौर है जब जाति व्यवस्था बहुत स्ट्रांग थी. और जैसा मैंने कहा कि अहमदनगर एक बहुत ही पैट्रियार्कल सिटी है, आज भी है. तो उस वक्त एक ब्राह्मण लड़के ने ऐसी बस्ती में जाना और वहां की औरतों के साथ काम करना या उनसे बातचीत करना, ये बहुत ही खराब नजरिए से देखा जाता था. पर जब गिरीश वो काम कर रहे थे और पापा जब ही नगर जाते थे तो ये जो सारे काम करने वाले लड़के लड़कियां थे, ये पापा को मिलने आते थे कि हम ये काम कर रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं. तो जब गिरीश आया मिलने, तब गिरीश ने बताया कि मैं ऐसा ऐसा कर रहा हूँ. और गिरीश पापा के कॉलेज प्रोफेसर के बेटे थे, तो इसलिए उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा है. तब पापा ने ये स्टेटमेंट दी हुई थी अहमदनगर के लोकल न्यूज़पेपर्स में कि देखो, ये जो औरतें हैं ये भी हमारे समाज का ही एक घटक है, इसलिए इनके लिए काम करना कोई बुरी बात नहीं है. और फिर अहमदनगर में लोगों का नजरिया धीरे धीरे धीरे धीरे बदलने लगा. फिर पापा स्नेहालय के ट्रस्टी भी बने. फिर कुछ दिनों के बाद वो वहां से निकल गए, क्योंकि उन्होंने कहा कि अब संस्था अगर खुद से चल रही है तो मेरे होने की जरूरत नहीं है. पर वहां पर आमिर खान को ले जाना हो, सत्यमेव जयते में बिल्कुल पहले एपिसोड में स्नेहालय की केस स्टडी है,
0: बिल्कुल,
1: तो आमिर खान को ले जाना हो या श्याम बाबू को ले जाना हो, ऐसे बड़े बड़े लोगों को उस वक्त वो अहमदनगर लेके जाते थे. ये देखो, ये ऐसे काम कर रहे हैं बच्चे, इनको ऐसे हम लोगों ने मदद करनी चाहिए. इस तरह से उनका काम चलता था. तो हालांकि कलाकार के तौर पर थोड़े से अनसेटल्ड वो हो रहे थे, क्योंकि उनकी जो रेंज थी, जिस तरह काम करने की उनकी क्षमता थी, उतना काम उन्हें उस वक्त नहीं मिल रहा था, उतनी रेंज का काम नहीं मिल रहा था, तो वो था. लेकिन वो इन कामों में खुद को बहुत ज्यादा बिजी रख रहे थे, तो इसलिए वो जो एक डिससैटिस्फैक्शन था, वो सैटिस्फैक्शन में इस काम की वजह से वो बदल पा रहे थे.
0: बिल्कुल, इम्पोर्टेंट बातें हुई इस पूरे सेक्शन में, और मुझे लगता है कि अब यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं, तो कौन सा गाना होगा?
1: पापा का एक बहुत ही पसंदीदा गाना था, इतनी शक्ति हमें देना दाता.
0: वाह, अंकुश फिल्म का ये गाना. और यहाँ मैं दो क्रेडिट जरूरी तौर पर याद करना चाहूंगा, इसे अभिलाष जी ने लिखा था और कुलदीप सिंह का संगीत.
1: यस,
0: ये गाना सुनते हैं.

बहुत मजेदार बातें हुई हैं और चूंकि मेरा काम इन बातों को एक दिशा देना है, मुझे पीछे का एक सूत्र याद है जो हम छोड़ के चले आए थे कि इसकी बात आगे करेंगे। डॉक्टर श्रीराम लागू और

0: सदाशिव अमरापुर करके रिश्ते की बात।
1: हाँ जी डॉक्टर लागू। अब कैसे बताऊं मैं। जैसा मैंने मेरे शो में भी कहा हुआ है, उन्होंने कन्यादान प्ले जो था वो एक साथ किया,
0: तेंदुलकर वाला,
1: और उसमें डॉक्टर लागू को निर्देशित किया था पापा ने।
0: ये बहुत बड़ी बात बहुत मानी जानी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर लागू एक दर्जे के कलाकार थे।
1: करेक्ट।
0: और उनको डायरेक्ट करना कोई आसान काम
1: नहीं। और उन्होंने मानना कि ये युवक है और ये मुझे डायरेक्ट करेगा
0: जी।
1: ये एक बहुत बड़ी कॉम्प्लीमेंट है, अपने आप में एक कॉम्प्लीमेंट है। तो उन्होंने उनके साथ काम किया हुआ था। जैसा मैंने कहा कि डॉक्टर लागू ऑलरेडी सामाजिक कामों में काफी बिजी थे और काफी इन्वॉल्व थे। तो ये जो बात है ना, जो पापा के अंदर थी, पर उस बात को हवा देना, उस चिंगारी को हवा देने का काम डॉक्टर लागू और नीलू भाऊ ने किया कि हम कलाकार हैं और हमें समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी है, तो वो हमें निभानी है। तो इस तरह से पूरी तरह से उन्हें सामाजिक विचारधारा में और सामाजिक कामों में खींचने का काम डॉक्टर लागू ने किया, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी बात मैं ये बताना चाहूँगी कि डॉक्टर लागू अगर नहीं होते तो शायद हमारा परिवार फिर से अहमदनगर, मतलब अहिल्यानगर हम जैसे कहते हैं, फिर से अहिल्यानगर जा चुका होता। क्यों? क्योंकि जब हमें वो किराए का घर छोड़ना पड़ा और पापा ने सीएम के पास जाकर तेंदुलकर साहब ने उन्हें चिट्ठी दी थी, तो म्हाड़ा का घर भी अगर लेना हो तो आपको डिपॉजिट भरना पड़ता है, और उस समय इतना पैसा नहीं था पापा के पास कि हम घर ले पाए या डिपॉजिट भर पाए। तब पापा ने जाकर डॉक्टर लागू को रिक्वेस्ट की थी और उन्होंने 2 मिनट के अंदर लाके उन्हें वो पैसे दे दिए थे और वो फिर वो डिपॉजिट भर पाए और हमारा घर हो पाया। ये एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन डॉक्टर लागू की हमारे परिवार के जीवन में रही है। और दूसरी एक जो बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो डॉक्टर लागू की वजह से पापा करने लगे और कर पाए, वो बात ये थी कि जो भी तुम कहना चाहते हो वो ठीक ठीक कहो। अभी ये हुआ है कि हम लोग काफी डिप्लोमेटिक हो गए हैं। एक समय था जब कलाकार पॉलिटिशियंस सब लोग एक साथ बैठकर एक दूसरे की खिल्ली उड़ाया करते थे, आज वो दौर नहीं रहा। तो वो समय था जब डॉक्टर लागू ने पापा को बताया था कि तुम कलाकार हो, तुम नेशनल लेवल पर काम कर रहे हो, तुम काम बहुत करोगे, अपनी इंडस्ट्री ऐसी है कि आपको सबको खुश रखना होता है, पर ये कभी मत भूलना कि तुम्हें ये जो शोहरत मिली है, तुम ये जो मशहूर हुए हो, ये एक इट्स अ वेपन, इसका इस्तेमाल तुम्हें किस चीज़ के लिए करना है ये तुम डिसाइड करोगे। तो इसलिए कभी भी जब भी मौका मिले और सच की और तुम्हें खड़ा रहने का चांस मिले तो डेफिनेटली खड़े रहना। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सीख जो डॉक्टर लागू ने खुद के बर्ताव से भी हमेशा सामने लाई हुई है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो वो डॉक्टर लागू से सीखे पापा, ये बहुत ज़रूरी है। और मुझे खुशी इस बात की होती है कि ये जो सीखे पापा को मिली वो उन तक सीमित नहीं रही, वो उन्होंने अपने बर्ताव से, अपने जीवन से और अपनी बातों से हम तक भी वो पहुंचाई। मुझे याद है जब पापा गुजर गए थे और निखिल वागड़े जी आए थे कि श्रद्धा सभा में, और तब उन्होंने कहा था कि अब हम मराठी न्यूज चैनल्स अगर कुछ गलत हो रहा है तो ऐसा बड़ा नाम बचा ही नहीं है जो हमें रिएक्शन देगा,
0: विरोध करेगा,
1: जो विरोध करेगा या सामान्य आदमी को, नागरिक को क्या लग रहा है इसके बारे में बात करेगा, ऐसी आवाज ही नहीं बची है। तो ये मेरे ख्याल से एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो पापा ने बखूबी निभाई। जब अण्णा हजारे जी का अनशन उन्होंने किया था दिल्ली में, तब भी महाराष्ट्र में वो हवा बनाए रखने में पापा का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है उस वक्त।
0: घर की एक बात मुझे याद आई कि बाद के दिनों में ऐसा हुआ था कि किसी ने उनको सुझाव दिया था कि सरकार कलाकार कोटे से बड़े घर या बंगलो देती है, और उन्होंने रिफ्यूज किया था कि मैं वो नहीं कर सकता।
1: करेक्ट। पापा एक ऐसे कलाकार है, आई थिंक एक अकेले ऐसे कलाकार है जिन्हें म्हाड़ा के 2% में से घर मिला था। और जब उन्होंने खुद का घर खरीदा बाद में, तब उन्होंने वो म्हाड़ा को वापस कर दिया।
0: गजब।
1: हालांकि उन्होंने उसके लिए पैसे भी भरे थे, सब कुछ था, पर उनका कहना था कि जब मुझे जरूरत थी तब मुझे ये मिला था, तो आज किसी और को अगर ये जरूरत है तो ये जरूरत पूरी होना ज्यादा जरूरी है।
0: वो आराम से बेच सकते थे पैसे,
1: वो
0: ले सकते थे।
1: हाँ, बेचकर वो ले सकते थे, बिकॉज हम वहां पर 7-8 साल रहे थे, तो जो 4 साल का लॉक इन पीरियड होता है वो भी निकल चुका था, तो वो बेच सकते थे। पर उन्होंने नहीं बेचा, उन्होंने वो वापस

0: कर दिया।
1: गजब।
0: और इसी तरह उस समय अंधेरी में, जो अभी बहुत ही बड़ा एरिया है लोखंडवाला का, उस वक्त माड़ा के छोटे छोटे छोटे छोटे बंगले हुआ करते थे, जिनके काफी स्टूडियोज बन चुके थे। फिल्म इंडस्ट्री के काफी लोगों ने वहां पर वो छोटे छोटे माड़ा के घर लेकर बहुत सस्ते में, क्योंकि मिल रहे थे,
1: आज भी मौजूद है,
0: और वहां पर बंगले में स्टूडियोज और ये सब बनाए। तो उस समय जो पापा के सेक्रेटरी थे, उन्होंने कहा सदाजी हम भी ले लेते हैं, एक स्टूडियो बना देते हैं उधर, डबिंग स्टूडियो रहेगा, एडिटिंग स्टूडियो रहेगा, एक इनकम शुरू हो जाएगा। तो पापा ने कहा क्यों मैं करूं ये सब, अगर मैं ये करता हूं तो कोई और जो व्यवसाय के तौर पर करना चाहता है उसका मैं रोजगार छीन रहा हूं, जो मुझे नहीं करना है। तो आपके बच्चों के लिए ये, वो मेरे बच्चों को मैं सिखा रहा हूं, वो बड़े होंगे, उनको जितना कमाना है कमाएंगे, नहीं कमाना है नहीं कमाएंगे, दे डोंट नीड टू डू दिस, मैं उनके लिए जागीरें बना के नहीं रखूंगा, ये उनका एक कहना होता था। तो हाँ, उनको हर बार इलेक्शन जब भी होता था तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी से उनको बुलावा आता था कि आप हमारी ओर से खड़े रहिए, आप हमारी ओर से। पापा ने कभी नहीं किया, या कोई भी सामाजिक संस्था में भी उन्होंने कोई भी डेजिग्नेशन नहीं लिया। तो वो कहते थे जो काम करना है ना वो मुझे बताओ, मैं करता हूँ, मुझे ये डेजिग्नेशन नहीं चाहिए, आपने मुझे चेयरमैन बना दिया, सेक्रेटरी बना दिया, ये मुझे नहीं चाहिए। बिकॉज उसके साथ जो जिम्मेदारी आती है, लीगल हैसल्स आते हैं, वो कौन करेगा? बिकॉज जैसा मैंने कहा वो कलाकार थे,
1: बिल्कुल
0: उन्हें उनकी कला में रस था और जो अच्छा काम करना है उसमें रस था।
1: क्या बात है।
0: पापा का ये हमेशा कहना होता था कि मेरे बच्चों को जो भी कमाना है वो खुद के बलबूते पर वो कमा लेंगे, मैं उनके लिए जागीरें नहीं रखूंगा। और ये मेरे ख्याल से ये हमारी फैमिली का ही
1: ट्रेडिशन है।
0: बिकॉज मेरे दादाजी का भी यही कहना था कि मैं तो धर्मादाय कर दूंगा सब कुछ, तुम्हें देखो जो करना है, जैसे खुद का घर चलाना है तुम चलाओ, ऐसे ही पापा का भी था। तो जैसा मैंने कहा कि सामाजिक काम भी दादाजी करते थे, वही हमारे घर में चलता आया है, और ये भी वैल्यूज आई थिंक वहीं से आई हुई है।
1: बिल्कुल। रीमा जी, अब हम अपनी बातचीत के लगभग आखिरी मकाम पर आ पहुंचे, जहां एक कठिन बात करनी है, और वो है कि जब सदाशिव जी बीमार पड़े और वो जो पूरा आखिरी दौर है, जाहिर है वो सब आपने देखा है, उन दिनों को थोड़ा याद करें।
0: उन दिनों को याद करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जैसा मैंने बिल्कुल शुरुआत में कहा था कि पापा की आवाज उनकी ताकत थी, और जब वो बीमार हुए और उनको इंटरस्टेशियल लंग डिसीज करके एक डिसीज होता है, जिसमें अपने जो फेफड़े होते हैं उनकी फ्लेक्सिबिलिटी चली जाती है, तो सांस लेना बहुत मुश्किल होता है, और अगर आप में दम सांस नहीं है तो आप आवाज भी नहीं निकाल पाते। तो इसलिए उनकी आवाज धीरे धीरे धीरे धीरे
1: कमजोर होती गई,
0: और ये हम सब लोगों के लिए बहुत ही ट्रेजिक था। और उस समय उनकी उम्र ही क्या थी, ही वॉज 63, 63 साल के थे वो, आगे और बहुत 10-15 साल तो कम से कम वो काम कर पाते
1: अगर बिल्कुल, बिल्कुल।
0: उन्होंने डिसाइड किया होता तो। लेकिन वो डिसीज हुआ, सांस लेने में तकलीफ होने लगी, इसलिए वो बात नहीं कर पाते थे, और वो इतने ऑनेस्ट थे कि उनके पास प्रोड्यूसर्स तब भी आते थे कि सदाजी ये छोटा रोल है आप ये कर दीजिए। कई कलाकारों को हम भी जानते हैं जो बीमार होते हुए भी काम करते रहते हैं, पर पापा उनको बोल देते थे कि देखो अगर तुम्हें लगता है मैं उसी तरह से बोलूंगा तो मैं बोल नहीं पाऊंगा, ये मेरी आवाज की हालत है। इस तरह से वो बहुत ओपनली और क्लियरली बात बताते थे। वो टाइम बहुत ही डिफिकल्ट हम सबके लिए था, बिकॉज आप सोचिए कि एक पहाड़ जैसा आदमी, जिसको आपने बचपन से इतना स्ट्रॉन्ग, इतना क्या कहते हैं,
1: जुझारू
0: एक्चुअली, और रियल लाइफ में भी सिर्फ पर्दे पर नहीं देखा हुआ है, वो जब आपके सामने धीरे धीरे धीरे धीरे वीक होता जाता है तो ये आप सहन नहीं कर पाते, ये आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते, और ये हमारे पूरे परिवार के लिए एक बहुत ही तकलीफ वाला दौर था, पूरे 6 महीने जब वो बीमार थे तब। और मैं क्या कहूँ, तब लोगों ने, जैसा मैंने पहले कहा था कि जब आप मशहूर होते हो तो जैसे प्यार भी करते हैं लोग, तो लोग ये भूल जाते हैं कि वो भी एक इंसान है और उसकी भी एक निजी जिंदगी है। तो कुछ घटनाएं ऐसी घटी उस वक्त, लोग ये चाहते थे, जैसे अभी धर्म जी के बारे में भी हुआ कि उनका आईसीयू में उनका वीडियो निकाला गया, तो वैसे लोग चाहते थे, मुझे चैनल से फोन आते थे कि रीमा उनका एक आईसीयू में एक फोटो निकाल के आप भेजो, ओके। या लोग मिलने आते थे, तो उस समय मोबाइल फोन्स, कैमरा फोन्स आ गए थे, 2014 की बात कर रही हूँ मैं, तो हम ये देखते थे कि जो भी अंदर जा रहा है पापा से

0: मिलने, उसके साथ कोई ना कोई हो, बिकॉज हम ये नहीं चाहते थे कि कोई फोन निकाले, वीडियो निकाले, फोटो निकाले और सर्कुलेट करे, बिकॉज वो एक कलाकार थे।
1: ये होना ही नहीं चाहिए,
0: हाँ,
1: कोई भी रीजन हो, नहीं होना चाहिए।
0: और लोग उन्हें जिस तरह से याद लोगों ने रखना चाहिए, वो उनकी बुलंद आवाज़, वो उनकी पर्सनालिटी, उनकी एक्टिंग, उनकी दहशत जो पर्दे पे वो पैदा करते थे, वो याद रखे। ये क्यों याद रखना है?
1: बिल्कुल
0: जैसे इवन धर्म जी के बारे में जब हुआ तो इतना बुरा लगा कि ही मैन, ही इज द ही मैन ऑफ द इंडस्ट्री,
1: राइट।
0: और उनको इतना वीक दिखाकर आप क्या हासिल कर रहे
1: देखिए,
0: हैं?
1: समय और उम्र किसी को नहीं बख्शते हैं, तो
0: एग्जैक्टली,
1: इसलिए उसका लिहाज कर लेना चाहिए
0: बहुत
1: और
0: बहुत
1: लोगों को
0: जरूरी
1: अपनी
0: है,
1: प्राइवेसी में
0: छोड़ देना
1: छोड़ देना
0: चाहिए।
1: चाहिए ऐसे समय पर।
0: बिकॉज पापा अहमदनगर को अपने दिल में रखे हुए थे, तो ये बात तो पक्की थी कि उनका जो भी अंतिम संस्कार है वो अहमदनगर में होगा। तो जब हम अहमदनगर गए और हमारी जो हवेली है उसके आंगन में ही पापा को रखा हुआ था दर्शन के

0: विचार को अपने दिल में रखे हुए थे। तो ये बात तो पक्की थी कि उनका जो भी अंतिम संस्कार है वो अहमदनगर में होगा। तो जब हम अहमदनगर गए और हमारी जो हवेली है उसके आंगन में ही पापा को रखा हुआ था दर्शन के लिए, तो आप बिलीव नहीं करोगे, लगभग 2-3 किलोमीटर तक लाइन लगी हुई थी और वो लाइन रुकी नहीं रही थी। अल्टीमेटली एक 4-5 घंटे के बाद हमें ये डिसाइड करना पड़ा कि अभी बस अभी जाना ज़रूरी है, बिकॉज़ ऑलरेडी मुंबई से हम वहाँ गए थे, काफ़ी समय बीत चुका था। तो उस समय लगभग 50-60 हज़ार लोग पापा के अंत्य यात्रा में थे, और वो सिर्फ अहमदनगर से थे ऐसा नहीं,
1: दूर दूर से आए थे।
0: दूर दूर से आए थे। और बाद के जो 15-20 दिन है, पूरा महीना जो हम लोग रखते हैं, पूरे महीने तक हमारी हवेली में लोग आ ही रहे थे, माथा टेक ही रहे थे और जा रहे थे। राजस्थान से लोग आए, पश्चिम बंगाल से आए, कहाँ कहाँ से आए, कुछ नहीं, सिर्फ उनके दर्शन करने हैं, बस उनकी हवेली देख ली, उनके बच्चों को देख लिया, उनके भाई को देख लिया, बस। ये जो लोगों की दुआ मिली है उस वक्त और ये जो प्यार हमें दिखा है, क्योंकि पापा बाहर जाकर किस किस के लिए क्या क्या करते थे ये कभी घर आकर हमें बताते नहीं थे, पर उसके बाद आज तक एक भी दिन ऐसा नहीं जाता कि पापा की याद किसी ने ना निकाली हो, कोई ना कोई वो याद निकालता ही है। और हर एक 2-3 महीने में ऐसा कुछ किस्सा पता चलता है कि अरे पापा ने ये भी किया था, पापा ने ऐसा भी किया था, ये भी मदद की थी, ये कब किया था उन्होंने।
1: गजब।
0: तो ये जो बात है कि जब इंसान, हम उसके बच्चे होते हैं, हम एक तरीके से उसको देखते हैं, वो मेरे लिए मेरे पिताजी थे, वो एक हीरो थे, बहुत महान कलाकार थे, अग्रीड, लेकिन मेरे लिए वो सिर्फ मेरे पापा थे। तो मेरी कुछ पर्सनल शिकायतें, कुछ रिलेशनशिप इश्यूज वो उनके साथ थे ही, मैं ना नहीं कहूंगी, लेकिन अब लगभग 11 साल हुए हैं और अभी 11 साल के बाद भी एक दिन ऐसा नहीं गुजरता जब उनका कोई रेफरेंस ना निकलता हो। तब आपको पता चलता है कि जो इंसान आप अपने पिताजी समझते थे वो सिर्फ आपके पिताजी नहीं थे,
1: वो पूरे संसार के लिए क्या थे।
0: और सिर्फ एक कलाकार भी नहीं थे वो, ही वॉज सो मच मोर। तो एक थोड़ी सी समझ आ जाती है कि फिर आप इंसान को एक ही दायरे में ना देखें, उसके कई मायने हैं और उन सारे मायनों में आपने देखना चाहिए इंसान को। तो ये आज भी मैं सीख रही हूँ उनसे, आज भी सिखा रहे हैं वो मुझे।
1: क्या बात है।
0: जैसे आज हम बातचीत कर रहे हैं तो मुझे लगा नहीं था मैं इतनी देर बात कर पाऊंगी, लेकिन जब एक एक एक एक एक एक आप पूछते गए तो ऐसी भी काफी सारी चीजें मैंने कही जो आज तक मैंने कहीं पर नहीं कही थी।
1: बिल्कुल।
0: अर्थात आकाशवाणी घर ही है हमारा। अभी मैं बहुत इमोशनल हो रही हूँ, इसीलिए
1: मैं
0: मुझे
1: समझ
0: लगता है
1: सकता
0: कि
1: हूं
0: हमने रुकना
1: जी।
0: चाहिए
1: यहां
0: यहाँ
1: एक गाना
0: पर।
1: बजाते हैं, रहे ना रहे हम महका करेंगे।

मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। स्टूडियो घड़ी में शाम के ठीक 4:29:47 हो चुके हैं। अब आरंभ होती है हमारी आज की सांधकालीन सभा। श्रोताओं, सभा क्रम में लीजिए, सुनिए युवाओं का कार्यक्रम युवाणी।

0: नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी के सबसे लोकप्रिय, सबसे चहेते और सबसे दिलकश कार्यक्रम युववाणी में आपका दिल से स्वागत है। आप सबका साथ, आपका प्यार, आपकी मुस्कुराहट, यही तो है जो हमें हर बार और भी ज़्यादा ऊर्जा के साथ आपके सामने लाती है। सच कहूँ तो युववाणी सिर्फ एक कार्यक्रम ही नहीं, यह युवाओं का भरोसा भी है। क्यों?
1: बिल्कुल प्रीतेश दोस्तों, आज का युवानी कार्यक्रम एकदम दमदार और बेहद जानकारी से भरपूर होने वाला है। कार्यक्रम में सबसे पहले हम प्रेरक पंक्ति से शुरुआत करेंगे,
0: जी।
1: फिर उसके बाद आज की बात में हम जानेंगे इंटरनेशनल डे ऑफ होप के बारे में,
0: जी।
1: फिर बातें होंगी इंटरनेशनल डे ऑफ डस्ट स्टॉर्म्स के बारे में। कार्यक्रम में हम आपको स्पोर्ट्स अपडेट भी बताएंगे
0: जी,
1: और कुछ मजेदार
0: गीत तो चलते रहेंगे, गीत के जो कारवां हैं वो कार्यक्रम में आगे बनते रहेंगे ताकि श्रोता जो हैं वो बोर ना हो और उन्हें और मजा आए।
1: बिल्कुल, और रोचक तथ्य भी
0: जी,
1: और बजने वाली है, आप तो बता ही चुके हैं, जबरदस्त म्यूजिक ट्रैक्स की धुनें जो आपके दिल को खुश कर देगी और माहौल और भी शानदार बना देगी। तो दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का शानदार कार्यक्रम युववाणी, और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक प्यारी सी, दिल को नर्म कर देने वाली सुंदर गीत के साथ।
0: बिल्कुल शाजिद,

0: आई एम द बेस्ट। क्यों? श्रोताओं को तो पता चल ही गया होगा कि आप बेस्ट हैं, खुद को
1: बिल्कुल
0: बेस्ट मानिए। अभी आप सुन रहे थे आई एम द बेस्ट फिल्म, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी से, और आवाज़ थी अभिजीत की। कैसा लगा साजिद?
1: बहुत अच्छा।
0: आज आकाशवाणी के इस प्रेरक कार्यक्रम में हम अपने श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे गुण की जो साधारण व्यक्ति को भी असाधारण बना सकता है, बताइए। और वो गुण है आत्मविश्वास।
1: बिल्कुल दोस्तों, जीवन एक यात्रा है। इस यात्रा में कभी सफलता मिलती है तो कभी चुनौतियां सामने आती हैं, लेकिन जो व्यक्ति हर परिस्थिति में अपने मनोबल को बनाए रखता है वही अंततः अपनी मंजिल तक पहुंचता है।
0: वाह, क्या बात कही आपने।
1: किसी महान व्यक्ति ने कहा है, यदि मन में विश्वास है तो

0: हर कठिन रास्ता भी आसान हो जाता है।
1: बिल्कुल सही कहा साजिद आपने। और यही नहीं, अक्सर मतलब हम अक्सर सोचते हैं कि सफल लोग हमेशा अलग होते हैं,
0: बिल्कुल
1: लेकिन सच्चाई यह है कि वे भी हमारी ही तरह साधारण इंसान होते हैं। अंतर केवल इतना होता है कि वे कठिनाइयों से घबराते नहीं हैं, बल्कि उनका सामना करते हैं। हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना, जरूरी थोड़ी है कि आप सोच रहे हो कि आज तो पूरी लाइन ही क्रॉस कर जाएंगे।
0: नहीं
1: नहीं,
0: नहीं
1: हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना है, एक दिन बड़ी सफलता का कारण बनती है।
0: बिल्कुल। और जीवन में असफलता आए तो निराश मत होइए दोस्तों।
1: बिल्कुल।
0: असफलता ये नहीं बताती कि आप हार मान जाइए, वह केवल यह बताती है कि अभी सफलता के लिए थोड़ा और प्रयास करना बाकी है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने साजिद। और यही नहीं, एक दीपक तब तक प्रकाश देता है जब तक वह स्वयं जलता रहता है, आपने
0: बिल्कुल
1: देखा ही होगा।
0: जी
1: उसी प्रकार जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के लिए निरंतर मेहनत करता है, वही अपने जीवन को उज्जवल बनाता है।
0: बिल्कुल। और दोस्तों, आज की तेज रफ्तार जिंदगी में सकारात्मक सोच बहुत आवश्यक है।
1: ये आपने बिल्कुल सही बात कही है शाजिद।
0: जी, यदि हम हर परिस्थिति में अच्छा सोचने की आदत विकसित कर लें तो तनाव भी कम होगा और आत्मविश्वास भी बढ़ेगा।
1: हाँ
0: तो आइए दोस्तों, आज हम पांच छोटे छोटे संकल्प लें।
1: अच्छा, तो चलिए पहला संकल्प क्यों ना मैं ही ले लूं। पहला
0: बिल्कुल
1: संकल्प है जो कि हमारे श्रोता हमारे साथ लेंगे, कि मैं हर दिन कुछ नया सीखूंगा।
0: सीखूंगा, बिल्कुल। और दूसरा है, मैं समय का सम्मान करूंगा। समय बहुत कीमती
1: बलवान
0: दौलत
1: होता
0: है।
1: है,
0: जी
1: हमारे कहते हैं ना हमारे बुजुर्ग जो होते हैं कि समय बहुत बलवान होता है, अगर
0: बिल्कुल
1: समय है आपके पास तो कुछ कर जाइए।
0: जी
1: तीसरा, मैं अपनी असफलताओं से सीखूंगा। ये
0: बिल्कुल
1: सबसे बड़ी एक हम कह ले कि एक अपॉर्चुनिटी होती है कि अगर आप फेल होते हो तो आपको आपके पास मौके होते हैं सीखने के कि
0: जी
1: आप क्या वो कारण था जिसकी वजह से फेल हुए।
0: जी और चौथा है, मैं दूसरों की सफलता से प्रेरणा लूंगा, ईर्ष्या नहीं करूंगा।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। पांचवा, मैं अपने लक्ष्य की ओर प्रतिदिन एक कदम आवश्यक बढ़ाऊंगा।
0: बढ़ाऊंगा
1: याद रखिए, बूंद बूंद से सागर भरता है और छोटे छोटे प्रयासों से ही बड़ी उपलब्धियों का आधार बनते हैं। जो स्वयं पर विश्वास करते हैं शाजिद,
0: जी
1: वही दुनिया का विश्वास भी जीत लेते हैं।
0: बिल्कुल।
1: क्यों?
0: तो
1: ये तो प्रेरक पंक्ति हमारे श्रोता, हमारी युवा जो होते हैं उनको ये प्रेरक पंक्ति बहुत ज़्यादा उत्साहित करती है, और उन्हें ये भी पता चलता है कि नहीं, हमारे पास अभी मौके हैं तो हमें निराश नहीं होना है।
0: जी
1: तो ये काफिला तो यूं ही चलता रहेगा। चलिए
0: अपने दोस्तों
1: एक प्यारा
0: को
1: सा गीत सुनाया जाए।
0: जी।

0: तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे अला बर्फी, फिल्म बर्फी से, और आवाज़ थी मोहित चौहान की। शायद कभी कभी सुबह उठकर जब हम अखबार देखते हैं या फिर न्यूज़ स्क्रॉल करते हैं अपने फ़ोन पे, तो हर तरफ अजीब सी भागदौड़, उदासी और चिंता दिखाई देती है। लेकिन ऐसे में जब मैं स्टूडियो आता हूँ और जब तुमको स्टूडियो में आते हुए देखता हूँ और तुम्हारे मुस्कुराते चेहरे को देखता हूँ, तो लगता है कि नहीं, जिंदगी अभी भी बहुत खूबसूरत है।
1: क्या भाई, बहुत ही तारीफ हो रही है आज। पर सच कहूँ तो इसी का नाम उम्मीद है प्रीतिश।
0: जी
1: आज पूरी दुनिया इंटरनेशनल डे ऑफ होप मना रही है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि चाहे रात कितनी भी काली क्यों ना हो, सुबह का सूरज निकलना तय है। आज
0: बिल्कुल।
1: हम इसी उम्मीद पे बातचीत करेंगे।
0: अरे क्यों नहीं, बिल्कुल साजिद, वो कहावत है ना कि दुनिया उम्मीद पर टिकी है।
1: जी
0: मुझे लगता है यह सिर्फ एक लाइन नहीं बल्कि इंसानी वजूद का सबसे बड़ा सच है। अगर हमारे पास कल के बेहतर होने की उम्मीद ना हो तो शायद हम आज बिस्तर से उठने की हिम्मत भी ना जुटा पाएंगे।
1: बहुत अच्छी बात बताई आपने प्रदेश। तो एक किसान जब सूखी ज़मीन पर बीज बोता है तो वो सिर्फ मेहनत नहीं करता बल्कि एक गहरी उम्मीद बोता है कि बारिश होगी और फसल लहलहाएगी।
0: जी
1: उम्मीद असल में वो अदृश्य ताकत है जो हमसे नामुमकिन को भी मुमकिन करवा देती है।
0: बिल्कुल, लेकिन साजिद कई बार जिंदगी में ऐसा दौर आता है जब हर रास्ता बंद नजर आता है। जैसे पिछले कुछ सालों में पूरी दुनिया में जो मंदी और जो महामारी का दौर देखा, उसने लोगों की उम्मीद जो थी वो टूटने लगी थी। ऐसे वक्त में खुद को

0: सकारात्मक रखना किसी चुनौती से कम नहीं माना जाता है।
1: बिल्कुल, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ प्रीतेश। मुश्किल वक्त में उम्मीद खोना आसान होता है, लेकिन इतिहास गवाह है कि इंसान सबसे बड़ा फाइटर है। जब सब कुछ बिखर जाता है तब भी हमारे अंदर से एक छोटी सी आवाज़ आती है, एक बार और कोशिश करते हैं। वही बारीक आवाज़ ही उम्मीद का असली दिया है।
0: और पता है, आजकल के डॉक्टर्स और साइकोलॉजिस्ट भी यही मानते हैं कि हमारी मेंटल हेल्थ के लिए उम्मीद कितनी ज़रूरी है।
1: बिल्कुल,
0: जो लोग आशावादी होते हैं उनका शरीर बीमारियों से बेहतर लड़ पाता है। यानी उम्मीद सिर्फ मन का ख्याल नहीं है, यह हमारे पूरे सिस्टम को ताकत देती है।
1: बिल्कुल सही प्रदेश। जब हम अच्छी उम्मीद रखते हैं तो हमारा दिमाग डोपामाइन जैसी हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज करता है।
0: बिल्कुल,
1: इससे तनाव कम होता है और हम हर समस्या का ठंडे दिमाग से समाधान ढूंढ पाते हैं। संक्षेप में कहें तो उम्मीद रखना हमारी सेहत के लिए सबसे बेहतरीन और मुफ्त की दवा है।
0: बिल्कुल, फ्री की दवा मिल रही है
1: जी,
0: तो हमारे श्रोता क्यों ले लेते हैं, क्या दिक्कत है। लोग सोचते हैं शाजिद कि उम्मीद का मतलब कोई बहुत बड़ा चमत्कार होना है,
1: जी,
0: पर मुझे लगता है कि यह छोटी छोटी चीज़ों में छुपी होती है। जैसे किसी पुराने दोस्त का अचानक फोन आ जाना,
1: हाँ,
0: या सड़क किनारे किसी अजनबी की मुस्कुराहट देख लेना, ये छोटे पल भी उम्मीद जगा देती है।
1: जी बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात बताई आपने। सच में उम्मीद कोई आसमान से गिरने वाली चीज़ नहीं है, यह तो हमारे आसपास की बिखरी पड़ी है। एक छोटे बच्चे को देखो, वो गिरता है, चोट लगती है, मुस्कुराता है और फिर दौड़ने लगता है। वह बच्चा हमें बिना कुछ कहे उम्मीद का सबसे बड़ा पाठ पढ़ा देता है।
0: बिल्कुल, ये तो बात आपने जो कही है, बच्चों में आपको उम्मीद जो है वो ज़्यादा, या फिर कहें कि उन्होंने एक मान ही लेते हैं, वो ये भी नहीं कहते कि उम्मीद है हमारे अंदर। वो अपने आप ये समझाते हैं कि अरे गिरे हैं फिर से उठेंगे, खेलेंगे कूदेंगे, मज़ा आता है। बच्चों की बात चली है तो हमारे देश के युवाओं को देखिए, आज का युवा सिर्फ नौकरी नहीं ढूंढ रहा है बल्कि नए नए स्टार्टअप्स शुरू कर रहा है, नए आइडियाज ला रहा है। जब मैं इन यंगस्टर को देखता हूँ तो मुझे अपने देश और समाज के भविष्य के लिए बहुत बड़ी उम्मीद दिखती है।
1: बहुत अच्छी बात बताई आपने। और आज की पीढ़ी समस्याओं पर रोने के बजाय उनका सॉल्यूशन ढूंढने में यकीन रखती है।
0: बिल्कुल,
1: चाहे वो पर्यावरण की चिंता हो या सोशल कॉज, युवा आगे आकर लीड कर रहे हैं। युवाओं की यही जिद और उनके बड़े सपने ही आने वाले कल की सबसे बड़ी उम्मीद है।
0: कभी आपने गौर किया है शाजिद
1: क्या
0: कि जब हम बहुत उदास होते हैं
1: जी,
0: और कोई पुराना धीमा सा संगीत सुन लेते हैं या कोई अच्छी किताब पढ़ लेते हैं
1: जी,
0: तो अचानक मन हल्का हो जाता
1: हाँ,
0: है।
1: ये तो सही बात कही आपने।
0: कला और संगीत के अंदर भी उम्मीद जगाने की एक गजब की जादुई ताकत होती है, क्यों,
1: जी
0: क्या लगता है आपको?
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। और कोई कविता, कोई पेंटिंग या कोई गाना सीधे हमारे दिल पर दस्तक देता है।
0: जी,
1: जब शब्द और सुर मिलते हैं तो वो हमारी सोई हुई उम्मीदों को जगा देते हैं। फिल्में और कहानियाँ भी हमें यही सिखाती है कि क्लाइमैक्स चाहे जो हो, अंत सब ठीक हो जाता है। तो प्रीतेश, अब
0: बातें तो होती रहेंगी,
1: क्यों ना
0: कारवा
1: अपने
0: भी
1: जी
0: लंबा है, तो कारवे
1: अपने
0: में श्रोता हमारे उम्मीद मान के चल रहे हैं कि हम बीच बीच में गाने भी बजाते
1: जी
0: रहेंगे,
1: बिल्कुल
0: तो
1: सुनाते हैं
0: क्यों
1: अपने
0: ना गीत
1: श्रोताओं
0: एक
1: को एक
0: प्यारा
1: बार।
0: सा।

0: तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आशाएं, फिल्म इकबाल से आवाज़ थी के एवं उनके साथियों की। शाजिद, अभी
1: जी
0: हम, जैसा कि हमारा संगीत भी प्यारा सा था,
1: बहुत
0: आशा,
1: आशाएं,
0: हाँ, होप कि इंटरनेशनल डे ऑफ होप मनाया जा रहा है आज
1: अभी
0: पूरे,
1: चर्चा भी अभी चल
0: हाँ,
1: रही थी हम
0: बात
1: लोगों
0: कर
1: की।
0: रहे थे।
1: तो
0: इतिहास की बात करें शाजिद, तो नेशनल मंडेला का नाम सबने सुना होगा। उन्होंने अपनी जिंदगी, आधी से ज़्यादा जिंदगी हम बताएं कि 27 साल जेल में बिताया, लेकिन उन्होंने कभी आज़ादी की उम्मीद नहीं छोड़ी।
1: जी
0: आज उनके पास वो उम्मीद ना होती तो क्या वो दक्षिण अफ्रीका का इतिहास बदल पाते? ऐसी मिसालें जो हैं हमें अंदर तक मजबूत कर देती हैं।
1: जी वाकई ब्रिटिश मंडेला साहब की कहानी उम्मीद का सबसे बड़ा उदाहरण है। ऐसे ही थॉमस एडिसन को देखो, हजारों बार फेल हुए लेकिन उम्मीद नहीं हारी कि वो बल्ब बना सकते हैं। महान लोग इसलिए महान नहीं बनते कि उन्हें असफलता नहीं मिलती, बल्कि इसलिए बनते हैं क्योंकि उनकी उम्मीद जो है ना, असफलता से बड़ी होती है।
0: बिल्कुल, लेकिन शाजिद, उम्मीद सिर्फ आपके अंदर रखने की चीज़ नहीं है। अगर हम किसी हताश इंसान से बैठकर 2 मिनट प्यार से बात कर लें, उनकी हिम्मत बढ़ा दें, तो हम उनके जीवन में उम्मीद की किरण जगा सकते हैं। उम्मीद एक ऐसी चीज़ है जिसे जितना बांटो यह उतनी ही बड़ी होती
1: बढ़ती
0: है।
1: है, बिल्कुल, आप तो मेरे दिल की बात कह दी प्रीतेश। कई बार किसी को लाखों रुपए की मदद नहीं होती, बस एक थपकी चाहिए होती है जो कह सके, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब हम दूसरों के लिए उम्मीद का जरिया बनते हैं तो हमारी खुद की जिंदगी भी रोशन हो जाती है।
0: बिल्कुल, अभी आपने जो ये एक लाइन कही ना कि
1: जी
0: चिंता मत करो मैं तुम्हारे साथ हूँ,
1: जी
0: तो हर एक के जीवन में कोई एक ना एक होता है
1: जी

0: तो वैसे ही जैसे कहते हैं ना कि हम हर एक होना भी चाहिए, क्योंकि वो आपको आगे बढ़ने में मदद करते हैं, चाहे वो आपके मेल फ्रेंड हो फीमेल फ्रेंड हो, तो ऐसा होना चाहिए, एक दोस्त
1: और
0: होना
1: सबसे
0: चाहिए।
1: ज्यादा तो माँ बाप की भूमिका ज्यादा होती
0: माँ
1: है।
0: बाप की भूमिका वो तो हमेशा ही रहते हैं,
1: जी
0: वो आप करो तब भी रहते हैं, ना करो तब भी रहते हैं, वो हमेशा आपको। लेकिन एक दोस्त, एक कहा जाता है कि एक लाइफ में चलने के लिए, एक बनने के लिए, तो वैसे ही जीवन में है,
1: जी
0: तो हमारी लाइफ में है, आपकी लाइफ में है,
1: जी
0: तो हमेशा मुझे कहते रहता है कि बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं,
1: जी
0: हमेशा
1: बिल्कुल
0: साथ रहेंगे।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: तो ये उम्मीद वो मेरे अंदर जगा के
1: जी
0: रखते
1: हाँ
0: हैं।
1: जी हाँ बिल्कुल।
0: कभी पतझड़ के मौसम में पेड़ों को देखा है?
1: जी हाँ देखा तो है।
0: सारे पत्ते झड़ जाते हैं,
1: जी
0: पेड़ एकदम ठूंठ सा दिखने लगता है, मतलब पूरे पत्ते झड़ चुके हैं, कुछ नहीं रहता उस पे। लेकिन
1: जी
0: वो पेड़ हार नहीं मानता,
1: नहीं
0: वो चुपचाप सर्दियों को सहता है,
1: जी
0: क्योंकि उसे
1: हाँ
0: उम्मीद होती है कि बस कुछ ही दिनों में
1: वसंत आने
0: जो
1: वाला है।
0: वसंत वसंत है वो आने
1: हाँ
0: वाला है।
1: बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही आपने प्रीतेश। प्रकृति से सुंदर गुरु कोई नहीं है। सूखी मिट्टी पर जब बारिश की पहली बूंद गिरती है तो उसमें से उठने वाली सूंधी खुशबू इस बात का सबूत है कि बदलाव तय है। प्रकृति हमें सिखाती है कि ठहराव अस्थाई है और नया जीवन हमेशा पुराना गिरने के बाद ही शुरू होता है।
0: बिल्कुल। अगर देखिए, एक चीज़ आपने देखी होगी, उम्मीद अगर आप में है
1: जी
0: तो आप में आस्था भी आ जाती है,
1: जी हाँ
0: मतलब किसी चीज़ के लिए।
1: जी हाँ
0: तो वही है कि उम्मीद रखिए।
1: जी
0: अब ज़रा सोचिए साजिद, अगर हमारे वैज्ञानिकों के पास उम्मीद ना होती, जैसा कि आपने बताया था
1: जी
0: अल्बर्ट एडिशन, तो लोगों ने उन्हें पागल कहना शुरू कर दिया।
1: जी
0: लेकिन उसी उम्मीद ने हमें हवाई जहाज दिए, आज हम जो भी आधुनिक तकनीक इस्तेमाल कर रहे हैं वो असल में कल के वैज्ञानिकों की उम्मीदों और सपनों का ही सजीव रूप है।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा प्रीतेश। असफलता फुल स्टॉप नहीं है, वो तो सिर्फ एक कॉमा है। हमें अपनी असफलताओं को एक कड़वे अनुभव की तरह नहीं बल्कि एक सीख की तरह देखना चाहिए।
0: जी
1: जब हम अपनी गलतियों से सीखते हैं तो अगली बार हमारी उम्मीद और ज़्यादा मजबूत और सटीक हो जाती है।
0: जब हम अपने आसपास गरीबी, भेदभाव या कोई बुराई देखते हैं तो मन थोड़ा उदास हो जाता है। लेकिन वही जब कोई आम इंसान चुपचाप भूखों को खाना खिला रहा हो या किसी गरीब बच्चे को पढ़ा रहा होता है, तो समाज को बेहतर बनाने की उम्मीद फिर से जिंदा हो
1: जिंदा
0: जाती
1: हो
0: है।
1: जाती है। यही तो इंसानियत है ना प्रीतेश। बुराई चाहे कितनी भी शोर मचाए, अच्छाई चुपचाप अपना काम करती रहती है। जब तक दुनिया में ऐसे निस्वार्थ लोग मौजूद हैं तब तक इस बात की पूरी उम्मीद है कि हमारा समाज आने वाले समय में और अधिक सुरक्षित, सुंदर और संवेदनशील बनेगा।
0: आज इंटरनेशनल डे ऑफ होप पर क्यों ना हम खुद से और अपने श्रोताओं से एक छोटा सा वादा करें।
1: क्या
0: मैं आज से किसी भी मुश्किल परिस्थिति में कम से कम
1: जी
0: शिकायत करूंगा और समाधान पर ज़्यादा ध्यान दूंगा। क्यों साजिद?
1: जी बिल्कुल
0: तो ये तो हमने पूरी तरीके से अपने श्रोताओं को जो उम्मीद में बांधा है,
1: जी
0: और हमारे श्रोताओं को भी अब ये लग रहा होगा कि नहीं, अपने अंदर उम्मीद जगा के रखनी
1: जगा के
0: है।
1: रखनी चाहिए। बिल्कुल
0: तो क्यों ना एक प्यारा सा गीत और हो जाए।
1: जी बिल्कुल।

0: तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे चांद तारे फिल्म यस बॉस से, और आवाज़ थी अभिजीत की। तो शाजिद, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, अब आज जैसा कि हमने बात किया कि आज पूरी दुनिया इंटरनेशनल डे ऑफ होप मना रही है, तो वहीं दूसरी तरफ मैं आपको कुछ बताता हूँ कि आज सुबह जब मैं आ रहा था
1: जी
0: तो खिड़की के बाहर सब कुछ एकदम धुंधला और पीला सा दिख रहा था। मतलब सुबह सुबह की बात है,
1: जी
0: मुझे लगा जैसे हमारी गाड़ी सड़क पर नहीं बल्कि सीधे मतलब थार रेगिस्तान, तो आपने सुना ही
1: जी
0: होगा,
1: जी
0: के बीचों बीच चल रही हो। ऐसी सुबह में चाय की प्याली तो अच्छी लगती है शायद, लेकिन ये धूल भाई सच में सांस लेना भारी कर देती है।
1: बिल्कुल सही कहा प्रीतेश। और पता है, आज का दिन इसी धूल और मिट्टी के नाम है। संयुक्त राष्ट्र हर साल 12 जुलाई को इंटरनेशनल डे ऑफ कॉम्बैटिंग सैंड एंड डस्ट स्टॉप मनाता है। यह कोई आम धूल नहीं है जो घर की अलमारी पर जमती है। यह एक वैश्विक समस्या है जो हमारी सेहत और पर्यावरण दोनों को बीमार कर रही है।
0: सही बात है शाजिद, लोग सोचते हैं कि धूल की आंधी सिर्फ राजस्थान या अरब के देशों में आती है, पर असलियत यह है कि यह सूखी और बंजर जमीनों से उठती है,
1: जी
0: जहां की मिट्टी ढीली हो चुकी होती है। जब तेज हवाएं चलती हैं तो वे इस बारीकी मिट्टी को आसमान

0: में हजारों फीट ऊपर उठा देते हैं।
1: और मजेदार बात यह है प्रीतेश कि ये आंधियां सिर्फ वहीं नहीं रुकती जहां से ये शुरू होती हैं, हवा के झोंके इन्हें उड़ाकर सात समंदर पार ले जाते हैं। सहारा रेगिस्तान की धूल उड़कर सीधे अमेजन के जंगलों में और यूरोप तक पहुंच जाती है।
0: बताइए उतने दूर।
1: जी, यानी समस्या एक जगह की और दूसरी ओर
0: हाँ,
1: भी जा रही है,
0: मतलब
1: बढ़ रही है।
0: समस्या एक जगह की होती है
1: जी
0: लेकिन वो इतनी दूर पहुंच जाती है कि पूरी तरीके से फैल जाती है पूरी दुनिया में।
1: जी
0: बचपन में तो लगता था कि आंधी तूफान आना भगवान का खेल है
1: जी
0: या पूरी तरह नेचुरल है, पर जैसे जैसे बड़ा हुआ और पर्यावरण को समझा तो पता चला कि इसमें बहुत बड़ा हाथ हमारा यानी इंसानों का भी है।
1: जी बिल्कुल
0: हमने पेड़ों को काटना और जमीनों को बंजर छोड़ना जो शुरू कर दिया है।
1: जी। और इसे मैन मेड यानी इंसानी गलतियां, जो हम लोग गलतियां जो कर
0: हाँ
1: रहे
0: हाँ
1: हैं उसका नतीजा भी कह सकते हैं। जब हम जंगलों को साफ करते हैं, पानी का अंधाधुंध इस्तेमाल करके नदियों को सुखाते हैं और धरती को कंक्रीट का जंगल बनाते हैं, तो हम खुद इन धूल भरे तूफानों को दावत दे रहे हैं।
0: बिल्कुल। और इस दावत का सबसे बुरा असर हमारी सेहत पर ही पड़ता है शायद।
1: जी
0: जब ये बारीकी धूल के कण हमारे फेफड़ों में जाते हैं तो बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां जैसे अस्थमा हो गया और भी बड़ी बीमारियां दे जाती है ये
1: जी
0: छोटे छोटे धूल के कण।
1: जी
0: आजकल तो छोटे छोटे बच्चों को भी सांस लेने की तकलीफ होने लगी है
1: जी
0: जो सच में बहुत डरावना और चिंताजनक है
1: जी
0: शायद।
1: सिर्फ सांस की बीमारी नहीं प्रीतेश, ये धूल हमारी आंखों में जलन और त्वचा की एलर्जी को भी पैदा करती है। और जो लोग पहले से ही दिल या फेफड़ों के मरीज हैं, उनके लिए ये तो आंधियाँ एक तरह से जानलेवा साबित हो सकती है। इसलिए मास्क सिर्फ कोरोना में नहीं है बल्कि इसके लिए भी है ना, धूल धक्कर
0: हाँ,
1: से भी
0: ये
1: बचने के
0: तो
1: लिए
0: आपने
1: ज़रूरी
0: सही कहा
1: है।
0: कि
1: हाँ
0: मास्क सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि कोई ऐसी बीमारी आए तभी पहने। मास्क का इस्तेमाल ऐसे भी किया जा सकता है जहाँ ज़्यादा धूल हो।
1: जी
0: वहीं सेहत के साथ साथ हमारी थाली पर भी इसका असर पड़ता है।
1: जी
0: जब यह आंधियाँ चलती हैं तो खेतों की सबसे ऊपरी और उपजाऊ मिट्टी उड़ जाती है और जो किसान होते हैं वो सालों तक जिस ज़मीन को मेहनत से सींचते हैं
1: जी
0: उसकी ताकत ये हवाएं पल भर में छीन कर ले जाती हैं
1: जी
0: और जो फसलें होती हैं वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती हैं।
1: बिल्कुल प्रदेश। और जब उपजाऊ मिट्टी ही नहीं बचेगी तो फसलें कैसे उगेगी?
0: बताइए।
1: इसके अलावा ये धूल फसलों के पत्तों पर जम जाती हैं, जिससे वे धूप से अपना खाना यानी प्रकाश संश्लेषण जो होता है ना,
0: हाँ
1: वो नहीं बना पाती हैं। नतीजा ये होता है कि अनाज का उत्पादन घट जाता है और भुखमरी का खतरा बढ़ने लगता है।
0: शायद कभी सोचा है कि इन आंधियों की वजह से दुनिया को कितना आर्थिक नुकसान होता होगा?
1: जी
0: जब ऐसी आंधी आती है तो जो विजिबिलिटी होती है यानी जो दृश्यता होती है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है।
1: जी
0: इसके चलते उड़ानें रद्द करनी पड़ती हैं, ट्रेनें रुक जाती हैं और सड़कों पर बड़े बड़े जो मतलब गाड़ियां
1: हादसा।
0: होती हैं, हादसे होते हैं, वो सब कुछ ऐसे थम सा जाता है।
1: हाँ प्रदेश, अरबों डॉलर का नुकसान होता है हर साल। फैक्ट्रियों की मशीनें खराब हो जाती हैं क्योंकि बारीक जो धूल है उनके अंदर घुस जाती हैं। बिजली के जो ग्रिड फेल हो जाते हैं और जो सोलर पैनल है हम जो
0: क्लीन
1: क्लीन
0: एनर्जी,
1: एनर्जी के
0: हाँ
1: लिए लगाते हैं, उन पर धूल जमने से उनकी बिजली बनने की क्षमता भी कम हो
0: हाँ
1: जाती है ना।
0: बिल्कुल साजिद। और यही नहीं साजिद, अगर देखें तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि स्कूल के बच्चों और युवाओं को इस बारे में बताना। जब तक हमारी नई पीढ़ी जो आ रही है पर्यावरण के इस संकट को नहीं समझेगी तब तक कोई भी जो आंदोलन लंबा नहीं चल सकता। उन्हें सिखाना होगा कि धरती को हरा भरा रखना कोई चॉइस नहीं है
1: जी
0: बल्कि जीने के लिए जरूरी है।
1: बिल्कुल एकदम आपने सही बात बताई। आज के युवा सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव हैं, वे इस मुद्दे पर रील्स बना सकते हैं है ना, और
0: अवेयरनेस फैला सकते हैं,
1: जी
0: अवेयरनेस कैंप कर सकते हैं,
1: जी
0: अपने दोस्तों के साथ मिलकर जो है प्लांटेशन
1: जी
0: मतलब पौधे लगा सकते हैं।
1: जी
0: बदलाव की शुरुआत हमेशा जोश और नए विचारों से ही होता है।
1: जी
0: क्यों?
1: जी बिल्कुल। तो आज 12 जुलाई को हमें सिर्फ रेडियो पर बात नहीं करनी है बल्कि खुद से एक वादा करना है। मैं तो आज घर जाते ही दो नए पौधे लगाने वाला हूँ।
0: बिल्कुल।
1: और
0: और मैं भी लगाने वाला हूँ क्योंकि इस जानकारी के बाद सच में पर्यावरण को बचाना बहुत ज़रूरी है। तो क्यों ना अपने
1: अपने
0: श्रोताओं
1: श्रोताओं
0: को
1: को
0: एक
1: एक
0: प्यारा सा गीत
1: सुनाते हैं।

0: तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे ओ मेरे खुदा, फिल्म प्रिंस से, और जो आवाज़ थी आतिफ असलम और गरिमा जिंग गॉन की। वहीं हम आपको बता दें, इस कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हिंदी साहित्य के, या ही कह लें कि हिंदी प्रेमियों के लिए, आचार्य शत्रुघ्न प्रसाद, जो कि हिंदी और हिंदी प्रेमियों के लिए एक महत्वपूर्ण साहित्यकार हैं, वे हिंदी के सुप्रसिद्ध उपन्यासकारों में से एक हैं। आचार्य शत्रुघ्न प्रसाद की साहित्य विरासत को याद करते हुए आज अरविंद महिला कॉलेज में आचार्य शत्रुघ्न प्रसाद शोध संस्थान की ओर से एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। तो श्रोताओं, आइए आप सबको सुनवाते हैं इस कार्यक्रम पर हरेंद्र आज़ाद की रिपोर्ट।
1: नमस्कार, मैं हरेंद्र आजाद और आज आचार्य शत्रुघ्न प्रसाद शोध संस्थान एवं श्री अरविंद महिला कॉलेज पटना के संयुक्त तत्वावधान में आचार्य शत्रुघ्न प्रसाद स्मृति व्याख्यान माला का आयोजन किया गया है। और आचार्य शत्रुघ्न प्रसाद शोध संस्थान पटना के अध्यक्ष हैं प्रोफेसर अनीता। और क्या है कुछ खास इस आयोजन में, और आचार्य शत्रुघ्न प्रसाद को कैसे याद किया जा रहा है, और एक संगोष्ठी का भी आयोजन है आज, उनकी एक उपन्यास है तख्ते ताऊस जिस पर चर्चा भी की जा रही है, साथ ही साथ व्याख्यानमाला का आयोजन है, कार्यक्रम विस्तृत है। तो आइए हम जानते हैं प्रोफेसर अनीता मैडम से।
2: नमस्कार, आज हम लोग सभी जुड़े हैं वैसे एक मनीषी के स्मृति में जो व्याख्यानमाला आयोजित हो रही है, यह वस्तुतः उसकी चौथी कड़ी है। इनका नाम और इनका काम बहुत प्रसिद्धि पा रहा है और अलग अलग जगहों पर विद्यार्थी इसमें काम भी कर रहे हैं, शोध का काम, पीएचडी का काम। आज की जितनी प्रासंगिक विषय स्त्री नारी सशक्तिकरण या पर्यावरण या संघर्ष, जाति भेद, धर्मांतरण, ये सारी चीज़ें उसमें निहित हैं। इसलिए इस दृष्टि से हम लोगों को लगा, या सारे न्यास के सदस्यों को लगा कि यह काम होना चाहिए। और क्योंकि जब हम लोगों ने यह ढूंढना शुरू किया कि इस पे कितने काम हो रहे हैं, कहाँ हो रहे हैं, तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि दक्षिण में भी काम हो रहा है, मिजोरम में काम हो रहा है, मध्य प्रदेश में काम हो रहा है, जबकि मूलतः ये बिहार के हैं। तो बिहार का एक व्यक्ति अगर बिना किसी प्रचार प्रसार के इतनी जगह फैल चुका है, तो उसका तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कुछ योगदान तो है। और सबसे बड़ी बात जो मुझे छू गई और मुझे जो प्रभावित करती है कि ऐतिहासिक उपन्यासकार तो बहुत हैं, लेकिन इन ऐतिहासिक उपन्यासकार के रूप में प्रख्यात आचार्य जी, इन्होंने जिन जिन क्षेत्रों के उपन्यास और पात्रों को या घटनाओं को लिया, उन जगहों पर जाकर इन्होंने निवास किया, वहाँ अपना आवास बनाया, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, जब तक वहाँ की मिट्टी, वहाँ का वातावरण, वहाँ की सारी चीज़ों को, संस्कृति को समझा नहीं, तब तक वो उनका उपन्यास पूरी तरह रूप नहीं ले रहा था। तो ऐसे

0: उस उपन्यास में जो सच्चाई है, जो यथार्थता है, वह कितना सत्य है, कितना आकर्षक है और कितना प्रभावकारी है, यह समझने लायक चीज है। तो इसको निश्चित रूप से हम चाहते हैं कि सब शोधार्थियों के बीच में यह चीज जाए। राष्ट्रभाव होना निश्चित रूप से आज की जो आवरण के रूप में बच्चों के बीच में चल रहा है, वो आवरण से ज्यादा वो आंतरिक रूप में उनके अंदर विकसित हो। क्योंकि शत्रुघ्न भाव के जितने उपन्यास पढ़े गए, उसमें ऐसा नहीं कि उन्होंने सिर्फ इन चीजों का ही व्याख्यान किया कि ऐसा होना चाहिए या वैसा, नहीं, सिर्फ चाहिए उन्हें मनसा वाचा कर्मणा, वो खुद भी उसी तपसी भाव में रह करके, तापस भाव में रह करके, संत भाव जिसको कहते हैं उसमें रह करके उन्होंने अपनी रचनाओं का सृजन किया है। तो ये तो उनके 14 उपन्यास है।
1: आज के इस आयोजन में काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से पधारे हैं डॉक्टर अशोक कुमार ज्योति जी। आप हिंदी विभाग के प्राध्यापक हैं और आचार्य शत्रुघ्न प्रसाद जी पर आपने बड़ा काम किया है और उनके रचनाओं पर, उनके साहित्य जगत में उनके काम को आप कैसे देखते हैं, आइए समझने का प्रयास करते हैं।
2: धन्यवाद। आचार्य शत्रुघ्न प्रसाद जी हिंदी साहित्य के वर्तमान लेखन के परिप्रेक्ष्य में, या ऐसे कहें कि समकालीन लेखक के दौर में, बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाकार हैं। इस दृष्टि से भी कि जो ऐतिहासिक उपन्यास हिंदी साहित्य में लिखे गए, उसमें वृंदावन लाल वर्मा, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री आदि की परंपरा में आचार्य शत्रुघ्न प्रसाद जी ठहरते हैं। समकालीन लेखन में हिंदी साहित्य में ऐतिहासिक उपन्यासकार लगभग नहीं हैं, और यह सतर्क वक्तव्य दे रहा हूं कि लगभग नहीं है। वैसी दृष्टि से ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्यों को केंद्रित कर उपन्यास लिखने वालों में आचार्य शत्रुघ्न प्रसाद का नाम अग्रगण्य है। उन्होंने कश्मीर की बेटी लिखकर कश्मीर के प्रसंगों को उठाया, उन्होंने आरावली का मुक्त शिखर लिखकर राजस्थान के परिप्रेक्ष्य को, महाराणा प्रताप के परिप्रेक्ष्य को संदर्भित किया, सिद्धियों का खंडहर लिखकर नालंदा का जो स्वरूप वर्तमान में खंडहर का बन गया आतताइयों के पश्चात, उस स्वरूप को अभिव्यक्त किया, और यह जो तख्ते ताऊस उपन्यास है, इसमें उन्होंने औरंगजेब के दुष्कृतियों का उल्लेख किया है और सिख गुरु तेग बहादुर का जो बलिदान रहा है, उस बलिदान के परिप्रेक्ष्य में इस उपन्यास की रचना उन्होंने की है। उनका उद्देश्य सदैव यह रहा कि इतिहास के वैसे संदर्भों को आज के वर्तमान पीढ़ी के समक्ष प्रस्तुत किया जाए, इस तरह हमारे भीतर एक चेतना जागृत करने का कार्य शत्रुघ्न प्रसाद जी अपनी कृतियों के माध्यम से करते हैं।
1: अब हमारे साथ प्रोफेसर सदानंद प्रसाद गुप्त जी हैं, DDU गोरखपुर से आज यहाँ पधारे हैं और आचार्य शत्रुघ्न प्रसाद जी की रचनाओं को आप किस प्रकार देख रहे हैं और हिंदी साहित्य के लिए, हिंदी के शोधार्थियों विद्यार्थियों के लिए वो कितना आज भी समीचीन है और किस तरह से उनकी लेखनी चली, आइए समझने का प्रयास करते हैं।
3: आचार्य शत्रुघ्न प्रसाद जिसे मेरा व्यक्तिगत संबंध रहा है, उनका अपार स्नेह मुझे बराबर मिलता रहा है, उनके लेखन से मेरा परिचय भी रहा है, उनके सभी 11 उपन्यास मैंने पढ़े हैं। उनके उपन्यास में 2-3 बातें प्रमुख रूप से उभर कर आती हैं जो आज भी अत्यंत प्रासंगिक हैं समाज और राष्ट्र के लिए। सबसे पहली बात है कि वो इतिहास को प्रगतिशील सांस्कृतिक दृष्टि से देखने के पक्षपाती हैं। दूसरी बात यह है कि वो सांस्कृतिक राष्ट्र को राजनीतिक चश्मे से नहीं देखते हैं, बल्कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में उनका गहरा विश्वास है। हमारे यहाँ माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या के माध्यम से राष्ट्र की विराट कल्पना की गई है। विष्णु पुराण में भी कहा गया है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रस्य दक्षिणम वर्षम तद् भारतम नाम भारती अत्र संतति। तो हमारा जो उत्तर में हिमालय और दक्षिण में महासागर के बीच की जो भूमि है, वो हमारा राष्ट्र है। उस राष्ट्र को एकजुट करने का प्रयास आदि शंकराचार्य ने भी किया था 4 मठों की स्थापना के माध्यम से। तो उस राष्ट्र को एकाग्र करने का काम, एकजुट करने का काम अपने उपन्यासों के माध्यम से आचार्य शत्रुघ्न प्रसाद जी ने भी किया है। उन्होंने दक्षिण भारत के विजयनगर साम्राज्य पर भी उपन्यास लिखा है, राजस्थान के महाराणा प्रताप के संघर्ष को अरावली का मुक्त शिखर में बाणी दी है, सुदूर उत्तर के कश्मीर के संदर्भ को भी उन्होंने उपन्यस्त किया है कथा को, और बिहार के नालंदा की पीड़ा को भी उन्होंने बाणी दी है सिद्धियों के खंडहर में।

0: भारत का इतिहास केवल पराजय का इतिहास नहीं रहा है जैसा कि आमतौर पर पढ़ाया जाता है, वह विजय का और संघर्ष का भी इतिहास रहा है। इसको मूर्त किया है डॉक्टर सत्यम प्रसाद ने अपने उपन्यास श्रावस्ती का विजय पर्व में। श्रावस्ती के विजय पर्व में महाराजा सुहेल देव ने कैसे 17 राजाओं को एकत्र कर सालार मसूद को पराजित किया था बहराइच के मैदान में, इसका उल्लेख उन्होंने किया है। यह भी रहा है कि मुगल साम्राज्य का अपार विस्तार रहा है, पर मुगल साम्राज्य कभी निर्विघ्न नहीं रहा है, उसको बराबर चुनौतियां मिलती रही हैं, इसका भी उल्लेख उन्होंने अपने उपन्यासों में किया है। इतिहास उनका प्रिय विषय रहा है। इतिहास इसलिए कि इतिहास तीसरी आँख का काम करता है
1: जी।
0: इतिहास हमें प्रेरणा देता है, वर्तमान के लिए सीख देता है। जो समाज इतिहास से नहीं सीखता, सबक नहीं लेता, उसका कोई भविष्य नहीं, वर्तमान और भविष्य नहीं होता है। यह जब हम उनके उपन्यास पढ़ते हैं तो इससे एक बात साफ सामने आती है।

0: प्रेरणा देता है, वर्तमान के लिए सीख देता है। जो समाज इतिहास से नहीं सीखता, सबक नहीं लेता, उसका कोई भविष्य नहीं, वर्तमान और भविष्य नहीं होता है। यह जब हम उनके उपन्यास पढ़ते हैं तो इससे एक बात साफ सामने आती है। दूसरी बात जो हमको सबसे अच्छी लगती है सरगुण प्रसाद जी में, कि वो निरंतर समाज को एकजुट करने का प्रयास करते हैं। उनके प्राय सभी उपन्यास, आप अरावली का मुक्त शिखर देख लिए तो महाराणा प्रताप जो सेना बनाते हैं वो सभी जातियों से मिलकर एकजुट करते हैं। सरस्वती सदा नीरा में जो याज्ञवल्क की यात्रा है, सरस्वती से सदा नीरा, जिसको गंडकी जिसको कहते हैं, सदा नीरा की ओर, वह एक आर्य व्रात के सामंजस्य पर आधारित है। उसी तरह सिद्धियों के खंडहर में भी उनको इस बात की पीड़ा है कि जब समाज एकजुट नहीं रहा है तो उसको पराजय का कड़वा स्वाद चखना पड़ा है। तो ये बात, ये उनके उपन्यासों में इस तरह का उनकी एक जीवन दृष्टि है वो जो वर्तमान समाज को प्रेरणा देती है।
1: इतिहास के पन्नों से उन्होंने भारत को किस तरीके से साहित्य में जीवंत किया और राष्ट्रवाद की भावना जगाने का जो उन्होंने काम किया है, और भविष्य के निर्माण और वर्तमान को लेकर के एक खाका पेश करते हैं जो आज भी समीचीन है, प्रासंगिक है। हमसे बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।

0: तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हरेंद्र आज़ाद की रिपोर्ट, जो कि उन्होंने पूरे अच्छे तरीके से कैसे आचार्य शत्रुघ्न प्रसाद हिंदी प्रेमियों के लिए उन्होंने क्या कुछ किया है, क्या कुछ योगदान दिया है, ये सारी चीज़ें आपने सुनी। शाजिद,
1: जी
0: हमारे श्रोता रोचक तत्व और स्पोर्ट्स अपडेट के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। बताइए,
1: बिल्कुल
0: आज के
1: बिल्कुल।
0: रोचक तत्व में क्या है?
1: सबसे पहले आपको बता दें कि मोर के बारे में बताते हैं,
0: मोर,
1: पंछियों।
0: पिकॉक।
1: जी, बिल्कुल।
0: अच्छा
1: मोर को दुनिया के सबसे सुंदर पक्षियों में से एक माना जाता है।
0: जी।
1: इनके पंखों पर नीले, हरे और सुनहरे रंग की झलक होती है, जो सूर्य की रोशनी में चमकती है।
0: पूंछ का अद्भुत दर्शन, मतलब जो नर मोर होता है वो अपनी बड़ी रंग और रंग बिरंगी पूंछ को फैलाकर नृत्य करता है, जबकि जो मादा मोर होती है वो अपने जो पीहन को आकर्षित करने के लिए ऐसा करती है।
1: जी बिल्कुल। और बारिश में तो नृत्य जो करती हैं, वो जो मोर का बारिश में नृत्य करना प्रसिद्ध है, यह
0: जी,
1: मुख्य रूप से प्रजनन काल में होता है, जब
0: अच्छा,
1: वे अपने साथी को आकर्षित करते हैं।
0: वाह, ये तो आपने बहुत अच्छा, मतलब रोचक तत्व बताए हैं मोर के बारे में। लेकिन वही जो हमारे खिलाड़ी युवा हैं उनके
1: जी
0: लिए थोड़ा स्पोर्ट्स अपडेट भी दे दिया जाए।
1: तो दोस्तों, इंग्लैंड ने T20 सीरीज में 4-1 से हरा दिया है भारत को। पांचवें T20 मैच में इंग्लैंड ने भारत को 56 रनों से हरा कर 5 मैचों की सीरीज में 4-1 से अपने
0: नाम
1: नाम
0: कर
1: कर
0: लिया।
1: लिए। दोस्तों, अब बात करते हैं फीफा वर्ल्ड कप की। तो फीफा विश्व कप 2026 के

0: रोमांचक क्वार्टर फाइनल मुकाबले में गत चैंपियन अर्जेंटीना ने स्विट्जरलैंड को एक्स्ट्रा टाइम में 3-1 से हरा दिया है। और दोस्तों, इंग्लैंड जो है 8 साल के बाद जो फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है, वो नॉर्वे को हराकर शानदार गोलों के साथ, है ना, इंग्लैंड की टीम ने नॉर्वे को हराकर फुटबॉल
1: और
0: विश्व कप
1: सेमीफाइनल में वो
0: सेमीफाइनल में
1: प्रवेश
0: प्रवेश
1: कर
0: कर चुका है।
1: जी
0: और ये टीमें जो हैं सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं, फ्रांस, स्पेन, इंग्लैंड और अर्जेंटीना।
1: वाह, मतलब ऐसा कहा जा सकता है कि आज के जितने भी हमारे कार्यक्रम में जितने भी ये थे विषय थे, उनसे कहीं ना कहीं जो हमारे श्रोता हैं वो
0: रूबरू करा
1: सीख
0: चुके
1: पाएंगे,
0: होंगे।
1: हाँ रूबरू कर पाए होंगे। और वहीं दूसरी चीज़ कि आज पहले तो इंटरनेशनल डे ऑफ होप था, जिसमें हमने उम्मीद के बारे में बात की कि हर एक इंसान के पास उम्मीद होनी ही चाहिए। अगर हमने शुरुआती दौर में ही बात की थी कि अगर उम्मीद ना हो तो अगला दिन कैसा रहेगा कैसा नहीं, अगर इस ये भी उम्मीद ना हो कि अगला दिन अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा, तो बेड से उठने का मन ही नहीं करेगा, बिस्तर से उठने का मन ही नहीं करेगा। फिर हमने पता कि पर्यावरण को अपने कैसे हम बचा सकते हैं,
0: जी
1: तो शाजिद और बात करने का मन कर रहा है श्रोताओं से, और
0: लेकिन अब
1: श्रोताओं
0: तो
1: को,
0: वक्त भी ख़त्म हो चुका है हम लोगों का।
1: हाँ घड़ी की सुइयों ने इशारा कर दिया है कि अब आपका समय जो है वो समाप्त हो चुका है।
0: तो आज के युवानी कार्यक्रम में श्रोताओं इतना ही। अब दीजिए हमें अनुमति, अगली बार फिर मिलेंगे नए विषय और नए मुद्दों के साथ।
1: तो दोस्तों, अपनी शिकायतें और सुझाव इस ईमेल आईडी पे जरूर भेजें। हमारा जो पता है वो है feedback@patna@gmail.com।
0: खुश रहें दोस्तों, अपना ख्याल रखें और जागरूक बने। नमस्कार।
1: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे युवा दोस्तों का कार्यक्रम युवाणी। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। लीजिए सुनिए मैथिली कार्यक्रम भारती।

श्रोता नमस्कार। आजुक भारतीमे पवन अपने लोकनिक स्वागत करैत अछि। श्रोता, आई भारतीमे डॉक्टर वंदना कुमारीक वार्ता होयत, समयक सदुपयोग सबसँ पैघ पूँजी। सङ्गहि श्यामा झा अपने सबके आई गीत सुनौती, मुदा ओ पहिने हमरा लोकनि किछु गप कऽ ली। श्रोता, कहल जाइ छै जे आशा आ उम्मीदे पर दुनिया थिक। आशा ओ संजीवनी शक्ति थिक जे केहनो विकट स्थिति हो आगा बढ़बाक साहस दैत अछि, ठोर पर मुस्कि अनैत अछि। जा धरि मोन मे उम्मीदक कनिको अनुमान रहै छै, ता धरि जीवन मे संघर्ष करबाक ऊर्जा बनल रहै छै। ई बात हम आइ एहि दुआरे कहि रहल छी किएक तऽ आइ एकटा खास दिवस थिक। ओ दिवस छै इंटरनेशनल होप ऑफ डे। श्रोता, जीवन में चाहे कतेको निराशा हो वा परेशानी हो, आशा हमरा लोकनि के नीक भविष्य देखबैत अछि, सकारात्मक दृष्टिकोणक आधार बनबैत अछि, जाहिसँ ऊर्जाक संचार हो आ सफलताक बाट खुजल रहे। आशाक विपरीत निराशा तऽ एकटा एहन व्यथा थिक जे स्वयं के तऽ परेशान रखते अछि, संगहि दोसर के सेहो कल्याण नहि हो दै छै। जतय आशा थिक, उत्साह थिक, ओतहि सफलता थिक। मनुख के जे विजय भेटै छै, सफलता भेटै छै, ओकर आधार थिक आशा आ उत्साह। श्रोता, मनुख के अपन सुखी जीवनक लेल सकारात्मक सोच राखक चाही। जेना रातिक बाद दिन अबै छै, तहिना जीवन मे आशा आ निराशाक क्षण सेहो अबै छै। आशा सँ जीवन मे संजीवनी शक्ति सन संचार अबैत अछि, ओतहि निराशा पतन केर कारण थिक। निराश मनुख जीवन में उदासीन आ विरक्त।

हुअ लगै छथि। हुनका चारू दिस अन्हार बुझना जाइ छै। स्वतः काज केहनो होइ, जँ मनुख आशा आ उत्साहक संग ओकरा करत तऽ ओ काज पूरा जरूर होयत, आ जँ आशा आ उत्साहक कमी रहतै तऽ ओहि काजमे असफलता भेटतै। आशासँ जीवनमे सफलता आ आनंद दुनू भेटै छै। निराश व्यक्ति अपन कर्तव्यके हीन भावनासँ देखै छथि, एहि कारणसँ ओकर जीवन दुःखसँ भरल अछि। जतेक महापुरुष आ वैज्ञानिक लोकनि भेलाह, ओ सब आशा आ उत्साहसँ भरल छलाह। जीवन संघर्षसँ लड़ि जीवनमे आनंद भेटै छै, कारण मनुखक संघर्ष आशाक कारणे होइत अछि। आशाक कारणे विजय, सफलता, सुख आ आनंद ई सब किछु भेटैत अछि। श्रोता, गप करब अनुशासनके। कहल गेल छै अनुशासन जीवनक आधार थिक। अनुशासन जीवन रूपी रथके सही दिशा देबयवला पहिया थिक, जे हमरा लोकनिके सफल, सुखी आ संतुलित बनाबयमे मदद करैत अछि। एकरा बिन समाजमे कोनो टा नियम लागू नहि होइत अछि आ नहि कयल जा सकैत अछि। श्रोता, केहनो किछु होय, अनुशासनसँ लक्ष्य धरि पहुँचनाइ सम्भव भऽ सकैत छै। स्वतः अनुशासन मात्र नियमक पालनटा नहि करबैत अछि, ई हमर मन, कर्म आ विचारके सही आकार दैत अछि। इतिहास गवाह थिक जे कोनो व्यक्ति महान बनलाह, जड़िमे अनुशासन छल। अनुशासनसँ समयक सदुपयोग होइ छै। अनुशासित व्यक्ति समय पर सब काज करै छथि। जीवनमे जखन उतार चढ़ाव अबै छै तऽ अनुशासनके कारणे धैर्य आ आत्मनियंत्रण बनल रहै छै। अनुशासित व्यक्ति समाजमे सम्मानक हकदार होइ छथि आ नीक नागरिकक रूपे देशक विकासमे योगदान दै छथि। तऽ श्रोता, आउ हमरा लोकनि सेहो अपन जीवनके अनुशासित बनाबी। अनुशासन मात्र मनुखे टाले नहि छै, प्रकृति सेहो अनुशासनके अनुसरण करै छथि। जँ देखी तऽ राति आ दिनके जे ई चक्र अछि, ओहो अनुशासनेके कारण होइत अछि। समय पर सूर्य उगै छथि, समय पर सूर्य डूबै छथि। मने कहबाक तात्पर्य ई कि प्रकृति सेहो अनुशासनके पालन करै छथि, तऽ हमरा लोकनि सेहो अनुशासनके पालन कऽ अपन जीवनके आनंदमय बनाबी। श्रोताओ, हमरा लोकनि कार्यक्रम दिस बढ़ी। पहिने सुनी श्यामा झासँ ई नचारी।

0: श्रोता छी श्यामा झा सुना रहा छी नचारी कार्यक्रम में हिंदा से अखन आर गीत सुनब। आओ सुनी अखन एक वार्ता समयक सदुपयोग सबसे पैघ पूजी। श्रोता कहल गेल छे कि समय ककरो इंतजार नहीं करे छे, ओ ककरो बाट नहीं जोहे छे, ओ अपना गति चल रहा है छे। तैं एक बेर जे समय बीत गेले ओ पुनः घुर वापस नहीं आयत। तै दुआरे समय के सदुपयोग करब बड़ जरूरी छे। तो आओ हमरा लोकन सुनी समयक सदुपयोग सबसे पैघ पूजी ई वार्ता। वार्ताकार छथि डॉक्टर वंदना कुमारी।
1: प्रश्न अछि समय की थिक, समयक सदुपयोग की थिक आ से सबसे पैघ पूंजी कोना भेल। एहि प्रश्नक उत्तर भेल समय तऽ समय भेल, ओकर सदुपयोग भेल उचित अथवा सही समय पर समुचित काज करब। आ जँ से कयलहुँ तऽ आजुक समय में यह भेल अहाँक सबसे पैघ पूंजी। पुनः प्रश्न अछि मुदा ई कोना मानि लेल जाय। हमरा लोकनि तँ इसकुल कॉलेज में गुरुजनक मुँह सँ सदा सुनैत आ सीखैत आबि रहल छी हेल्थ इज वेल्थ, अर्थात स्वास्थ्य सबसे पैघ धन थिक। हमरा लोकनिक माता पिता आ परिवारक श्रेष्ठ जन आइ धरि इएह सिखबैत आ कहैत आबि रहल छथि, तखन ई दू तरहक बात किएक? प्रश्न स्वाभाविक अछि। एहि प्रश्नक उत्तर एना बुझल जा सकैत छै स्वास्थ्य सबसे पैघ धन थिक। एहि उक्तिके अक्षरसँ स्वीकार करबामे कोनो धरि धोखा नहि, कोनो संकोच नहि। जहिना हजारो लाखो साल पहिने ई उक्ति सत्य छल तहिना आइयो सत्य अछि। तखन हाँ धन तँ धराव होइत छैक, ओकरा खर्च नहि कयल जा सकैत अछि। चुपेतकऽ आ चोर डकैतक नजरि आ पहुँचसँ बचा कऽ राखल जाइत छैक। तखन धन आ पूँजीमे की अन्तर छैक आ पूँजी ककरा कहबैक? हम कहब पूँजी अहाँ अपन श्रमसँ बनबैत छी, अर्जित करैत छी, छोट पूँजीके पैघ करैत छी, अपन सुविधा आ इच्छासँ तकरा खर्च करैत छी। अतएव पूँजी चलायमान अछि, ओकर निवेश कयल जाइत छैक। जखन निवेश होइत छैक तँ ओहिमे लाभ हानिक गप औतैक, अर्थात धन भेल स्थिरताक द्योतक आ पूँजी गतिशीलताक। आ जे गतिशील अछि ओकर देखरेख सेहो ओरिया कऽ करबाक चाही। जेना पूँजी बाजारमे निवेश कयल जाइत छैक आ लाभ हानि कमाओल जाइत

छैक, जँ सही जगह आ सही समय पर निवेश भेल तँ पूंजी 2 सँ 4 होयत। जँ गलत समय पर गलत जगह निवेश भेल तँ पूंजी डूबियो सकैए। यह बात समय पर सेहो लागू होइत छैक। कोनो काज जँ समय पर आ समयसँ कऽ लेलहुँ तँ अहाँ जीतलहुँ, आ जँ समयसँ अथवा समय पर काज नहि कयलहुँ तँ खत्ता खायब। एकरे कहबैक समयक सदुपयोग। जाहि विषय पर आइ भरि दुनियामे चर्चा होइत रहैत अछि, समय प्रबंधन सिखौनिहार बड़का बड़का गुरुजी सब एहि लेल भरि दुनियामे चर्चित आ विख्यात छथि, तँ तकर कारण इएह अछि समयक सदुपयोग। वस्तुतः समय काल बदलल अछि, शहरीकरण बढ़ल अछि, तँ लोक पर पेशा आ करियरक दबाव बढ़ल अछि, जीवनक प्राथमिकता बदलल अछि, रहबा सहबाक तौर तरीका बदलल अछि, जीवनके सुगम सहज बनेबाक लेल भौतिक संसाधन बढ़ल अछि। भौतिक संसाधन आ तकनीक बढ़ल तँ हमरा लोकनिक जीवनमे अनेक परिवर्तन आयल अछि। एहि परिवर्तन सबमे अपन अपन सुविधाक हिसाबसँ किछु बात हमरा लोकनि हुलसि कऽ स्वीकार करैत छी आ किछु बातकेँ अनठा देबय चाहैत छी। एहन समयमे इच्छित सफलता प्राप्त करबाक लेल महत्वपूर्ण कारक बनल अछि समयक सदुपयोग। समय चक्र स्वयं चलयमान अछि, समय गतिशील अछि, समय ठहरैत नहि अछि, रुकैत नहि अछि, ठमकैत नहि अछि। समय ककरो प्रतीक्षा नहि करैत अछि, समय ककरोसँ समझौता सेहो नहि करैत अछि, समयके बान्हि कऽ नहि राखल जा सकैत छैक, ओ अपन लय आ गतिमे अनवरत चलैत रहैए। अतएव समय ककरो नहि थिक, लोककेँ समयके पाछाँ भागय पड़ैत छैक, समयकेँ पकड़य पड़ैत छैक, ओकरा अपन अनुकूल बनाबय पड़ैत छैक। समय तँ अपन रफ्तारमे भागैत जायत, अहाँकेँ ओकरा पकड़बय पड़त। एहिठाम आबि कऽ बुझबामे अबैत छैक समयके महत्व। एकटा दोसर उदाहरण कहैत छी, कहियो प्रकृतिके लगसँ देखबाक आ अनुभव करबाक प्रयास केलियैक अछि? वर्षा बुन्नी हरदम होइत छै की? आम लीचीके गाछमे हरदम फल लगैत छै की? गेंदा बेली चंपा चमेलीक गाछमे हरदम फूल धरैत छै की? सब मासमे जाड़ लगैत छै की? रबीक मौसममे धानक खेती होइत छै की? अगहनमे गहूँमक फसल काटल जाइत छै की? नहि नहि, मुदा से किएक? एकर उत्तर अछि जे प्रकृतिक कोनो काज अपन निर्धारित समय पर करैत अछि आ तैँ ओकर संतुलन बनल रहैत छै आ धरती बचल अछि। प्रकृतिक संतुलन बनल रहैत छै तैँ हमरा लोकनिक जीवन धारा अबाध आ निर्विघ्न चलैत रहैए। प्रकृतिकसँ हमरा लोकनिक इएह गप सीखी आ बुझि सकैत छी जे प्रत्येक काजक एकटा निर्धारित आ निश्चित समय होइत छैक। से काज ओहि समयपर आ बेरपर कयल जयबाक चाही, तखने फलदायी होयत। इएह भेल समयक सदुपयोग। एकरा अहुना बुझल जा सकैत अछि, इस्कूल कॉलेज जयबाक समयपर की हमरा लोकनि सुतल रहि सकैत छी? बेरहटक बेरमे भोरका जलखै खा सकैत छी? अपवाद आ विशेष परिस्थितिके छोड़ि रातिमे जागि सकैत छी? जी नहि, प्रकृतिक सुतबा आ आराम करबाक लेल राति बनौलकै अछि। दिन छैक काज करबाक लेल, अर्थात प्रकृतिक सब काजक लेल समय निर्धारित कयने अछि। हमरा लोकनि तकरा बुझी आ तदनुकूल समय पर कोनो काज करी। समयके महत्व बुझी, ओकर सदुपयोग करी, जीवनमे सर्वविधि सफलताक लेल से जरूरी अछि। जहिना अगहनमे गहूँमक फसल कटाइ नहि धान काटल जाइत छैक, तहिना हमरा लोकनि अपन प्रतिदिनक कार्यसूचीमे मिनट मिनट पर कखन कोन काज करी से निर्धारित करी। सब काजक एकटा निश्चित समय आ एकटा निर्धारित बेर होइत छैक। ओहि समय आ बेर पर ओ काज भेल तखन तँ ठीक, अन्यथा सब श्रम आ ऊर्जा बेकार। फल प्राप्तिक तँ आशो पर्यन्त नहि करू, एहिमे आसक्ति आ आलस सबसँ पैघ दुश्मन थिक, एकर फेरमे जुइन पड़ी। यह भेल समय रूपी पूंजीक निवेश। सही समय पर सही काज करी से कयलहुँ तँ ओ फलदायी होयत। अहाँक श्रम आ ऊर्जा निरर्थक नहि जायत, ओ 1 सँ 21 होयत। आ व्यापार की थिक? व्यापार घाटाक लेल कयल जाइत छै की? के व्यापारी जानि सुमानि कऽ अपन व्यापारमे घाटा करय चाहत? केओ नहि, सब लाभ कमाय चाहत। तहिना तँ जीवन चक्र सेहो अछि, सब सफल होबय चाहैत अछि आ सफल होयबाक एकमात्र मूल मंत्र छैक समयके परेखब, बुझब गमब आ सही समय पर उचित काज करब। समय रूपी पूंजीक सही आ उचित जगह पर निवेश करब, ओकर सदुपयोग करब। आइ हमरा लोकनिक जीवनमे तकनीक आ भौतिक संसाधन गह गहमे पैस गेल अछि।
जीवनक गति तेज भेल अछि। लाभ कमेबाक होड़ में बाजार लोक

0: लुभावन बनल अछि, चमक दमक बढ़ल अछि। हाथे हाथ मोबाइल, टैबलेट आ लैपटॉप, कंप्यूटर अछि। आभासी दुनिया के संसार कोमल मन के भटका रहल अछि, लोक भुतिया रहल अछि, मृग तृष्णा बनल अछि आभासी दुनिया। लोक बेहाल अछि, अविवेकी बनल अछि, बिना बुझने सुझने ओकरा पाछा भागल जा रहल अछि। जीवनक अपन प्राथमिकता पर्यंत बिसर गेल अछि आ जखन एक बेर समय हाथ सँ ससरि जाइत छैक, बेर बीत जाइत छैक, तखन लोकक भक टूटैत छैक। मुदा आब जगने की, का वर्षा जब कृषि सुखाने, आब चेत जेबे करब तँ की, बेर तँ बीत गेल। जखन जाहि समय पर जे काज करबाक छल ताहि समय पर से काज नहि कयलहुँ, आभासी दुनियामे ओझरायल रहलहुँ, मौज मस्तीमे लागल रहलहुँ, समयके मोल नहि बुझलियै, आब कन्ना रोहट केने की। ई सदा सर्वदा लेल बुझि राखू, समय ककरो नहि थिक, समय ककरो सगा नहि थिक, समय निष्ठुर अछि, समय निर्मोही अछि, समयके कोनो बातक लोभ लालच नहि छैक, समय पर ककरो अख्तियार नहि छैक। तखन कैल की जाय, कैल ई जाय जे समयके महत्वके बुझी, समयके अपना अनुकूल बनेबाक यथासम्भव अथक प्रयास करी, से करब कोनो ततेक कठिनाइ सेहो नहि छैक। हम कहब समय एहन देवता छथि जे कनिये मान मनोबल सँ रिस जाइत छथि। समय अधरन ढरन छथि, थोड़बे पूजा पाठ आ भोग नैवेद्य पर मानि जाइत छथि। आ हुनकर पूजा की थिक, भोग नैवेद्य की थिक, तँ से सोझ अछि। समय के चिन्हब, सही समय पर उचित काज करब, समय के सही सदुपयोग करब, से करब तँ फल भेटबे करत, इच्छित सफलता निश्चिते भेटत, एहिमे कोनो किंतु परन्तु नहि। तैं कहि सकैत छी जे आजुक समयमे वस्तुतः समयक सदुपयोगे थिक सबसँ पैघ पूंजी। जकरा समयक सदुपयोग करय अबैत छैक ओकरा सफलता भेटबे करतैक, ओकरा जीवनमे आनंदक वर्षा होबे करतैक। आजुक युग सत यह थिक।
1: हाँ स्वता, समय के सदुपयोग के लेल समयक प्रबंधन करब जरूरी छै। जँ प्रबंधन हैत तऽ समयके सदुपयोग हैत, आओर इएह तऽ हमरा सबके सबसँ पैघ पूँजी अछि। तऽ ई वार्ता छल डॉक्टर वंदना कुमारीक, धन्यवाद दियनि हिनका। आ आओ आपसे हम झासँ सुनी ई विद्यापति गीत।

सुताई छली श्यामा झा सुना रहा छली विद्यापति गीत। एहिमे शिव के वर्णन छल, भगवान शिव से निहरा कयल जाए कि हमर बेरा केना पार हैत। देखू ई अखाड़ महीना चल रहल छे आ एहिके बाद सावन महीना शुरू हेते, तहन फिर कमरथुआ के दौर जे बाबा के दरबार तक जेता जल भर के। तो ई सब गीत जे छे से समय अनुकूल छे। आ आओ आप सुनी श्यामा झा से अगला गीत बारहमासा।

तो श्रोता छली श्यामा झा सुना रहल छली बारहमासा आ आजुक भारती में आई बसत अगला कार्यक्रम धरि पवन के विदा दियो। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे मैथिली कार्यक्रम भारती। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आइए इस सभा में प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। अब से थोड़ी देर बाद यानी 6:10 पर आज आप सुनेंगे नाबार्ड के 45वें स्थापना दिवस पर श्री गौतम कुमार सिंह, मुख्य महाप्रबंधक नाबार्ड, से हरेंद्र आजाद की विशेष बातचीत।

8:30 पर आप सुनेंगे सुनीता जोशी के स्वर में गीत। कार्यक्रम होगा सुगम संगीत। ये थे इस सभा में प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रम।

0: हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर। कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे भोजपुरी बुलेटिन। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, ई आकाशवाणी पटना है। अब रउआ चंद्रमोहन पांडे से भोजपुरी में समाचार सुनी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कहले बाणे कि राज्य के एनडीए सरकार लोगन के विकास खातिर लगातार काम कर रहल बिया। श्री चौधरी आज मुजफ्फरपुर में स्मार्ट सिटी लिमिटेड खातिर लगभग 1,047 करोड़ रुपया के लागत वाली 900 से ज्यादा योजना के उद्घाटन और शिलान्यास कैले। मुख्यमंत्री कहले कि नगर विकास और आवास विभाग के इस सब योजना से शहर में सड़क पानी के निकास और पार्क समेत दूसर शहरी आधारभूत सुविधा के विकास कैल जाये। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव खातिर नामांकन के काल आखिरी दिन बा। उपचुनाव के लेके प्रचार प्रसार के सूर बढ़ गइल बा। उम्मीदवार लोग लगातार जनसंपर्क कर रहल बाड़े। भाजपा उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा और जन सुराज के उम्मीदवार प्रशांत किशोर के काल नामांकन दाखिल करे के संभावना बा। उपचुनाव खातिर अब तक 11 गो उम्मीदवार लोग अपन नामांकन पत्र दाखिल कैले बाड़े। उम्मीदवार लोग 16 जुलाई तक अपन नाम वापस कर सकता रहे। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव खातिर वोटिंग 30 जुलाई के हुई, जबकि वोट के गिनती 3 अगस्त के करावल जाई। सूचना और जनसंपर्क विभाग के मंत्री श्रवण कुमार दावा कैले बाणे कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में एनडीए के जीत पक्का बा। श्री कुमार आज पटना में पत्रकार से बातचीत में कहले कि इस चुनाव में राजद और जनसुराज के हार तय बा। उन्हें राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी कहले बाणे कि बांकीपुर के जनता पार्टी उम्मीदवार रेखा गुप्ता के साथे बिया। श्री तिवारी कहले कि 3 अगस्त के चुनाव नतीजा चौंकावे वाला रही। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 350 रुपया प्रोसेसिंग फीस जमा कैला पर 5 लाख रुपया के लोन मंजूर होके के दावा करे वाला एक फर्जी स्वीकृति पत्र के खंडन कैले बिया। पत्र सूचना कार्यालय के फैक्ट चेक टीम इस पत्र के पूरी तरह से फर्जी बतौले बिया। पीआईबी साफ कैले बा कि माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी मुद्रा सीधे छोट उद्यमी चाहे लोगन के लोन ना दिले। पीआईबी के मुताबिक मुद्रा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियन, सूक्ष्म वित्त संस्थानन, सोसाइटी, ट्रस्ट, लघु वित्त बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के नियर वित्तीय संस्थानन के पुनर्वृत्ति सहायता उपलब्ध करावेले। पीआईबी लोगन से ऐसन फर्जी संदेशन से होशियार रहे के अपील कैले बा। राज्य में मानसून के सक्रियता से पिछला 24 घंटा के दौरान राज्य के कईयन हिस्सा में बरखा के सिलसिला जारी बा। मौसम विभाग के

0: मिलल जानकारी के मुताबिक सीवान जिला के कुछ जगह पर भारी बरखा रिकॉर्ड कल गई बा। जिला के मैरवा में सबसे ज्यादा 75.6 मिलीमीटर बरखा दर्ज कल गई बा। ओहिजा पटना जिला में 40 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से हवा चलल बिया। विभाग अगला 24 घंटा के दौरान मुजफ्फरपुर, वैशाली, किशनगंज, कटिहार, जमुई और बांका जिला के कईन जगह पर बरखा के अनुमान जतौले बा। ओहिजा, अररिया, भागलपुर, सुपौल, खगड़िया और मुंगेर जिला में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से हवा चले के ऑरेंज अलर्ट जारी कल गई बा। नेपाल के तराई इलाका में भारी बरखा और उत्तर बिहार के कईन इलाका में लगातार हो रहल बरखा से गंडक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज कल गई बा। नदी के पानी पश्चिम चंपारण जिला के योगापट्टी प्रखंड के सिसुआ गांव में कईन गो घर में घुस गई बा। जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता बाढ़ और कटाव पर लगातार नजर रखले बाणे। उन्हें कोसी नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी भइल बा। एकरा के देखत नदी पर बनल बराज के कईन गो फाटक के खोल दिहल गई बा। पूर्व मुख्यमंत्री सत्येंद्र नारायण सिन्हा के जयंती पर पटना में राजकीय समारोह के आयोजन कल गई। यह मौका पर पटना के श्रीकृष्णपुरी पार्क में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी सहित अन्य गणमान्य लोग उनकर प्रतिमा पर फूल माला अर्पित कैले। शिक्षा विभाग बाढ़ से प्रभावित होखे वाला स्कूल के पहचान करके बाढ़ आवे से पहले सब तैयारी पूरा कर लेवे के आदेश देले बा। विभाग इस संबंध में सब जिला शिक्षा पदाधिकारी के चिट्ठी लिख के चिन्हित स्कूल के निर्देश देले बा कि स्कूल के रिकॉर्ड, पढ़ाई के सामग्री और उपकरण सुरक्षित जगह पर रखल जाओ। आदेश में यह कहल गई बा कि जवना स्कूल में राहत शिविर लगावे के संभावना होखे ओहिजा पढ़ाई खातिर वैकल्पिक जगह के पहले से योजना बनावल जाओ। मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के तहत विद्यार्थी के बाढ़ के दौरान का करी और का ना करी एकरा नियमित जानकारी देवे के भी निर्देश देहल गई बा। एकरे साथे ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित भोजपुरी समाचार के ई अंक समाप्त भइल।
1: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। लीजिए सुनिए, नाबार्ड के 45वें स्थापना दिवस पर श्री गौतम कुमार सिंह, मुख्य महाप्रबंधक नाबार्ड, से हरेंद्र आजाद की विशेष बातचीत।
2: नमस्कार, मैं हरेंद्र आजाद, आप सबका स्वागत है। और आज हम हैं नाबार्ड कार्यालय पटना में, और हमारे साथ अभी हैं नाबार्ड के मुख्य प्रबंधक बिहार के श्री गौतम कुमार सिंह साहब। सर, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
3: हाँ, नमस्कार
2: सर। आज नाबार्ड अपना 45वां वर्षगांठ मना रहा है, तो आज स्थापना दिवस पर सर हमारे श्रोताओं को आप क्या कहना चाहेंगे?
3: सबों को नमस्कार। मैं नाबार्ड की तरफ से जितने भी आपके श्रोता हैं उनको नाबार्ड के 44 वर्ष पूरा करने पे, 45वें स्थापना दिवस पे सबों का आभार प्रकट करता हूँ कि उनके सहयोग से उनके लिए ही हम लोग कार्य कर रहे हैं। और पिछले 44 वर्ष की अगर हम जर्नी देखते हैं तो हमारा ध्यान इन 44 वर्षों में आजीविका प्रदान करने, जल प्रबंधन, जलवायु समन और अनुकूलन, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, कृषि और गैर कृषि क्षेत्र में नवीन परियोजनाओं का समर्थन, ग्रामीण वित्तीय संस्थानों को मजबूत करने, खास करके जो हमारे ग्रामीण बैंक हैं और सहकारी बैंक हैं, इसके अलावे कौशल उन्नयन, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा और टिकाऊ रणनीतियों को समर्थन करने, लचीला और टिकाऊ कृषि आदि को बढ़ावा देने और इस प्रकार ग्रामीण लोगों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए नाबार्ड कार्य किया है। और जल प्रबंधन और मृदा संवर्धन, प्राकृतिक खेती या जिसको नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए नाबार्ड ने काफ़ी काम किया है। और बिहार में खास करके जो दक्षिण बिहार है उन जिलों में नाबार्ड के प्रयास से जो हमारे वाटरशेड प्रोग्राम्स चले हैं उसमें जो बंजर भूमि थी वहाँ खेती होने लगी है। जहाँ हम मोनोक्रॉप करते थे यानी एक फसल लेते थे, वहाँ आज दो या तीन फसल भी किसान ले रहे हैं। और जो हमारे यहाँ से माइग्रेट करते थे वहाँ के युवा रोजगार के तलाश में, वहाँ पे पानी की उपलब्धता

0: के कारण वो आज अपने गांव में ही रोजगार उनको मिल रहा है, और माइग्रेट करने वाले युवाओं की संख्या कम हुई है। और पूरे बिहार में जो स्वयं सहायता समूह का अभियान अभी जीविका के माध्यम से चलता है, इसको पायलट नाबार्ड ने किया, शुरुआत नाबार्ड ने स्वयं सहायता समूह को किया था। पहले हम लोग स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज प्रोग्राम के नाम से काम करते थे। इसके अलावा बाद में स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना आया, और उसमें सुधार करके फिर बाद में जो हमारे NRLM कहते हैं, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, जिसके अंतर्गत हर स्टेट में SRLM का गठन है और बिहार में SRLM को जीविका कहा जाता है, वो एक सक्सेसफुल मॉडल है। और लाखों की संख्या में महिलाएं बिहार में लखपति बन चुकी हैं, और आगे भी बिहार सरकार इनके लिए रोजगार के लिए योजना लाया है, जिसमें बैंक से लाभ लेके ये बहनें आत्मनिर्भर हो रही हैं और खुशहाल जीवन व्यतीत कर रही हैं।
1: सर, आगामी क्या कुछ योजनाएं हैं जो अब आपने 45 वर्ष देश के प्रगति में आपने जो साथ दिया है, नाबार्ड ने जो काम किया है युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए और तमाम जो क्षेत्र हैं, हम तो देख रहे हैं सतत विकास लक्ष्य जितने हैं लगभग सब पर काम आप लोग कर रहे हैं, तो बिहार में किस तरह की चुनौतियां हैं और इन चुनौतियों से पार पाने के लिए क्या आगामी रणनीति है, थोड़ा आज के विशेष अवसर पर हमारे श्रोताओं को बताएं।
0: नाबार्ड पिछले 44 साल में चुनौतियों से ही लड़ता रहा है, और चुनौतियों को दूर करने के लिए हमेशा से इनोवेटिव मॉडल दिया है। चाहे जिसको अनबैंकेबल माना जाता था, उस सेक्टर के लिए स्वयं सहायता समूह लाया गया। जो टेक्नोलॉजी को खेतों में उतारना था, जिसको लैब टू लैंड कहते हैं, उसके लिए पहले हमने फार्मर्स क्लब का कॉन्सेप्ट लाया। इसके बाद हम FPO कृषक उत्पादक समूह का कॉन्सेप्ट लाया। किसानों को खेती करने के लिए पूंजी की अभाव होती थी, और पहले जो एग्रीकल्चर लोन मिलता था वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग था, उसको दूर करने के लिए हमने किसान क्रेडिट कार्ड का कॉन्सेप्ट लाया, जहाँ कि 3 साल या से 5 साल तक के लिए क्रेडिट लिमिट दिया जाता है, और जब किसानों की ज़रूरत होती है तब पैसा निकालते हैं, और जब उनके पास पैसा होता है उस समय वापस बैंक में करते हैं, और काफ़ी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ये अवेलेबल कराया जाता है किसानों को। जो हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट के क्षेत्र हैं, उसके लिए हमने OFPO का कॉन्सेप्ट लाया, यानी गैर कृषि उत्पादक समूह का। और आजीविका जो है, शुरू से हमारा आजीविका प्रदान करना हमारा फोकस रहा है, और कई प्रोग्राम हमारे उसके चलते हैं, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम ग्रामीण युवाओं के लिए, जिसमें वेज एम्प्लॉयमेंट यानी कहीं उनकी नौकरी लग जाए वो करने के बाद ट्रेनिंग वो कराते हैं। और जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं, या जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप भी हमने एक इनोवेशन के रूप में आया था, उसके सदस्य जो हैं MEDP माइक्रो एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट प्रोग्राम, और LEDP लाइवलीहुड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के नाम से कार्यक्रम हम चलाते हैं। और ग्रामीण क्षेत्र के जो आर्टिजन्स हैं या समूह की महिलाएं जो प्रोडक्ट बनाती हैं, उनको बाजार उपलब्ध कराने के लिए भी हमारे कई स्कीम्स हैं, चाहे मेला का हो, रूरल हाट, रूरल मार्ट, और अभी कुछ दिन पहले ही हमने एक बड़ा प्रोग्राम लाया है जो रूरल एम्पोरियम का कॉन्सेप्ट है, वो भी हम लाए हुए हैं। और इसके अलावा जो विशिष्ट पहचान दिलाने के लिए कहीं की कोई विशेषता है, तो GI टैग दिलाने के लिए भी नाबार्ड काम कर रहा है। हाल के ही दिनों में 3 प्रोडक्ट को GI मिला हुआ है बिहार में, नालंदा की 52 बूटी है, गया का पत्थर कट्टी है, और भोजपुर का पीढ़िया पेंटिंग है। इसके अलावा 4 जो प्रोडक्ट हैं हमारे फूड आइटम हैं, उसमें हाजीपुर का केला है, सीतामढ़ी का बालूशाही है, 2 और प्रोडक्ट हैं, एक गया का तिलकुट है, और एक उदमंतपुर जो भोजपुर में है वहाँ का मिठाई है, जिसके लिए हम अप्लाई किए हैं, और जल्द ही हमें लगता है अगले महीने तक उसका भी GI टैग आ जाएगा। इस वर्ष के लिए हमारी प्राथमिकता है जो सहकारी बैंक हैं, जो हमारे उसके अंतर्गत पैक्स आते हैं, सहकारी संस्थाएं हैं, उनको मजबूत करना, प्राकृतिक

0: खेती भी इस वर्ष में हमारा फोकस है, और जो महिला किसान हैं, क्योंकि ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर्स है, उनको किस तरह से हम कोऑपरेटिव में जोड़ें, दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में उनका कंट्रीब्यूशन और कैसे बढ़े, और वो किस प्रकार से उद्यम लगाएं जिससे कि गांव में ही रोजगार और सृजित हो। हमारा एक चीज और मानना है कि गांव के लोग जो रोजगार मांगते हैं, उनसे हमारा अनुरोध ये है कि वो रोजगार देने वाले बने, ना कि रोजगार मांगने वाले,
1: जी
0: और गांव के क्षेत्र में ही वो अपना उद्यम लगाएं जिससे कि कम से कम 4-5 लोग को, 10 लोग को वो वहां पे रोजगार दे पाए।
1: सर, आपसे अगर जुड़ना चाहें जो लोग आज तक वंचित हैं, जो आपके इस मिशन में, इस मुहिम में, देश के प्रगति में, राज्य की प्रगति में अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या कुछ आसान प्रक्रिया है जिससे सीधे किसान, युवा और महिला उद्यमी या महिला किसान आपसे जुड़ सकें?
0: हमारे प्रोग्राम को, हमारे जो स्कीम्स हैं, वो तो या तो बैंक संचालित करते हैं या राज्य सरकार के माध्यम से चलते हैं, और लेकिन हमारे हर जिले में जिला विकास प्रबंधक हैं। बिहार के 32 जिलों में हमारे जिला विकास प्रबंधक हैं। तो जो भी ग्रामीण युवा या भाई बहन नाबार्ड की स्कीम का लाभ लेना चाहते हैं, आप हमारे जिला विकास प्रबंधक से मिल सकते हैं, और इनका पता और टेलीफोन नंबर के लिए नाबार्ड के साइट पे जाके आप उसको डाउनलोड कर सकते, निकाल सकते हैं, या किसी भी बैंक के शाखा में जाके आप नाबार्ड के अधिकारी का नाम पूछ लें तो नाम नंबर आपको निश्चित रूप से मिल जाएगा, या हमारा क्षेत्रीय कार्यालय पटना के मौर्य लोक में अवस्थित है, यहाँ आके भी आप हमारे स्कीम्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं।
1: आज नाबार्ड के स्थापना दिवस पर विस्तार से जानकारी दे रहे थे महाप्रबंधक श्री गौतम कुमार सिंह साहब। हमें जानकारी देने के लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे नाबार्ड के 45वें स्थापना दिवस पर श्री गौतम कुमार सिंह।
3: यन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। ओमान देशस्य तटे वाणिज्यिक नौकायानस्य GFS गैलेक्सी इत्यस्य उपरि आक्रमणस्य भारतं निन्दाम् अकरोत्। 10 भारतीयाः रक्षिताः, एकश्च लुप्तोऽस्तीति सूच्यते। भारतदेशः अस्मिन् क्षेत्रे वाणिज्यिक नौकायानस्योपरि निरन्तर आक्रमणानां विषये चिन्तां प्राकटयत्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी इण्डोनेशिया, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड देशानां परिभ्रमणकाले अनेकाः सन्धीः समाप्य नवदेहलीं प्रत्यागतवान्। गृहमन्त्री अमितशाहः अहमदाबादनगरे अनेकासां विकासपरियोजनानाम् उद्घाटनं शिलान्यासञ्च अकरोत्। कर्मचारी भविष्यनिधि संघटनं स्वायत्त भविष्यनिधि न्यासं सञ्चाल्यमानानां प्रतिष्ठानेभ्यः तेषां स्थितिं नियमितं कर्तुं षण्मासस्य एम्नेस्टीति योजना प्रवर्तयति। विम्बल्डन् क्रीडायां यानिस् सिनर् इत्येषः अद्य सायंकाले अलेक्जेंडर ज्वेरेव इत्यनेन सह पुरुष एकल उपाधिं प्राप्तुं संघर्षं करिष्यति। अपि च फीफा विश्व चषक क्रीडायां इंग्लैंड देशः अर्जेंटीना देशस्य उपांत्य चक्रं प्रविशतः। अथ वार्ताः विस्तरेण। अद्य पूर्वं ओमान देशस्य तटे GFS गैलेक्सी इति वाणिज्य नौकायां कृताक्रमणस्य भारतं निन्दाम् अकरोत्। विदेश मन्त्रालयेन एकस्मिन् वक्तव्ये सूचितं यत् नौकायां स्थितानां 11 भारतीय नागरिकेः 10 जनाः रक्षिताः, एकः भारतीयः नागरिकः लुप्तः इति कथ्यते। सः अवदत् यत् ओमान देशे भारतीय दूतावासः परिस्थितिं निकटतया निरीक्षमाणः अस्ति। साम्प्रतिके च अन्वेषणोद्धारकार्ये ओमान अधिकारिभिः सह सक्रियतया समन्वयं कुर्वन्नस्तीति। भारतेन क्षेत्रेऽस्मिन् वाणिज्य नौकायानानाम् उपरि निरन्तरतया कृताक्रमणानां विषये चिन्ता प्रकटितास्ति। विदेशमन्त्रालयः अवदत् यत् अस्मिन् क्षेत्रे वाणिज्यिक नौवहनस्य नागरिकमूलसौकर्याणां च लक्ष्यीकरणं समाप्तं भवेत्, तथा च अन्ताराष्ट्रिय विधिम् अनुसृत्य अस्मिन् क्षेत्रे अन्ताराष्ट्रिय जलमार्गैः स्वतन्त्रं निर्विघ्नं नौवहनं वाणिज्यं च यथाशीघ्रं पुनः स्थापयेदिति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया

0: नमस्ते सोमा बहन।
1: हाँ अंजुला बहन, नमस्कार।
0: जी
1: कैसी हैं?
0: हम ठीक है। अपने क्या दिन के कैसा
1: बस
0: नथिन? बड़ी बहुत ही दूर से रहते हथिन
1: हाँ, अरे
0: घूम घाम
1: देखिए,
0: के।
1: घूम घाम के तो आए ही, साथ ही साथ इतना बढ़िया सड़क सब हो गया है, बन गया है कि मन खुश हो गया है। और एक बात हमने ये मतलब कहते हैं ना कि नोटिस किया कि अगर आप सावधानी से किसी भी सड़क पर कहीं भी आप चलिएगा तो आपकी जो यात्रा है ना एकदम बहुत ही बढ़िया ढंग से पूरी हो जाएगी। और कहीं कहीं तो हम लोग पढ़ते भी आते हैं, जब हम लोग रास्ते से चलते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी।
0: वही तो बात है कि भाई सड़क देख के मन ललचा जाए, और ऐसा मन ललचावे कि कुछ लोग अपने पर ओकरा काबू ना रखतीन और गाड़ी के स्पीड बढ़ा देतीन कि भाई मस्ती करते हुए जा जा चलल जाए। लेकिन यही जे है मस्ती और अपन जज्बात पे काबू ना रखे से सड़क दुर्घटना के शिकार भी हो
1: हाँ तो
0: जाते
1: यही है
0: हैं।
1: कि
0: तो
1: थोड़ी सी असावधानी और थोड़ी सी मौज मस्ती के कारण ये लोग मतलब सोचना छोड़ देते हैं कि अभी की थोड़ी सी मस्ती उसका परिणाम क्या होगा आगे जाके।
0: तो सड़क की सुरक्षा है, वो सड़क सुरक्षा के कुछ नियम बना ले जेकर पालन जरूर करे के चाहिए।
1: एकदम
0: चाहे सड़क बहुत चिकना हो या सड़क में गड्ढा हो या जो भी हो, ओकर सड़क पे चलना, गाड़ी चलाना हो चाहे पैदल चलना हो, वो सब लगी सड़क नियम के नियम बना ले, ओकरा सुरक्षित तरीके से चलथिन, गाड़ी चलेथिन और अपन जीवन के भी रक्षा करथिन और दूसर के भी जीवन बचावे में मदद सहयोगी बनथिन।
1: बिल्कुल सही कहा, क्योंकि अगर हम खुद सुरक्षित रहेंगे, खुद सुरक्षित चलाएंगे, तभी दूसरे को भी हम सुरक्षा दे प्रदान कर सकते हैं। और बढ़ते आजकल हम लोग देख रहे हैं कितने वाहन बढ़ गए हैं,
0: हाँ
1: बढ़ते वाहनों और तेज रफ्तार के कारण आए दिन हम लोग सड़क दुर्घटनाओं की खबरें देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, और इसकी संख्या भी लगातार बढ़ रही है।
0: बिल्कुल
1: तो अधिकांश जो दुर्घटनाएं होती हैं अंजुला बहन, जो यातायात के जो नियम हैं, अगर उन नियमों को अगर हम लोग अनदेखा कर देते हैं तो उसके कारण, लापरवाही के कारण, असावधानी के कारण ये जो दुर्घटनाएं होती है, और ये दुर्घटना जो होती है ना खुद की गलती से नहीं होती कभी।

0: कभी दूसरे की
1: दूसरा कैसे
0: गलती से हो
1: लगेगा।
0: जाती
1: यही
0: है।
1: तो, यही से तो कहा जाए कि हर व्यक्ति के मतलब नियम के पालन करना जरूरी है। अगर हर व्यक्ति अपने सड़क सुरक्षा के नियम के पालन करते, अब हम कभी कभी देखें कि लाल बत्ती जले पर भी लोग गाड़ी पार कर जाते हैं, तो और पैदल चले वाला भी कभी कभी हड़बड़ा के पैदल निकल जाते हैं गाड़ी, कितना देखा थे कि दाएं बाएं गाड़ी कौन रफ्तार से आ रही है, बस उनका हड़बड़ी रहा है जल्दी से पार करके दूसरा जगह पहुंच के। तो
0: सही
1: ये हड़बड़ी ना रखथिन, बिल्कुल दाएं बाएं देखथिन, और अगर सड़क पर जेब्रा क्रॉसिंग बनल है तो जेब्रा क्रॉसिंग पर ही
0: पैदल चलने
1: पैदल
0: वाले। हाँ,
1: चलथिन, और
0: एकदम
1: हमेशा पैदल चले वाला के फुटपाथ के प्रयोग करे के चाहिए।
0: एकदम सही बात कही, क्योंकि अंजुला बहन जो हमारे प्रत्येक नागरिक है, अगर सड़क सुरक्षा नियमों का ईमानदारी से पालन करेंगे ना, तो हम बहुत सारी दुर्घटनाओं को रोक सकते हैं, क्योंकि ये जो जीवन है अनमोल जीवन है, और
1: बिल्कुल
0: इस अनमोल जीवन को बचाए रखने का दायित्व हमारा ही है। और ये भी ध्यान रखना है कि मेरी गलती से या हमारी गलती से किसी और को नुकसान ना
1: ना
0: पहुंचे।
1: पहुंचे।
0: तो अगर हम लोग सड़क सुरक्षा का के महत्व के बारे में बात करें, तो इसका जो है कि जो नियम बताए गए हैं सड़क सुरक्षा के संबंधित, कि इसका उद्देश्य है कि लोगों के जो जीवन है, हाँ, और जो लोग जीवन एक तरह से कह सकते संपत्ति के समान है, उसकी रक्षा करना है। सुरक्षित यातायात व्यवस्था ना केवल दुर्घटनाओं को कम करती है, बल्कि समाज में अनुशासन और जिम्मेदारी की भावना भी विकसित करती है। सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करना हम में से प्रत्येक नागरिक का नैतिक और सामाजिक कर्तव्य भी है।
1: अपने सही बात करते हैं कि हम सब नागरिक की कर्तव्य ही नैतिकता है कि हम सब सड़क के सुरक्षा के नियम के ध्यान में रखें, और सड़क पे जब गाड़ी चलावते हैं, कई बार सोमा बहन ऐसा देखे ला मिल जाए कि जाए ला है बाएं और दाएं हथिन, और
0: एकदम
1: कभी कभी हम लोग के गाड़ी के अभी आगे भी कभी कभी कोई मोटरसाइकिल वाला बाएं से निकाले हैं और जबकि वो दाएं लाइनों
0: दाएं,
1: में है,
0: हाँ
1: तो हमेशा अपना लेन में चले के चाहिए, और लेन बदलते समय इंडिकेटर जरूर देवे के चाहिए, और जो व्यक्ति पैदल चल थे उनका भी ख्याल रखथिन, पैदल चले वाला आदमी के भी ध्यान जरूर रखे चाहिए। और इस समय जे है वो गाड़ी के जो रफ्तार के साथ साथ गाड़ी चलावे के तरीका भी सही तरीके से होना चाहिए। अगर अपना दुपहिया वाहन चलेते हथिन तो हेलमेट पहन के चले थीन, आगे चलावे वाला ही ना पीछे बैठे वाला के भी हेलमेट पहनने के
0: एकदम
1: चाहिए। अगर अपना चार चक्का की गाड़ी अपने के पास है तो सीट बेल्ट जरूर लगावे के
0: सही
1: चाहिए,
0: बात है।
1: और सड़क पर तो गति लिखल रहे कि 20 किलोमीटर के रफ्तार से चलावेला है या ये
0: अलग
1: गति
0: अलग
1: के,
0: जगह पे,
1: हाँ,
0: हाँ
1: तो वो गति के भी ध्यान में रखे के चाहिए। ये ना कि सुनसान सड़क है तो हम अपना एक्सलेटर मार दिली और गाड़ी भगा दिली,
0: सही बात
1: तो
0: है।
1: भी कभी कभी देखा थे कि ऐसे कभी कभी कुछ लोग निकल जाते हैं घूमे लगी या लॉन्ग ड्राइव जेकरा कहल जा है, तो वो सब गति की सीमा के ध्यान में ना रखे के चाहिए। कितना बार ऐसा हो रही है कि डिवाइडर से टकरा के और मृत्यु के शिकार हो गए थे,
0: सही
1: तो
0: बात है।
1: बिल्कुल ये सब के ध्यान रखें और गाड़ी रफ्तार पर
0: जो
1: अपना,
0: है
1: हाँ,
0: जो
1: पकड़
0: स्पीड
1: जरूर
0: है
1: रखें।
0: उसके उस पे ये कहते हैं ना कि कंट्रोल होना चाहिए। आपने एक बात सही कही कि लेन, अपने लेन का ध्यान रखना चाहिए। हम लोग अक्सर देखते हैं अंजुला बहन कि हम लोग ट्रैफिक में खड़े हैं और लोगों की गाड़ियां भी है। अब है कि उनको दाहिने जाना है तो वो अपनी गाड़ी को बाएं तरफ में, जब आपको दाहिने तरफ काटना है तो आप उस तरह से दाहिने की तरफ अपनी गाड़ी को
1: बिल्कुल
0: लेके रुके कि जैसे ही सिग्नल मिले आप उस तरफ जाइए। ऐसे में क्या होता है कि लोग सिग्नल जैसे ही होता है लोग शुरू हो जाते, मतलब स्टार्ट हो
1: हाँ
0: जाते चलने के लिए। ऐसे में बाएं तरफ खड़े व्यक्ति को अगर दाहिने जाना है अचानक काटता है,
1: हाँ
0: और ऐसे में ही
1: दुर्घटना हो
0: जो
1: जाए।
0: दूसरी गाड़ी रहती है वो तो अपने रफ्तार में है और वो टक्कर होता है।
1: और एक चीज आजकल जो फैशन के बात भी हो
0: हाँ
1: गई है,
0: हाँ
1: मोबाइल ये
0: मोबाइल, हाँ
1: बड़का ग्रहण के समान काम कर रहे गाड़ी चलाते समय, कि कभी कभी हम देखें कितना लोग के खास करके युवा के कि एक कान में और कान में मोबाइल के
0: लेके,
1: अलावा
0: हाँ
1: आजकल एगो कान में जो ईयरफोन जो लगा दे हुआ इन,
0: हाँ
1: तो उकरा से उनका सुनाई ना पड़ा है, ईयरफोन पर म्यूजिक बजा के गाना बजा करके कान में लगा करके बाइक चलाना कार चलाना ये बहुत ही खतरा से खाली ना हो रही।
0: सिर्फ बाइक पर ही नहीं, मोबाइल, मैंने तो कई बार देखा है कि लोग पैदल चल रहे हैं और ईयर फोन लगाए हुए हैं या

0: मोबाइल पर बात करते हुए चल रहे हैं। ऐसे में अगर कोई गाड़ी आ रही है, वो हॉर्न पे हॉर्न दिया जा रहा है, लेकिन वो तो अपने
1: धुन में,
0: मोबाइल में धुन में बात करते, तो सड़क पर
1: वो
0: चलते
1: कहा
0: समय,
1: आप ना कि
0: हाँ,
1: अपने धुन में रहता हूं, अपने जैसा
0: जैसा
1: ही
0: ही रहता हो, लेकिन
1: हूं।
0: जब आप सड़क पर निकल रहे हैं तो उस सड़क पर आप अकेले नहीं हैं। हाँ, उस सड़क पर कई लोग हैं, कोई गाड़ी से है, कोई दो पहिया वाहन से है, कोई चार पहिया, कोई साइकिल से है, रिक्शा से है। तो इतनी सारे जब वाहन है, तो ऐसे में आपको क्यों रास्ते में चलते समय क्यों बात करनी है? अगर
1: बिल्कुल।
0: आपको बात करनी है तो आप आगे रुकिए, अगर आप वाहन में है रुक के मतलब कॉर्नर में कर लीजिए किनारे अपना वाहन, और वहां खड़े होकर बात कर लीजिए, क्योंकि आपकी एक गलती के कारण कितने सारे लोगों को दिक्कत हो सकती है, नुकसान भी हो सकता
1: ये
0: है।
1: मोबाइल वाला और ये कान में ठूंसे वाला जो यंत्र है, पैदल और बाइक वाला और
0: बाइक
1: चरपहिया वाला, सब लगी वर्जित है। केकरो ये प्रयोग ना करे के चाहिए, गाड़ी चलाते समय बिल्कुल एक
0: हाँ
1: इस्तेमाल ना करती,
0: हाँ और
1: इस्तेमाल
0: दूसरी बात
1: करेगा है
0: अक्सर
1: तो कहीं।
0: देखते हैं अंजुला बहन, कि सामान ढोने वाले गाड़ी में बहुत सारा सामान ढो लेते हैं, ओवरलोडिंग हो जाता है, और ऐसे में जो वाहन रहता है, एक तो ओवरलोडिंग, ऊपर से ओवरटेक करने, तो ये ओवरलोडिंग साथ साथ ओवरटेक करने की जो जल्दबाजी है, इससे क्या होता है कि कई तरह की समस्याएं सड़क पर हो जाती है, लोग दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं। तो जब भी आप सड़क पर निकलिए, घर से बाहर निकलिए पूरे सावधानी के साथ, क्योंकि ये सब जो नियम बनाए गए हैं, हम सबके भलाई के लिए बनाए गए
1: और
0: हैं।
1: गाड़ी से गाड़ी की दूरी भी होवे के चाहिए। कई बार ये भी
0: हाँ
1: देखे ला मिल रहा है कि अगला गाड़ी रफ्तार में, पिछला भी
0: हाँ
1: रफ्तार में, और अचानक से आगे वाला गाड़ी के कुछ ऐसा जरूरी हो जाए ब्रेक लगावे के, तो पीछे वाला गाड़ी अचानक से ओकरा में ठोका जाए,
0: बिल्कुल
1: तो इससे चलते भी बहुत तरह दुर्घटना हो रही है।
0: बिल्कुल
1: और सावधान रहे के जरूरत है,
0: हाँ
1: सतर्क रहे के जरूरत है।
0: सही बात है, वाहन चलाते समय धैर्य और संयम बनाए रखने की बहुत जरूरत है।
1: तो सड़क सुरक्षा के रखथिन ध्यान, अपन और दूसर के जीवन के करथिन सम्मान।
0: सम्मान तो चलिए,
1: और सम्मान के जब हम बात करें तो भगवान भोले के भी आदर और प्रणाम और सम्मान हम सब के देना जरूरी है। उनकर कृपा से ही हम सब पूरा ये जीवन है उजियार। तो सुने ही यही पर एगो लोकगीत, कलाकार हथिन अमरेश कुमार।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: तो अंजुला बहन, इस संदेश के पहले हम लोग अमरेश कुमार से सुन रहे थे शिव भजन, और बहुत ही बढ़िया शिव भजन। आगे भी इनसे हम लोग सुनेंगे, लेकिन अब समय हो चला है प्रायोजित कार्यक्रम का। तो सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम ममता का आंचल।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक है श्रद्धा IVF भिकना पहाड़ी पटना 4।
3: नमस्कार, राजेश हूँ। ममता का आंचल ये कार्यक्रम हम आपके लिए आज के दिन लेकर आते थे। बहुत सारे लोग हाँ अभी भी शनिवार को ही ट्यून करते हैं, लेकिन उनको फिर से बता दें, या आप लोग जो सुन रहे हैं ना, अगर उनसे कहीं मुलाकात हो जाए, आपके परिचित हो, तो उनको बताइए कि ये कार्यक्रम अब रविवार को आता है और आप इसको सुनकर लाभ उठा सकते हैं। वैसे दंपति बहुत खुश हैं, हाँ, जो किसी से कुछ कह नहीं सकते थे, बच्चा नहीं होने के कारण परेशान थे, घर में बड़े बुजुर्गों से भी शेयर नहीं कर सकते थे, अब खुलकर बातें कर रहे हैं। एंड थैंक यू बड़े बुजुर्ग कि आपने भी उनकी भावना को समझा और उनके साथ खड़े हुए। यही मंशा है डॉक्टर श्रद्धा चकैयार की कि अब संकोच नहीं, इलाज कराने की जरूरत है, चुप्पी तोड़ने की जरूरत है। और इसी में श्रद्धा IVF एंड मैटरनिटी, जिनके तरफ से ये कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं ना, लगातार लगे हैं। इस रेडियो कार्यक्रम के माध्यम से हम पूरे बिहार के अंतिम कपल तक पहुंचना चाहते हैं, जानकारियां पहुंचाना चाहते हैं। इसके अलावे डॉक्टर श्रद्धा फील्ड में भी जाती हैं, मैन टू मैन एकदम आमने सामने बैठकर बात करती हैं। अच्छा लगता है जब समाज में खुशियां हम बांटेंगे ना, तो हमारे घर में भी खुशियां आएंगी। इसीलिए कहते हैं कि जिन्होंने ये रेडियो कार्यक्रम सुना है ना, वैसे कपल जो उनके आस पड़ोस में हो ना, उन तक ये बातें पहुंचाइए। बहरहाल बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर श्रद्धा हमारे साथ बैठी हैं, और जैसा कि हमने बताया कि ये कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर का IVF सेंटर जो है ना, वो पटना में श्रद्धा IVF एंड मैटरनिटी की तरफ से ये कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, जो पटना के भिकना पहाड़ी मोड़ में है। एक बात बताएं, IVF बच्चा पाने का एकदम आधुनिकतम और सफल तरीका है। 10 में से 6 तक अगर सही उम्र में हुआ ना, तो 10 में 7 तक सक्सेसफुल लोग कपल होते हैं, बच्चा लेकर जाते हैं। ज्यादा जानकारियां अगर आप चाहिए तो आप बात कर सकते हैं डॉक्टर श्रद्धा से। डॉक्टर श्रद्धा का नंबर है 9162562266 9162562266। पैसे की चिंता नहीं कीजिएगा, EMI पर आप श्रद्धा IVF एंड मैटरनिटी में इलाज करवा सकते हैं, 24 इंस्टॉलमेंट में पैसा दे सकते हैं। आगे और बताएंगे, लेकिन फिलहाल डॉक्टर श्रद्धा बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के ममता का आंचल कार्यक्रम में।
4: नमस्कार श्रोताओं, नमस्कार राजेश जी।
3: डॉक्टर श्रद्धा, एक सवाल जो हम हमेशा कार्यक्रम की शुरुआत में पूछते हैं कि बच्चा नहीं होना, निसंतानता, ये क्या होता है, लोगों को बताइए, क्योंकि हमारी मान्यता है कि हर रोज हमारे नए नए कुछ साथी जुड़ रहे हैं जिनको जानकारी ही नहीं है।
4: निसंतानता क्या होती है, वो उन दंपतियों के लिए जानना बहुत जरूरी है जो निसंतानता से जूझ रहे हैं।

0: ताकि वो समझे कि कब तक वो इंतजार कर सकते हैं और कब उनको इलाज कराना है चाहिए और कहाँ इलाज कराना चाहिए।
1: जी,
0: निसंतानता एक बीमारी है, यानी कि वैसे दंपति जो पिछले एक साल से कोशिश कर रहे हैं बच्चे के लिए बिना कोई गर्भ निरोधक के और उनको बच्चा नहीं ठहर पा रहा है, तो उनको कहा जाता है कि ऐसे दंपति निसंतानता से जूझ रहे हैं और पिछले एक साल से अगर बच्चा नहीं हुआ तो अब जरूरत है कि वो इलाज कराएं। इलाज आप कहीं भी करा सकते हैं, कोई भी डॉक्टर कहीं भी इलाज करा सकते हैं और कुछ खून जांच और दवाइयों से ही बहुत लोग का, यानी कि 70% लोग का इलाज हो जाता है। लेकिन अगर 2 साल हो गए कोशिश करते हुए और अभी तक बच्चा नहीं ठहरा, मतलब आपको जो बीमारी है निसंतानता वो जटिल है।
1: जी, जी।
0: और अब आपको जरूरत है एक निसंतान रोग विशेषज्ञ से ही आकर के मिले और वहीं पे इलाज कराएं, ताकि वो आपका बीमारी बेहतर समझे, बेहतर पकड़े कि कहाँ दिक्कत है।
1: जी।
0: और आपका अगर आप वहाँ इलाज कराते हैं तो आपको बच्चा जल्दी ठहरने की संभावना अधिक है।
1: बिल्कुल, बच्चा अधिक संभावना है कि ठहर जाए, क्योंकि निसंतानता एक महज बीमारी है और विशेषज्ञ डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए, इलाज करवाना चाहिए। कार्यक्रम चल रहा है ममता का आंचल, इसमें वैसे निसंतान दंपतियों के लिए हम जानकारी देते हैं जिनके शादी के 2-3-4 साल हो गए लेकिन अभी भी बच्चा नहीं है, और बच्चा जीवन के लिए बहुत जरूरी है, बहुत मूल्यवान है और हम उनकी मदद करना चाहते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। पूरा बिहार सुन रहा है। हाँ डॉक्टर श्रद्धा, कुछ
0: मैं आपको रोकना चाहूंगी। राजेश जी, अभी मैं बताना ये चाहूंगी कि जो विश्व का जो आंकड़ा भी अभी आया है
1: जी,
0: कि भारत में जो प्रजनन क्षमता है वो घट गई है, यानी कि जो रिप्लेसमेंट लेवल है उससे कम हो चुका है।
1: जी जी।
0: तो ये अलार्मिंग है, लेकिन वैसे दंपति जो बच्चा चाह रहे जिनको एक भी बच्चा नहीं, क्योंकि कम से कम एक बच्चा होने का हक तो हर दंपति को है।
1: जी जी जी।
0: तो वो समझ लें कि अगर उनको बच्चा ठहरने में दिक्कत हो रहा है तो जल्दी इलाज कराएं, क्योंकि हमारा जो पॉपुलेशन है उसमें प्रजनन क्षमता घट जा रही, यानी कि औरत का जो अंडा है वो तेजी से घटता जा रहा है।
1: जी।
0: अगर किसी औरत का 30 साल या 32 साल हो गया है
1: जी,
0: और अभी तक बच्चा नहीं ठहरा और वो कोशिश कर रही हैं, मतलब उनका एक कारण ये भी हो सकता है कि उनके अंडाशय में, अंडेदानी में अंडा घट रहा है। उसी तरह से पुरुष का भी शुक्राणु का जो संख्या है वो भी तेजी से घट रहा है, और ये सिर्फ भारत में नहीं, पुरुष में जो निसंतानता फैल रही है तेजी से, यानी कि उनके शुक्राणु घट रहे हैं, वो सिर्फ भारत में नहीं हो रहा, वो विश्व में, ये विश्व मतलब पूरा वर्ल्ड का प्रॉब्लम है। ये जो है ये WHO भी रिकॉग्नाइज कर रहा है कि इनफर्टिलिटी तेजी से बढ़ रही है।
1: इनफर्टिलिटी तेजी से बढ़ रही है, इसलिए सोचने में समय नहीं गंवाना है। शादी के 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं फिर भी बच्चा नहीं हो रहा है, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। और IVF बच्चा प्राप्त करने का बहुत ही सुगम तरीका है, बीमारी है ठीक हो जाएगी। डॉक्टर श्रद्धा का नंबर बता रहे हैं एक बार फिर से, ध्यान से धीरे धीरे, 9162562266, 9162562266 ये नंबर है। बड़े बुजुर्गों, आपकी जिम्मेदारी, डॉक्टर श्रद्धा ने कहा ना अभी कि ये लगातार तेजी से निसंतानता जो है ना बढ़ती चली जा रही है, इस पर आपको भी सजग होना होगा, कहीं आपके घर में तो ऐसी स्थिति नहीं आ रही है। पैसे की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि श्रद्धा IVF एंड मैटरनिटी जिनके तरफ से ये कार्यक्रम हम आपके घर आंगन में रेडियो के माध्यम से लेकर आ रहे हैं, उस संस्थान में आप बाद में भी पैसा दे सकते हैं, इंस्टॉलमेंट पर कहते हैं, EMI पर, और वो भी एक दो नहीं 24 इंस्टॉलमेंट पर आप पैसा दे सकते हैं। खुशियां लेकर जाइए और पैसा तो चुकता रहेगा 24 महीने तक। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, नंबर एक बार फिर से 9162562266। एक फोन आया था कि ज्यादा देर हो गई थी तो हम सब चाह रहे थे फोन करने में, बेशक ज्यादा रात में फोन नहीं कीजिएगा, लेकिन आप कभी भी फोन कर सकते हैं और इसमें सकुचाने की जरूरत नहीं है, ये कार्यक्रम ही आप तक जानकारियां पहुंचाने

0: है। डॉक्टर श्रद्धा, एक फोन आया था जिस पर हम आपसे बात करना चाहते हैं, और शायद इस सवाल से सरोकार बहुत ज्यादा लोगों का है। किसी महिला ने फोन किया था, उनका बंध्याकरण हो गया था, दो बच्चे भी थे, लेकिन किसी कारणवश बच्चे नहीं रहे, है ना। अब उन्हें फिर बच्चा चाहिए था, तो उनका सवाल ये था कि क्या बंध्याकरण हो चुका है, उनकी नसबंदी या जो भी कहते हो चुका है, हमें क्या फिर से बच्चा हो सकता है।
1: सबसे पहले तो मेरी संवेदना उस परिवार के लिए, तो अब वो बच्चा चाहते हैं तो मैं उनको ये जानकारी देना चाहती हूँ कि उनको बच्चे अवश्य हो सकते हैं। सबसे पहले ये समझते कि बंध्याकरण में होता क्या है। बंध्याकरण में जो नली होता है जहाँ औरत का अंडा और पुरुष का शुक्राणु मिलता है, उसको काट दिया जाता है ताकि अंडा और शुक्राणु नहीं मिले और बच्चा नहीं हो पाए। लेकिन ये कहीं भी औरत की प्रजनन क्षमता या पुरुष की प्रजनन क्षमता को कम नहीं करती है। तो ऐसे दंपति को बच्चा अवश्य हो सकता है। अगर ऐसे दंपति हमारे पास आते हैं तो सबसे पहले हम लोग उनका जांच करते हैं कि उनकी प्रजनन क्षमता अभी भी ठीक है कि नहीं, यानी कि उनके अंडाशय का जांच करते हैं कि उनके अंडाशय में अंडा पूरा है कि नहीं। पुरुष के शुक्राणु का जांच करते हैं, उनके शुक्राणु में स्पर्म ठीक से है कि नहीं, नंबर, मॉर्फोलॉजी, मतलब बनावट, उसकी संख्या और चाल, ये सब ठीक है कि नहीं। और एक अल्ट्रासाउंड करते हैं कि औरत के बच्चेदानी में कोई विकार तो नहीं हो गया है। अगर ये सब ठीक है तो ऐसे दंपति को बच्चा आराम से हो सकता है। उनको बच्चा या तो IVF से हो सकता है, कुछ लोग कहते हैं कि बंध्याकरण खोलने से भी बच्चा होता है। हम लोग दोनों पे बात करेंगे।
0: जी, जी, जी।
1: तो ऐसे दंपति को IVF से तो काफी आराम से बच्चा ठहर सकता है। IVF प्रोसेस में हम लोग भ्रूण बनाते हैं और औरत के बच्चेदानी में डाल देते हैं, और चूंकि उनको पहले भी बच्चा ठहरा तो उनका क्षमता पूरा होता है बच्चा ठहरने का। तो ऐसे दंपति को बहुत अच्छा चांस होता है बच्चा फिर से होने का, और इनका सक्सेस रेट भी बहुत हाई होता है। जहाँ हम लोग कहते हैं कि IVF का सक्सेस रेट सिर्फ 50-60% होता है, लेकिन इस तरह के दंपति को का सक्सेस रेट 90% इस तरह से होता है, यानी कि उनको बच्चा, ऐसे दंपति को IVF से बच्चा ठहरने का बहुत ज्यादा चांस है। जो दूसरा ऑप्शन होता है, कुछ लोग कहते हैं कि बंध्याकरण खुलते हैं, तो मैं बता दूं बंध्याकरण खुलता है लेकिन बहुत कम केस में, यानी कि 50% में ही खुल पाता है।
0: जी, जी।
1: और अगर खुल भी गया तो जो दिक्कत है, पुरुष और औरत में कुछ दिक्कत भी रहता है जो कि IVF से ओवरकम होता है, लेकिन सिर्फ बंध्याकरण खोलने से वो चीज ओवरकम नहीं होता।
0: जी, जी।
1: तो अगर बच्चा ठहरता भी है ऐसे दंपति को, बहुतों को तो नहीं ठहरता है, अगर ठहरता भी है तो वो अक्सर एक्टोपिक प्रेगनेंसी होता है।
0: okay.
1: यानी कि ट्यूब में बच्चा रह जाता है और वो जानलेवा होता है।
0: गर्भाशय में न जाके
1: ट्यूब में ही बच्चा रह जाता है और वो एक जानलेवा कंडीशन होता
0: जी,
1: है
0: जी।
1: तो ऐसे दंपति के लिए बेहतर ऑप्शन जो होता है वो हमेशा एक्टोपिक, मतलब एक्टोपिक प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए IVF ही एक बेहतर ऑप्शन है। तो एक बार फिर से बताना चाहती हूँ कि ऐसे दंपति को बच्चा होने का चांस काफी ब्राइट है,
0: बहुत ब्राइट है। चलिए, और आपने अपने बातचीत में बार बार IVF और IVF, सब लोग जानते हैं कि आज के डेट में बच्चा पाने का सबसे सफल तरीका है, छोटे में जल्दी से बता दीजिए।
1: देखिए, IVF में क्या करते हैं, IVF में पहले तो पुरुष और महिला, यानी कि दंपति का कुछ बेसिक जांच होता है
0: जी।
1: उसके बाद महिला को 10 दिन इंजेक्शन पड़ता है
0: जी।
1: और ये इंजेक्शन बहुत मिथ है सोसाइटी में कि बहुत पेनफुल होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस इंजेक्शन से किसी को भी दर्द नहीं होता है, और कुछ दर्द होता है तो उनमें बच्चे पाने की जो उत्साह होती है उसके सामने ये दर्द खत्म हो जाता है। 10 से 12 दिन या 14 दिन इंजेक्शन पड़ता है, उसके बाद फिर उसे औरत को बेहोश करके उससे अंडा निकाला जाता है और उसके हस्बैंड से मिला करके स्पर्म निकाल करके भ्रूण बनाया जाता है IVF लैब में। IVF लैब बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि IVF लैब माँ के गर्भ की तरह होना चाहिए।
0: जी, जी।
1: आपका कितना अच्छा सक्सेस रेट है वो डिपेंड करता है आपका IVF लैब कितना अच्छा है। तो IVF लैब में भ्रूण बनाया जाता है, और जब भ्रूण बन जाता है तो माँ के गर्भ में डाल दिया जाता है, और यही बच्चा भ्रूण, जो कि 3 या 5 दिन का भ्रूण होता है, वही 9 महीना माँ के गर्भ में रहता है। और जैसे

0: बाकी लोगों को डिलीवरीज होती है, वैसे ही उस दंपति को भी डिलीवरी होता है।
1: वैसे ही आपको भी बच्चा होगा। बहरहाल समय अपनी रफ्तार से भागता चला जाता है। आज बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी दी है डॉक्टर श्रद्धा कि जिनका बंध्याकरण हो चुका है वो भी बच्चा प्राप्त कर सकते हैं अगर वो चाहते हैं या कुछ उनके जीवन में ऐसी बातें हो जाती है। चलने से पहले दो तीन जानकारियां हम आपको देंगे। अगर आप ये रेडियो कार्यक्रम सुनकर जाते हैं श्रद्धा IVF एंड मैटरनिटी में, तो कंसल्टेशन फ्री जो पहला है वो फ्री मुफ्त होगा। इसके अलावा आपको पहला अल्ट्रासाउंड मुफ्त होगा, और अगर जो वहाँ ये प्रोसेस में आते हैं IVF के, तो आपको अटेंडेंट को रहने की सुविधा मुफ्त में मिलेगी। इसके अलावे पैसा जहाँ तक सवाल है बहुत ही रिजनेबल प्राइस है, लेकिन उसमें भी 24 इंस्टॉलमेंट में पैसा आप दे सकते हैं, यानी खुशियां ही खुशियां हम आपको देना चाहते हैं। जरूरत ये है कि आप आगे बढ़कर उसे लें और अपने जीवन में खुशियां ले जाएं। जी हाँ, चलते हैं, ये खुशियां लेने आएंगे। हम फिलहाल आज के कार्यक्रम से निकलते हैं और कहते हैं कि हमें फोन कीजिएगा, नंबर है 9162562266, 9162562266। बड़े बुजुर्गों अपनी जिम्मेदारी को आप समझ रहे हैं, लेकिन हम कहेंगे और समझिए। आप जितना समझिएगा हमारा एक्सपेक्टेशन और आपसे बढ़ेगा। चलें, नमस्कार।
2: नमस्कार।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे श्रद्धा IVF भिकना पहाड़ी पटना 4।
4: तो सुमा बहन, अभी हम सब सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम ममता का आंचल। और अब चौपाल के समय संपन्न होते हैं, हम सब खेती गृहस्थी में बातचीत करवे।
2: तो खेती गृहस्थी में खेती संबंधी बातचीत तो करेंगे ही, लेकिन समय हो चला है एक प्रायोजित कार्यक्रम का, तो सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम रोजगार।
4: चलो सुने।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गरौल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज।
5: गरौल वालों कैसे हैं? आस पड़ोस के लोगों आपसे भी पूछ रहा हूँ, कैसे हैं आप सब? मैं हूँ आपका राजेश और बहुत ही सही हूँ। कार्यक्रम रोजगार लेकर एक बार फिर से हम आ गए हैं। जी हाँ, आपको पता है कि आपके गोरौल के संस्कार नगर में SS प्रोफेशनल और गोरौल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस की स्थापना श्री राज ग्रुप ने की है, और वहाँ BC और BBA की पढ़ाई और BSc नर्सिंग, ANM और GNM की पढ़ाई इसी सत्र से शुरू होने जा रही है। बार बार कहता है राजेश कि टेक्निकल पढ़ाई का जमाना है, और जो टेक्निकल पढ़ाई करते हैं उनके लिए रोजगार की समस्या नहीं होती है। ये कार्यक्रम रोजगार हम लेकर आ रहे हैं गोरौल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस की तरफ से। सारी व्यवस्थाएं उम्दा हो चुकी हैं। इंटरमीडिएट अगर बायोलॉजी के साथ किया है आप सबों ने, तो आपके लिए ये सुनहरा अवसर है कि आप अपने घर में ही अपने करियर की शुरुआत करें, पढ़ाई लिखाई की शुरुआत करें और आगे बढ़ जाएं, बड़े शहरों के खर्चे से भी बच जाएं और अपने घर पर ही राज्य और राष्ट्रीय स्तर की पढ़ाई लिखाई करें। खासकर के कोविड के बाद जब से हेल्थ सेक्टर सामने आया, जिस तरीके से हेल्थ सेक्टर के लोगों ने, कर्मियों ने हमें बचाया, उस स्थिति में आज भी रोजगार की कमी नहीं है। SS प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट से आप BCA और BBA करके आगे बढ़ सकते हैं। हम नंबर बता रहे हैं, ज्यादा जानकारी इन पांचों कोर्सेज के लिए आप इस नंबर पर लें, 9162413233, 9162413233, और दूसरा नंबर है 9155558888, 9155558888। गोरौल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, नाम कितना अच्छा, गोरौल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। वहां से डॉक्टर NP प्रियदर्शी, श्रीराज ग्रुप का ही इंस्टीट्यूट है, और उसके मैनेजिंग डायरेक्टर हमारे साथ बैठे हैं डॉक्टर NP प्रियदर्शी। पिछले एपिसोड में आप लोगों से बात हुई थी, आगे जैसा कि हमने बताया हाँ कि ढेर सारे फोन कॉल्स आए थे। डॉक्टर साहब, क्या हुआ उस एपिसोड के बाद? पहले तो आपका स्वागत है आज के एपिसोड में।
6: स्वागत है भाई। और बच्चों ने बहुत जिज्ञासा दिखाई और बहुत अच्छे से इसको को रिलेट किया और लोगों ने बहुत उत्सुकता के साथ वहाँ आकर करके

0: और इंक्वायरी भी लिए, बहुत अच्छा लगा। और जो हमने कहा है वो उम्मीदों पर खड़ा उतरे हैं और उम्मीदों पर खड़ा उतरेंगे हम। जैसा कि पहले ही आप लोग जो सब लोग जानते हैं कि श्री राज ग्रुप जो है वह निश्चित रूप से सफल, सरल और सरल सरल चिकित्सा उपलब्ध कराता है, उसके साथ साथ शिक्षण संस्थान को संचालित करता है।
1: जी, जी।
0: तो हमारा आज भी वही है, लोग सब बड़े बड़े बातें करते हैं, हम बड़े बड़े काम करते हैं, बड़े बड़े उसको रिजल्ट देते हैं, यही हमारी विशेषता है।
1: एक सवाल आया था डॉक्टर साहब जिसका जवाब हम चाहते हैं आप दे दें, है ना। बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं एएनएम जीएनएम या बीएससी नर्सिंग के लिए जहां प्रैक्टिकल के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है, तो वो जानना चाहते हैं कि जो गोरौल में गोरौल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज खुल रहा है और आपने चर्चा की कि बहुत जल्दी हॉस्पिटल खुलने वाला है या पटना में श्री राज ट्रस्ट हॉस्पिटल इस ग्रुप का है, यहाँ प्रैक्टिकल या फिर आप बीएससी से एसोसिएट करेंगे उनको, तो जानना चाहते हैं कि क्या इस संस्थान के साथ हॉस्पिटल का होना आवश्यक है?
0: बिल्कुल बिल्कुल आवश्यक है और धरातल पर है, सिर्फ कागज पर नहीं। ये एक बात ये इसको ध्यान में रखने की जरूरत है कि प्रैक्टिकल के लिए बच्चों को निश्चित रूप से अपना अस्पताल होना जरूरी रहता है। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन होते हैं जिसके अपना अस्पताल नहीं होता है, जिसके कारण बहुत जो बेसिक चीजें होती है वो जानकारी नहीं मिल पाती है। तो बेसिक चीजों की जानकारी होने के लिए सबसे पहले अपना अस्पताल होना चाहिए और एडवांस के लिए एडवांस हॉस्पिटल की जरूरत होती है। तो बेसिक चीज के लिए अपना अस्पताल अगर नहीं रहेगा संस्थान के पास तो बेसिक चीजें कैसे सीख पाएंगे। और खुद अभी एक मैं डॉक्टर के होने के नाते मैं ये निश्चित रूप से कहूंगा कि अगर पैरामेडिकल और नर्सिंग के क्षेत्र को अगर विकसित करना है तो उसको बेसिक चीजों को डे टू डे से ही, डे फर्स्ट डे से ही उसको ज्ञान दिलाना जरूरी होता है, क्योंकि हर जगह एडवांस चीजें की जरूरत नहीं पड़ती है। कहीं कहीं थोड़ी छोटी बेसिक चीजें भी बहुत बड़ा कारगर होता है मरीज को ठीक करने में। तो बेसिक चीज को बताना जरूरी रहती है। फंडामेंटल जितना भी जितने भी एक्सरसाइज होते हैं, फंडामेंटल जितने भी प्रक्रियाएं होती है जो नर्सिंग से रिलेटेड या पैरामेडिकल से रिलेटेड, उसको मैं हम लोग सब लोग सबको उसको बताने की कोशिश करते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से अपना अस्पताल होना अति आवश्यक है। साथ ही साथ देखिए, अगर रेगुलर क्लासेज और रेगुलर प्रैक्टिकल अगर चलता है
1: जी,
0: तो बच्चों में उत्साह भी बढ़ता है, जिज्ञासा भी बढ़ती है और पढ़ने की ललक भी बढ़ती है। तो ये हमारा मूल मंत्र ही रहा है कि हम बच्चों को उन्नत शिक्षा के साथ साथ बेहतर प्रैक्टिकल और बेहतर क्लासेज देने का हमेशा काम कार्य करते हैं। यह हमारा सबसे बड़ा पूंजी है,
1: सबसे बड़ा पूंजी है। आपकी जिज्ञासा शांत हो गई, इसलिए दिमाग में ये बैठा लीजिए कि हेल्थ से संबंधित कहीं भी अगर कोई पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो उसका अपना अस्पताल होना चाहिए। जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि क्लासरूम स्टडी के बाद अगर सामने प्रैक्टिकल आपको मिल जाए ना, तो आप में कंसेप्ट क्लियर बहुत जल्दी हो जाता है और आप उसका लाभ उठा पाते हैं, क्योंकि फील्ड में जाकर के तो आपको प्रैक्टिकल व्यवहारिक चीजें ही आपको जाननी होंगी।
0: लगातार हम दो साल से कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं गोरौल में, अब जाकर करके कंस्ट्रक्शन लगभग हमारे अनुकूल हुआ है और तब से हमने इसको शुरुआत किया है। तो दोनों तरह फैकल्टी के कोर्सेज, जैसे बीबीए बीसीए का और उसके बाद पैरामेडिकल और नर्सिंग का, ये शुरुआत करने जा रहे हैं और उसका अभी भी हमारे अनुकूल थोड़ा बहुत कुछ बाकी है जिसको हम जल्दी ही पूरा कर लेंगे।
1: जी, जी।
0: तो उन बच्चों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, जो हमारे साथ आना चाहते हैं, कि हम बहुत जल्द उसको पूरे कर लेंगे और आपको एक बेहतर भविष्य की ओर ले जाएंगे। सुनहरा भविष्य पैरामेडिकल के साथ, नर्सिंग के साथ जुड़ा हुआ है। अगर आप अपने सपनों को उड़ान देना चाहते हैं तो निश्चित रूप से पैरामेडिकल को और नर्सिंग का क्षेत्र को ऑप्ट कीजिए। यह एक ऐसा क्षेत्र है जो सबसे ज़्यादा मांग वाली क्षेत्र है और सबसे सहज और सुलभ आपको मुकाम तक ले जाता है। नौकरी के लिए सबसे अच्छा जो विकल्प होता है वो बच्चों के लिए अभी के क्षेत्र में नर्सिंग का क्षेत्र है।
1: कई सवाल पूछेंगे आपसे, लेकिन इनका कंफ्यूजन क्लियर कर दें। ये जो संस्थान सुन रहे हैं गोरौल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, रोजगार में आप सुनते थे ना एसएस प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट, उसी ग्रुप का और सबका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है श्री राज ग्रुप, जो कि पटना में बुधवार को आप सुनते हैं। कार्यक्रम पैरामेडिकल है पारस, श्री राज ट्रस्ट हॉस्पिटल है, सारी व्यवस्थाएं हैं। अगर इसके बावजूद अगर आपको कहीं ऐसा लगे कि बातचीत

0: होनी चाहिए। गार्जियंस, आपके लिए भी मैं बात बोल रहा हूँ, माता पिता, बड़े भाई बहन जो भी हैं, तो 9162413233 डॉक्टर साहब का एक नंबर ये है 9162413233 और दूसरा नंबर है 9155 55 हाँ 8888 यानी 9 1 4 5 और 4 8। और ये संस्थान है जो है अपना गोरौल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, गोरौल स्टेशन से जैसे ही उतरिएगा पीएससी के तरफ बढ़िएगा तो संस्कार नगर है। अगर आप गोरौल स्टेशन से आ रहे हैं तो दाएं बाएं तरफ आपको ये संस्थान पड़ेगा। डॉक्टर साहब, रोजगार से संबंधित बातें कुछ लोगों ने पूछी है, शंका व्यक्त किया है कि क्या यहाँ गोरौल जैसे छोटे जगह से जब बच्चे पढ़ के निकलेंगे एएनएम जीएनएम या बीएससी नर्सिंग या बीबीए का कुछ भी, तो क्या रोजगार मिलने में कोई कठिनाई तो नहीं होगी, यानी संस्थान गांव का है तो।
1: हाँ अच्छा, देखिए ये एक बात आपको ध्यान देने की जरूरत है और बच्चों भी आपको भी ध्यान से सुनने की जरूरत है कि कोई जगह छोटा या बड़ा नहीं होता है, उसकी मान्यता होती है और मान्यता सरकार देती है। हमारा जो काम होता है, कॉलेज का जो काम होता है, सरकार के करिकुलम को पूरा करना, सरकार के कोर्स को जो सिलेबस है उसको पूरा करना, और सरकार का काम होता है परीक्षा लेना और सर्टिफिकेट देना, और बच्चों तुम्हारा काम है पढ़ करके पास करना, पढ़ाई करके पास करना, ये तो आपका काम है। तो बहुत सारे प्रश्न करते हैं कि मैं पास कर जाऊंगा कि नहीं, अगर हमारा सिलेबस जितना है उसे हम पूरा कराते हैं, अगर तुम क्लास कर लिया तो तुमको पास होने से कोई नहीं रोकेगा, एक बात है। दूसरी बात, तुम जो है वो रिकॉग्नाइज संस्थान में एडमिशन लिए हो तो तुम्हारा परीक्षा सरकार लेगी और सरकार सर्टिफिकेट देगी, इसके लिए भी उसमें सरकार, उसमें ये नहीं लिखा हुआ रहता है कि कहाँ का इंस्टीट्यूशन, उसमें ये लिखा था है बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा मान्यता प्राप्त, और उसके बाद ये लिखा हुआ रहता है बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट रहता है। तो यह सब लोग को पता है कि बिहार स्वास्थ्य जब खुद सर्टिफिकेट देगी तो इसमें ई फॉरवर्ड का कोई मतलब नहीं होता है, तो इसलिए निश्चिंत होकर करके आप एडमिशन ले सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं,
0: एडमिशन ले सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। और भैया राजेश तो हमेशा कहता है कि टेक्निकल पढ़ाई का जमाना है और उसमें अगर हेल्थ में आपने पढ़ाई कर ली है ना तो स्वरोजगार, सरकारी क्षेत्र में रोजगार या फिर प्राइवेट क्षेत्र में रोजगार सुनिश्चित है अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की, वैसे संस्थान से पढ़ाई की अगर आपने हेल्थ सेक्टर में जहां क्लासरूम के साथ साथ प्रैक्टिकल की भी आपको प्रॉपर सुविधा दी गई है। डॉक्टर साहब का नंबर हम बता रहे हैं, आप नोट कर लीजिए 9162413233 और 9155558888 और गोरौल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, नाम याद रखिए गोरौल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, श्री राज ट्रस्ट ग्रुप का ये संस्थान है, श्री राज नर्सिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट का सिस्टर कंसर्न है जो गोरौल में खोला गया, जिस कैंपस में एसएस प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट बीसी और बीबीए के लिए है उसी कैंपस में है ये, उसी कैंपस में है ये, और आप चाहे तो वहां जा सकते हैं। बहरहाल एक सवाल डॉक्टर साहब, कहते हैं कि हम ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, पैसे की उस तरीके से बहुत नहीं है, बहुलता नहीं है, क्या जो मिलेगा 4 लाख रुपया उसी में हमारा ये तीनों कोर्स अगर हम कोई भी करना चाहें तो हो जाएगा क्या?
1: देखिए दो कोर्स में है, इसमें बिहार सरकार ने दी है स्टूडेंट क्रेडिट का, उसमें से है जीएनएम है और बीएससी नर्सिंग है। एएनएम को डिप्लोमा कोर्स के अंतर्गत रखा है, सर्टिफिकेट कोर्स के अंतर्गत रखा है, तो उसमें बिहार सरकार अनुदान नहीं देती है। हाँ उसमें स्कॉलरशिप मिलता है, स्कॉलरशिप तीनों में मिलता है, उसमें बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से भी पैसे मिलते हैं जीएनएम और बीएससी में, लेकिन बाकी एएनएम जो है वो सिर्फ स्कॉलरशिप मिलता है। जीएनएम में भी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और उसके बाद स्कॉलरशिप दोनों मिलते हैं, बीएससी में भी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और स्कॉलरशिप दोनों मिलते हैं। तो इस तरह से यही व्यवस्था सरकार ने बनाई है और तो उसी व्यवस्था के अंतर्गत हमको भी चलना होता है,
0: हमको भी चलना होता है, लेकिन हम चल के आ गए गोरौल आपके पास, तो गोरौल में आ गए हैं बीएससी नर्सिंग जीएनएम एएनएम सारे कोर्सेज को, और पहले से बीबीए और बीसीए है एसएस प्रोफेशनल में, कैंपस एक है, आप जाकर देख सकते हैं। डॉक्टर साहब स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद
2: डॉक्टर साहब आए और जानकारी

0: देकर चले गए। जी हाँ, अपने व्यस्त समय में से डॉक्टर साहब आते हैं, समय निकालकर और जानकारियां देते हैं। आप लोगों ने ही कहा था कि ग्रामीण क्षेत्र का विकास होगा तभी संपूर्ण समाज का विकास होगा, और ऐसे में डॉक्टर साहब ने आपकी बातें सुनी और गुड़ौल में, हाँ, उन्होंने पांच जी हाँ प्रोफेशनल कोर्स की पढ़ाई शुरू कर दी है इसी सत्र से। BCA, BBA और हेल्थ के सेक्टर में BSc, ANM, GNM, जी हाँ BSc नर्सिंग है, ANM है और GNM है। आपके लिए सहूलियत, गोरौल के आसपास जितना भी इलाका है, वैशाली का, मुजफ्फरपुर का या इधर छपरा की तरफ का, सारे लोग आ सकते हैं। पटना के लोग भी जा सकते हैं, एकदम बहुत ही अच्छा माहौल, बहुत ही अच्छा कैंपस, बहुत ही अच्छी फैकल्टी, सारी चीजें हैं। और पढ़ाई वैसी करनी चाहिए ना जो अर्थोपार्जन कर सके। नंबर नोट करें, ज्यादा जानकारी के लिए डायल करें 9162413233, 9162413233। और दूसरा नंबर है, ध्यान से सुनिएगा, 9155558888, 9155558888। हम तो यही चाहते हैं, हम बोले तो आपका राजेश यही चाहता है कि आपका भविष्य उज्जवल हो और आप जिंदगी में आगे बढ़ जाएं। थैंक यू गोरौल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, रोजगार कार्यक्रम लेकर आने का मौका जो आपने दिया। चलते हैं, नमस्कार।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे गोरौल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज।
2: तो अंजुला जी, हम लोग सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम रोजगार, और अब कुछ बातें अपने किसान भाई बहनों के लिए।
3: बिल्कुल, और बात हम किसान भाई बहन लगी ऐसा करवी जिन जिगरा में उनका कम मेहनत में अधिक मुनाफा मिल सके।
2: अच्छा।
3: और जो उपभोग करे वाला आदमी है हम सब जैसे, हम सबके सेहत के हिसाब से फायदा भी हो सके।
2: अच्छा, ऐसी क्या मतलब बातें हैं?
3: अच्छा,
2: सही बात है।
3: नितिन की बात करी सहजन के।
2: अच्छा,
3: तो आम के आम और गुठली के दाम सेहत लगी है, एकर पत्ता से लेकर के एकर फली से लेके सब कुछ
2: बहुत ही
3: स्वास्थ्य वर्धक हो गए।
2: बिल्कुल,
3: आजकल बाजार में एकर बहुत मांग है। तो सहजन के बाग लगे थे और किसान भाई और अधिक मुनाफा कमे थे, तो ये बहुत फायदा दे वाला तरकारी तो है ही है। और सहजन के बाग लगावे लगी सबसे पहले तो भूमि के चुनाव करने के पड़ा है। सहजन के खेती लगभग हर तरह के मट्टी, कम उपजाऊ और बलुई मट्टी में भी करल जा है, लेकिन सबसे अच्छा जो है जल निकास वाला दोमट मट्टी मानल जा है।
2: सही बात है, बिल्कुल सही कहा कि आम के आम गुठली के दाम सहजन लगाइए और मुनाफा कमाइए। बिल्कुल, ये सहजन एक ऐसा पेड़ है जिसमें स्वास्थ्य और समृद्धि की ओर कह सकते हैं कि एक मजबूत कदम है। या सहजन जिसे हम सेजन के नाम से, मुनगाहा, ड्रमस्टिक के नाम से जानते हैं, बहुत ही उपयोगी ये खाने में भी है, और इसका जो वृक्ष है वो भी बहु उपयोगी है। जैसा कि आपने कहा कि सहजन की फलियां, पत्तियां, फल, अभी सभी किसी ना किसी रूप में हम उसका उपयोग करते हैं, और इसे चमत्कारी वृक्ष भी कहा जाता है। तो इनकी जो कोमल पत्तियां हैं उनका उपयोग हम सब्जी, सूप, आचार और विभिन्न व्यंजनों में भी करते हैं, और ऐसा भी कहा जाता है कि इसमें भरपूर विटामिन, खनिज, प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। और इसकी बढ़ती मांग के कारण जरूरी है कि सहजन की बागवानी हमारे किसान भाई जरूर करें, क्योंकि ये आय का एक बहुत ही अच्छा स्रोत माना जाता है।
3: तो सहजन के बाग में हम लोग सबसे पहले भूमि के चुनाव कर बतावे, साथ ही साथ पौधा के खेत में लगावे लगी लगभग 3x3 मीटर के दूरी पर 45x45 सेंटीमीटर के आकार के गड्ढा खोदल जाए, और हर गड्ढा में सरल गोबर के खाद और मट्टी भरल जाए। सहजन के बीज के सीधा तौर पर गड्ढा में या नर्सरी में पॉली बैग में उगा के रख सकते हैं। पॉली बैग में या गड्ढा में बीज 2 या 3 डाल करके पौधा उगावल
2: जाए। सही बात है, और साथ ही साथ गर्म और मध्यम जलवायु सहजन के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है, और अधिक पाला इसकी वृद्धि को प्रभावित कर सकता है। दोमट या बलुई दोमट मिट्टी जहां पानी का निकास अच्छा हो सबसे उपयुक्त है। जल भराव वाली भूमि से बचना चाहिए, और खेत की अच्छी तरह से जुताई करके खरपतवार निकाल दे। पर जैसा कि आपने कहा, गोबर और

0: सड़ी हुई खाद मिलाने से पौधे की जो वृद्धि होती है वो बेहतर होता है। स्वस्थ और उन्नत किस्म के बीज या पौधे लगाएं ताकि जो उपज हो वो स्वस्थ हो।
1: बिल्कुल। और कटिंग से भी मैंने हम सब देखा नहीं कि माँ लोग के दादी लोग के कहीं से वो दो टहनी ले ले आती हैं और ओकरा में गोबर लगा के गाड़
0: गाड़
1: देते
0: देते हैं।
1: और
0: हाँ
1: वो हो जावे, तो कटिंग से भी पौधा तैयार करल जा हई। एकरा लगी स्वस्थ पेड़ के लगभग 1 से 1.5 मीटर लंबा टहनी के सीधा मट्टी में रोप देल जा हई, और ये सूखा और सहनशील पौधा होवे है, एकरा में ज्यादा सिंचाई के जरूरत ना पड़ा
0: हाँ
1: है।
0: लेकिन रोपाई के बाद शुरुआती दिनों में नियमित सिंचाई आवश्यक होती है अंजुला बहन। पौधे स्थापित हो जाने के बाद कम पानी में भी अच्छी तरह बढ़ते हैं, लेकिन लंबे सूखे के समय सिंचाई जो है वो ज़्यादा लाभदायक होती है। खाद और उर्वरक, जैविक खाद का प्रयोग करना चाहिए। समय समय पर संतुलित पोषक तत्व देने से फलियों का जो उत्पादन है वो बढ़ता है। खेत को खरपतवार से मुक्त रखना चाहिए और समय समय पर जो शाखाएं हैं उनकी छटाई करने से नए तने निकलते हैं और उत्पादन भी
1: और एक
0: अच्छा
1: कुछ
0: होता है।
1: सोमा बहन मतलब कुछ एक उपयुक्त किस्म है, जैसे कि PKM1, PKM2 और ODC3, और साथ ही पौधा लगावे के कुछ महीना में जैसे कि 3 से 4 महीने में पत्ता और 7 से 8 महीना में उपज मिलना शुरू भी हो जाए,
0: बिल्कुल
1: तो किसान भाई एकरा लगा के लाखों रुपया के मुनाफा कमा सका हथिन।
0: एकदम, तो मुनाफा होगा इसके लिए हमारे किसान भाई सहजन के बाग जरूर लगाएंगे। तो चलिए इसी बात पर हम अपने किसान भाइयों को सुनवाते हैं अमरेश कुमार से एक पवरिया लोकगीत।

0: वाह।
1: बहुत सुंदर गीत, सचमुच मजा आ गले और श्रोता लोग के भी अच्छा लगले हो। किसान भाई सब लोग झूमे लगल थे न, तो इतना बढ़िया बढ़िया गीत लगी। अमरीश कुमार के धन्यवाद करही। और
0: चलने का समय हो चला
1: सोमा
0: है।
1: घर चले के सोमा बहिन,
0: हाँ
1: तो नमस्कार सोमा बहिन।
0: नमस्कार अंजुला बहन।

0: अभी आप सुन रहे थे ग्रामीण भाइयों का कार्यक्रम चौपाल के तहत खेती गृहस्थी। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलो हर्ट्स पर। थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: पशुपालक भाई बहन, अत्यधिक गर्मी में पशुओं के रख रखाव का कृपया ध्यान रखें।
2: पशुओं को लू से बचाने के लिए छायादार जगह पर रखें। पशु घर को ठंडा रखने के लिए जूट की टाट लटकाकर उसे गीला रखें। उन्हें दिन में 2 से 3 बार नहलाएं, 3 से 4 बार ठंडा और साफ पानी पीने को दें। खाने में अजोला घास, चोकर और जौ की मात्रा बढ़ा दें। चराने के लिए सुबह जल्दी और शाम को देर से भेजें। लू लगने पर नजदीकी पशु चिकित्सालय में संपर्क करें।
1: डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: बुद्धू, नई कार जीतने का मौका? वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
4: रुक जा बुद्धू।
5: What? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
3: तो समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
5: RBI कहता है स्मार्ट बनो,
6: कूल रहो।
7: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
8: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
7: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अंशु अवस्थी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मुजफ्फरपुर में 1047 करोड़ रुपए की लागत वाली 900 से अधिक योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन का कल अंतिम दिन, एनडीए और महागठबंधन ने अपनी अपनी जीत के किए दावे। गया जी के बिपार्ट परिसर में विधानसभा सदस्यों का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर सह प्रबोधन कार्यक्रम संपन्न। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने कहा, विधायकों को सदन में प्रभावी काम करने में मदद मिलेगी। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान मुजफ्फरपुर, वैशाली, कटिहार, जमुई और बांका सहित विभिन्न जिलों में तेज हवा के साथ बारिश का पूर्वानुमान जताया। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि राज्य की एनडीए सरकार लोगों के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। श्री चौधरी ने आज मुजफ्फरपुर में 1047 करोड़ रुपए की लागत वाली 900 से अधिक योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने के बाद सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नगर विकास और आवास विभाग की इन योजनाओं से शहर में सड़क, जल निकासी और पार्क समेत अन्य शहरी आधारभूत सुविधाओं का विकास किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के 100 दिन पूरे होने पर मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को राशि दी जाएगी।
1: सरकार के महिलाओं को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत हम लोग उनको रोजगार के लिए राशि उपलब्ध कराएंगे। 1,81,00,000 हमारी बहनों के खाते में हम लोगों ने पैसा पहुंचाया। और बता देना चाहता हूं, दूसरा किस्त हो या कुछ बहने हमारी जो छूट गई है उनको भी आश्वस्त करता हूं, इसी महीने हमारी सरकार का 100 दिन पूरा हो रहा है, उस दिन आप सभी बहनों के खाते में फिर से आपके खाते में राशि देने का काम हमारी सरकार करेगा। साथियों,
0: मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार अपराध और अपराधी से कोई समझौता नहीं करेगी, अपराध करने वालों को कड़ी सजा दी जाएगी।
1: अपराधी से कोई समझौता नहीं, अपराधी कोई हो उसको जेल के अंदर रहना पड़ेगा और नहीं तो उसको बिहार छोड़ना पड़ेगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ भी जीरो टॉलरेंस है साथियों, और साइबर क्राइम में भी हम लोगों ने जीरो टॉलरेंस रखा है।
0: सभा को संबोधित करते हुए श्री चौधरी ने कहा कि मुजफ्फरपुर में आर्किटेक्ट यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी।
1: मैं आज घोषणा करता हूं कि इस मुजफ्फरपुर MIT की धरती पर एक आर्किटेक्चर और सिविल इंजीनियरिंग का एक यूनिवर्सिटी बनाने का काम हमारी सरकार करेगा। सर,
0: बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन का कल अंतिम दिन है। उपचुनाव को लेकर प्रचार प्रसार का शोर बढ़ गया है। प्रत्याशी लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा और जन सुराज के प्रत्याशी प्रशांत किशोर के कल नामांकन दाखिल करने की संभावना है। उपचुनाव के लिए अब तक 11 प्रत्याशियों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किया है। उम्मीदवार 16 जुलाई तक अपना नाम वापस ले सकते हैं। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान 30 जुलाई को होगा, जबकि मतगणना 3 अगस्त को कराई जाएगी। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के मंत्री श्रवण कुमार ने दावा किया है कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में एनडीए की जीत पक्की है। श्री कुमार ने आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि चुनाव में राजद और जनसुराज की हार तय है।
2: जो

0: सम्राट चौधरी के नेतृत्व में काम चल रहा है और नीतीश कुमार जी के काम को आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार कर रही है। हर क्षेत्र में बिहार आगे बढ़ रहा है, सबको मदद किया गया है, इसलिए एनडीए के उम्मीदवार काफी मतों के अंतर से विजय होंगे। अभी तो सब ताल ठोक रहे हैं और ताल ठोकते रहेंगे।
1: इधर राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि बांकीपुर की जनता पार्टी प्रत्याशी रेखा गुप्ता के साथ है। श्री तिवारी ने कहा कि 3 अगस्त को चुनावी नतीजे चौंकाने वाले रहेंगे।
2: बांकीपुर की जनता राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के उम्मीदवार श्रीमती रेखा गुप्ता जी के साथ है। बीजेपी के पास उम्मीदवार ही नहीं है जो जनता के आक्रोश का सामना कर पाए, इसीलिए बीजेपी चुनाव से पहले ही हार मान गई। 3 अगस्त बीजेपी का किला बांकीपुर ध्वस्त।
1: गया जी स्थित बिपार्ट परिसर में विधायकों के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण सह प्रबोधन शिविर आज संपन्न हो गया। विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने समापन सत्र के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि समय समय पर इस तरह के आयोजन से विधायकों को सदन में जनता की आवाज अधिक प्रभावी ढंग से उठाने में मदद मिलेगी।
0: आज के समय में लोकतंत्र निरंतर विकसित हो रहा है, जनता की अपेक्षाएं बढ़ी है और जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारियां भी पहले से अति व्यापक हुई है। ऐसे में समय समय पर इस प्रकार के प्रशिक्षण एवं संवाद कार्यक्रम अत्यंत आवश्यक, ताकि जनप्रतिनिधियों अपने दायित्वों का प्रभारी ढंग से निर्वहन कर सके। यह कार्यक्रम किसी दल या विचारधारा का नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक संस्थाओं को अधिक सशक्त, उत्तरदायी और प्रभावी बनाने की भूमिका का प्रयास है।
1: इस शिविर का उद्देश्य जनप्रतिनिधियों को संसदीय प्रक्रियाओं, विधायी परंपराओं, डिजिटल विधानसभा और उनकी संवैधानिक जिम्मेदारियों के बारे में प्रशिक्षित करना था। इस शिविर का उद्घाटन उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कल किया था। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार आने से पहले देश में केवल 5 जलमार्ग थे, लेकिन आज 111 जलमार्ग बनाए जा चुके हैं। श्री सिंह ने बेगूसराय में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि सिमरिया में मल्टी मॉडल टर्मिनल के निर्माण के लिए उन्होंने केंद्र से मांग की है।
3: हम भी मांग किए हैं कि सिमरिया में मल्टी मॉडल टर्मिनल हो। आज देखिए बड़े बड़े कार्गो रिफाइनरी के विस्तार के लिए उसमें जो लगेगा यंत्र वो बड़े बड़े कार्गो पे आ रहे हैं। ये आने वाले दिन में एक मल्टी मॉडल टर्मिनल यहाँ बनने का बनाने के लिए हम जल पोत डिपार्टमेंट को हमने लिखा है जल मार्ग विस्तृत करने के लिए। उम्मीद है वो होगा तो इसका एक नया स्वरूप दिखेगा।
1: केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस फर्जी तस्वीर का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से वाहन के ईंधन टैंक में समस्या हो सकती है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को झूठा बताया है। कार्यालय ने कहा है कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि तेल विपणन कंपनियों द्वारा आपूर्ति किया जाने वाला E20 पेट्रोल भारतीय मानक ब्यूरो के निर्धारित मानकों के अनुरूप है। मंत्रालय ने कहा है कि निर्धारित मानकों के अनुरूप होने पर इथेनॉल और पेट्रोल पूरी तरह से घुलनशील होते हैं। मंत्रालय ने यह भी आश्वासन दिया है कि भारत में आपूर्ति किया जाने वाला इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल उच्च गुणवत्ता मानकों का पालन करता है और उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराए जाने से पहले इसका गहन परीक्षण किया जाता है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
4: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सतत भविष्य सुनिश्चित करने तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण बहुत ही महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि आज पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन

0: और धरती का तापमान बढ़ने को लेकर चिंतित है। उन्होंने कहा कि वर्ष 1880 के बाद समुद्र के बढ़ते तापमान और पिघलते हिमनदों ने वैश्विक समुद्री जल स्तरों को लगभग 20 से 23 सेंटीमीटर तक बढ़ा दिया है। श्री चौहान ने कहा कि आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन और बढ़ते तापमान को लेकर चिंतित है।
1: वर्तमान दर से अगर ग्रीन गैसों का उत्सर्जन जारी रहा, वनों की कटाई, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन जारी रहा तो 2050 तक पृथ्वी को गंभीर पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
0: श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस संकट से निपटने के लिए कई पहल की है। उन्होंने कहा कि देश में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। श्री चौहान ने पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण के लिए एक पेड़ माँ के नाम अभियान और मिशन लाइफ जैसी पहलों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भारत ने वर्ष 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा है कि विकास योजनाओं का लाभ पंचायत स्तर तक पहुंचाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। श्री प्रकाश ने शेखपुरा दौरे के दौरान संवाददाताओं से बातचीत में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को भी जनता के प्रति संवेदनशील रहने को कहा।
2: योजनाओं का लाभ मिल रहा है लोगों को, लेकिन जो अपेक्षित लाभ है, जिस उद्देश्य के साथ योजनाएं बनाई जा रही है, निश्चित तौर पर पंचायत स्तर को उसमें और बेहतरी किए जाने की जरूरत है। मुख्यतः इसमें एक तो लोगों को खुद जागरूक होना पड़ेगा, साथ ही साथ दूसरा जो जनप्रतिनिधि भी इसमें और ज्यादा बेहतर तरीके से काम करे, पूरी ईमानदारी के साथ काम करे, लोग खुद निरीक्षण करे और पदाधिकारी भी संवेदनशील होकर काम करे। अगर तीनों लेवल पे काम होगा, तीनों लेवल पे ही काम करने की जरूरत है। लोग लगे हुए आने वाले समय में पंचायती राज व्यवस्था और मजबूत होगी, जो भी योजनाएं चल रही है उनका लाभ लोगों को सही तरीके से मिलेगा, हर प्रकार से कोशिश की जा रही है।
0: प्रदेश में मॉनसून की सक्रियता से पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के अनेक भागों में बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार सीवान जिले के कुछ स्थानों पर भारी बारिश रिकॉर्ड की गई है। जिले के मैरवा में सबसे अधिक 75.6 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान मुजफ्फरपुर, वैशाली, किशनगंज, कटिहार, जमुई और बांका जिले के अनेक स्थानों पर बारिश हो सकती है।
3: दिनांक 13 जुलाई राज्य के कटिहार एवं किशनगंज जिलों में मेज गर्जन वज्रपात तथा अत्यधिक भारी वर्षा के साथ तेज हवा 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के अररिया, बांका, भागलपुर, मधेपुरा, पूर्णिया एवं सुपौल जिलों में मेज गर्जन वज्रपात तथा भारी वर्षा के साथ तेज हवा 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के उत्तर मध्य एवं दक्षिण मध्य भाग के जिलों जमुई, खगड़िया, मुंगेर एवं सहरसा जिलों में मेज गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: इधर विभाग ने बेगूसराय, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, शिवहर और सीतामढ़ी जिले के कुछ भागों में अगले एक घंटे के दौरान वज्रपात के साथ बारिश की चेतावनी जारी की है। नेपाल के तराई क्षेत्रों में भारी बारिश और उत्तर बिहार के कई क्षेत्रों में लगातार बारिश से गंडक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। नदी का पानी पश्चिम चंपारण जिले के योगापट्टी प्रखंड के सिसवा गांव में कई घरों में प्रवेश कर गया है। जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता बाढ़ और कटाव पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। इधर कोसी नदी के जलस्तर में भी बढ़ोतरी हुई है। इसे देखते हुए नदी पर स्थित बराज के कई फाटकों को खोल दिया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री सत्येंद्र नारायण सिन्हा की जयंती पर पटना में राजकीय समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पटना के श्रीकृष्णापुरी पार्क में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी सहित अन्य गणमान्य लोगों ने उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। भागलपुर जिले के हबीबपुर थाना क्षेत्र स्थित कोल्ड स्टोरेज के सामने कब्रिस्तान में जनाजा ले जाने के दौरान हाई टेंशन तार की चपेट में आने से 6 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रोहतास जिले के अकोढ़ी गोला थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक निर्माणाधीन मकान से 7,990 लीटर विदेशी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। जब्त शराब की कीमत 10 लाख रुपए बताई गई है। वहीं मुंगेर जिले के टेटिया बंबर थाना क्षेत्र के छाता चौक के पास से पुलिस ने एक ट्रक से 3,447 लीटर शराब जब्त की है। सिवान जिले के मैरवा थाना की पुलिस ने पंडितपुरा गांव में छापेमारी कर जाली नोटों के अवैध कारोबार का भंडाफोड़ करते हुए 5,45,000 रुपए के जाली नोट समेत दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

0: सांसद अरुण भारती ने शेखपुरा में केंद्रीय विद्यालय पहुंचने के लिए लगभग 15 लाख रुपए की राशि से पहुंचे पथ के निर्माण और विद्यालय के बाउंड्री वॉल की आधारशिला रखी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मुजफ्फरपुर में 1,047 करोड़ रुपए की लागत वाली 900 से अधिक योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन का कल अंतिम दिन, एनडीए और महागठबंधन ने अपनी अपनी जीत के किए दावे। गैजी के बेपाट परिसर में विधानसभा सदस्यों का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर सह प्रबोधन कार्यक्रम सम्पन्न। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने कहा, विधायकों को सदन में प्रभावी काम करने में मदद मिलेगी। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान मुजफ्फरपुर, वैशाली, कटिहार, जमुई और बांका सहित विभिन्न जिलों में तेज हवा के साथ बारिश का पूर्वानुमान जताया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।
1: असली नोट से क्यों खेल रहा है?
2: ब्रो, ये फटा है।
3: सुन, कते फटे हैं पुराने नोट को?
4: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
2: वाओ, नया नोट मिलेगा?
3: हाँ, जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
4: आरबीआई कहता है, स्मार्ट बनो,
5: कूल रहो।
6: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल
7: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। अब प्रस्तुत है अरवल जिले के हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता चंद्रभूषण कुमार।
8: अरवल जिले में इन दिनों किसान युद्ध स्तर पर धान की रोपनी में जुटे हैं। जिले में पर्याप्त बारिश नहीं होने के कारण किसानों को रोपनी के लिए सिंचाई के अन्य साधनों का सहारा लेना पड़ रहा है। सोन नहर में पर्याप्त पानी नहीं रहने के कारण नहर के अंतिम छोर तक पानी नहीं पहुँच पा रहा है। जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि जिले में धान की खेती के लिए 44,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि किसानों को अनुदानित दर पर धान के बीज उपलब्ध कराए गए हैं, साथ ही जिले में पर्याप्त मात्रा में उर्वरक भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा 10 जुलाई को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत जिले के 79,321 लाभार्थियों के खाते में डीबीटी के माध्यम से 11,69,81,400 रुपए की राशि हस्तांतरित की गई। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण समाहरणालय के सभा कक्ष, प्रखंड परिसर, पंचायत सरकार भवन तथा आंगनबाड़ी केंद्रों पर किया गया। पेंशन की राशि प्राप्त होने के बाद लाभार्थियों के चेहरे पर खुशी देखी गई। बीते दिनों जिले के प्रभारी मंत्री दीपक प्रकाश द्वारा कलेर प्रखंड के टेरी ग्राम पंचायत में बेटी जन्मोत्सव किट का वितरण पात्र लाभार्थियों के बीच किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सशक्त समाज के निर्माण के लिए बालिकाओं और महिलाओं का सशक्तिकरण आवश्यक है। श्री प्रकाश ने कहा कि बालिकाओं को बेहतर विकास के लिए पोषण, शिक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करना हम सभी की जिम्मेदारी है, तभी देश और समाज को सशक्त बनाया जा सकता है। इधर मंत्री दीपक प्रकाश ने बीते दिनों पंचायत विकास दिवस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार में आम लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पंचायतों में प्रत्येक माह के अंतिम रविवार को इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसके माध्यम से पंचायतों में किए जा रहे विकास कार्यों, खर्च की गई राशि, उसकी गुणवत्ता सहित अन्य जानकारियां आम लोगों को उपलब्ध कराई जाएगी। जिले में बीते 2 जुलाई से 8 जुलाई तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला पदाधिकारी द्वारा समाहरणालय में पदाधिकारियों और कर्मचारियों को ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा तथा भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देने की शपथ दिलाई गई। इससे पूर्व 28 जून से

0: 2 जुलाई तक जिले में पल्स पोलियो अभियान चलाया गया। अभियान के तहत 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को घर घर जाकर पोलियो की दवा पिलाई गई। जिले में 1,02,918 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने के लिए 255 टीमों का गठन किया गया था। जिले में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का कार्य तेजी से किया जा रहा है। जिला पदाधिकारी ने कहा कि इस योजना के माध्यम से स्वच्छ और हरित ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है, साथ ही आम उपभोक्ताओं को बिजली बिल को कम करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण पहल है। इधर जिले में उर्दू भाषा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 8 जुलाई को उर्दू भाषी छात्र छात्राओं के बीच वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन समाहरणालय के सभा कक्ष में किया गया। प्रतियोगिता में सैकड़ों छात्र छात्राओं ने भाग लिया। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। जिले में आगामी बाढ़ और सुखाड़ की संभावित स्थिति को देखते हुए SDRF बिहटा की टीम ने बंसी प्रखंड में तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की। इस दौरान नाव, लाइफ जैकेट, पोलोथीन सीट की उपलब्धता तथा गोताखोरों की क्षमता का आकलन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर अरवल जिले में कई स्थानों पर सामूहिक योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं समाहरणालय पार्क में भी योग शिविर आयोजित किया गया। योग शिविर में जिला पदाधिकारी अमृषा बैंस, आरक्षी अधीक्षक डॉक्टर नवजोत सिम्मी सहित कई लोगों ने भाग लिया। इस दौरान लोगों को योग के माध्यम से स्वस्थ और निरोग रहने का संदेश दिया गया।
1: अभी आप सुन रहे थे अरवल जिले की हलचल, इसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता चंद्रभूषण कुमार।
2: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर।

हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए, सुनीता जोशी के स्वर में गीत। कार्यक्रम है सुगम संगीत।

सुनीता जोशी के गाए इस गीत के साथ ही कार्यक्रम सुगम संगीत होता है यहीं पर संपन्न। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत में आइए सुनते हैं फिल्म मोहरा से इस गीत को, जिसके लिए स्वर दिया है उदित नारायण और अलका याग्निक ने।

लता मंगेशकर और मुकेश को अभी आप सुन रहे थे फिल्म पत्थर के सनम में। लीजिए आप सुनिए फिल्म राम अवतार से इस गीत को, जिसके लिए स्वर दिया है लता मंगेशकर और मोहम्मद अजीज ने।

अभी आप सुन रहे थे एसपी बालासुब्रमण्यम और चित्रा को फिल्म रोजा में। लीजिए आप सुनिए मुकेश और लता मंगेशकर के स्वर में इस गीत को, जो है फिल्म धरती कहे पुकार से।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार के गाए फिल्म प्रेम बंधन के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत होता है यहीं पर संपन्न। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर। कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे सुनीता जोशी के स्वर में गीत, कार्यक्रम है सुगम संगीत।

मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत पर हमले के बाद पश्चिम एशिया क्षेत्र में तुरंत तनाव कम करने का आह्वान किया। अमेरिका ने कहा हॉर्मुज जलडमरू मध्य सभी जहाजों के लिए खुला और अमेरिकी सेना नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैयार। वियतनाम में नौका दुर्घटना में मारे गए 15 भारतीयों के पार्थिव शरीर हो ची मिन शहर पहुंचे, उन्हें जल्द से जल्द भारत लाया जाएगा। उत्तर प्रदेश ने एक दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण में नया इतिहास रचा। चीन में अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 3 स्वर्ण सहित कुल 16 पदक जीते और लंदन में विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष सिंगल्स फाइनल में यानिक सिनर और अलेक्जेंडर ज़वरेव का मैच जारी। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों से मुक्त और बिना रुकावट के नौवहन और वाणिज्य को जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय के बयान में इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों पर लगातार हमलों की घटनाओं पर चिंता प्रकट की गई है।
1: भारत ने तनाव को तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए बातचीत को शीघ्र निष्कर्ष तक पहुंचाने की मांग दोहराई है ताकि इस इलाके में शांति और स्थिरता कायम की जा सके। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाना बंद होना चाहिए। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की है। पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है जबकि एक लापता है। ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर द्वारा रणनीतिक जलमार्ग को अगले आदेश तक बंद करने की घोषणा के कुछ घंटों बाद अमरीकी सेंट्रल कमान ने कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य सभी वैध आवागमन चाहने वाले जहाजों के लिए खुला है। ये बयान अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संवाददाता सम्मेलन में ये कहने के बाद आया है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य वाणिज्यिक जहाजों के लिए खुला है। अमरीकी सेंट्रल कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि जलडमरू मध्य से समुद्री यातायात सुचारू रूप से चल रहा है और अमरीकी सेनाएं ईरानी आक्रामकता, उत्पीड़न, धमकियों और मनमानी घोषणाओं के बावजूद नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैनात हैं। उन्होंने कहा कि ईरान का हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर कोई नियंत्रण नहीं है और सुरक्षित पारगमन मार्ग खुले हैं। इससे पहले ईरान द्वारा हॉर्मुज जलडमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर हमला करने और उसे आग लगाकर चालक दल को जहाज छोड़ने के लिए मजबूर करने के बाद अमेरिका ने ईरान पर नए हवाई हमले किए। वियतनाम में नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर हो ची मिन शहर पहुंच गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में दूतावास ने बताया कि आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद पार्थिव शरीरों को यथाशीघ्र भारत भेजा जाएगा। हो ची मिन शहर स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास वियतनाम के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए है। इस नाव में 32 भारतीय पर्यटकों सहित 36 लोग सवार थे। दुर्घटना में घायल 16 भारतीय स्वदेश लौट रहे हैं। गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति का वियतनाम के फुक्वाक स्थित अस्पताल में उपचार चल रहा है। इस बीच वियतनाम के प्रधानमंत्री ली मिन होंग ने दुर्घटना की जांच के आदेश दिए हैं। अमेरिका, ब्रिटेन और 12 अन्य पश्चिमी तथा एशियाई देशों ने 2016 के मध्यस्थता निर्णय के आधार पर दक्षिण चीन सागर में चीन के व्यापक दावों को अवैध बताया है। इन 14 देशों के संयुक्त बयान में कहा गया है कि विवादित जल क्षेत्र में क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डालने वाली कार्रवाई अस्वीकार्य है। 27 देशों वाले यूरोपीय संघ के बयान में

0: इसे विवादों के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में ऐतिहासिक निर्णय बताया गया है।
1: इन बयानों में 12 जुलाई 2016 को हेग में संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन के तहत स्थापित न्यायाधिकरण के मध्यस्थता निर्णय का जिक्र किया गया है। उन्होंने इस ऐतिहासिक निर्णय को अंतिम और कानूनी रूप से बाध्यकारी बताया है। हालांकि चीन ने इस निर्णय को खारिज करते हुए इसे अमान्य बताया। उसने कहा कि इसका कोई बाध्यकारी प्रभाव नहीं है। चीन ने दोहराया कि वह इसे ना तो स्वीकार करता है और ना ही मान्यता देता है। एक वर्ष पहले विवादित जल क्षेत्र में तनावपूर्ण गतिरोध के बाद दक्षिण चीन सागर तनाव का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। यहां चीन और फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई और ताइवान के बीच बार बार क्षेत्रीय गतिरोध होते रहते हैं। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। देशभर में पौधे लगाने के लिए आज व्यापक अभियान चलाया गया। इसके तहत उत्तर प्रदेश ने एक दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में नया इतिहास रचा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में लिंक एक्सप्रेसवे के निकट नीम, पीपल और बरगद के पौधे लगाकर राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया।
2: कार्यक्रम के दौरान जन भवन की नक्षत्र वाटिका में कुल 29 चंदन के पौधे लगाए गए। पौधारोपण अभियान में जन भवन के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ साथ बालिका गृह की लड़कियों ने भी हिस्सा लिया। इस अभियान में कई मंत्रियों और जन प्रतिनिधियों के साथ साथ स्वयंसेवी संस्थाओं के सदस्यों, विभिन्न विभागों के लोगों, विद्यार्थियों और आम जनता ने भी भाग लिया। ये अभियान राज्य के 75 जिलों में चलाया गया। राज्य ने इस वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर 5 करोड़ से ज्यादा पौधे भी लगाए। उत्तर प्रदेश में इस साल अब तक कुल 40 करोड़ 29 लाख पौधे लगाए जा चुके हैं। ये अभियान 27 विभागों के आपसी सहयोग से चलाया गया, जिसमें वन विभाग ने 15.5 करोड़ पौधे लगाने का सबसे बड़ा लक्ष्य पूरा किया। लखनऊ से सुशील तिवारी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से रेशमा तिवारी।
0: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज इंदौर में एक पेड़ माँ के नाम वृक्षारोपण अभियान का शुभारम्भ किया। इसका लक्ष्य राज्य भर में 21 लाख पौधे लगाना है। इस अभियान के अंतर्गत 51,000 वर्षा जल संचयन इकाइयां स्थापित करने की भी योजना है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधे लगाना बेहद महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में श्री चौहान ने कहा कि आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी का तापमान बढ़ने से चिंतित है।
3: जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा, जलवायु संकट गहराएगा और ये नुकसान 2100 तक बढ़कर जीडीपी में जो कमी हो रही 20% तक पहुंच सकता है। आप कल्पना कीजिए क्या होगा। यह आर्थिक संकट इतना बड़ा होगा कि इसको मुकाबला करना फिर कठिन हो जाएगा। और इसलिए वर्तमान दर से अगर ग्रीन गैसों का उत्सर्जन जारी रहा तो 2050 तक पृथ्वी को गंभीर पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद में नगर निगम के 405 करोड़ रुपए की लागत की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत विशाल पौधारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया। इस अभियान के तहत आज उनके लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में 1.25 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाए गए। हमारी संवाददाता ने बताया कि गृहमंत्री ने 2029 के चुनाव तक निर्वाचन क्षेत्रों में पौधे लगाने की गतिविधि को 20% तक बढ़ाने की दीर्घकालिक पर्यावरणीय रूपरेखा पर बल दिया।
4: गृहमंत्री ने बरगद, पीपल, जामुन और अर्जुन जैसे स्वदेशी पौधे लगाने पर जोर दिया, जिससे शहर के तापमान में 5% की कमी आएगी और भावी पीढ़ियों के लिए एक रहने योग्य पर्यावरण सुनिश्चित होगा। उन्होंने पर्यावरण स्थिरता में योगदान देने के लिए हर घर और आवासीय सोसाइटी से सोलर रूफटॉप अपनाने का भी आह्वान किया। इस पर्यावरण अभियान के तहत आज 101 नए ऑक्सीजन पार्क का भी उद्घाटन किया गया और उनकी जानकारी देने वाली एक विशेष ई बुक भी जारी की गई। सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए AMTS और BRTS के बेड़े में आज 333 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल की गई, जिससे अहमदाबाद BRTS देश का पहला 100% इलेक्ट्रिक और शून्य प्रदूषण वाला बेड़ा बन गया है। अपर्णा खोंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारत ने चीन के ओर्डोस में खेली जा रही

एशियाई अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अपना अभियान 16 पदकों के साथ संपन्न किया। इनमें 3 स्वर्ण, 4 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत ने आज अंतिम दिन 2 स्वर्ण और 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। भारतीय महिला टीम ने 4x400 रिले में स्वर्ण पदक जीता, जबकि भाला फेंक में भारत के आनंद सिंह ने स्वर्ण और शिवम लोहाकरे ने कांस्य पदक हासिल किया। भारतीय पुरुष टीम ने 4x400 रिले और महिला टीम ने 4x400 मीटर रिले में रजत पदक जीते। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का फाइनल मुकाबला इटली के यानिक सिनर और जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव के बीच जारी है। इससे पहले चीन की गुओ हानयू ने और फ्रांस की क्रिस्टीना मिलाडेनोवा की जोड़ी ने महिला डबल्स का खिताब जीता। उन्होंने फाइनल्स में कनाडा की गैब्रियला डाब्रोवस्की और ब्राजील की लुइसा स्टेफनी को 6-3, 7-5 से पराजित किया। उधर लंदन के लॉर्ड्स में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को एकमात्र टेस्ट में 457 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में तीसरे दिन इंग्लैंड ने ताजा समाचार मिलने तक 3 विकेट पर 23 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत ने अपनी दूसरी पारी 7 विकेट पर 341 रन बनाकर घोषित कर दी। इंग्लैंड की टीम पहली पारी में 170 रन की बना सकी। सरकार ने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से वाहन के ईंधन टैंक की सीमित समस्या संबंधी दावे का खंडन किया है। सोशल मीडिया पोस्ट पर वायरल फर्जी तस्वीर में ऐसा दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को झूठा बताया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि तेल विपणन कंपनियों द्वारा आपूर्ति किया जा रहा E20 पेट्रोल भारतीय मानक ब्यूरो के निर्धारित मानकों के अनुरूप है। निर्धारित मानकों के अनुरूप होने पर इथेनॉल और पेट्रोल पूरी तरह से घुलनशील हैं। नई पीढ़ी के प्रशासनिक और ई गवर्नेंस सुधारों के विषय पर 2 दिन का राष्ट्रीय सम्मेलन कल से मेघालय के शिलांग में शुरू हो रहा है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा मेघालय सरकार इसका आयोजन कर रखे हैं। ये सम्मेलन देश भर के नीति निर्माताओं, प्रशासकों, प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों और शासन से जुड़े लोगों को एक मंच पर लाएगा ताकि वो लोक प्रशासन और डिजिटल गवर्नेंस के भविष्य पर चर्चा कर सकें। सम्मेलन में 300 से अधिक प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने निर्माण क्षेत्र में पर्यावरण अनुकूल तकनीक अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के 172वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि किसी भी भवन या संरचना के निर्माण के दौरान उसकी मजबूती से समझौता नहीं किया जाना चाहिए। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वो भारतीय उद्योग जगत के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भी करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार और टिकाऊ विकास पर विशेष ध्यान देते हुए यूरोप के साथ भारत की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। यात्रा के पहले चरण में श्री गोयल कल स्पेन पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 16 तारीख को आकाशवाणी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये इस कार्यक्रम का 136वां एपिसोड होगा। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर कार्यक्रम के लिए अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं। वो नरेंद्र मोदी ऐप या MyGov ओपन फोरम के माध्यम से भी ऑनलाइन अपने सुझाव दे सकते हैं। नागरिक 1922 नंबर पर मिस्ड कॉल देकर और SMS से प्राप्त लिंक का अनुसरण करके सीधे प्रधानमंत्री को अपने सुझाव भेज सकते हैं। आगामी एपिसोड के लिए सुझाव इस महीने की 24 तारीख तक स्वीकार किए जाएंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया मंगलवार को देश भर में लगभग 668 करोड़ रुपए लागत वाली 7 कर्मचारी राज्य बीमा ESI स्वास्थ्य परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत पर हमले के बाद पश्चिम एशिया क्षेत्र में तुरंत तनाव कम करने का आह्वान किया। अमरीका ने कहा होर्मुज जल डमरू मध्य में सभी जहाजों के लिए खुला और अमरीकी सेना नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैयार। वियतनाम में नौका दुर्घटना में मारे गए 15 भारतीयों के पार्थिव शरीर हो ची मिन शहर पहुंचे, उन्हें जल्द से जल्द भारत लाया जाएगा। उत्तर प्रदेश ने एक दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण में नया इतिहास रचा।

में अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 3 स्वर्ण सहित कुल 16 पदक जीते और लंदन में विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष सिंगल्स फाइनल में यानिक सिनर और अलेक्जेंडर ज़ेवरेव का मैच जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अब्दुल वाहिद। भारत ने ओमान के साहिल से कुछ दूर भारतीय शहरियों को ले जाते हुए कमर्शियल जहाज पर हमला किए जाने के बाद मगरबी एशिया खित्ते में कशीदगी को फौरी तौर पर खत्म करने के लिए कहा है। अमेरिका ने कहा है कि अदनाए हुरमुज सभी जहाजों के लिए खुली है और अमेरिकी फौज जहाजों की आजादाना आमदोरफ्त को यकीनी बनाने के लिए तैयार है। वियतनाम कश्ती सानहे में, जिनमें 15 भारतीय सयाहों की मौत हो गई थी, उनके जस्ते खाकी को हो ची मिन्ह सिटी लाया गया है। अब उन्हें जल्द अज जल्द भारत लाया जाएगा। उत्तर प्रदेश ने एक ही दिन में 37 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाकर माहौलियात के तहफ्फुज में एक नया पैमाना मुकर्रर किया है। भारत ने चीन में 23 साल तक की उम्र की एथलीट चैंपियनशिप में सोने के 3 तमगों समेत कुल 16 तमगे हासिल किए हैं और विंबलडन टेनिस में आला दर्जे के येनिक सिनर और दूसरे दर्जे के एलेक्जेंडर ज़वेरोव के दरमियान मर्दों के सिंगल्स का फाइनल लंदन में जारी है। अब खबरें तफसील से। भारत ने आज ओमान के साहिल से कुछ दूर भारतीय अमले के अरकान को ले जाते हुए एक कमर्शियल जहाज GFS गैलेक्सी पर हमले के बाद मगरबी एशिया खित्ते में कशीदगी को फौरी तौर पर खत्म करने के लिए एक बार फिर कहा है। हमले की मजम्मत करते हुए वजारत खारजा ने एक बयान में बताया कि इस जहाज में सवार 11 भारतीय बाशिंदों में से अभी तक 10 को बचाया गया है, जबकि एक बाशिंदे के लापता होने की खबर है। बयान में कहा गया है कि ओमान में भारतीय सफारतखाना सूरतेहाल पर करीबी नजर रखे हुए है और वो तलाश और बचाव के काम में ओमान के हुक्काम के साथ सरगर्मी के साथ तालमेल रखे हुए है। भारत ने इस मदद पर ओमान के हुक्काम का शुक्रिया अदा किया है। भारत ने खित्ते में कमर्शियल जहाजों पर हमलों के जारी वाकयात पर तशवीश का इजहार किया है। उसने एक बार फिर कहा है कि सिफारती हल के लिए जारी मुजाकिरात जल्द मुकम्मल किए जाएं ताकि खित्ते में अमन इस्तेहकाम बहाल किया जा सके। अमरीका की मरकजी कमान सेंटकॉम ने कहा है कि अदनाए हुरमुज उन सभी जहाजों के लिए खुली है जो कानूनी तौर पर यहां से गुजरना चाहते हैं। अमरीका ने यह ऐलान ईरान के पासदारान इनकलाब IRGC की तरफ से अदनाए हुरमुज को मजीद कोई नोटिस जारी किए जाने तक बंद करने के ऐलान के कुछ ही घंटे के बाद किया है। ये बयान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहे जाने के बाद दिया गया है कि अदनाए हुरमुज कमर्शियल जहाजों के लिए खुली है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में सेंटकॉम ने कहा कि समंदर में जहाजों की आमदोरफ्त अदनाए हुरमुज के रास्ते जारी है और अमरीकी फौजें बकौल उसके ईरानी जारहियत हिरासानी धमकियों और मनमाने ऐलानात के बावजूद आजादाना आमदोरफ्त को यकीनी बनाने के लिए तैनात हैं। उसने जोर देकर कहा कि ईरान अदनाए हुरमुज को कंट्रोल नहीं करता और महफूज राहदारी वाले रास्ते खुले हैं। वियतनाम के फूकोक जजीरे के करीब तेज रफ्तार कश्ती पलटने के हादसे में हलाक होने वाले 15 भारतीय शहरियों का जस्द खाकी आज हो ची मिन्ह सिटी पहुंच गया है। वियतनाम में भारतीय सफारतखाने ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि जरूरी कानूनी कार्रवाइयां मुकम्मल होने के बाद महलूकीन के जस्द खाकी को हवाई जहाज के जरिए भारत लाया जाएगा। सफारतखाने ने कहा कि वो कौंसिल खाना और वियतनाम के हुक्काम के साथ राबते में हैं ताकि जस्ते खाकी की वतन वापसी को जल्द अज जल्द मुमकिन बनाया जा सके। सफारतखाने ने बताया कि महफूज निकाले गए 17 भारतीय सयाहों में से 16 सयाहों को भारत लाया जा रहा है, जबकि एक सयाह जिसकी हालत संगीन बनी हुई है फूकोक के एक अस्पताल में जेर इलाज है। इस दौरान वियतनाम के सदर ली मिन होंग ने हादसे की जांच का हुक्म जारी किया है और हुक्काम को हिदायत दी है कि कसूरवारों के खिलाफ जरूरी कार्रवाई की जाए। आज मुल्क भर में शजरकारी की एक बड़ी मुहिम का अहतमाम किया गया। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से पूरी रियासत के लिए वृक्षारोपण महायज्ञ मुहिम का आगाज किया।

0: उन्होंने लिंक एक्सप्रेसवे के नज़दीक मुबारक त्रिवेणी यानी तीन दरख्त नीम पीपल और बरगद के पौधे लगाए। उन्होंने ताल रिंग रोड पर मुलसरी का पौधा भी लगाया। रियासत में आज 35 करोड़ 27 लाख से ज़्यादा पौधे लगाकर एक तारीख रकम की है। एक पेड़ माँ के नाम के उन्वान से पूरी रियासत में शाम 6:12 तक कुल 35 करोड़ 27 लाख 89,926 पौधे लगाए गए। ये हुकूमत के 35 करोड़ के निशाने से 27 लाख 89,000 ज़्यादा पौधे हैं। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने इस हुसूलियाबी पर आवाम को मुबारकबाद दी है। उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदी बेन पटेल ने भी इस मुहिम के हिस्से के तौर पर जन भवन के अहाते में संदल का पौधा लगाया। तफसील हमारे नामानिगार से।
1: प्रोग्राम के दौरान जन भवन की नक्षत्र वाटिका में संदल के 29 पौधे लगाए गए। जन भवन के अफसरान और मुलाजमीन ने सिंधी खेड़ा के सरकारी गर्ल्स होम की लड़कियों के साथ मिलकर शजरकारी की इस मुहिम में हिस्सा लिया। बहुत से वज़रा और अवामी नुमाइंदों ने एनजीओ अरकान मुख्तलिफ महकमों तलबा और आम लोगों के साथ मिलकर मुहिम में हिस्सा लिया। ये मुहिम रियासत के सभी 18 डिवीजनों और 75 जिलों में चलाई गई। रियासत में इस साल 5 जून को भी माहौलियात के आलमी दिन के मौके पर 5 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाए गए थे। उत्तर प्रदेश में इस साल मजमूई तौर पर 40 करोड़ 29 लाख पौधे लगाए गए हैं। लखनऊ से सुशील तिवारी की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असलम बेग।
0: वज़ीर दाखिला अमित शाह ने गुजरात के शहर गांधीनगर में भी बड़े पैमाने पर शजरकारी की मुहिम का आगाज किया, जिसके दौरान आज उनके लोकसभा हलके में 1,25,00,000 से ज्यादा पौधे लगाए गए। आज नई दिल्ली में वृक्ष मित्र प्रोग्राम और पर्यावरण संरक्षण संकल्प तकरीब से खिताब करते हुए मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने जोर देकर कहा कि शजरकारी माहौल के तहफ्फुज के लिए इंतहाई अहम है और इससे एक पायदार मुस्तकबिल की यकीन दहानी होती है। मध्य प्रदेश के वजीर आला डॉक्टर मोहन यादव ने भी इंदौर में शजरकारी की मुहिम का आगाज किया, जिसके तहत पूरी रियासत में 21 लाख पौधे लगाए जाने का निशाना मुकर्रर किया गया है। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन ने आज जोर देकर कहा कि हर शहरी का फर्ज है कि वो मुल्क के समाजी मुसलहीन के अजीम विरसे का एहतराम करें और उसे बरकरार रखें। जनाब राधाकृष्णन आज नई दिल्ली के द्वारिका के मन्नम इंटरनेशनल सेंटर में समाजी मुसले और मुजाहिद आज़ादी मन्नथू पद्मनाभन के मुजस्मे की नकाब कुशाई और मन्नम स्मृति मंडपम का आगाज करने के बाद बात कर रहे थे। मजमे से खिताब करते हुए नायब सदर ने कहा कि मन्नथू पद्मनाभन ने अपनी पूरी जिंदगी समाजी इंसाफ मसावात तालीम और अवामी खिदमत के लिए वक्फ कर दी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में इस माह की 26 तारीख को मुल्क के अवाम से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये माहाना रेडियो प्रोग्राम का 136वां नशरिया होगा। लोग इस प्रोग्राम के लिए अपने ख्यालात और तजावीज इस टोल फ्री नंबर पर भेज सकते हैं 1800117800। लोग अपनी राय नरेंद्र मोदी ऐप पर भी भेज सकते हैं। लोग इसके लिए 1922 पर मिस्ड कॉल भी दे सकते हैं और वज़ीर आज़म को बराह रास्त अपनी तजावीज SMS पर मौसूला लिंक के जरिए रब्ता कायम कर सकते हैं। आइंदा नशरे के लिए तजावीज इस माह की 24 तारीख तक कबूल की जाएंगी। तिजारत और सनत के वजीर पीयूष गोयल कल से इस माह की 17 तारीख तक स्पेन बेल्जियम और फिनलैंड में भारतीय ताजिरों के एक आला सतह के वफ्द की क्यादत करेंगे। उन्होंने कहा कि इस दौरे का मकसद यूरोप के साथ भारत की इक्तिसादी शराकतदारी को मुस्तहकम बनाना है, जिसमें तिजारत सरमायाकारी टेक्नोलॉजी अख्तरा और पायदारी पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। हाउसिंग और शहरी उमूर के मरकजी वजीर मनोहर लाल ने तामीर के शोबे में माहौल के लिए साजगार टेक्नोलॉजी अपनाने की जरूरत पर जोर दिया है। एक तकरीब से खिताब करते हुए जिसका अहतमाम नई दिल्ली में तामीरात के महकमे के 172वें योम तासीस के मौके पर किया गया था, वजीर मौसूफ ने जोर देकर कहा कि कोई भी इमारत या ढांचा तामीर करते हुए उसकी पायदारी से समझौता नहीं किया जाना चाहिए। भारत ने कतर के मौजूदा अमीर के वालिद शेख हमद बिन अल खलीफा अल सानी के इंतकाल पर कल एक रोज़ा कौमी शोक का ऐलान किया है। शेख हमद बिन खलीफा अल सानी का आज इंतकाल हो गया। मुल्क भर में इस दौरान तमाम सरकारी इमारतों पर कौमी परचम निस्फ सरनगुं रहेगा। इसके अलावा उस दिन कोई सरकारी तकरीब मुनक़िद नहीं होगी। अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम का मुख्तसर बीमारी के बाद इंतकाल हो गया। वो सदर डोनाल्ड ट्रंप के एक करीबी साथी थे। उनकी उम्र 71 साल रही। सदर ट्रंप की दूसरी मुद्दत के दौरान ग्राहम अमरीका की खारजा पॉलिसी से मुतल्लिक एक अहम आवाज के तौर पर उभरे थे। अमरीका बरतानिया और एक दर्जन दीगर मगरबी और एशियाई ममालिक ने आज दो बार

जोर देकर कहा है कि बहिरे चीन में चीन के वसी दावे 2016 के सालिसी के फैसले की बुनियाद पर गैर कानूनी हैं। 14 ममालिक की तरफ से जारी करदा मुश्तरका बयान में कहा गया है कि वो मतनाज़ा आबी हदूद में अदम इस्तेहकाम पैदा करने वाले इकदामात को मुस्तरद करते हैं, क्योंकि इससे इलाकाई इस्तेहकाम को खतरा है। दूसरी जानिब 27 ममालिक पर मुश्तमिल यूरोपीय यूनियन ने एक अलहदा बयान जारी करते हुए इस फैसले को तनाज़ियात के पुरअमन हल के लिए एक तारीखी फैसला करार दिया है। ये बयानात 12 जुलाई 2016 को दहेग में कायम करदा ट्रिब्यूनल के सालिसी के फैसले के जिम्न में आए हैं, जिसमें कहा गया था कि यह तारीखी फैसला फरीकैन को हतमी और कानूनी तौर पर पाबंद बनाता है। ताहम चीन ने इस फैसले को मुस्तरद करते हुए कहा कि इसकी कोई हैसियत नहीं है और इसकी पाबंदी लाजिम नहीं है। चीन ने इस बात का इरादा किया कि बीजिंग इसे तस्लीम नहीं करता। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। बांग्लादेश में पिछले हफ्ते सैलाब और जमीनी तोदे खिसकने की वजह से 40

0: चीन ने इस बात का इरादा किया कि बीजिंग इसे तस्लीम नहीं करता। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। बांग्लादेश में पिछले हफ्ते सैलाब और जमीनी तोदे खिसकने की वजह से 40 अफराद हलाक हो गए। बहुत सी जानें जमीनी तोदे खिसकने की वजह से जाया हुई हैं और बखिया ज्यादातर अमवात पानी में डूबने या सैलाब में बह जाने और दरियाओं की तुगयानी के सबब हुई हैं। अफगानिस्तान के ज़राअत, पाशी और मवेशियों के उमूर के वजीर अताउल्ला उमरी ने आज भारत का अपना 6 रोज़ा दौरा मुकम्मल किया। वजारत खारजा के मुताबिक अफगान वजीर के साथ एक आला सतही वफद भी था। गुज़िश्ता साल अक्टूबर के बाद से अफगानिस्तान की तरफ से वजारती सतह का भारत का यह चौथा दौरा था जो दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात में गर्मजोशी की अक्कासी करता है। इस दौरे में अफगानिस्तान के वजीर ने भारत के ज़राअत और किसानों के बहबूद के वजीर शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। दोनों फरीकों ने बाहमी ताल्लुकात में ज़राअत, आबपाशी, ज़रई तहकीक, सलाहियत साजी, ज़रई तजारत में तआवुन को फ़रोग देने पर तबादला ख्याल किया। हुकूमत ने सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली एक फर्जी तस्वीर से इनकार किया है जिसमें यह दावा किया गया है कि एथेनॉल की आमजिश वाले पेट्रोल से गाड़ियों के ईंधन की टंकी में खराबियां आ सकती हैं। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के हकायक मालूम करने वाले यूनिट ने इस दावे को झूठा करार दिया है। ब्यूरो ने कहा है कि पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत ने वजाहत की है कि तेल मार्केटिंग कंपनियों की तरफ से सप्लाई किया गया E20 पेट्रोल भारतीय मेयारात के ब्यूरो की तरफ से मुकर्रर किए गए पैमाने के मुताबिक है। वजारत ने कहा कि एथेनॉल और पेट्रोल मुकम्मल तौर पर एक दूसरे में जम हो जाते हैं और ये अलग नहीं होते और न ही किसी तरह की अलग अलग परतें बनाते हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मारूफ गुलूकारा इस जानकी के इंतकाल पर गहरे रंजोगम का इजहार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में सदर जमहूरिया ने कहा कि मुल्क मौसीकी की दुनिया की एक अजीम शख्सियत से महरूम हो गया है। चीन के ऑर्डोस में एशियन अंडर 23 एथलीट्स चैंपियनशिप में भारत ने 16 तमगों के साथ अपनी मुहिम खत्म की। इसमें सोने के 3, चांदी के 4 और कांसे के 9 तमगे शामिल हैं। चैंपियनशिप के आखिरी दिन भारत ने सोने के 2, चांदी के 2 और कांसे का 1 तमगा जीता। विंबलडन टेनिस में मर्दों के फाइनल मुकाबले में लंदन में आलमी नंबर 1 खिलाड़ी इटली के यानिक सिनर और जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरोव के दरमियान मुकाबला जारी है। सिनर ने नोवाक जोकोविच से सीधे सेटों में जीत हासिल करके फाइनल में जगह बनाई है, जबकि ज़वरोव ने बिरतानिया के आर्थर फेरी को शिकस्त देकर पहली दफा फाइनल में पहुंचे हैं। दूसरी जानिब 10वें दर्जे की जोड़ी चीन की गुओ हानिव और फ्रांस की क्रिस्टीना मोलोडोवेच ने खवातीन डबल्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। उन्होंने खिताबी मुकाबले में दूसरे दर्जे की जोड़ी कैनेडा की गैब्रिला रोरेंस्की और ब्राजील की लुइसा स्टेफनी को 6-3, 7-5 से शिकस्त देकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब हासिल किया। इंग्लैंड में लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में जारी खवातीन क्रिकेट के एक तारीखी टेस्ट मैच के तीसरे दिन अब से कुछ देर पहले तक इंग्लैंड ने 4 विकेट पर 49 रन बना लिए थे। इससे कबल भारत ने 7 विकेट पर 341 रन बनाकर अपनी दूसरी इनिंग डिक्लेयर की और मेजबान इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 457 रन का निशाना रखा। कल इंग्लैंड की टीम अपनी पहली इनिंग्स में 170 रन पर आउट हो गई थी। भारत ने अपनी पहली इनिंग में 285 रन बनाए थे। फीफा आलमी कप के सेमीफाइनल की टीमें तय हो चुकी हैं। अर्जेंटीना, इंग्लैंड, फ्रांस और स्पेन ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। आज सुबह खेले गए क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड ने नॉर्वे को 2-1 से जबकि अर्जेंटीना ने स्विट्जरलैंड को 3-1 से शिकस्त दी। आखिर में खास खबरें एक मरतबा फिर। भारत ने ओमान के साहिल से कुछ दूर भारतीय शहरियों को ले जाते हुए कमर्शियल जहाज पर हमला किए जाने के बाद मगरबी एशिया खित्ते में कशीदगी को फौरी तौर पर खत्म करने के लिए कहा है। अमरीका ने कहा है कि आबनाए हुरमुज सभी जहाज़ों के लिए खुली है और अमरीकी फौज जहाज़ों की आज़ादाना आमदोरफ्त को यकीनी बनाने के लिए तैयार है। वियतनाम कश्ती सानहे में जिन 15 भारतीय सयाहों की मौत हो गई थी उनके जस्ते खाकी को होचीमिन सिटी लाया गया है। अब इन्हें जल्द अज जल्द भारत लाया जाएगा। उत्तर प्रदेश ने एक ही दिन में 37 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाकर माहौलियात के तहफ्फुज़ में एक नया पैमाना मुकर्रर किया है। भारत ने चीन में 23 साल तक की उम्र की एथलीट्स चैंपियनशिप में सोने के 3 तमगों समेत कुल 16 तमगे हासिल किए हैं और विंबलडन टेनिस में आला दर्जे के यानिक सिनर और दूसरे दर्जे के अलेक्जेंडर ज़वरोव के दरमियान मर्दों के सिंगल्स का फाइनल लंदन में जारी है। इसी के साथ खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।
1: दिस इज दिल्ली। प्लीज स्टैंड बाय फॉर आवर नेक्स्ट ब्रॉडकास्ट। दिस इज आकाशवाणी। In our national program of features, we now bring you a feature titled PG Accommodations, a home away from home.

0: एक प्रखर गायक के रूप में जाने जाते हैं। किराना और ग्वालियर घराने की गहरी समझ के साथ साथ अपने पिता पंडित सोमनाथ मरडूर से मिली तालीम ने उनकी गायकी को एक अनोखा अंदाज दिया है। दिग्गज उस्तादों की प्रेरणा से सजी उनकी इस गायकी में जयपुर, अतरौली और अन्य घरानों की झलक भी मिलती है। एक बहुमुखी कलाकार और संगीतकार के रूप में कुमार मरडूर ख्याल, टुमरी, हिंदी भजन, मराठी अभंग, कन्नड़ दास साहित्य, कन्नड़ वचन साहित्य और कई अन्य संगीत परंपराओं का अन्वेषण करते हैं। आकाशवाणी और दूरदर्शन के ए ग्रेड कलाकार कुमार ने देश भर के कई प्रतिष्ठित संगीत समारोह में अपनी प्रस्तुति दी है।
1: दिस इज आकाशवाणी। इन टुनाइट्स रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा वी ब्रिंग यू अ वोकल रिसाइटल बाय श्री कुमार मरडूर। Awarded the Ustad Bismillah Khan Yuva Puraskar by the Sangeet Natak Academy, Kumar Mardur stands out as a gifted Hindustani classical vocalist. His grounding in the Kirana and Gwalior Gharanas, along with training under his father Pandit Somnath Mardur, has led to a unique gaiki that weaves in elements from Jaipur, Atrauli and other Gharanas, built on deep riyas and inspiration from legendary maestros. A multifaceted performer and composer, Kumar explores khayal, tumri, Hindi bhajans, Marathi abhangs, Kannada dasa sahitya, Kannada vachana sahitya and many other traditions. An A-grade artist of Akashvani and Doordarshan, Kumar has performed throughout the country in various prestigious concerts.
0: Aaj ke is karyakram mein aapke saath tabla par Pandit Satlingappa Desai Kallur aur harmonium par श्री पंचाक्षरी हिरेमठ साथ दे रहे हैं। श्री कुमार मरडूर अपने कार्यक्रम का प्रारंभ राग छायानट से कर रहे हैं। विलंबित झुमरा इनायत हो, द्रुत तीन ताल एरी मालनिया, द्रुत तीन ताल तराना।
1: इन टुनाइट्स प्रोग्राम ही इज अकंपनीड ऑन द तबला बाय पंडित सातलिंगप्पा देसाई कल्लूर एंड ऑन द हारमोनियम बाय श्री पंचाक्षरी हिरेमठ। Shri Kumar Mardur will begin his vocal recital with Raag Chhaya Nat, Vilambi Jhumra, Inayatahu, Drut Teen Taal, Eri Maliniya, followed by Tarana in Drut Teen Taal.

0: अभी आपने सुना राग छायानट। अब श्री कुमार मल्डूर प्रस्तुत कर रहे हैं राग बागेश्री। विलंबित एकताल सखी मना लागिना, द्रुत एकताल बिनती कराता।
1: You just heard राग छायानट। श्री कुमार मल्डूर विल नाउ प्रेजेंट राग बागेश्री। विलंबित एकताल सखी मना लागिना, द्रुत एकताल बिनती करता।

0: अब तक आप सुन रहे थे राग बागेश्वरी। इसी के साथ आज की रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा संपन्न होती है, जिसमें आप सुन रहे थे श्री कुमार मरडूर का गायन। आपके साथ तबले पर पंडित सातलिंगप्पा देसाई कल्लूर और हारमोनियम पर श्री पंचाक्षरी हिरेमठ साथ दे रहे थे।
1: That was Rag Bageshri. With that, we come to the end of tonight's Ravivasariya Akhila Bharatiya Sangeet Sabha, in which you were listening to a vocal recital by Shri Kumar Maradur. He was accompanied on the tabla by Pandit Satlingappa Desai Kallur and on the harmonium by Shri Panchakshari Hiremath.
0: यह कार्यक्रम आकाशवाणी के धारवाड केंद्र में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: दिस प्रोग्राम वॉज अर्लियर रिकॉर्डेड एट आकाशवाणी धारवाड एंड रिलेड फ्रॉम आकाशवाणी दिल्ली।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब से कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे समाचार। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। भारत ने कहा है कि होर्मुज जल डमरू मध्य क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय जल मार्गों से मुक्त और बिना रुकावट के नौवहन और वाणिज्य जहाजों को जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय के बयान में इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों पर लगातार हमलों की घटनाओं पर चिंता प्रकट की गई है।
4: भारत ने तनाव को तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए बातचीत को शीघ्र निष्कर्ष तक पहुंचाने की मांग दोहराई है, ताकि इस इलाके में शांति और स्थिरता कायम की जा सके। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाना बंद होना चाहिए। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की है। पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक लापता है। ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार

0: रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर द्वारा रणनीतिक जलमार्ग को अगले आदेश तक बंद करने की घोषणा के कुछ घंटों बाद अमेरिकी सेंट्रल कमान ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य सभी वैध आवागमन चाहने वाले जहाजों के लिए खुला है। ये बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संवाददाता सम्मेलन में ये कहने के बाद आया कि होर्मुज जलडमरू मध्य वाणिज्यिक जहाजों के लिए खुला है। अमेरिकी सेंट्रल कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जलडमरू मध्य से समुद्री यातायात सुचारू रूप से चल रहा है और अमेरिकी सेनाएं ईरानी आक्रामकता, उत्पीड़न, धमकियों और मनमानी घोषणाओं के बावजूद नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैनात हैं। ईरान ने बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाकर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। ईरान ने जॉर्डन में एक अमेरिकी सैन्य अड्डे पर भी हमला करने का दावा किया। इस तनाव ने क्षेत्रीय सुरक्षा और वैश्विक ऊर्जा बाजारों को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। वियतनाम में नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर हो ची मिन्ह शहर पहुंच गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में दूतावास ने बताया कि आवश्यक औपचारिकताएं पूरा होने के बाद पार्थिव शरीरों को यथाशीघ्र भारत भेजा जाएगा। हो ची मिन्ह शहर स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास वियतनाम के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए है। इस नाव में 32 भारतीय पर्यटकों सहित 36 लोग सवार थे। दुर्घटना में घायल 16 भारतीय स्वदेश लौट रहे हैं। गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति का वियतनाम के फूसकॉक स्थित अस्पताल में उपचार चल रहा है। इस बीच वियतनाम के प्रधानमंत्री ली मिन हंग ने दुर्घटना की जांच के आदेश दिए हैं। देश भर में पौधे लगाने के लिए आज व्यापक अभियान चलाया गया। इसके तहत उत्तर प्रदेश ने एक दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में नया इतिहास रचा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में लिंक एक्सप्रेसवे के निकट नीम, पीपल और बरगद के पौधे लगाकर राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की लागत की विरासत परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत विशाल पौधारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया। इस अभियान के तहत आज उनके लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में 1,25,00,000 से ज्यादा पौधे लगाए गए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज इंदौर में एक पेड़ माँ के नाम वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया। इसका लक्ष्य राज्य भर में 21,00,000 पौधे लगाना है। इस अभियान के अंतर्गत 51,000 वर्षा जल संचयन इकाइयां स्थापित करने की योजना है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कल एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इसका शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य वैश्विक क्षमता केंद्र, डेटा केंद्र और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग मेघालय सरकार के सहयोग से कल शिलांग में नेक्स्ट जनरेशन प्रशासनिक और ई गवर्नेंस सुधार विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। भारत ने चीन के ऑर्डोस में खेली जा रही एशियाई अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अपना अभियान 16 पदकों के साथ संपन्न किया। इनमें 3 स्वर्ण, 4 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत ने आज अंतिम दिन 2 स्वर्ण और 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।